0: सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।
1: जी हाँ, आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ। सुबह के 5:37 और हो गए हैं 3 सेकेंड। आप सभी को सुप्रभात, और माधुरी आप सभी को देती है रक्षाबंधन की ढेर सारी बधाइयाँ। आप सभी भाई बहनों का प्यार और सम्मान यूं ही सलामत रहे।

आप जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखिएगा, उन लोगों की कद्र करना कभी मत भूलिएगा जो हमेशा आपकी कद्र करते हैं।

ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल है 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948 के भाद्रपद मास की छठी तिथि, तदनुसार 28 अगस्त 2026 सुबह के 5:53 और 40 सेकेंड हो चुके हैं। हमारे प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

और आइए अब आपको अवगत करा दें आज आकाशवाणी दिल्ली एफएम गोल्ड पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों से। सुबह 6:10 पर सुनिए भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्पण, जिसे लेकर पूजा कपूर होंगी आपके साथ। 6:44 पर सुनिएगा श्री रामचरितमानस गान अयोध्या कांड भाग 36। 7:10 पर समय होगा कार्यक्रम गोल्ड सुप्रभात का।

0: 8:45 पे सुनिए कार्यक्रम म्यूजिकल दिल्लगी। इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए 9:10 पर रेखा रानी होंगी आपके साथ। 10:30 पर सुनिएगा कार्यक्रम दिल का मेल बॉक्स। 11:10 पर प्रायोजित कार्यक्रम होगा मेरा वजूद। 11:25 पर सुनिए कार्यक्रम तस्वीर। आज की तस्वीर होगी वृंदावन उत्तर प्रदेश की। फोकस रहेगा रक्षाबंधन पर। 12:10 पर सुनिए कार्यक्रम एक कदम बुजुर्गों की ओर। 1:10 पर होगा कार्यक्रम कलाकार बेमिसाल। आज इस कार्यक्रम में आप जानेंगे फिल्मकार ऋषिकेश मुखर्जी के बारे में। साथ होंगी अंजलि। 2:30 पर कार्यक्रम होगा संगीत.com। 5:10 पर सुनिए कार्यक्रम पानी पर लिखी कहानी। ये आकाशवाणी दिल्ली का फिल्म गोल्ड चैनल है। 6:00 को हैं प्रसारित किए जाएंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 389 हो गई है। प्रशासन हजारों लापता लोगों को खोजने के लिए तेजी से काम कर रहा है। तिब्बत और नेपाल के अधिकारियों ने बताया है कि अभी 1,500 से अधिक लोग लापता हैं, जिनमें कई विदेशी नागरिक शामिल हैं। लापता लोगों में 30 से अधिक देशों, मुख्य रूप से भारत, अमेरिका, मलेशिया, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, कनाडा, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, जर्मनी और रूस के लोग शामिल हैं। नेपाल पुलिस ने बताया कि प्रभावित इलाकों से लगभग 1,500 से अधिक लोगों को बचाया गया है। इनमें

0: लोग भी शामिल हैं। भारत के विदेश मंत्रालय ने बताया कि नेपाल में बाढ़ के बाद 290 भारतीय नागरिकों से संपर्क नहीं हो पाया है, जबकि 84 भारतीयों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। इनमें त्रिशूली एक जल विद्युत परियोजना के 63 कर्मचारी और कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए तमिलनाडु के 21 लोग शामिल हैं। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि भारत ने नेपाल में बचाव और राहत अभियानों में सहायता के लिए 47 टन से अधिक राहत सामग्री भेजी है।
1: दो जहाज पे हम लोगों ने सहायता नेपाल को पहुंचाया है। पहला जहाज यहाँ से 10 टन करीबन रिलीफ मटेरियल लेके काठमांडू पहुंचा था, जिसमें कि कंबल, सोलर लैंप, दवाइयां, हाइजीन किट्स और टेंट वगैरह इस प्रकार की चीजें हैं। दूसरा जहाज इसमें 37.5 टन की सप्लाई, जिसमें कि 28.5 टन रिलीफ आइटम्स और 8 टन दवाइयां और 1 टन खाने पीने की सामग्री और जो भी मानवीय सहायता हो सकता है वो भी हम प्रदान करेंगे।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की 4 दिन की यात्रा पर जाएंगे। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी देशों के मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री मोदी उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के निमंत्रण पर ताशकंद की 2 दिन की राजकीय यात्रा करेंगे। इस दौरान श्री मोदी राष्ट्रपति मिर्जियोयेव के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। ताशकंद के बाद प्रधानमंत्री किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक जाएंगे। प्रधानमंत्री जनधन योजना के 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। ये देश में वित्तीय समावेशन के परिदृश्य को बदलने की दिशा में एक अहम पड़ाव है। इस योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2014 में आज ही के दिन की थी। सरकार ने प्याज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और कीमतों पर नियंत्रण के लिए बफर स्टॉक से प्याज की नियंत्रित बिक्री शुरू कर दी है। उपभोक्ता कार्य विभाग की सचिव निधि खरे ने नई दिल्ली के कृषि भवन से प्याज की खुदरा बिक्री वाले वाहनों को रवाना किया। रक्षाबंधन का त्योहार आज पूरे देश में मनाया जा रहा है। पर बहनें अपने भाइयों की कलाई पर रंग बिरंगी राखी बांधती हैं और उनकी खुशहाली, सेहत और समृद्धि की प्रार्थना करती हैं। भाई भी अपनी बहनों को उनकी रक्षा करने का वचन देते हैं और उन्हें उपहार देते हैं। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष ने रक्षाबंधन के पर्व पर देशवासियों को बधाई दी है। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज रक्षाबंधन के त्यौहार के साथ संपन्न होगी। 57 दिन तक चली यह यात्रा 3 जुलाई को शुरू हुई थी। यात्रा का समापन पवित्र गुफा मंदिर में महंत दीपेंद्र गिरी के नेतृत्व में पवित्र छड़ी मुबारक के पहुंचने के साथ होगा। इस वर्ष पहलगाम और बालतल दोनों रास्तों से 4,80,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने यह यात्रा पूरी की है। मौसम विभाग ने आज ओडिशा और बिहार में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आज छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और झारखंड में भी तेज वर्षा होने का अनुमान है। खेलों में हॉकी विश्व कप में भारतीय महिला टीम ने नीदरलैंड्स के एम्स्टलवीन में 5वें स्थान के लिए खेले गए मुकाबले में जर्मनी को 3-1 से हरा दिया है। वर्ष 1974 में हुए पहले विश्व कप में 4था स्थान हासिल करने के बाद ये भारतीय महिला टीम का सबसे अच्छा प्रदर्शन था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

भूरगीस वीला में 100.1 आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर ये समय है भक्ति और श्रद्धा से परिपूर्ण कार्यक्रम अर्पण का। अर्पण के सभी श्रोताओं को पूजा का अभिवादन। साथियों, आज रक्षाबंधन का त्यौहार पूरे उत्साह के साथ देश भर में मनाया जा रहा है और आज नराली पूर्णिमा भी मनाई जा रही है। आप सभी को रक्षाबंधन और नराली पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए हम और आप एक साथ मिलकर उस परम शक्ति को नमन करें।

साथियों, राम नाम का रस ऐसा अमृत है जिसे जितना पीते जाइए प्यास उतनी ही बढ़ती जाती है। मगर ये कैसी अद्भुत प्यास है जो बेचैनी नहीं बल्कि हमारे भीतर शांति भर देती है। स्वयं कबीर ने कहा है कि राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। तो आइए कुछ पल न कोई शिकायत न कोई चिंता, होठों पर रही तो बस राम का नाम।

साथियों, कहते हैं कि राम कहूँ चाहे कृष्ण, हरि का नाम सिमरन मन को भीतर से निर्मल करता है, क्योंकि ये हमें याद दिलाता है कि परिस्थितियाँ चाहे जैसी हों, प्रभु का साथ और उनका नाम हमारे अंदर विश्वास का दीपक हमेशा जलाए रख सकता है। 6:25 और 46 सेकेंड, ये है भक्ति और श्रद्धा से परिपूर्ण कार्यक्रम

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे

0: आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।
1: कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

साथियों, एक सवाल मन में हमेशा गोंगता रहता है कि क्या केवल प्रेम से लिया गया नाम ही फल देता है या बिना मन लगे जपा गया नाम भी व्यर्थ नहीं जाता। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि राम नाम मणि दीप धरू जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहर हूँ जो चाहस उजियार। अर्थात यदि जीवन में भीतर और बाहर प्रकाश चाहिए तो जिह्वा रूपी देहरी पर राम नाम रूपी मणिदीप रखो। नाम जप जीवन को प्रकाश, शांति और सही दिशा देता है। नाम लेते रहिए, कृपा स्वयं परमानंद की बरसती रहेगी। 6:33 और 26 सेकेंड 100.1 आकाशवाणी FM गोल्ड पर यह है भक्ति और श्रद्धा से परिपूर्ण कार्यक्रम अर्पण। और गोल्ड स्टूडियो से आज आपके साथ हूँ मैं, आपकी रेडियो वाली दोस्त पूजा।

कहते हैं कि तू ही पिता, तू ही माता, तू ही मेरा रखवाला, तेरे चरणों में रख दूं जीवन, तू ही तो है मेरा उजियाला। 6:38 और 50 सेकेंड, ये है भक्ति और श्रद्धा से परिपूर्ण कार्यक्रम अर्पण 100.1 आकाशवाणी FM गोल्ड पर।

0: मेरा पिता।
1: साथियों, आप सुन रहे हैं भक्ति और श्रद्धा से परिपूर्ण कार्यक्रम अर्पण, और अर्पण में अब समय हो रहा है रामचरितमानस के सुंदर संगीतमय गान का। तो आइए मिलकर एक साथ श्रवण करते हैं इस सुंदर संगीतमय पाठ का।

केवट से निहोरा करके श्री रामचंद्र पत्नी सीता तथा भाई लक्ष्मण सहित गंगा पार तो उतर गए, किंतु केवट को उतराई देने की उनकी कोई युक्ति सफल नहीं हुई। श्री राम ने स्नान कर पार्थिव पूजा की तथा सीता ने गंगा से हाथ जोड़ अपना मनोरथ पूरा करने की प्रार्थना की। मां गंगा को रघुवीर की प्रियतमा की महिमा ज्ञात थी, फिर भी उनकी विनती सुनकर भागीरथी ने कहा, हे सीते, तुम अपने प्राणनाथ तथा देवर सहित कुशल पूर्वक अयोध्या लौटोगी, तुम्हारे सारे मनोरथ पूरे होंगे और तुम्हारा यश संपूर्ण जगत में छाएगा। उधर श्री रामचंद्र ने केवट को भक्ति का वरदान देकर विदा करना चाहा, तो निषाद राज ने दो चार दिनों तक उनके साथ रहकर उनके चरणों की सेवा करने की अनुमति चाही। भक्त वत्सल भक्त की प्रार्थना कैसे न मानते। सीता लक्ष्मण सहित उन्होंने श्री गणेश तथा शिवजी का स्मरण किया तथा मां गंगा को सिर नवा निषाद राज को साथ लेकर वन की ओर चले।

साथियों, अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस से ये सुंदर संगीतमय पाठ। आज जो प्रसंग आपने सुना, इसे अयोध्या कांड से लिया गया था। और इसी के साथ कार्यक्रम अर्पण अब अपनी समाप्ति की ओर बढ़ चला है, लेकिन आप जुड़े रहिए इसी तरह 100.1 आकाशवाणी एफएम गोल्ड के साथ, क्योंकि अब संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी समाचार बुलेटिन प्रसारित किए जाएंगे। और उसके बाद 7:10 पर आपसे फिर मुलाकात होगी कार्यक्रम गोल्ड सुप्रभात में। तब तक के लिए मुझे यानी अपनी रेडियो वाली दोस्त पूजा को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: तेषु त्रिशूली वन इत्यस्याः परियोजनायाः 63 कर्मचारिणः अथ तमिलनाडु राज्यात् आगताः 21 जनाः सम्मिलिताः सन्ति। नवदिल्ल्यां वार्ताहरान् संसूचयन् विदेशमन्त्रालयस्य प्रवक्ता रणधीर जायसवालः उक्तवान् यत् भारतेन नेपालस्य वर्तमानानाम् आपदुद्धार कार्याणां साहाय्यार्थं 47 टन्मिथाधिकाः आपत्कालीन साहाय्य सामग्र्यः प्रेषिताः।
1: 2 जहाज पे हम लोगों ने सहायता नेपाल को पहुंचाया है। पहला जहाज यहाँ से 10 टन करीबन रिलीफ मटेरियल लेके काठमांडू पहुंचा था, जिसमें कि कंबल, सोलर लैंप, दवाइयां, हाइजीन किट्स और टेंट वगैरह इस प्रकार की चीजें हैं। दूसरा जहाज इसमें 37.5 टन की सप्लाई, जिसमें कि 28.5 टन रिलीफ आइटम्स और 8 टन दवाइयां और 1 टन खाने पीने की सामग्री और जो भी मानवीय सहायता हो सकता है वो भी हम प्रदान करेंगे।
0: राष्ट्रियापद प्रतिकार बलेन उक्तं यत् नेपाल देशे सहसा आगतेन विनाशकारिणा जलाप्लावेन बिहारोत्तर प्रदेशयोः सीमावर्ति क्षेत्रेषु अद्यावधि कश्चिदपि प्रतिकूल प्रभावः न जातः, तथापि उभयोः राज्ययोः प्रशासनस्य समन्वयेन परिस्थितिं निरन्तरं निरीक्ष्यमाणा अस्ति। राष्ट्रियापद प्रतिकार बलस्य महानिरीक्षकः नरेन्द्र सिंह बुन्देला उक्तवान् यत् उभयोः राज्ययोः राष्ट्रियापद प्रतिकार बलस्य 20 दलानि नियोजितानि सन्ति, तेषु बिहारे 9 दलानि अथ उत्तरप्रदेशे च 11 दलानि सन्ति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी श्वः उज्बेकिस्तान देशस्य 2-दिवसीय यात्रायै प्रस्थास्यति। प्रधानमन्त्री उज्बेकिस्तानस्य राष्ट्रपतेः शौकत मिर्जियोयेव इत्यस्य आमन्त्रणे सति ताश्कन्द नगरं गमिष्यति। यात्रावधौ प्रधानमन्त्री मोदी राष्ट्रपतिना मिर्जियोयेव इत्यनेन सह प्रतिनिधिमण्डलस्तरीयां वार्तां करिष्यति। अस्याः वार्तायाः उद्देश्यं द्वयोः देशयोः रणनीतिक सहमतिम् इतोऽपि सुदृढीकरणमस्ति। प्रधानमन्त्री जनधन योजनायाः अद्य 12 वर्षाणि जातानि, येन देशस्य वित्तीय समावेशन परिदृश्यस्य परिवर्तने महत्वपूर्णं सोपानं चिह्नितमस्ति। 14.5 वर्षे अस्मिन्नेव दिने प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना इयं योजना समारब्धा। प्रधानमन्त्री जनधन योजनायाः अन्तर्गतम् अद्य पर्यन्तम् 61 कोट्यधिकाः लेखाः उद्घाटिताः सन्ति, यस्मिन् निक्षेपस्य मूल्यम् आहत्य 17,000,000,000,000 रूप्यकाणि अस्ति। रक्षाबन्धन पर्व भ्रातृ भगिन्योः मध्ये विद्यमानस्य विशेष स्नेहबन्धनस्य पर्व अस्ति यत् अद्य सम्पूर्ण देशे आचर्यते। अस्मिन् अवसरे भगिन्यः स्वभ्रातृणां हस्तमणिबन्धेषु विविधवर्णानि रक्षसूत्राणि बध्नन्ति अथ च तेषां समृद्धेः, आरोग्यस्य, सुखस्य च कामनां कुर्वन्ति। तदनन्तरं भ्रातरः स्वभगिनीनां रक्षणस्य, सहाय्यस्य च संकल्पं कुर्वन्ति, सहैव ताभ्यः उपहारान् यच्छन्ति। राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः, लोकसभाध्यक्षः ओम बिरला च रक्षाबन्धनस्य अवसरे देशवासिभ्यः शुभकामनाः प्रेषितवन्तौ इति वार्ताः।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नास। नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 392 हो गई है। प्रशासन हजारों लापता लोगों को खोजने के लिए तेजी से काम कर रहा है। तिब्बत और नेपाल के अधिकारियों ने बताया है कि लगभग 1500 लोग लापता हैं, जिनमें कई विदेशी शामिल हैं। नेपाल पुलिस ने बताया कि प्रभावित इलाकों से लगभग 1500 से अधिक लोगों को बचाया गया है, इनमें घायल लोग भी शामिल हैं। भारत के विदेश मंत्रालय ने बताया है कि नेपाल में बाढ़ के बाद 290 भारतीय नागरिकों से संपर्क नहीं हो पाया है, जबकि 84 भारतीयों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। इनमें त्रिशूली 1 जल विद्युत परियोजना के 63 कर्मचारी और कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए तमिलनाडु के 21 लोग भी शामिल हैं। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि भारत ने नेपाल में बचाव और राहत अभियानों में सहायता के लिए 47 टन से अधिक राहत सामग्री भेजी है।
1: 2 जहाज पे हम लोगों ने सहायता नेपाल को पहुंचाया है। पहला जहाज यहाँ से 10 टन करीबन रिलीफ मटेरियल लेके काठमांडू पहुंचा था, जिसमें कि कंबल, सोलर लैंप, दवाइयां, हाइजीन किट्स और टेंट वगैरह इस प्रकार की चीजें हैं।

0: दूसरा जहाज इसमें 37.5 टन की सप्लाई, जिसमें कि 28.5 टन रिलीफ आइटम्स और 8 टन दवाइयां और 1 टन खाने पीने की सामग्री और जो भी मानवीय सहायता हो सकता है वो भी हम प्रदान करेंगे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन की यात्रा पर कल उज्बेकिस्तान जाएंगे। श्री मोदी उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोसेफ के निमंत्रण पर ताशकंद का दौरा करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: उज्बेकिस्तान यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव व्यापार और निवेश, रक्षा, डिजिटल कनेक्टिविटी, ऊर्जा, शिक्षा और जन सहयोग संबंधी क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा करेंगे और आगे की कार्य योजना तैयार करेंगे। दोनों नेता विकसित भारत 2047 और उज्बेकिस्तान 2030 के साझा विकास लक्ष्यों को आगे बढ़ाने पर भी अपने विचार साझा करेंगे। सुशील चंद्र तिवारी, समाचार, ताशकंद, उज़्बेकिस्तान।
1: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज से 6 दिन की अमेरिका यात्रा पर हैं। अपनी इस यात्रा के दौरान वे शिकागो, एशविले और न्यूयॉर्क जाएंगी। वे शिकागो में प्रमुख निवेशकों के साथ एक गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगी और निजी क्षेत्र के अग्रणी सीईओ, अध्यक्षों और वरिष्ठ प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगी। इन बैठकों में भारत में निवेश के अवसर, आर्थिक दृष्टिकोण और भारत और अमरीका के बीच व्यापार और निवेश साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा होगी। भारतीय मानक ब्यूरो BIS ने चांदी की गुणवत्ता की जांच के लिए 102 जिलों में 341 सिल्वर एसेइंग और हॉलमार्किंग सेंटर्स के साथ हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन आधारित चांदी के हॉलमार्किंग तंत्र का विस्तार किया है। मानक ब्यूरो त्योहारों के मौसम से पहले 25,000 से अधिक चांदी के कारोबारियों को पंजीकृत कर चुका है। पिछले साल सितंबर से ये व्यवस्था शुरू की गई थी और इसके बाद से 77 लाख से ज्यादा चांदी के आभूषणों पर हॉल मार्किंग की जा चुकी है। रक्षाबंधन का त्योहार आज पूरे देश में मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष ने रक्षाबंधन पर देशवासियों को बधाई दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि रक्षाबंधन का त्यौहार प्राचीन काल से ही देश की संस्कृति और परंपरा का अहम हिस्सा रहा है। श्री अमरनाथ यात्रा आज रक्षाबंधन के त्यौहार के साथ संपन्न होगी। 57 दिन तक चलने वाली ये यात्रा इस साल 3 जुलाई को शुरू हुई थी। यात्रा का समापन पवित्र गुफा मंदिर में महंत दीपेंद्र गिरी के नेतृत्व में पवित्र छड़ी मुबारक के पहुंचने के साथ होगा। इस वर्ष पहलगाम और बालटल दोनों रास्तों से 4,80,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने पवित्र गुफा के दर्शन किए। इसके अतिरिक्त जम्मू कश्मीर में सालाना बुद्ध अमरनाथ यात्रा भी आज संपन्न होगी। श्रावण मास में आयोजित होने वाली 12 दिन की इस यात्रा में श्रद्धालु पुंछ जिले में स्थित बाबा बुद्ध अमरनाथ मंदिर जाते हैं। भारत के वेलवन सेंथिल कुमार कलराज स्क्वैश सेमीफाइनल में भारत के ही वीर चोट्रानी को हराकर PSA बुडापेस्ट स्क्वैश ओपन के फाइनल में पहुंच गए हैं। इससे पहले दोनों भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सेमीफाइनल में जगह बनाई थी। फाइनल में आज रात वेलवन का मुकाबला हंगरी के खिलाड़ी बालाज फारकर से होगा। भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ग्रैंड शतरंज टूर जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। उन्होंने कल रात अमेरिका के सेंट लुइस में फाइनल में मौजूदा चैंपियन फेबियानो कारुआनो को 15-13 से हराकर शानदार जीत दर्ज की। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashwani, the news read by Nishit Kumar. India has stepped up efforts to trace and rescue Indian nationals stranded in Nepal due to the flash flood tragedy. Death toll in the massive flash floods in Nepal have reached 389 as authorities raced against time to find thousands of missing people, including 290 Indians. Authorities in Tibet and Nepal have reported over 1,500 people missing. Out of these, many are foreigners. Both authorities reported that people from more than 30 countries are missing. The External Affairs Ministry has said that 84 Indian nationals have been rescued so far in Nepal. These include 63 workers of the Trishuli One project as well as 21 people from Tamil Nadu. The minister said that contact with 290 Indians have not been established so far. Addressing media in New Delhi, External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jayaswal said the Indian embassy in Kathmandu is in touch with the project authorities to collect information as communication links in the affected areas have been disrupted. Mr. Jayaswal said India has sent more than 47 tons of emergency relief supplies aimed at supporting Nepal's ongoing rescue and relief operations. So Ministry of External Affairs has set up a round-the-clock control room in New Delhi to assist people. The control room can be contacted at +91 11 230 88 718, +91 11 230 88 719. For WhatsApp calls and messages, +91 99 68 29 1988 can be contacted. The emergency contact numbers of the Indian Embassy in Kathmandu are +97 985 131 6807, +977 970 910 7500, and 977 981 032 6117. The Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana has completed 12 years today, marking a significant milestone in transforming the country's financial inclusion landscape. The scheme was launched by Prime Minister Narendra Modi on this day in 2014. Under the Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana, more than 59 crore accounts have been opened so far, with total deposits amounting to 3,17,000 crore rupees. Prime Minister Narendra Modi will visit Uzbekistan tomorrow. He will be on a two-day visit to the Central Asian country. Prime Minister will visit Tashkent at the invitation of the President of Uzbekistan, Shavkat Mirziyoyev. During the visit, Prime Minister will hold delegation-level talks with President Mirziyoyev to further strengthen the strategic partnership between the two countries. Finance Minister Nirmala Sitharaman will be on a six-day visit to the United States beginning today. During her visit to the U.S., she will travel to Chicago, Asheville, and New York. In Chicago, Finance Minister will participate in a roundtable conference with prominent investors and engage with leading CEOs, presidents, and senior representatives of the private sector, bilateral one-to-one meeting with CEOs and senior leadership of select companies in Chicago will also be held. Raksha Bandhan, the festival of special bond between brothers and sisters, is being celebrated today across the country. On this occasion, sisters tie colorful rakhis around the wrists of their brothers and pray for their prosperity, health, and well-being. In return, brothers pledge to protect and support their sisters and present them.

अपनापन, स्नेह, प्यार, विश्वास और खट्टी मीठी नोक झोंक से मिलकर बने भाई बहन के रिश्ते को जैसे समेट लेती है कलाई पर बंधी वो छोटी सी रेशम की डोरी।

उस एक डोरी से खुशी खुशी बंधे भाई बहन जीवन भर एक दूसरे का दिल से साथ निभाते हैं। रक्षाबंधन के इस पावन पर्व पर आप सभी को आकाशवाणी एफएम गोल्ड परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। आप जहां भी हैं अपने भाई बहन को दिल से याद कीजिए और मन ही मन कह दीजिए कि तुम हो इसलिए मेरा बचपन आज भी मेरे साथ है। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत आपके फेवरेट मॉर्निंग शो गोल्ड सुप्रभात की 100.1 आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर और 7:11 और 57 सेकेंड पर। गोल्ड स्टूडियो से आज आपके साथ हूँ मैं आपकी रेडियो वाली दोस्त पूजा।

राखी नहीं बल्कि त्योहार कोई भी हो, खाना पीना और गाना बजाना सेलिब्रेशंस के इनसेपरेबल हिस्से होते हैं। वैसे तो हर परिवार के लोगों की पसंद के हिसाब से आज पकवान बन रहे होंगे आपके किचन में, लेकिन पारंपरिक मिठाइयों की अगर हम बात करें तो फिर बेसन या बूंदी के लड्डू, घेवर, नारियल की बर्फी, चावल की खीर, सूजी का हलवा, पूरी, छोले, खुशबू और स्वाद के साथ साथ हमारे जीवन में शुभता, उल्लास और रिश्तों की मिठास और परंपरा का शुभागमन भी करते हैं। क्योंकि खाना जो है ना, वो सिर्फ खाना नहीं होता, खाने के बहाने पूरा परिवार एक साथ बैठता है, बड़ों का आदर और छोटों से चूहलबाजी उस पूरे माहौल को उत्सव में बदल देते हैं। और यही तो है वो अनमोल पल हमारे जीवन के, जिन्हें हम पूरी तरह से जी भर कर जी रहे हैं अपने अपनों के साथ। क्योंकि ये बात बिल्कुल सही है कि ज़िंदगी कितनी भी खूबसूरत क्यों ना हो, अपनों के बिना वो हमेशा सूनी ही लगती है। तो फिर पूरी तरह से एंजॉय कीजिए अपनी आज की फेस्टिविटीज़ को और नई मेमोरीज क्रिएट कीजिए और साथ में रखिए 100.1 आकाशवाणी एफएम गोल्ड को, ताकि हम भी आज के इस उत्सव में, आज के इस सेलिब्रेशन में आपके साथ शामिल हो जाएं आपकी ऑल टाइम फ्रेंड की तरह।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।
1: कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

7:24 100.1 आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर ये है आपका फेवरेट मॉर्निंग शो गोल्ड सुप्रभात और गोल्ड स्टूडियो से आज आपके साथ हूँ मैं आपकी रेडियो वाली दोस्त मूजा। और कहते हैं कि जीवन में बड़ा लक्ष्य हासिल अगर हम करना चाहते हैं तो फिर हमें अपनी योग्यता को निखारना चाहिए, क्योंकि हमारी योग्यता से ही मुश्किल से मुश्किल काम आसानी से पूरा हो सकता है। बात तो सही है। और मुश्किलें भी कई बार जीवन में ऐसी आ जाती हैं कि हमें कुछ सॉल्यूशन सुझाई ही नहीं देता। अब ये पर्सनल भी हो सकती हैं और कई बार हालात ऐसे हो जाते हैं कि इंसान बस अपने आप को बेबस महसूस करने लगता है, जैसे कि आजकल जो नेपाल में हालात हैं, हम जानते हैं कि बहुत बुरा हाल है वहाँ पर। और हमारे कई अपने लोग या हमारे कई अपने जानकार या हमारे कई जानकार लोगों के कोई करीबी लोग भी हो सकता है कि वहाँ फंसे हों, तो ऐसे में हम कोशिश तो कर ही सकते हैं कि जिस भी तरह से संभव हो वहाँ मदद का हाथ हम बढ़ा सकें। भारत सरकार की तरफ से तो मदद की ही जा रही है, लेकिन हम उम्मीद यही करते हैं कि जल्द ही इस मुश्किल का हल भी निकल आएगा। और हम दिल से इस वक्त यही दुआ करते हैं कि ये हालात जल्दी वहाँ सुधरें और जो लोग भी इन मुश्किल हालातों में फंसे हैं वो इससे बाहर निकल कर आए। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। 100.1 आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर आज के दिन में बहुत कुछ है जो हमारे सामने अभी आना बाकी है। वैसे आज का दिन विश्व संस्कृत दिन के तौर पर अपनी एक खास पहचान रखता है। आज रक्षाबंधन तो है ही, आज नराली पूर्णिमा भी मनाई जा रही है। इन सब के बारे में हम बात करेंगे म्यूजिकल दिल्ली में 8:45 पर और 9:10 पर। इसके पहले और दूसरे सेगमेंट में मेरी और रेखा के साथ 10:30 आप सुनेंगे दिल का मेल बॉक्स और 11:10 पर स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम मेरा वजूद। 11:25 पर आज हम आपको तस्वीर में वृंदावन लेकर चलेंगे, जहां रक्षाबंधन को ध्यान में रखते हुए खास तौर से वृंदा

51 को उस नजरिए से देखने की हम कोशिश करेंगे। 12:10 पर आप सुनेंगे एक कदम बुजुर्गों की ओर। दोपहर 1:10 पर कलाकार बेमिसाल में आज फिल्म मेकर ऋषिकेश मुखर्जी के बारे में बात करेंगे। दोपहर 2:30 आप सुनेंगे संगीत.com। शाम 5:10 पर पानी पर लिखी कहानी में आज की कहानी रहेगी प्यारा बंधन। शाम 6:30 आप सुनेंगे मार्केट मंत्रा। शाम 7:25 पर

40 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है। और एक और गाने के साथ फिलहाल यहाँ आपको छोड़कर मैं जाऊँगी, लेकिन फिर वापस आऊँगी 8:45 पर म्यूजिकल दिल्ली में। तो टिल देन कीप एंजॉइंग द गोल्डन म्यूजिक। आपकी रेडियो वाली दोस्त पूजा कहती है बाय, टेक केयर। और इस गाने के बाद आप सुनेंगे प्रोग्राम आज सवेरे।

भैया कृष्ण भेजती हूँ मैं राखी अपनी ये लो आज, कई बार जिसको भेजा है सजा सजा कर नूतन साज। लो आओ भुजदंड उठाओ इस राखी में बंध जाओ, भरत भूमि की रज भूमि को एक बार फिर दिखलाओ। आज भाई बहन के प्रेम के बंधन का प्रतीक रक्षाबंधन त्योहार मनाया जा रहा है, इसे राखी के नाम से भी जाना जाता है। रक्षाबंधन पर्व पर बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधकर उनकी समृद्धि स्वास्थ्य और कुशलता की कामना करती हैं और भाई अपनी बहन को उनकी रक्षा करने का वचन देते हैं और साथ ही प्रेम स्वरूप उन्हें उपहार भी भेंट करते हैं। जी हाँ, ये त्यौहार प्रेम सौहार्द और भाई बहन के निश्चल रिश्ते का प्रतीक है। रक्षाबंधन के संदर्भ में एक दोहा भी है कि बाबुल अब ना होएगी भाई बहन में जंग, डोर तोड़ अनजान पथ उड़कर चली पतंग। कितनी सुंदर और मार्मिक बात कही गई है इन पंक्तियों में कि भाई बहन के बीच जो सुंदर नोकझोंक होती है वो बहन के ब्याह जाने के बाद, उसके अपने भाइयों के घर से जाने के बाद अब वो अटकेलियाँ नहीं होंगी, क्योंकि भाई की वो प्यारी बहना अब उसके पास नहीं है जिससे वो लड़ सके मीठी लड़ाई, मनवा सके अपनी मनुहार और उड़ेल सके एक दूसरे पर वो दोनों अथाह प्यार दुलार। तो सिर्फ ये रिश्ता सुंदर सा भाई बहन का, जिसमें कोई स्वार्थ नहीं होता, एक कारण बिना किसी कारण का जो उन दोनों के बीच में

0: प्रेम और समर्पण है वो ये रिश्ते का प्रतीक है। और इसी के साथ श्रोताओं, हमारा एक धर्म हमारे देश की सरहदों की हिफाजत करने वाले सशस्त्र बलों के उन जवानों के प्रति भी है जो दिन रात की परवाह किए बगैर हमसे हमारी रक्षा के लिए किया हुआ वचन निभाते हैं। तो आज हम सब की ओर से एक आभासी राखी उन अद्भुत शौर्य के प्रतिमान माँ भारती के वीर सपूतों के लिए भी। इसी के साथ आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आकाशवाणी एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर समाचार सेवा प्रभाग के कार्यक्रम आज सवेरे के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। आज की इस खूबसूरत प्रभात में आपके साथ मैं हूं मुकेश कुमार बल और मेरे साथ हैं तन्वी खुराना। तन्वी, आपको भी मेरा नमस्कार।
1: नमस्कार मुकेश, गुड मॉर्निंग एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स ट्यून्ड इनटू आकाशवाणी एफएम गोल्ड ऑन 100.1 मेगाहर्ट्ज एंड द एंटायर आकाशवाणी नेटवर्क। यस, दिस इज अ वेरी स्पेशल डे, टुडे इज रक्षाबंधन एंड नो मैटर वेयर यू आर प्लेस्ड, इफ यू आर अ ब्रदर और यू आर अ सिस्टर, यू विल गो टू योर सिबलिंग एंड गेट द राखी डन।
0: जी बिल्कुल,
1: इट्स एन अमेजिंग फेस्टिवल, देयर इज सो मच लव एंड we wait for the entire year for this festival, don't we?
0: जी, जैसा कि अभी आपने कहा कि आप कहीं भी हों, आपको अपने भाई बहनों के पास में राखी बंधवाने के लिए ज़रूर जाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये दूरियों को, जैसे जो आज के ज़माने में बढ़ चुकी हैं हमारे बीच में, उनको खत्म करने का एक अद्भुत माध्यम है जो भारतीय संस्कृति का परिचायक रक्षाबंधन त्योहार है।
1: Absolutely, and in no other country this particular day gets celebrated where this is a siblings festival.
0: जी,
1: and this is unique in itself because this is a very special Indian festival and a very happy Rakshabandhan once again to all of you, to all the brothers and to all the sisters. I really hope that the love between the two of you stays forever.
0: जी.
1: So with this, let's just begin our program. Aaj Savere, and today is 28th of August 2026. It's a Friday as well. So you can also celebrate the long weekend, but with your siblings this time. So let's begin with our program with the news headlines.
0: जी बिल्कुल, और राखी से ही जुड़े एक समाचार के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। श्री अमरनाथ यात्रा आज रक्षाबंधन के त्योहार के साथ संपन्न हो रही है।

57वीं तक चली ये यात्रा 3 जुलाई को शुरू हुई थी। यात्रा का समापन पवित्र गुफा मंदिर में महंत दीपेंद्र गिरी के नेतृत्व में पवित्र छड़ी मुबारक के पहुंचने के साथ होगा। इस वर्ष पहलगाम और बालतल दोनों रास्तों से 4,80,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने पवित्र गुफा में प्राकृतिक शिवलिंग के दर्शन किए। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में सालाना बूढ़ा अमरनाथ यात्रा भी आज सम्पन्न हो रही है। श्रावण मास में आयोजित होने वाली 12 दिन की इस यात्रा में श्रद्धालु पुंछ जिले में स्थित बाबा बूढ़ा अमरनाथ मंदिर में दर्शन पूजन करते हैं।

0: The Ministry of Panchayati Raj has called for public participation to take part in Danveer initiative to strengthen digital infrastructure in Gram Panchayats. Danveer is a people-led computer crowdsourcing initiative which enables individuals and organizations to donate desktop computers directly to verified Gram Panchayats through a simple, transparent and technology-enabled mechanism. The ministry said that this initiative represents an innovative model of participatory governance, enabling voluntary public participation to complement government efforts in strengthening grassroots institutions.
1: प्रधानमंत्री जनधन योजना के 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। ये देश में वित्तीय समावेशन के परिदृश्य को बदलने की दिशा में एक प्रमुख पड़ाव है। इस योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2014 में आज ही के दिन की थी।
0: The government has commenced calibrated and targeted release of onions from the buffer stock to ensure adequate availability and moderate seasonal price pressures in the coming months. Secretary, Department of Consumer Affairs, Nidhi Khare, yesterday flagged off onion vans for retail distribution from Krishi Bhavan, New Delhi, for the consumers of the National Capital Region. Onions from the government's price stabilization buffer are being sold at the subsidized rate of 35 rupees per kilogram through NCCF, NAFED and Kendriya Bhandar outlets as well as mobile vans across Delhi.
1: और भारतीय मानक ब्यूरो BIS ने चांदी की गुणवत्ता की जांच के लिए 102 जिलों में 341 सिल्वर एसेसिंग और हॉलमार्किंग सेंटर्स के साथ हॉलमार्किंग यूनिट आइडेंटिफिकेशन HUID आधारित चांदी के हॉलमार्किंग तंत्र का विस्तार किया है। मानक ब्यूरो त्योहारों के मौसम से पहले 25,000 से अधिक चांदी के कारोबारियों को पंजीकृत कर चुका है। हॉलमार्किंग प्रणाली में 6 अंकों वाला HUID चांदी के आभूषणों और कलाकृतियों की गुणवत्ता तय करता है।
0: Moving towards sports, Indian Grandmaster R. Pragnananda created history becoming the first Indian to win the Grand Chess Tour after staging a stunning comeback to defeat the defending champion Fabiano Caruana 15-13 in the final at St. Louis in US last night. Pragnananda started the final day 6 points behind Caruana, but both won rapid games to take the lead. And then he held his ground in the 4 blitz games to seal a 15-13 victory, claim $2 lakh first prize and also secure a guaranteed spot in next year's Grand Chess Tour.
1: और श्रोताओं, अब रुख करते हैं महानगरों की खबरों का। तो सबसे पहले हाल जानते हैं दिल्ली का। दिल्ली सरकार ने त्योहार से पहले खाद्य पदार्थों की जांच अभियान के अंतर्गत लगभग 131 किलोग्राम खराब खाद्य सामग्री नष्ट की है। इसमें खोया, बेसन और आटा शामिल है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज कुमार सिंह ने बताया कि खाद्य सुरक्षा विभाग ने पनीर, खोया, घी, मिठाइयों और अन्य खाद्य पदार्थों के 37 नमूने भी लिए हैं, जिन्हें जांच के लिए प्रयोगशालाओं में भेजा गया है। उन्होंने कहा कि असुरक्षित या मिलावटी खाद्य पदार्थों के निर्माण, भंडारण, वितरण या बिक्री में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा दिल्ली यातायात पुलिस ने रक्षाबंधन के त्यौहार के बीच यात्रा परामर्श भी जारी किया है। इस दौरान आनंद विहार अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल, राष्ट्रीय राजमार्ग 9 और विकास मार्ग के आसपास पैदल चलने वालों और गाड़ियों की आवाजाही अधिक रहने की आशंका है। यात्रियों को इन मार्गों पर यात्रा से बचने की सलाह दी गई है।
0: And moving towards Chennai, the Indian Coast Guard and the Vietnam Coast Guard successfully concluded the second edition of the joint maritime exercise Sahyog Hop Tak off the Chennai coast yesterday, demonstrating a shared commitment to regional stability and maritime safety. The strategic engagement featured a robust operational deployment comprising 8 ICG ships, 6 aircraft and the VCG ship CSB-8002, which were overseen jointly by the Director General, Indian Coast Guard and the Vice Commandant, Vietnam Coast Guard.
1: और मुंबई में बृहन मुंबई विद्युत आपूर्ति और परिवहन विभाग रक्षाबंधन पर आज 136 अतिरिक्त बसें चलाएगा। ये विशेष बसें सुबह 10:30 बजे से मुंबई और आसपास के इलाकों में परिवहन कंपनी के विभिन्न डिपो से शुरू होंगी। ये बसें प्रमुख रेलवे स्टेशनों और बस स्टेशनों के साथ साथ आवासीय क्षेत्रों तक चलेंगी।
0: And about Bengaluru, the Bengaluru Development Minister Krishna Bairagauda has sought a sustained, systematic and outcome-oriented civic administration that hinges on a new approach to urban governance in Bengaluru. He was addressing senior officials of Greater Bengaluru Authority yesterday in the state capital. The minister weighed on a stronger legal and administrative framework to move towards more proactive, accountable and responsible governance. This, he said, should be visible with responsibilities at every level translating into measurable outcomes on the ground.
1: उधर कोलकाता में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज चेतला इलाके में सुबह 10:30 बजे रक्षाबंधन समारोह में भाग लेंगे। इसके बाद वे दोपहर में नजरूल मंच पर राज्य सरकार द्वारा आयोजित एक अन्य रक्षाबंधन कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। शाम को श्री शुभेंदु अधिकारी का जादवपुर इलाके में वंदे मातरम कार्यक्रम में भाग लेने का कार्यक्रम है। इसके अलावा प्रादेशिक सेना का 2 दिन का सम्मेलन आज से कोलकाता के धानो धान्य सभागार में संपन्न हो रहा है। इस संगोष्ठी का उद्देश्य प्रादेशिक सेना के नागरिकों सैनिकों के लिए विशिष्ट मॉडल प्रदर्शित करना है। ये सम्मेलन सेवारत कर्मियों और उद्योग शैक्षणिक संस्थानों स्टार्टअप्स और नागरिक समाज के प्रतिनिधियों के बीच सार्थक संवाद के लिए एक मंच प्रदान करेगा।
0: And moving towards Hyderabad.

0: Telangana Chief Minister Revanth Reddy conducted a surprise inspection of Mir Alam Tank yesterday, reviewing the tank's makeover into a major family tourism hub. The Chief Minister inspected the ongoing construction of the iconic suspension bridge and directed officials to complete all works within the stipulated deadline. The Musi Rejuvenation Development Corporation is handling three key components: rejuvenation of the tank, development of islands and surrounding areas, and construction of the suspension bridge. The Chief Minister instructed officials to stop sewage inflow into the tank and widen the drainage channels to improve water quality.
1: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आज सवेरे आकाशवाणी गोल्ड पर मुकेश और तन्वी के साथ। अब कार्यक्रम में वक्त है महानगरों के मौसम का हाल जानने का। इधर राजधानी दिल्ली में आंशिक रूप से आज बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश की संभावना है। शहर का अधिकतम तापमान 36 डिग्री और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। उधर मुंबई की अगर बात करें तो वहां भी बादल आज छाए रहेंगे और हल्की बारिश का अनुमान है। न्यूनतम तापमान 27 डिग्री और अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। कोलकाता में बिजली चमकने और तेज हवाएं चलने के साथ बारिश की संभावना है। बात करें शहर के तापमान की तो आज न्यूनतम तापमान 28 डिग्री और अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। अब बात हैदराबाद, चेन्नई और बेंगलुरु के मौसम की तन्वी से।
0: Chennai is likely to have generally cloudy sky with light rain. The temperatures are expected to range between minimum of 28 degrees and maximum of 36 degrees Celsius. Bangalore is forecast to experience generally cloudy sky with light rain. The minimum temperature is expected to be 20 degrees, while the maximum may reach 29 degrees. Hyderabad is likely to see a partly cloudy sky with one or two spells of rain or thunder showers. The temperatures are expected to range from 25 degrees to 32 degrees Celsius.
1: और श्रोताओं, अब कार्यक्रम में आज के दिवस की महत्वता के बारे में बात करने के लिए, तो आज देश भर में संस्कृत दिवस मनाया जा रहा है। ये दिन भारत की प्राचीन और समृद्ध भाषा संस्कृत के संरक्षण, संवर्धन और प्रचार प्रसार के प्रति जागरूकता बढ़ाने का अवसर है। संस्कृत भारतीय ज्ञान, दर्शन, साहित्य, योग, आयुर्वेद और विज्ञान की परंपरा में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत और अनेक शास्त्रीय ग्रंथ संस्कृत भाषा में ही रचे गए हैं।
0: Absolutely, Sanskrit, one of the oldest languages in the entire world. This day also highlights the importance of preserving and promoting the language among younger generations. Schools, colleges, universities and cultural institutions are organizing various programs including Sanskrit recitation, lectures, seminars, competitions, quizzes and cultural performances. With the growing use of digital platforms, Sanskrit learning is also becoming more accessible to students and language enthusiasts. The occasion reminds us that preserving Sanskrit is not merely about protecting an ancient language, but also about keeping alive India's vast repository of knowledge, literature and cultural heritage for future generations.
1: और अब समय है इतिहास में दर्ज आज की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के जिक्र का। आज 28 अगस्त है।
0: So let's begin with the year 1609.
1: जी।
0: When English explorer Henry Hudson's expedition explored Delaware Bay during his search for a northwest passage to Asia. And in the year 1833, the Slavery Abolition Act received royal assent in Britain, paving the way for the abolition of slavery in most of the British Empire.
1: और 1904 में कलकत्ता से बैरकपुर तक पहली कार रैली का आयोजन भी आज ही की तारीख को हुआ था।
0: On this day in 1963, Martin Luther King Jr. delivered his historic I Have a Dream speech during the March on Washington for Jobs and Freedom.
1: 1986 में भाग्यश्री साठे शतरंज में ग्रैंड मास्टर बनने वाली पहली महिला बनी थी। और 2008 की अगर हम बात करें तो भारतीय रिजर्व बैंक ने 1999 और 2000 के सभी नोटों को प्रचलन से हटाने का निर्णय भी आज ही की तारीख को लिया था। वर्ष 2016 में इसरो ने श्रीहरिकोटा से अपने स्क्रैमजेट इंजन टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर की पहली प्रायोगिक उड़ान सफलतापूर्वक संचालित भी आज ही के दिन की थी। और अब याद करते हैं उन महान विभूतियों का जिनका आज जन्मदिन, जयंती या पुण्यतिथि है। तो इस कड़ी में सबसे पहले बात शंखो चौधरी की, आज उनकी पुण्यतिथि है। उनका जन्म 25 फरवरी 1916 को संथाल परगना बिहार में हुआ। वे भारतीय मूर्तिकार थे। उनका वास्तविक नाम नर नारायण था। शंखो चौधरी ने प्रसिद्ध मूर्तिकार राम किंकर बैज से शिक्षा ग्रहण की, जिनसे वे पेरिस में मिले थे। शंखो चौधरी ने मूर्ति शिल्प के विषयों में महिला आकृति और वन्य जीवन शामिल हैं। उन्होंने मीडिया की एक विस्तृत श्रृंखला में काम किया। आपने लकड़ी, धातु, टेराकोटा, प्रस्तर, जिसे हम काला और सफ़ेद संगमरमर के नाम से जानते हैं, उनका अपनी मूर्तिकला में प्रयोग किया। उनकी मूर्ति शिल्प में वक्राकार रूप प्रदान कर उनको जीवंत बनाने की कोशिश हुई। आपको पद्मश्री, कालिदास सम्मान, आदित्य बिरला कला शिखर पुरस्कार, ललित कला रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है।
0: And moving further in our list, today is the death anniversary of Robert Shaw, an English actor and writer. Beginning his career in theatre, Robert Shaw joined the Shakespeare Memorial Theatre after the Second World War and appeared in productions of Macbeth, Henry VIII and other Shakespearean plays. He was nominated for an Academy Award and a Golden Globe for his role as Henry VIII in the drama film A Man for All Seasons back in 1966. And there were many other roles that he played in many films, be it The Sting, Quint in Jaws, Battle of Britain, Russia with Love, Young Winston, The Taking of Pelham, 1, 2, 3, Robin and Marian, and many more. He was also a notable writer, winning the 1962 Hawthornden Prize for his novel The Sun Doctor. His novel and play The Man in the Glass Booth was an international success, earning him a Tony Award nomination for Best Play and adapted into a 1975 film.
1: आज पुण्यतिथि है कपिल देव द्विवेदी की। उनका जन्म 6 दिसंबर 1918 को गाजीपुर, उत्तर प्रदेश में हुआ। वे वेद, वेदांग, संस्कृत, व्याकरण और भाषा के अप्रतिम विद्वान थे। उन्होंने इन विषयों पर 75 से अधिक ग्रंथ लिखे। आपने स्वतंत्रता संग्राम में भी भाग लिया और 6 महीनों तक कठोर कारावास भी भोगा। कपिल देव द्विवेदी गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के कुलपति भी रहे। संस्कृत भाषा को लोकप्रिय बनाने में आपका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उन्हें पद्मश्री, वेद रत्न, महर्षि वाल्मीकि सम्मान, राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है।
0: And it's also the death anniversary of Ruth Jones, an American actress, playwright, screenwriter and novelist, widely known for a career that spanned 7 decades, beginning by performing on Broadway at the age of just 19. Known for her nasal voice and distinctive personality, she gained international recognition and critical acclaim for film roles that continued into her 70s and 80s as well. She was there in movies like Rosemary's Baby, What Ever Happened to Aunt Alice, Where's Popa, Every Which Way But Loose, and My Bodyguard, and many, many more. And in addition to her acting career, she wrote numerous plays, film scripts, and books, most notably co-writing the screenplay for the 1949 film Adam's Rib. She won an Academy Award, a Primetime Emmy, and 2 Golden Globe Awards for her acting, as well as 3 Academy Award nominations for her writing. In 1982, she authored the novel Shady Lady.
1: आज जयंती है सुविख्यात सितार वादक विलायत खां की।

0: विलायत खां साहब का जन्म 28 अगस्त 1928 को बंगाल में हुआ। उस्ताद विलायत खां की पिछली कई पुश्तें सितार वादन से जुड़ी रहीं। उनके पिता इनायत हुसैन खां से पहले उस्ताद इमदाद हुसैन खां भी जाने माने सितार वादक रहे। विलायत खां ने सितार वादन की अपनी अलग शैली विकसित की थी। उनकी कला के सम्मान में राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने उन्हें आफताबे सितार सम्मान से नवाजा था। ये सम्मान पाने वाले वे एकमात्र सितार वादक थे।
1: And today is the birthday of Shania Twain, a Canadian singer and songwriter. She is one of the best-selling music artists of all time and the best-selling female artist in country music history. She received several titles, including the Queen of Country Pop. She rose to fame with her second studio album, The Women in Me,

0: We are talking about Shania Twain. Her sixth studio album, Queen of Me, was released in 2023, and her seventh album was released in 2026. She became only the third woman to have top 10 albums in the US Billboard 200 in the 1990s, 2000s, 2010s, and also 2020s.
1: सुखन की शम्मा जलाओ बहुत उदास है रात नवाए मीर सुनाओ बहुत उदास है रात कोई कहे ये ख्यालों और ख्वाबों से दिलों से दूर ना जाओ बहुत उदास है रात पड़े हो धुंधली फिजाओं में मुंह लपेटे हुए सितारों सामने आओ बहुत उदास है रात सितारों सामने आओ बहुत उदास है रात ये रचना थी फिराक गोरखपुरी की आज उनकी जयंती है उनका वास्तविक नाम रघुपति सहाय था उनका जन्म 28 अगस्त 1896 को गोरखपुर उत्तर प्रदेश में हुआ वे भारत के प्रसिद्धि प्राप्त उर्दू के माने हुए शायर थे फिराक उनका तखल्लुस था उन्हें उर्दू कविता की बोलियों से जोड़कर उसमें नई लोच और रंगत पैदा करने का श्रेय दिया जाता है फिराक गोरखपुरी ने अपने साहित्यिक जीवन की शुरुआत गजल से की उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार और सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया वर्ष 1970 में उन्हें साहित्य अकादमी का सदस्य भी मनोनीत किया गया था 20वीं सदी के इस महान शायर की गहन गंभीरता और विद्वता का अंदाज उनकी शायरी से ही पता चलता है जब वे लिखते हैं जाओ ना तुम हमारी इस बेखबरी पर कि हमारे जाओ ना तुम हमारी इस बेखबरी पर कि हमारे हर ख्वाब से एक अहद की बुनियाद पड़ी है फिराक साहब की कविता में सौंदर्य के बड़े कोमल और अछूते अनुभव व्यक्त हुए हैं उनका एक शेर यूं भी है तन्वी किसी का यूं तो हुआ कौन उम्र भर फिर भी ये हुस्नो इश्क धोखा है सब मगर फिर भी शायद अपने जीवन के आखिरी दिनों में फिराक साहब ने लिखा अब तुमसे रुखसत होता हूँ आओ संभालो साजे गजल नए तराने छेड़ो मेरे नगमों को नींद आती है अपने बारे में खास अंदाज में लिखते हुए फिराक साहब ने लिखा था कि आने वाली नस्लें तुम पर रश्क करेंगी हमसरों जब ये ख्याल आएगा उनको तुमने फिराक को देखा था तो कुछ इस तरह की शख्सियत के मालिक थे फिराक साहब
0: Such a beautiful writing, जी. Such beautiful words that he has chosen, and it has a deep meaning as well.
1: बिल्कुल बिल्कुल.
0: Wonderful. We are remembering great personalities today. And moving further in our list, today is the birthday of Deepak Tijori. So let me ask you, Mukesh, have you seen the movie Aashiqui?
1: जी.
0: और खिलाड़ी.
1: जी.
0: और जो जीता वही सिकंदर और कभी हाँ कभी ना बादशाह गुलाम दीज आर ऑल द मूवीज फ्रॉम 1990s बट दीपक तिजोरी वाज नेवर द लीड एक्टर बट व्हाटएवर रोल्स ही प्लेड दैट लेफ्ट अ ग्रेट मार्क
1: हाँ उन्होंने बिल्कुल छाप छोड़ी बिल्कुल दर्शकों के दिलों में कह सकते हैं कि लीड रोल में तो नहीं आए
0: But that doesn't matter.
1: जी बिल्कुल.
0: An actor is an actor. So he's also an Indian film director and an actor. Let's hear one of his dialogues from one of his films, Sajan Ke Ghar.
2: माँ अगर अनाथ बच्चों की इतनी खुशी चाहती हो तो इसमें अनाथ आश्रम जाने की क्या जरूरत है लेक्चर यही दे दिया करो इस घर में भी तो दो अनाथ बच्चे पल रहे हैं Take it easy, Dad. It's 20th century. चिल्लाइए मत, Dad. मैं अपनी कमियों को छुपा नहीं रहा हूं मुझे कुछ पैसे चाहिए भूल गए डैड अमीर बाप के बिगड़े बेटे डायरी अकाउंट्स की नहीं अपॉइंटमेंट की रखते हैं ओ डैड अमीर घरों में पैसे गिने नहीं तोले जाते हैं
0: Such a spoiled brat character that he played, but wonderfully done, no matter how.
1: जी और आज ही जन्मदिन है अभिनेता सुमन का भी वे दक्षिण भारतीय फिल्मों में अपने काम के लिए जाने जाते हैं उन्होंने अधिकतर तेलुगु और तमिल फिल्मों में मुख्य और सहायक भूमिकाएं निभाई थीं उन्होंने कुछ कन्नड़ मलयालम और हिंदी फिल्मों में भी अभिनय किया लगभग 5 दशकों के अपने करियर में उन्होंने 10 भाषाओं में 700 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया और श्रोताओं अगर आप आज शाम नई दिल्ली में कनॉट प्लेस या आसपास के इलाके में हों तो आप इंडिया हैबिटेट सेंटर के 3 ऑडिटोरियम में शाम 7 बजे से स्वप्न सुंदरी की तरफ से परिजाथम विलासिनी नाट्यम प्रदर्शन का लुत्फ ले सकते हैं इसके अलावा दोपहर 2 बजे से रात 10 बजे तक रोहिणी के सेक्टर 16 के ए ब्लॉक में उत्तराखंड लोक फाउंडेशन की ओर से 21 दिवसीय उत्तराखंड लोक महोत्सव का भी आयोजन हो रहा है आप इसमें शिरकत करके अपने दिन को और रचनात्मक और खुशनुमा बना सकते हैं
0: And today is the birthday of David Fincher, an American director. We usually know directors when they direct movies, but he is one person who has received Grammy Awards for Best Music Video for the song Love is Strong in 1994 by the Rolling Stones, and also Suit and Tie in 2013 by Justin Timberlake featuring Jay-Z. So let's hear Love is Strong by Rolling Stones.

0: And we have come towards the end of our program, so
1: जाने से पहले एक रक्षाबंधन पे शेर कहना चाहूंगा तन्वी में, या रब मेरी दुआओं में इतना असर रहे, फूलों भरा सदा मेरी बहना का घर रहे। तो श्रोताओं, एक बार फिर रक्षाबंधन की इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मुकेश और तन्वी को कार्यक्रम आज सवेरे

0: यूपीआई ने बनाया है गांव और कस्बों में पेमेंट को आसान। करीब 60% यूपीआई पेमेंट हो रहे हैं 500 रुपए से नीचे, और हर दो में से एक ग्लोबल डिजिटल पेमेंट हो रहा भारत में।
1: स्ट्रीट वेंडर से लेकर आपकी गाड़ी के शोरूम तक आपकी सारी पेमेंट सिर्फ एक QR कोड स्कैन करके हो जाती है।
0: यूपीआई के 10 साल डिजिटल, आत्मनिर्भर, बेफिक्र।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। नेपाल में विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 392 हुई, 1468 लोग अब भी लापता। भारत ने नेपाल में फंसे भारतीयों को निकालने के प्रयास तेज किए। विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशी पहल प्रधानमंत्री जनधन योजना के आज 12 वर्ष पूरे। रक्षाबंधन का पर्व देश भर में मनाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में वार्षिक अमरनाथ यात्रा आज संपन्न होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज से अमेरिका की 6 दिन की यात्रा पर, और भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदन ने इतिहास रचा, ग्रैंड शतरंज टूर जीतने वाले पहले भारतीय बने। और अब समाचार विस्तार से। नेपाल तिब्बत में आई विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 392 हो गई है। नेपाल में 389 और तिब्बत में 3 व्यक्तियों की मौत हुई। सीमा के दोनों तरफ 1468 व्यक्ति लापता हैं।
3: नेपाल के अधिकारियों ने 910 व्यक्तियों के लापता होने की जानकारी दी है। तिब्बत के अधिकारियों ने बताया कि 558 व्यक्तियों के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है। बचाव कर्मी लोगों की तलाश कर रहे हैं। अभी क्षेत्र में संकट टला नहीं है। भोटो कोशी नदी स्रोत के पास कई झील बन गई हैं। डर यह है कि इनके टूटने से पानी का एक तेज बहाव आ सकता है, इससे आपदा और गंभीर हो सकती है। नेपाल के सुरक्षा कर्मियों ने बाढ़ प्रभावित जिलों से 800 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। इधर भारत ने बड़े पैमाने पर बचाव अभियान शुरू कर दिया है। विदेश मंत्रालय का कहना है कि नेपाल में 290 भारतीयों से संपर्क नहीं हो पा रहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि बाढ़ प्रभावित इलाकों में फंसे भारतीयों की स्थिति का पता लगाने के लिए तत्काल प्रयास किए जा रहे हैं। अब तक भारत ने 84 नागरिकों को सुरक्षित निकाल लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री वालेंद्र शाह के साथ बातचीत की और उन्हें भारत की ओर से पूरी मानवीय सहायता का आश्वासन दिया। समाचार कक्ष से श्रीराम शर्मा।
2: वहीं नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि भारत ने नेपाल में बचाव और राहत अभियानों में सहायता के लिए 47 टन से अधिक राहत सामग्री भेजी है।
4: दो जहाज पे हम लोगों ने सहायता नेपाल को पहुंचाया है। पहला जहाज यहाँ से 10 टन करीबन रिलीफ मटेरियल लेके काठमांडू पहुंचा था, जिसमें कि कंबल, सोलर लैंप, दवाइयाँ, हाइजीन किट्स और टेंट वगैरह इस प्रकार की चीजें हैं। दूसरा जहाज इसमें 37.5 टन की सप्लाई, जिसमें कि 28.5 टन रिलीफ आइटम्स और 8 टन दवाइयाँ और 1 टन खाने पीने की सामग्री और जो भी मानवीय सहायता हो सकता है वो भी हम प्रदान करेंगे।
2: चीन के जल संसाधन मंत्रालय के अनुसार नेपाल में छोचेन खोला और पुरेपू सांगपो नदियों के संगम के पास बनी झील के टूटने का खतरा बढ़ गया है। झील में अगले कुछ दिनों में 30 लाख घन मीटर अतिरिक्त पानी पहुंच सकता है। विदेश मंत्रालय ने बाढ़ के मद्देनजर लोगों की सहायता के लिए नई दिल्ली में 24 घंटे कार्यरत नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है। नियंत्रण कक्ष है 9111-2308-8718 और 9111-2308-8719 पर आप संपर्क कर सकते हैं। वहीं काठमांडू में भारतीय दूतावास ने सहायता के लिए नंबर जारी किए हैं। नंबर है 9779851316807 और 9779813261107। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
5: अपडेट रहे, आगे रहे, @AIRNewsHindi और इंस्टाग्राम पर AIR News अलर्ट्स को फॉलो करें।
2: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। ये देश में वित्तीय समावेशन के परिदृश्य को बदलने की दिशा में एक प्रमुख पड़ाव है। इस योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में आज ही के दिन की थी। एक रिपोर्ट।
6: प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत अब तक 59 करोड़ से अधिक खाते खोले जा चुके हैं, जिनमें कुल 3,17,000 करोड़ रुपए की जमा राशि है। दुनिया की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन पहल के रूप में यह योजना सभी भारतीयों के लिए बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच को लगातार नए आयाम दे रही है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत खोले गए 78% खाते ग्रामीण या अर्ध शहरी क्षेत्रों में है, जबकि लगभग 56% खाताधारक महिलाएं हैं। जनधन खाताधारकों को 41 करोड़ से अधिक रुपए कार्ड जारी किए जा चुके हैं। प्रति खाते औसत जमा राशि 5,356 रुपए है। इस योजना ने लाखों लोगों, विशेष रूप से वंचित वर्गों को बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं तक पहुंच प्रदान करके उनके सामाजिक आर्थिक हालात को बेहतर बनाया है। प्रधानमंत्री जनधन योजना जैसी पहलों के कारण भारत का वित्तीय समावेशन सूचकांक इस साल 67 हो गया है, जो 2018 में 53.9 था। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज से 6 दिन की अमेरिका यात्रा पर हैं। अपनी इस यात्रा के दौरान वे शिकागो, एशविले और न्यूयॉर्क जाएंगी। वे शिकागो में प्रमुख निवेशकों के साथ एक गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगी और निजी क्षेत्र के अग्रणी सीईओ, अध्यक्षों और वरिष्ठ प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगी। इन बैठकों में भारत में निवेश के अवसर, आर्थिक दृष्टिकोण और भारत और अमरीका के बीच व्यापार और निवेश साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा होगी। श्रीलंका के नौसेना कमांडर वाइस एडमिरल डेमियन फर्नांडो भारत के आधिकारिक दौरे पर हैं। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इस दौरे का उद्देश्य द्विपक्षीय समुद्री सहयोग को और मजबूत करने के साथ साथ भारत और श्रीलंका के बीच नौसेना संबंध

0: बंधों को आगे बढ़ाना है। वाइस एडमिरल फर्नांडो ने नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन के साथ संयुक्त अभियानों, क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण और समुद्री सुरक्षा सहित द्विपक्षीय समुद्री सहयोग को बढ़ावा देने के उपायों पर चर्चा की। रक्षाबंधन का त्यौहार आज पूरे देश भर में मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष ने इस अवसर पर देशवासियों को बधाई दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि रक्षाबंधन का त्यौहार प्राचीन काल से ही देश की संस्कृति और परंपरा का अहम हिस्सा रहा है। श्री अमरनाथ यात्रा आज रक्षाबंधन के त्यौहार के साथ सम्पन्न होगी।
1: महादेव महान भोले, सदा शिव शिव शंकरा।
2: 57 दिनों तक चलने वाली अमरनाथ यात्रा आज औपचारिक रूप से समाप्त हो जाएगी। इस साल जुलाई 3 को शुरू हुई इस यात्रा के दौरान तकरीबन 4,80,000 यात्रियों ने पवित्र गुफा में शिवलिंगम के दर्शन किए। अगरचे 9 अगस्त को इस यात्रा को मौसम की खराबी की वजह से रोका गया, लेकिन छड़ी मुबारक का सफर परंपरा के अनुसार जारी रहा। इधर आज महंत दीपेंद्र गिरी के नेतृत्व में छड़ी मुबारक पंचतरनी से निकलकर पवित्र गुफा पहुंचाई जाएगी, जहां विशेष पूजा और पारंपरिक रस्मों के बाद इस साल की यात्रा संपन्न हो जाएगी। आकाशवाणी समाचार के लिए मैं श्रीनगर से इश्फाक शाह।
1: महादेव महान भोले, सदा शिव शिव शंकरा।
0: इसके अतिरिक्त जम्मू कश्मीर में सालाना बुद्ध अमरनाथ यात्रा भी आज संपन्न होगी। उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में रक्षाबंधन का पर्व आज विशेष धार्मिक परंपराओं के साथ मनाया जा रहा है।
3: श्रावण पूर्णिमा के अवसर पर आज तड़के भस्म आरती के दौरान भगवान महाकाल को करीब 2 फीट की विशेष राखी चढ़ाई गई। ये राखी पुजारी परिवार की महिलाओं ने कई दिनों की मेहनत से तैयार की थी। रेशमी कपड़े और धागों से बनी इस राखी में रुद्राक्ष, मोर पंख, ओम, त्रिनेत्र और त्रिपुंड को शामिल किया गया है। राखी तैयार करते समय महिलाओं ने जय महाकाल और ओम नमः शिवाय का जाप किया। धार्मिक परंपरा के अनुसार भगवान महाकाल को राखी अर्पित करने के बाद ही पुजारी परिवार की महिलाएं अपने भाइयों को राखी बांधती हैं। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
0: केरलम में सबरीमला मंदिर ओणम पूजा के बाद आज रात 10 बजे बंद हो जाएगा। इस वर्ष त्रावणकोर देवस्वम बोर्ड ने तिरुओणम के दिन मंदिर में ओणम भोज का आयोजन किया। मंदिर 16 तारीख सितंबर को पुनः खुलेगा। आज समाज सुधारक श्री नारायण गुरु की 172वीं जयंती मनाई जा रही है। केरलम में सुबह से ही विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। श्री नारायण गुरु की जन्मभूमि चेम्पा छंती में भव्य कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन की यात्रा पर कल उज्बेकिस्तान जाएंगे। एक रिपोर्ट।
4: ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उज्बेकिस्तान की 4थी यात्रा होगी। इससे पहले प्रधानमंत्री 2015, 2016 और 2022 में इस मध्य एशियाई देश का दौरा कर चुके हैं। उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव भी 2018 और 2019 में भारत आ चुके हैं। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन केंद्र में मध्य एशियाई अध्ययन के प्रोफेसर राजन कुमार ने आकाशवाणी से खास बातचीत में कहा कि बार बार की गई ये यात्राएं ही दर्शाती हैं कि उज्बेकिस्तान भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है।
5: भारत को अगर यूरेशिया में कोऑपरेशन बढ़ाना है तो वैसे में मुझे लगता है कि सेंट्रल एशिया के देश काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं, और सेंट्रल एशिया के देश जो हैं उसमें उज्बेकिस्तान बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि उसकी मिलिट्री सबसे ज्यादा पावरफुल है।
4: इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव व्यापार और निवेश, रक्षा, डिजिटल कनेक्टिविटी, ऊर्जा, शिक्षा और जन सहयोग संबंधी क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा करेंगे और आगे की कार्य योजना तैयार करेंगे। दोनों नेता विकसित भारत 2047 और उज्बेकिस्तान 2030 के साझा विकास लक्ष्यों को आगे बढ़ाने पर भी अपने विचार साझा करेंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद, उज्बेकिस्तान।
6: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
0: और अब खेल खबरों का रुख कर लेते हैं। भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ग्रैंड शतरंज टूर जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। उन्होंने कल रात अमेरिका के सेंट लुइस में फाइनल में मौजूदा चैंपियन फेबियानो कारुआनो को 15-13 से हराकर शानदार जीत दर्ज की। प्रज्ञानंदा ने $200,000 का पहला पुरस्कार जीतकर अगले साल के ग्रैंड शतरंज टूर में अपनी जगह भी पक्की कर ली है। भारत के

0: एलवन सेंथिल कुमार कल रात स्क्वैश सेमीफाइनल में भारत के ही वीर चोट रानी को हराकर पीएसए बुडापेस्ट स्क्वैश ओपन के फाइनल में पहुंच गए हैं। फाइनल में आज रात वेलवन का मुकाबला हंगरी के खिलाड़ी बाला अजफारकत से होगा। भारतीय महिला हॉकी टीम ने कल जर्मनी को 3-1 से हराकर एफआईएच विश्व कप में 5वां स्थान हासिल किया। पिछले 52 वर्षों में ये भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। इससे पहले 1994 में हुए पहले माफ कीजिएगा इससे पहले 1994 में हुए पहले विश्व कप में टीम चौथे स्थान पर रही थी। इस प्रदर्शन से अगले महीने जापान में होने वाले एशियाई खेलों से पहले टीम का आत्मविश्वास चरम पर है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है मुकेश कुमार बल।
1: धन्यवाद फरहत। नेपाल में आए भीषण सैलाब की तस्वीरें सभी समाचार पत्रों ने सचित्र दी हैं। अमर उजाला लिखता है, नई झील से फिर सैलाब का खतरा, बिहार और उत्तर प्रदेश में अलर्ट। दैनिक भास्कर के शब्द हैं, 290 भारतीयों का अब तक सुराग नहीं, समय के साथ उम्मीदें भी घटती जा रही। हिंदुस्तान की सुर्खी है, तिब्बत से फिर आ सकती है तबाही, नियंत्रण कक्ष स्थापित। नहीं थम रहा स्वाइन फ्लू, 24 घंटे में 166 नए मामले, नवभारत टाइम्स की खबर है। पत्र लिखता है, बिना डॉक्टर की सलाह ना लें कोई दवा। खेलो इंडिया संवाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिया गया संदेश जनसत्ता ने सचित्र दिया है। पत्र लिखता है, प्रधानमंत्री ने जताई चिंता, कहा 2036 ओलंपिक खेलों के लिए आज से ही तैयारी करें खिलाड़ी। आईपीओ में लौटी तेजी, नए शेयरों का एक साल में 18% रिटर्न पर निफ्टी 7% टूटा। दैनिक भास्कर के बिजनेस पन्ने की खबर है, गिरते नजर आने लगे चीनी के दाम, खुदरा बाजार में भाव करीब 63 रुपए प्रति किलो, लोकसत्य की सुर्खी है। ब्रेन सर्जरी में पहला एआई सफल उपयोग, ट्यूमर निकालकर बचा ली आंखों की रोशनी, राजस्थान पत्रिका की खबर है।
0: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नेपाल में विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 392 हुई, 1468 लोग अब भी लापता। भारत ने नेपाल में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए प्रयास तेज किए। विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशी पहल प्रधानमंत्री जनधन योजना के आज 12 वर्ष पूरे। रक्षाबंधन का पर्व देश भर में मनाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में वार्षिक अमरनाथ यात्रा आज संपन्न होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज से अमेरिका की 6 दिन की यात्रा पर। और भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदन ने इतिहास रचा, ग्रैंड मास्टर शतरंज टूर जीतने वाले पहले भारतीय बने। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: Department has issued an orange color warning for heavy to very heavy rainfall along with thunderstorms and lightning over Odisha and Bihar today. The IMD has forecast heavy rainfall over Chhattisgarh, East Madhya Pradesh, East Uttar Pradesh and Jharkhand during the day. Similar conditions are predicted over Andaman and Nicobar Islands, Andhra Pradesh, North Interior Karnataka, Odisha, Tamil Nadu, Puducherry, Karaikal and Uttarakhand during the same period. And now for a look at today's newspapers, it's over to Tanvi Khurana.
1: Thank you, Nishit. Nepal flood toll hits close to 400 as rescue work in top gear is the headline carried by all the leading dailies. Centre steps up efforts to bring back Indians stranded in Nepal, says a report in the Asian Age. Prime Minister heads to Uzbekistan SEO summit. Key bilateral talks likely, says the top story in Hindustan Times. Four Naga civilians killed in Manipur ambush, reports the Tribune. 18th BRICS summit set for 12th and 13th of September, says Ministry of External Affairs, according to the Statesman. IPO flood puts appetite to the test as 4.62 lakh crore pipeline bills, says a report in Financial Express. FPIs keep going in August in select picks, reports the Economic Times. And finally, wait for a US green card could stretch to 179 years, writes the Times of India. And with that, it's back to you, Nishit.
0: Thank you, Tanvi. And now before we end the bulletin, the headlines once again. The toll in devastating Nepal-Tibet flash floods rises to 392, while 1,468 people remain missing on both sides of the border. Centre steps up efforts to bring back Indians stranded in Nepal. World's largest financial inclusion initiative, Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana, completes 12 years today. Festival of Raksha Bandhan being celebrated across the country. 57-day long annual Amarnath Yatra to conclude in Jammu and Kashmir. Finance Minister Nirmala Sitharaman to be on a six-day visit to US beginning today. And Indian Grandmaster R. Pragyanandan creates history, becomes the first Indian to win Grand Chess Tour. For details of this stories and more, log on to our website newsonair.gov.in and News on AIR app. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं नीतिका त्यागी। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। नेपाल और तिब्बत के अचानक आने वाले तबाहकुन सैलाब में हलाकतों की तादाद बढ़कर 392 हो गई है, जबकि सरहद के दोनों जानिब 1468 अफराद अब भी लापता हैं। मरकज ने नेपाल में फंसे हुए भारतीय शहरियों को वापस लाने की कोशिशें तेज कर दी हैं। दुनिया के सबसे बड़े माली शमूलियत के प्रोग्राम प्रधानमंत्री जनधन योजना को आज 12 साल मुकम्मल हो गए हैं। मुल्क भर में आज रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जा रहा है। 57 रोजा सालाना अमरनाथ यात्रा जम्मू और कश्मीर में इख्तिताम पजीर होगी। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन आज से अमरीका का 6 रोजा दौरा करेंगी और भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने तारीख साज कारनामा अंजाम दिया है। वो ग्रैंड चेस टूर जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। अब खबरें तफसील से। नेपाल और तिब्बत में अचानक आने वाले तबाहकुन सैलाब में हलाकतों की मजमुई तादाद बढ़कर 392 हो गई है, जबकि सरहद के दोनों जानिब 1468 अफराद अब भी लापता हैं। इस कुदरती आफत में हलाक होने वाले 392 अफराद में से 389 नेपाल में, जबकि 3 पड़ोसी इलाके तिब्बत में हलाक हुए हैं। नेपाल के हुकाम के मुताबिक 910 अफराद लापता हैं, जबकि तिब्बत के हुकाम ने बताया कि मजीद 558 अफराद का कोई सुराग नहीं मिल सका है, जिससे सरहद के दोनों जानिब लापता अफराद की मजमुई तादाद 1468 हो गई है। इमदादी कारकुन जिंदा बच जाने वालों की तलाश और दरियाओं के किनारे और दूरदराज आबादी से बहकर आने वाली लाशों को तलाश करने में मसरूफ हैं, ताहम खतरा अभी टला नहीं है। भोटेकोशी दरियाई निजाम के सरचश्मे के नज़दीक बनने वाली एक नई रुकावटी झील ने खदशात पैदा कर दिए हैं कि अगर इसमें शिगाफ पड़ा तो शदीद सैलाब का रैला आ सकता है, जिससे तबाही मजीद बढ़ सकती है और जारी इमदाद कार्रवाइयों में मजीद दुश्वारियां पैदा हो सकती हैं। नेपाल के सिक्योरिटी एहलकारों ने मुतासरा जिलों से 800 से ज्यादा लोगों को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया है। इस तबाही के बाद भारत ने बड़े पैमाने पर बचाव और इमदादी कार्रवाइयां शुरू कर दी हैं। वज़ारत-ए-खारिजा के मुताबिक

0: नेपाल में मौजूद 290 भारतीय शहरियों से राबता नहीं हो पा रहा है। भारत उनके बारे में मालूमात हासिल करने और उनके बचाव के लिए फौरी कोशिशें कर रहा है। लापता भारतीय शहरियों में मुख्तलिफ रियासतों से ताल्लुक रखने वाले पनबिजली प्रोजेक्टों के कारकुन और सयाहों के ग्रुप भी शामिल हैं। वजीर खारजा एस जयशंकर ने कहा है कि सैलाब से मुतासरा इलाकों में फंसे भारतीय शहरियों की मौजूदा सूरत हाल और उनकी खैरियत मालूम करने के लिए फौरी कोशिशें जारी हैं। उन्होंने कहा कि वजारत खारजा नेपाल के हुकाम, दीगर वजारतों, रियासती हुकूमतों, टूर ऑपरेटर्स और मुतालिका इदारों के साथ राबते में हैं। वजारत खारजा ने लापता अफराद का सुराग लगाने और उन्हें महफूज मकामात पर मुंतकिल करने में मदद की खातिर 24 घंटे काम करने वाला एक कंट्रोल रूम भी कायम किया है। भारत ने अब तक 84 भारतीय शहरियों को बचाया है। इनमें त्रिशूली वन रन ऑफ द रिवर पनबिजली प्रोजेक्ट के 63 वर्कर्स और तमिलनाडु के 21 अफराद शामिल हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने नेपाल के वजीर आजम बालेंद्र शाह से भी बातचीत की और उन्हें भारत की जानिब से इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर मुकम्मल इमदाद का यकीन दिलाया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल उज़्बेकिस्तान का दौरा करेंगे। वो वस्ती एशियाई मुल्क के 2 रोजा दौरे पर जाएंगे। वजीर आजम उज़्बेकिस्तान के सदर शवकत मिर्ज़ियोयेव की दावत पर ताशकंद का दौरा करेंगे। इस दौरे के दौरान वजीर आजम सदर मिर्ज़ियोयेव के साथ वफ्द सतह की बातचीत करेंगे ताकि दोनों ममालिक के दरमियान स्ट्रेटेजिक शराकत दारी को मजीद मजबूत बनाया जा सके। तफसील हमारे नामा निगार से।
1: वजीर आजम नरेंद्र मोदी का ये उज़्बेकिस्तान का चौथा दौरा होगा। वो इससे कबल 2015, 2016 और 2022 में इस वस्ती एशियाई मुल्क का दौरा कर चुके हैं। उज़्बेकिस्तान के सदर शौकत मिर्ज़ियोयेव भी 2018 और 2019 में भारत का दौरा कर चुके हैं। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज में वस्ती एशियाई उमूर के प्रोफेसर राजन कुमार ने आकाशवाणी से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वजीर आजम और उज़्बेकिस्तान के दरमियान होने वाले मुसलसल दौरे इस बात को जाहिर करते हैं कि भारत के लिए उज़्बेकिस्तान किस कदर अहमियत का हामिल है।
2: भारत को अगर यूरेशिया में कोऑपरेशन बढ़ाना है तो वैसे में मुझे लगता है कि सेंट्रल एशिया के देश काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं और सेंट्रल एशिया के देश जो हैं उसमें उज़्बेकिस्तान बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि उसकी मिलिट्री सबसे ज्यादा पावरफुल है।
1: दौरे के दौरान वजीर आजम नरेंद्र मोदी और उज़्बेकिस्तान के सदर शौकत मिर्ज़ियोयेव तिजारत और सरमायाकारी, दिफा, डिजिटल राबते, तवानाई, तालीम और आवाम से आवाम के रवाबित समेत मुख्तलिफ शोबों में बाहमी ताउन का जायजा लेंगे और आइंदा के लिए लाहे अमल मुरतब करेंगे। दोनों रहनुमा विकसित भारत 2047 और उज़्बेकिस्तान 2030 के मुश्तरका तरक्याती विजन को आगे बढ़ाने के बारे में भी अपने ख्यालात का तबादला करेंगे। ताशकंद से सुशील चंद्र तिवारी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद अम्मार।
0: प्रधानमंत्री जनधन योजना के आज 12 साल मुकम्मल हो गए हैं जो मुल्क के माली शमूलियत के मंजरनामे को तब्दील करने की समत एक अहम संगी मील है। इस स्कीम का आगाज वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने साल 2014 में आज ही के दिन किया था। तफसील हमारे नामा निगार से।
1: प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत अब तक 59 करोड़ से ज्यादा बैंक खाते खोले जा चुके हैं जिनमें मजमुई तौर पर 3,17,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम जमा है। दुनिया की सबसे बड़ी माली शमूलियत की इस पहल ने तमाम भारतीय शहरियों के लिए बैंककारी खिदमात तक रसाई को मजीद आसान बनाया है। फी खाता औसत जमा रकम 5,356 रुपये है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत 78% खाते देही या नीम शहरी इलाकों में खोले गए हैं जबकि तकरीबन 56% खाते खवातीन के हैं। जनधन खाताधारों को 41 करोड़ से ज्यादा रुपए कार्ड जारी किए जा चुके हैं। इस स्कीम ने लाखों अफराद खसूसन मुआशरे के महरूम और पसमानदा तबकात को बैंककारी और माली खिदमात तक रसाई फराहम करके उनके समाजी और इक्तिसादी हालात को बेहतर बनाने में मदद दी है। जनधन आधार मोबाइल JAM की तसलीस जिसमें प्रधानमंत्री जनधन योजना मरकजी हैसियत रखती है माली इमदाद की बराह रास्त और बगैर किसी रुकावट मुंतकली का एक मुअस्सर निज़ाम साबित हुई है। प्रधानमंत्री जनधन योजना जैसी पहल के नतीजे में भारत का माली शमूलियत का इशारिया 2018 में 53.9 से बढ़कर 2026 में 67 हो गया है जो कर्ज, बीमा, बचत और डिजिटल अदायगियों तक लोगों की बढ़ती हुई रसाई को जाहिर करता है। दुनिया की सबसे बड़ी माली शमूलियत की स्कीम के तौर पर जनधन योजना लाखों महरूम शहरियों के लिए बैंककारी खिदमात तक रसाई को नई शक्ल दे रही है। दिल्ली से अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद अम्मार।

0: वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमन आज से अमरीका का 6 रोज़ा दौरा करेंगी। अमरीका के अपने दौरे के दौरान वो शिकागो, एशविल और न्यूयॉर्क जाएंगी। वज़ीर ख़जाना शिकागो में मुमताज़ सरमायाकारों के साथ एक गोलमेज कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगी और प्राइवेट सेक्टर की सरकर्दा कंपनियों के CEOs, सुदूर और आला नुमाइंदों से बातचीत करेंगी। शिकागो में मुंतखब कंपनियों के CEOs और आला क़यादत के साथ दोतरफा और बिलमुशाफा मीटिंगें भी होंगी। इन मीटिंगों में भारत में सरमायाकारी के मौके, इक्तिसादी हालात और भारत और अमरीका के दरमियान कारोबारी और सरमायाकारी शराकत दारी को मजबूत बनाने के तौर तरीकों पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमन और कैनेडा के मालियात और कौमी महसूलात के वज़ीर फ्रांसुआ फिलिप शैम्पेन ने कैनेडा के टोरंटो में भारत कैनेडा वज़राए ख़जाना माली और इक्तिसादी डायलॉग मुकम्मल कर लिया है। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है।
1: आपको हर खबर से रखे अपडेट एक्सपर्ट एट AIR न्यूज हिंदी और पब्लिक पर एट AIR न्यूज अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: भाइयों और बहनों के दरमियान खुसूसी प्यार और मोहब्बत भरे रिश्ते का त्यौहार रक्षाबंधन आज मुल्क भर में मनाया जा रहा है। इस मौके पर बहनें अपने भाइयों की कलाई पर रंग बिरंगी राखियां बांधती हैं और उनकी खुशहाली, सेहत और भाई के लिए दुआएं करती हैं। इसके बदले में भाई अपनी बहनों की हिफाजत और उनकी मदद का अहद करते हैं और उन्हें तहाइफ पेश करते हैं।

0: रक्षाबंधन का त्यौहार आज उज्जैन के आलमी शोहरत याफ्ता महाकालेश्वर मंदिर में खुसूसी मजहबी रिवायात के साथ मनाया जा रहा है। भस्म आरती के दौरान भगवान महाकाल को खुसूसी तौर पर तैयार करता राखी पेश की गई। जम्मू कश्मीर में सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा आज पवित्र गुफा के मुकद्दस मकाम पर रिवायती छड़ी मुबारक की तकरीब के साथ बाजाब्ता तौर पर इख्तिताम पजीर हो गई। तफसील हमारे नामा निकार से।
1: 3 जुलाई को शुरू हुई श्री अमरनाथ जी यात्रा 57 रोज तक पहलगाम और बालतल के रास्तों से जारी रहने के बाद आज इख्तिताम पजीर हो रही है। इस बरस 4,80,000 से ज्यादा यात्रियों ने पवित्र गुफा पर हाजिरी देकर शिवलिंगम के दर्शन किए। अगरचे 9 अगस्त को मौसम खराब होने के बाद यात्रा मुअत्तल की गई थी, ताहम छड़ी मुबारक को रिवायत के मुताबिक गुफा तक ले जाया जा रहा है। छड़ी मुबारक महान दीपेंद्र गिरी की सरबराही में कल पंचतरनी पहुँचाई गयी और आज इसको गुफा तक ले जाया जा रहा है, जहाँ पूजा सभा का इनेकाद होगा। श्री मुबारक की रिवायती तकरीब के साथ ही इस बरस की सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा आज इख्तिताम पजीर होगी। खबरों के लिए मैं श्रीनगर से इश्फाक शाह।
0: केरलम का सबरीमला मंदिर ओनम पूजा के बाद आज रात 10 बजे बंद कर दिया जाएगा। ओनम के दौरान मंदिर में अकीदतमंदों की बड़ी तादाद की आमद देखी गई। इस साल तिरुओनम दिन के मौके पर ट्रेवनकोर देवास्वम बोर्ड ने सीधे ओनम ज़ियाफ़त का इनेकाद किया। सबरीमला मंदिर माहाना पूजा के लिए अब 16 सितंबर को शाम 5 बजे दोबारा खुलेगा। भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने ग्रैंड चेस टूर जीतकर तारीख रकम की है। वो ये मुकाबला जीतने वाले पहले भारतीय शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं। आर प्रज्ञानंदा ने कल रात अमरीका के सेंट लुई में खेले गए फाइनल में दिफाई चैंपियन फाबियानो कारुआना को 15-13 से शिकस्त देकर जबरदस्त वापसी की। प्रज्ञानंदा ने आखिरी दिन कारुआना से 6 पॉइंट्स पीछे शुरुआत की, लेकिन बाद में उन्होंने दोनों रैपिड गेम्स जीतकर सबकत हासिल कर ली। इसके बाद उन्होंने मुकाबले पर अपनी गिरफ्त मजबूत कर ली और 4 ब्लिट्स गेम्स को 15-13 से जीत लिया। इस तरह वो $2,00,000 का पहला इनाम और अगले साल के ग्रैंड चेस टूर में जगह बनाने में कामयाब रहे। भारत के वेलावन सेंथिल कुमार कल रात सेमीफाइनल में अपने हमवतन खिलाड़ी वीर चोटरानी को एक बेहद दिलचस्प मुकाबले में 3-2 से शिकस्त देकर पीएसए बुडापेस्ट स्क्वॉश ओपन के फाइनल में पहुंच गए। दोनों भारतीय खिलाड़ी शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा करते हुए सेमीफाइनल में पहुंचे थे। चोटरानी ने मिस्र के मोहम्मद एल शेरबीनी को 3-1 से शिकस्त दी थी, जबकि वेलावन ने मलेशिया के आइन याओ को एकतरफा

गुड मॉर्निंग 100.1 आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर ये है म्यूजिकल दिलगी और 8:46 और 14 सेकंड पर गोल्ड स्टूडियो से आज आपके साथ हूँ मैं आपकी रेडियो वाली दोस्त पूजा और आज का दिन उन लोगों के नाम जिनसे हमारी सबसे ज़्यादा लड़ाइयाँ भी होती हैं और जिन्हें फ़ोन करके सबसे पहले हम अपनी सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी बताते हैं. यस, टॉकिंग अबाउट द ब्रो एंड सिस, क्योंकि भाई बहन का रिश्ता ही कुछ ऐसा है. बचपन में मम्मी इसने फिर मेरा सामान छुआ, और थोड़े बड़े हुए तो भाई मेरे लिए ये ऑनलाइन ऑर्डर कर देना प्लीज़. और फिर बड़े होकर यार किसी से कहना मत, लेकिन एक बात पूछनी है. यानी रिश्ता जो है ना वो इवॉल्व होता रहता है, लेकिन कनेक्शन वही रहता है. और भाई बहन शायद वो पहले दोस्त होते हैं जिन्हें हमने खुद चूज़ नहीं किया होता, बल्कि लाइफ ने उन्हें हमें गिफ्ट किया होता है. सो लेट्स सेलिब्रेट दिस स्पेशल बॉन्ड ऑन 100.1 आकाशवाणी एफएम गोल्ड. और बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं आप सभी को रक्षाबंधन की.

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार

आर तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।

8:53 100.1 आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर यह है म्यूजिकल दिल्ली और गोल्ड स्टूडियो से आज आपके साथ हूँ मैं आपकी रेडियो वाली दोस्त पूजा। और कहते हैं दोस्त कि दूसरों की सोच से ज्यादा अगर आप कर दिखाते हैं तो फिर वही असली सफलता है। और हम जब अपने आसपास देखते हैं कि कितने इंस्पायरिंग लोग हैं जो नए नए कारनामे और बड़ी बड़ी बातें करके दिखा रहे हैं तो फिर लाइफ में आगे बढ़ने के लिए हमें भी कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन मिलती है। और लेटेस्ट जो इंस्पिरेशन हमें मिल रही है वो खेल की दुनिया से आई अच्छी खबर से है, जिसमें हम सभी अभी तक जानते हैं कि भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रगानंद ग्रैंड शतरंज टूर जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। यानी आज जो सेलिब्रेशन का मूड है उसमें एक और वजह मिल गई है हमें सेलिब्रेट करने की। लेकिन सेलिब्रेशन के लिए जब आप आज बाहर निकलेंगे तो फिर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की जो ट्रैफिक एडवाइजरी है उसको जरा ध्यान में रखकर आगे बढ़िएगा, क्योंकि कल हम सब जानते हैं कि काफ़ी भयंकर ट्रैफिक जैम का हम सबको सामना करना पड़ा है दिल्ली की सड़कों पर और NCR में जब हम बाहर निकले थे। तो आज इस बात का खास ख्याल रखिए और एंजॉय करते रहिए अपने आज के फेस्टिव मूड को।

भाई दिल तो बहुत था कि आपसे बहुत सी बातें और करते, लेकिन क्या करें, 9 बजने वाले हैं और मेरे चलने का वक्त हो रहा है, लेकिन म्यूज़िकल दिल्ली इसी तरह जारी रहेगा 100.1 आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर आगे भी, और रेखा रहेंगी आपके साथ इसके दूसरे सेगमेंट में। तो फिलहाल तो चलने का वक्त हो रहा है, लेकिन चलते चलते आपको यही कहना है कि आज का दिन जब आप एंजॉय करें और थक जाएं तो फिर अच्छी नींद लेना बिल्कुल मत भूलिएगा जनाब, क्योंकि नींद की बहुत इम्पॉर्टेंट भूमिका रहती है हमारी लाइफ में। इसके बारे में कभी आराम से फिर बात करेंगे खुलासे के साथ। फिलहाल यही कहना है कि एंजॉय कीजिए अपने दिन को अपने अपनों के साथ, और इसी तरह एंजॉय करते करते अपनी लाइफ में आगे आपने जो अपने लक्ष्य साधे हुए हैं उनको पाने की कोशिश भी करते रहिए। फिलहाल आपसे लेती हूँ इजाज़त, 100.1 आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर जुड़े रहिए। आपकी रेडियो वाली दोस्त पूजा कहती है बाय बाय, टेक केयर एंड कीप एंजॉयिंग द गोल्डन म्यूजिक। और अभी आप सुनेंगे समाचार, और समाचारों के उस पार एक बार फिर म्यूजिकल दिल्ली का दूसरा सेगमेंट।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 392 हो गई है। नेपाल में 389 और तिब्बत में 3 व्यक्तियों की मौत की खबर है। सीमा के दोनों तरफ 1468 व्यक्ति लापता हैं। नेपाल के अधिकारियों ने 910 व्यक्तियों के लापता होने की जानकारी दी। तिब्बत के अधिकारियों ने बताया कि 558 व्यक्ति लापता हैं। बचावकर्मी नदी के किनारों और अलग थलग पड़ी बस्तियों में जिंदा लोगों की तलाश कर रहे हैं और शवों को निकाल रहे हैं। अभी क्षेत्र में खतरा टला नहीं है। भोटे कोशी नदी प्रणाली के स्रोत के पास नई झील बन गई है। इसके टूटने से पानी के एक और तेज बहाव के आने की आशंका बन गई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि बाढ़ प्रभावित इलाकों में फंसे भारतीयों की स्थिति और सलामती का पता लगाने के लिए तत्काल प्रयास किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह से बात की और उन्हें भारत की ओर से पूरी मानवीय सहायता का आश्वासन दिया। इस बीच भारत ने नेपाल में बाढ़ के कारण फंसे भारतीय नागरिकों का पता लगाने और उन्हें सुरक्षित निकालने के प्रयास तेज कर दिए हैं। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत ने नेपाल को बचाव और राहत अभियानों में सहायता के लिए 47 टन से अधिक राहत सामग्री भेजी है।
1: 2 जहाज पे हम लोगों ने सहायता नेपाल को पहुंचाया है। पहला जहाज यहाँ से 10 टन करीबन रिलीफ मटेरियल लेके काठमांडू पहुंचा था, जिसमें कि कंबल, सोलर लैंप, दवाइयां, हाइजीन किट्स और टेंट वगैरह इस प्रकार की चीजें हैं। दूसरा जहाज इसमें 37.5 टन की सप्लाई, जिसमें कि 28.5 टन रिलीफ आइटम्स और 8 टन दवाइयां और 1 टन खाने पीने की सामग्री और जो भी मानवीय सहायता हो सकता है वो भी हम प्रदान करेंगे।
0: प्रधानमंत्री जनधन योजना के 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। ये देश में वित्तीय समावेशन के परिदृश्य को बदलने की दिशा में एक प्रमुख पड़ाव है। इस योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2014 में आज ही के दिन की थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज से 6 दिन की अमरीका की यात्रा पर हैं। अपनी यात्रा के दौरान वे शिकागो, एशविले और न्यूयॉर्क जाएंगी। वे शिकागो में प्रमुख निवेशकों के साथ एक गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगी और निजी क्षेत्र के अग्रणी सीईओ, अध्यक्षों और वरिष्ठ प्रतिनिधियों से

मुलाकात करेंगे। इन बैठकों में भारत में निवेश के अवसर, आर्थिक दृष्टिकोण और भारत और अमेरिका के बीच व्यापार तथा निवेश साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा होगी। श्रीलंका के नौसेना कमांडर वाइस एडमिरल डेमियन फर्नांडो भारत के आधिकारिक दौरे पर हैं। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इस दौरे का उद्देश्य द्विपक्षीय समुद्री सहयोग को और मजबूत करने के साथ भारत और श्रीलंका के बीच नौसैनिक संबंधों को बढ़ावा देना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन की यात्रा पर कल उज्बेकिस्तान जाएंगे। श्री मोदी उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के निमंत्रण पर ताशकंद का दौरा कर रहे हैं। राजस्व आसूचना निदेशालय ने असम और मिजोरम में 2 तलाश अभियानों में 76 किलो मेथमफेटामाइन गोलियां जब्त की हैं। वित्त मंत्रालय ने बताया कि नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस अधिनियम 1985 के प्रावधानों के अंतर्गत 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। मेथमफेटामाइन एक शक्तिशाली सिंथेटिक मनोत्तेजक ड्रग्स है जिसका उपयोग और लत लगने की आशंका बहुत अधिक होती है। मौसम विभाग ने ओडिशा और बिहार में आंधी तूफान के साथ मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और झारखंड में भी तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इस दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, उत्तरी कर्नाटक, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारिकाल में भी तेज वर्षा की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व संस्कृत दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि संस्कृत भाषा की शाश्वत समृद्धि को चिन्हित करने के लिए श्रावण पूर्णिमा को विश्व संस्कृत दिवस मनाया जाता है। और भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानानंद ग्रैंड शतरंज टूर जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। उन्होंने कल रात अमेरिका के सेंट लुई में फाइनल में मौजूदा चैंपियन फाबियानो कारुआनो को 15-13 से हराकर शानदार जीत दर्ज की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

क्या बात है भाई, आज राखी के त्योहार की तैयारियों में लगे हुए हैं सब लोग, और बहुत सारे लोगों ने तो कल शॉपिंग भी कर ली है, आज बहन का इंतज़ार है या फिर खुद बहन के घर जाने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि राखी का जो त्यौहार है ना, इसकी हलचल आपके दिलों को भी महसूस हो रही होगी और आज आप अलग ही खुशी महसूस कर रहे होंगे। होता है ना कि बचपन से बहन को हम एक एक चीज़ के लिए रुलाते आए हैं, लेकिन आज हम इंतज़ार करते हैं कि कब वो आए और अब कब हम उसे प्यार से एक तोहफा भेंट करें, है ना। तो मुझे पता है कि सारे वो भाई बहन जो अपने अपने भाई बहनों से मिलने का इंतज़ार कर रहे हैं, और एक मज़े की बात जो इस बार मुझे ख्याल आई वो ये कि ज़रूरी नहीं कि रक्षा का जो वचन है वो भाई ही दे, है ना। हो सकता है कि बहनें भी आपस में एक दूसरे को एक दूसरे की रक्षा का वचन दे सकती हैं, है ना, क्योंकि जहाँ पर भाई नहीं है कोई बात नहीं, है ना। देश के रक्षक जो जो बॉर्डर्स पर खड़े हैं, जो पुलिस की वर्दी में तैनात हैं, जो डॉक्टर बनकर हमारी रक्षा कर रहे हैं, जो हर तरफ अगर हम देखें तो कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति जो हमारी रक्षा के लिए तैनात है, चाहे वो किसी भी रूप में हो, उसके साथ भी तो हमारा ये रिश्ता बन सकता है ना। तो अगर आपको भी लगता है कि भाई आपके घर में ऐसा कोई नहीं है जिसे आप राखी बांधें, तो बाहर निकलिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं और आपको एक बिना वचन दिए भी वो आपकी जीवन की रक्षा करते हैं, तो उन सबको आप राखी बांध सकते हैं, अपनी बहनों को राखी बांध सकते हैं, या फिर उस किसी भी इंसान को जिसने कभी ज़िंदगी में आपका साथ दिया हो, कभी आपकी रक्षा की हो, कभी आपके बुरे वक्त में खड़ा रहा हो, है ना। तो चलिए, आज बात हुई है राखी की, तो शुरुआत करते हैं प्यारे से गीत के साथ। लेकिन आपको याद दिला दूं कि 100.1 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप। आपकी दोस्त आरजे रेखा क्रिस्टल वॉइस है आपके साथ। 9:13 हो चुके हैं और ये है म्यूजिकल दिल्ली।

दोस्तों, रक्षाबंधन की खुशियां तो हम मनाते ही रहेंगे, लेकिन कुछ काम की बातें भी साथ साथ होती रहें तो मज़ा और भी बढ़ जाता है ना। तो चलिए, आज मैं आपको बताऊंगी एक ऐसी ही योजना के बारे में जिसे हम प्रधानमंत्री जन धन योजना के नाम से जानते हैं। देश में बैंकिंग सुविधाओं से दूर रहने वाले लोगों को मुख्यधारा से जोड़ने के उद्देश्य से शुरू की गई प्रधानमंत्री जन धन योजना ने 12 साल पूरे कर लिए हैं। वित्त मंत्रालय की अगर बात माने तो इस योजना के तहत अब तक करीब 59 करोड़ से ज्यादा बैंक खाते खोले जा चुके हैं और इन खातों में बहुत सी राशि भी जमा की जा चुकी है। और अगर मैं बात करूं तो इस योजना की शुरुआत हुई थी 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, और इसका उद्देश्य बिना बैंक खाते वाले और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को आसान बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं से जोड़ना था। और अगर मैं बात करूं इस योजना की तो भाई और भी कई उद्देश्य थे इसके और कई लाभ भी हैं जो मैं आपको जरूर बताऊंगी। इस योजना से अगर आप जुड़ जाते हैं, अपना जनधन खाता अगर आप खोलते हैं, तो फिर आपको कई फायदे मिल सकते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो इस खाते के खोलने के बाद आपको पहले तो ये बता दूं कि यहाँ पर जीरो बैलेंस के साथ ये खाता जो है वो खोला जाता है और आप इसके अंदर मुफ्त रुपे डेबिट कार्ड भी प्राप्त करते हैं। इसमें दुर्घटना बीमा भी कवर किया जाता है। वर्तमान में 2 लाख रुपए तक, शुरुआती नियमों में 1 लाख रुपए तक ये था और अब 2 लाख रुपए तक दिए जाते हैं। कुछ शर्तों के साथ जीवन बीमा इसमें दिया जाता है। संतोषजनक संचालन के बाद 6 महीने बाद पात्र खाता धारकों को 10,000 रुपए तक की ओवरड्राफ्ट लिमिट भी इसमें मिलती है, बिना गारंटी ऋण की सुविधा जिसे आप कह सकते हैं। और सरकारी योजनाओं का पैसा जो है वो भी सीधे इस खाते में आता है। अगर आप किसी योजना के लिए अधिकारी हैं, या ये कहूं कि अगर आपको लगता है कि उस योजना के साथ आप कनेक्टेड हैं या उसके लिए एलिजिबल हैं और आपने उसके लिए अप्लाई किया है, तो उससे मिलने वाला जो भी पैसा है वो आपके खाते में सीधा क्रेडिट हो जाता है। और इसके लिए पात्र कौन कौन है इस योजना के लिए, ये भी बता दूं कि सभी भारतीय नागरिक जो भी इस तरह का खाता खोलने के लिए चाहते हैं जुड़ना, वो इसका खाता खोल सकते हैं। यानी PMJDY यानी प्रधानमंत्री जन धन योजना खाता जो है वो कोई भी व्यक्ति खोल सकता है जो भारतीय नागरिक हो, जिनकी कोई ऊपरी आयु सीमा भी नहीं है। आप जितनी भी उम्र के इंसान हैं आप इसका खाता खोल सकते हैं। और बैंक खाते से रहित व्यक्ति जिसके पास खाता नहीं है वो भी ये खाता खोल सकता है। न्यूनतम शेष बनाए रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, यानी कि जरूरी नहीं है कि आपके अकाउंट में कुछ राशि हमेशा जमा रहे। जीरो बैलेंस होने पर भी ये खाता एक्टिव रहता है, खुला रहता है। और अगर मैं बात करूं तो ये जो खाता है, कुछ दस्तावेज आपके पास होने जरूरी हैं तब आप खोल सकते हैं, जैसे कि आधार कार्ड, सरकारी आईडी प्रूफ जैसे वोटर आईडी, पैन कार्ड या राशन कार्ड अगर आपके पास है, या फिर इसके अलावा अगर मैं बताऊं तो स्थायी पते का प्रमाण पत्र आपको देना होता है, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, बिजली या टेलीफोन या पानी का बिल अगर आपके पास है, पासपोर्ट आकार का फोटो आपको साथ में जमा करना होता है, और विधिवत भरा एक हस्ताक्षरित जो इस योजना का फॉर्म है वो भी आपको खाता खोलने के लिए जमा करना होता है साथ में। और अगर आपके पास ये सारी चीजें हैं तो फिर आप अपना खाता किसी भी बैंक में खोल सकते हैं। बचत बैंक खातों पर लागू ब्याज दर जो है वो इस योजना के अंतर्गत खोले गए खातों पर भी लागू होती है, तो जो ब्याज बाकी खातों पर मिलता है वही इस पर भी मिलता है। और अगर मैं बात करूं तो ये खाता खोलने के लिए आप कभी भी किसी भी अपने बैंक से या अपने आसपास के जो भी बैंक हैं उनसे संपर्क कर सकते हैं, वो आपको इसकी पूरी जानकारी आसानी से देंगे। तो भाई, अगर आपने अभी तक ये खाता नहीं खोला है तो बिना देर किए पहुंच जाइए, खोल लीजिए इस खाते को और इसका पूरा लाभ लीजिए। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं, अगर और भी इससे जुड़ी हुई जानकारी आप चाहते हैं तो प्रधानमंत्री जनधन योजना पोर्टल पर जाकर इसकी विस्तृत जानकारी आप देख सकते हैं। फिलहाल एक और प्यारे से गीत आप तक पहुँचाती हूँ और उसके बाद कुछ और भी बातें हैं आज के

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।
1: कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हम

नमस्कार, 28 मिनट 35 सेकंड्स हो चुके हैं और मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त आरजे रेखा क्रिस्टल वॉइस। और मैं आपको बता रही हूं कि भाई क्या क्या है आज के दिन खास। पहले तो ये बता दूं कि आज है 28 अगस्त और आज है पूर्णिमा, श्रावण की पूर्णिमा। आज का दिन कई और वजहों से भी खास होता है। रक्षाबंधन तो हम मना ही रहे हैं, लेकिन आज का दिन विश्व संस्कृत दिवस के तौर पर भी जाना जाता है। ये दिन हर साल हिंदू पंचांग के अनुसार श्रावण मास की पूर्णिमा यानी रक्षाबंधन के दिन मनाया जाता है। 2026 में 25 अगस्त से 31 अगस्त तक संस्कृत सप्ताह मनाया गया था, अगर आपको याद हो। और आज 2026 में जब हम ये सप्ताह मना रहे हैं, 25 से 31 अगस्त तक ही सप्ताह को फिर से मनाया जा रहा है। और अगर मैं बात करूं इस दिवस की, तो ये जो दिन है ये संस्कृत को याद करने का दिन है। प्राचीन काल में इसी श्रावण पूर्णिमा के दिन से विद्या और वेदों के अध्ययन की शुरुआत होती थी। और 2026 चल रहा है, इस हफ्ते में हमने संस्कृत के बारे में, बहुत सारे से लोग हैं जो संस्कृत से जुड़ते हैं, संस्कृत को जानने की कोशिश करते हैं, सीखने की कोशिश करते हैं। ऋषियों और वेदों के सम्मान में इस दिन को ऋषि पर्व के रूप में भी याद किया जाता है। संस्कृत भाषा भारतीय संस्कृति और प्राचीन ज्ञान विज्ञान का प्रचार प्रसार करना है। हमारी संस्कृति के अनुसार संस्कृत भाषा को प्राचीनतम भाषा का दर्जा मिला है और उसी के प्रति सम्मान दिखाने के लिए संस्कृत दिवस जो है वो मनाया जाता है। दोस्तों, हमारी धार्मिक संस्कृति में संस्कृत को देव भाषा भी कहा जाता है। संस्कृत भाषा लगभग सभी वेदों और पुराणों की भाषा है, इसलिए इस भाषा के प्रति सम्मान बनाए रखने के लिए संस्कृति दिवस मनाया जाता है, जो कि आज है। संस्कृत भाषा के प्रति लोग आदर का भाव रखते हैं। हमारे धार्मिक ग्रंथ और मंत्र अधिकतर इसी भाषा में वर्णित हैं। श्रावणी पूर्णिमा के दिन मनाया जाने वाला संस्कृत दिवस अपने आप में बहुत अनूठा दिन है, क्योंकि किसी भी अन्य प्राचीन भाषा को राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह नहीं मनाया जाता। हर साल रक्षाबंधन के दिन यानी श्रावण पूर्णिमा को इसे सेलिब्रेट किया जाता है और आज भी हम इसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो चलिए, जब बात हुई है संस्कृत की, तो एक गीत आप तक पहुंचाती हूं, शायद आप समझ सकें कि ये गीत जो है वो संस्कृत भाषा में ही लिखा हुआ है और आप सबने इसे गाया भी है, सुना भी है। ये रहा

0: mataram, vande mataram, vande mataram, vande mataram.
1: NCREPEC से गुजरने वाले सभी श्रद्धालुओं एवं यात्रियों को पावन श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। कृपया प्रशासन द्वारा निर्धारित मार्ग का ही उपयोग करें और यातायात नियमों का पालन करें। किसी भी आपातकालीन सहायता के लिए तुरंत डायल करें 1033। आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प।
2: नमस्कार। 34:43 हो चुके हैं। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त आर्चरी का क्रिस्टल वॉइस म्यूजिकल दिलगी का ये सफर। और मैं आपको बता रही हूं कि भाई आज का जो दिन है वो बहुत खास है, बहुत स्पेशल है। क्यों? क्योंकि आज रक्षाबंधन मनाया जा रहा है, संस्कृत दिवस मनाया जा रहा है, श्रावणी उपाकर्म भी आज ही के दिन होता है और नारली पूर्णिमा भी आज मनाई जाती है। और ये चारों दिन जो हैं वो आज एक ही दिन पर हैं, तो ये जो शुभ संयोग होता है ना, ये बहुत खास है। आज का दिन धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत खास माना जा रहा है। एक ही तिथि पर चार पर्व मनाए जा रहे हैं जिनका अपना अलग महत्व है। जहां एक तरफ रक्षाबंधन भाई बहन के प्रेम और रक्षा के संकल्प का पर्व माना जाता है, वहीं नारली पूर्णिमा समुद्र और वरुण देव की पूजा से जुड़ा हुआ उत्सव है। और अगर बात करूं श्रावणी उपाकर्म की, तो एक ऐसा पर्व है जिसमें यज्ञोपवीत बदलने और वैदिक परंपराओं के पालन का खास महत्व है। यही नहीं, आज जैसा कि मैंने कहा कि संस्कृत दिवस मनाया जा रहा है जिसमें संस्कृत भाषा और भारतीय ज्ञान परंपरा के संरक्षण का संदेश भी दिया जाता है। इन सभी त्योहारों का, इन सभी खास जो पर्व हैं जो आज मनाए जा रहे हैं, इनका मैं ज़रूर आपको कुछ ना कुछ इनके बारे में ज़रूर बताऊंगी। लेकिन फिलहाल एक प्यारा सा गीत आप तक पहुँचा रही हूँ।

दोस्तों, रक्षाबंधन का पर्व भाई और बहन के रिश्ते को अटूट बनाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन बहनें अपने भाई को राखी बांधती हैं और उनसे अपनी सुरक्षा का वचन लेती हैं। रक्षाबंधन का इतिहास प्राचीन पौराणिक कथाओं से जुड़ा हुआ माना जाता है। माना जाता है कि महाभारत काल में जब एक बार श्री कृष्ण की उंगली कट गई थी, तब द्रौपदी ने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर उनकी उंगली पर बांध दिया था। इससे प्रभावित होकर श्री कृष्ण ने द्रौपदी की हमेशा रक्षा करने का वचन निभाया और दिया। और याद है आपको कि जब उन्होंने द्रौपदी का चीर पढ़ाया, तो कहा जाता है कि ये वही पल्लू था जो उन्होंने उनके हाथ पर बांधा था, द्रौपदी ने कृष्ण के हाथ पर बांधा था, और फिर उन्होंने उसे कई गुना बढ़ा करके एक साड़ी के रूप में उन्हें लौटाया। भविष्य पुराण के अनुसार देवासुर संग्राम के दौरान इंद्राणी ने देवराज इंद्र को राक्षसों से बचाने के लिए रक्षा सूत्र बांधा था। मृत्यु के देवता यमराज ने अपनी बहन यमुना से राखी बंधाई थी और प्रसन्न होकर यम ने उन्हें अमरता का वरदान दिया था। तो रक्षाबंधन का जो त्योहार है ना, वो ऐसा ही नहीं है, बहुत पुराना है और कितने ही सारे जो कथाएं हैं, कहानियां हैं, किंवदंतियां हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो इस दिन से जुड़ी हुई है। तो भाई, आज हम रक्षाबंधन मना रहे हैं और आज जो जो भाई अपनी बहनों तक पहुंच चुके हैं, वो सब इस दिन का बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। वो बहनें भी इंतज़ार करती हैं जो पूरे साल भर अपने भाइयों को मिलने का मौका तलाशती हैं, और राखी उन मौकों में से सबसे बड़ा मौका माना जाता है। फिलहाल एक और प्यारा सा गीत आप तक पहुंचाती हूँ और उसके बाद बातें और भी हैं।

दोस्तों आज का दिन नारली पूर्णिमा के तौर पर भी जाना जाता है। ये पर्व खास तौर से महाराष्ट्र, गोवा और पश्चिम तटीय क्षेत्रों में श्रावण पूर्णिमा को नारली पूर्णिमा के रूप में मनाकर सेलिब्रेट किया जाता है। ये पर्व खास तौर से खासकर महाराष्ट्र और कोंकणी क्षेत्रों के अलावा गोवा, गुजरात के समुद्र तटीय क्षेत्रों में रहने वाले मछुआरों के लिए खास माना जाता है। इस दिन खास तौर से समुद्र देव और वरुण देव की पूजा की जाती है और नारली पूर्णिमा के दिन खास रूप से समुद्र को नारियल अर्पित करके उनके प्रति श्रद्धा दिखाई जाती है और अपनी सुरक्षा की प्रार्थना की जाती है। इससे समुद्र देव का आशीर्वाद मिलता है और मछुआरों को जीवन यापन की सुविधाएं मिल पाती हैं। तो ये तो हुई बात नारली पूर्णिमा की। अभी एक और चीज़ है जो बताऊंगी, लेकिन इस गीत के बाद।

दोस्तों, बहुत सारी बहनें हैं जो याद कर रही हैं अपने भाइयों को, तो पहुंच जाइए बिना देर किए, जहां पर भी हैं मौका मिले तो ज़रूर जाइएगा। और अगर कहीं फंसे हैं तो कोई बात नहीं, अपना प्यार किसी बहाने से भेज दीजिएगा। श्रावण पूर्णिमा का आज दिन है और आज के दिन यानी आज ही सनातन धर्म का प्रमुख वैदिक अनुष्ठान श्रावणी उपाकर्म भी मनाया जाता है। इस दिन की परंपरा के अनुसार जिन लोगों का उपनयन संस्कार यानी यज्ञोपवीत हो चुका होता है, तो इस दिन वो लोग पुराने जनेऊ को उतारकर नया धारण करते हैं। इसके साथ ही इस दिन वेदों के प्रति श्रद्धा भी दिखाई जाती है और वेदों की पूजा भी होती है। श्रावणी उपाकर्म का मुख्य उद्देश्य वेदों के अध्ययन के प्रति संकल्प को दोहराना और ऋषि परंपरा के प्रति कृतज्ञता प्रकट करना होता है और स्थिति को यज्ञोपवीत बदलने के लिए एक शुभ अवसर के रूप में देखा जाता है। ये तिथि सभी वेदों का आभार व्यक्त करने के लिए बहुत ही शुभ मानी जाती है। तो भाई, जो लोग इस तरह के संस्कारों से जुड़े हुए हैं वो जानते हैं कि आज के दिन इस दिन का कितना महत्व है। फिलहाल एक और प्यारा से गीत आप तक, और वक्त हो चुका है 9:51, 3 सेकंड।

दोस्तों आज है शुक्रवार, एक और खास चीज होती है आज के दिन। मुझे पता है कि आपको याद रहता है, लेकिन फिर भी मैं याद दिला दूं कि आज शाम को 5:10 पर वक्त रहता है पानी पर लिखी कहानी का। और आज की जो कहानी है उसका नाम है प्यारा बंधन। तो ये कहानी जरूर सुनिएगा। स्वर और आलेख कुसुमलता का, परिकल्पना निर्देशन और प्रस्तुति रश्मि कुकरेती की। जरूर सुनिएगा पानी पर लिखी कहानी शाम 5:10 पर प्यारा बंधन। और अब जो वक्त है वो मुझे ज्यादा बातें करने की इजाजत नहीं दे रहा है। गीत सुनाते हुए जाऊंगी, आप बेफिक्र रहिए। लेकिन इस गीत के बाद आप सुनेंगे हिंदी अंग्रेजी में समाचार, उसके बाद विश्व दर्पण, वर्ल्ड न्यूज, और फिर 10:30 मैं वापस मिलूंगी लेकर दिल का मेल बॉक्स। तो दिल के मेल बॉक्स में अपने पसंदीदा गीत लिखकर भेजना मत भूलिएगा। फिलहाल ये गीत आपके लिए और म्यूजिकल दिल लगी के सफर में इतना ही। मैं आपकी दोस्त आशा रेखा क्रिस्टल वॉइस लेती हूँ इस सफर से अभी के लिए विदा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 392 हो गई है। नेपाल में 389 और तिब्बत में 3 व्यक्तियों की मौत की खबर है। सीमा के दोनों तरफ 1468 व्यक्ति लापता हैं। नेपाल के अधिकारियों ने 910 व्यक्तियों के लापता होने की जानकारी दी है। तिब्बत के अधिकारियों ने बताया कि 558 व्यक्ति अभी भी लापता हैं। बचावकर्मी नदी के किनारों और अलग अलग पड़ी बस्तियों में जिंदा लोगों की तलाश कर रहे हैं और शवों को निकाल रहे हैं। अभी क्षेत्र में खतरा टला नहीं है। भोटे कोशी नदी प्रणाली के स्रोत के पास नई झील बन गई है। इसके टूटने से पानी के एक और तेज बहाव के आने की आशंका बन गई है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि बाढ़ प्रभावित इलाकों में फंसे भारतीयों की स्थिति और सलामती का पता लगाने के लिए तत्काल प्रयास किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह से बातचीत की और उन्हें भारत की ओर से पूरी मानवीय सहायता का आश्वासन दिया। इस बीच भारत ने नेपाल में बाढ़ के कारण फंसे भारतीय नागरिकों का पता लगाने और उन्हें सुरक्षित निकालने के प्रयास तेज कर दिए हैं। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि भारत ने नेपाल को बचाव और राहत अभियानों में सहायता के लिए 47 टन से अधिक राहत सामग्री भेजी है।
1: दो जहाज पे हम लोगों ने सहायता नेपाल को पहुंचाया है। पहला जहाज यहाँ से 10 टन करीबन रिलीफ मटेरियल लेके काठमांडू पहुंचा था, जिसमें कि कंबल, सोलर लैंप, दवाइयां, हाइजीन किट्स और टेंट वगैरह इस प्रकार की चीजें हैं। दूसरा जहाज इसमें 37.5 टन की सप्लाई, जिसमें कि 28.5 टन रिलीफ आइटम्स और 8 टन दवाइयां और 1 टन खाने पीने की सामग्री और जो भी मानवीय सहायता हो सकता है वो भी हम प्रदान करेंगे।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज से 6 दिन की अमेरिका यात्रा पर हैं। अपनी इस यात्रा के दौरान वे शिकागो, एशविले और न्यूयॉर्क जाएंगी। वे शिकागो में प्रमुख निवेशकों के साथ एक गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगी और निजी क्षेत्र के अग्रणी सीईओ, अध्यक्षों और वरिष्ठ प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगी। इन बैठकों में भारत में निवेश के अवसर, आर्थिक दृष्टिकोण और भारत और अमरीका के बीच व्यापार और निवेश साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा होगी। श्रीमती सीतारामन शिकागो विश्वविद्यालय के पोल्सकी सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन का दौरा करेंगी। वित्त मंत्री अपनी यात्रा के दौरान शिकागो में भारतीय समुदाय के सदस्यों से भी बातचीत करेंगी। श्रीलंका के नौसेना कमांडर वाइस एडमिरल डेमियन फर्नांडो भारत के आधिकारिक दौरे पर हैं। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इस दौरे का उद्देश्य द्विपक्षीय समुद्री सहयोग को और मजबूत करने के साथ साथ भारत और श्रीलंका के बीच नौसैनिक संबंधों को बढ़ाना है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। ये देश में वित्तीय समावेशन के परिदृश्य को बदलने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। इस योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में आज ही के दिन की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन की यात्रा पर कल उज्बेकिस्तान जाएंगे। श्री मोदी उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोसेफ के निमंत्रण पर

0: ताशकंद का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने विश्व संस्कृत दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि संस्कृत भाषा की शाश्वत समृद्धि को चिन्हित करने के लिए श्रावण पूर्णिमा को विश्व संस्कृत दिवस मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि संस्कृत भारत के ज्ञान, विचार और रचनात्मकता का निरंतर वाहक रही है और इसका सकारात्मक प्रभाव आज भी कई क्षेत्रों में देखा जा सकता है। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने रक्षाबंधन के मौके पर देशवासियों को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधा कृष्णन ने कामना की है कि खुशियों का ये त्यौहार प्यार, स्नेह और एकजुटता के बंधन को मजबूत करे और सभी को दया, सद्भाव और आपसी सम्मान के मूल्यों को बनाए रखने के लिए प्रेरित करे। उन्होंने सभी के लिए खुशी, शांति और समृद्धि की भी कामना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर देशवासियों को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने उम्मीद जताई कि रक्षाबंधन का त्यौहार सभी के जीवन में खुशहाली, समृद्धि और सफलता लेकर आए। राजस्व सूचना निदेशालय ने असम और मिजोरम में दो तलाशी अभियानों में 76 किलोग्राम ड्रग्स संबंधी दवाएं जब्त की हैं। वित्त मंत्रालय ने बताया कि नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस अधिनियम 1985 के प्रावधानों के तहत दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। मौसम विभाग ने उड़ीसा और बिहार में आंधी तूफान के साथ मूसलाधार वर्षा और बिजली कड़कने की आशंका तथा ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और झारखंड में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इस दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पुद्दुचेरी, कराईकल और उत्तराखंड में भी तेज वर्षा हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashwani, the news read by Nishit Kumar. The death toll in devastating Nepal-Tibet flash floods has risen to 392, while 1,468 people remained missing on both sides of the border. Nepal authorities reported 910 people missing, while officials in Tibet said another 558 people remain unaccounted for, taking the total number of missing people on the two sides of the border to 1,468. Nepalese security personnel have evacuated more than 800 people from affected districts. The catastrophe has triggered a major rescue effort by India, with External Affairs Ministry saying 290 Indian nationals in Nepal remain uncontactable. New Delhi is making urgent efforts to ascertain their whereabouts and coordinate the rescue with the missing Indians, including hydropower workers and tourist groups from different states. External Affairs Ministry has also established a 24-hour control room to assist with tracing and evacuation efforts. India has so far rescued 84 nationals. This includes 63 workers from the Trishuli 1 runoff river hydroelectric project and 21 people from Tamil Nadu. Prime Minister Narendra Modi also spoke to Nepal Prime Minister Balendra Shah and assured him of India's full humanitarian assistance. The Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana has completed 12 years today, marking a significant milestone in transforming the country's financial inclusion landscape. The scheme was launched by Prime Minister Narendra Modi on this day in 2014. Under the scheme, more than 59 crore accounts have been opened so far, with total deposits amounting to 317,000 crore rupees. Rakshabandhan, the festival of special bond between brothers and sisters, is being celebrated today across the country.

0: Modi said that World Sanskrit Day is celebrated on Shravan Purnima to mark the timeless richness of the Sanskrit language. Prime Minister Narendra Modi will visit Uzbekistan tomorrow. He will be on a two-day visit to the Central Asian country. Prime Minister will visit Tashkent at the invitation of President of Uzbekistan, Shavkat Mirziyoyev. During the visit, Prime Minister will hold delegation-level talks with President Mirziyoyev to further strengthen the strategic partnership between the two countries. The India Meteorological Department has issued an orange color warning for heavy to very heavy rainfall along with thunderstorms and lightning over Odisha and Bihar today. The IMD has forecast heavy rainfall over Chhattisgarh, East Madhya Pradesh, East Uttar Pradesh and Jharkhand during the day. Indian Grandmaster R. Pragyananda created history becoming the first Indian to win the Grand Chess Tour after staging a stunning comeback to defeat defending champion Fabiano Caruana 15-13 in the final at St. Louis in US last night. In squash, India's Vellavan Senthilkumar stormed into the final of the PSA Budapest Open after a thrilling 3-2 victory over compatriot Veer Chotrani in the semi-finals last night. Vellavan will now face world number 55 Balázs Farkas of Hungary in the final tonight. U.S. President Donald Trump has signed an executive order directing that Lake Ontario be renamed Lake America amid rising trade tensions between the U.S. and Canada. And with that, we end this news bulletin.
1: नमस्कार आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं फरहत नाज। नेपाल में विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 392 हुई, 1468 लोग अब भी लापता। भारत ने नेपाल में फंसे अपने नागरिकों को निकालने के प्रयास तेज किए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज से अमेरिका की 6 दिन की यात्रा पर। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लेक ओंटारियो का नाम बदलकर लेक अमेरिका किया और भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंद ने इतिहास रचा, ग्रैंड शतरंज टूर जीतने वाले पहले भारतीय बने। अब समाचार विस्तार से। नेपाल तिब्बत में आई विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 392 हो गई है। नेपाल में 389 और तिब्बत में 3 व्यक्तियों की मौत हुई। सीमा के दोनों तरफ 1468 व्यक्ति लापता हैं।
2: नेपाल के अधिकारियों ने 910 व्यक्तियों के लापता होने की जानकारी दी है। तिब्बत के अधिकारियों ने बताया कि 558 व्यक्तियों के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है। बचाव कर्मी लोगों की तलाश कर रहे हैं। अभी क्षेत्र में संकट टला नहीं है। भोटो कोशी नदी स्रोत के पास कई झील बन गई हैं। डर यह है कि इनके टूटने से पानी का एक तेज बहाव आ सकता है, इससे आपदा और गंभीर हो सकती है। नेपाल के सुरक्षा कर्मियों ने बाढ़ प्रभावित जिलों से 800 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। इधर भारत बड़े पैमाने पर बचाव अभियान शुरू कर दिया है। विदेश मंत्रालय का कहना है कि नेपाल में 290 भारतीयों से संपर्क नहीं हो पा रहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि बाढ़ प्रभावित इलाकों में फंसे भारतीयों की स्थिति का पता लगाने के लिए तत्काल प्रयास किए जा रहे हैं। अब तक भारत ने 84 नागरिकों को सुरक्षित निकाल लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री वालेंद्र शाह के साथ बातचीत की और उन्हें भारत की ओर से पूरी मानवीय सहायता का आश्वासन दिया। विश्व दर्पण के लिए श्रीराम शर्मा।
1: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि भारत ने नेपाल में बचाव और राहत अभियानों में सहायता के लिए 47 टन से अधिक राहत सामग्री भेजी है।
3: 2 जहाज पे हम लोगों ने सहायता नेपाल को पहुंचाया है। पहला जहाज यहाँ से 10 टन करीबन रिलीफ मटेरियल लेके काठमांडू पहुंचा था, जिसमें कि कंबल, सोलर लैंप, दवाइयां, हाइजीन किट्स और टेंट वगैरह इस प्रकार की चीजें हैं। दूसरा जहाज इसमें 37.5 टन की सप्लाई, जिसमें कि 28.5 टन रिलीफ आइटम्स और 8 टन दवाइयां और 1 टन खाने पीने की सामग्री और जो भी मानवीय सहायता हो सकता है वो भी हम प्रदान करेंगे।
1: विदेश मंत्रालय ने बाढ़ के मद्देनजर लोगों की सहायता के लिए नई दिल्ली में 24 घंटे कार्यरत नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है। नियंत्रण कक्ष से 9111230887 और 9111230887819 पर संपर्क कर सकते हैं। काठमांडू में भारतीय दूतावास ने सहायता के लिए भी नंबर जारी किए हैं। नंबर है 9779851316807 और 9779813261।

0: एक साथ। चीन के जल संसाधन मंत्रालय के अनुसार नेपाल में छोचेन खोला और पोरेपू स्यांगपो नदियों के संगम के पास बनी झील के टूटने का खतरा बढ़ गया है। झील में अगले दो दिन में 30 लाख घन मीटर अतिरिक्त पानी पहुंच सकता है। श्रीलंका ने कहा है कि वो नेपाल को 10 लाख अमरीकी डॉलर की आर्थिक मदद देगा। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके ने कहा है कि जरूरत की इस घड़ी में श्रीलंका नेपाल के लोगों के साथ मजबूती से खड़ा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज से 6 दिन की अमरीका यात्रा पर हैं। अपनी इस यात्रा के दौरान वे शिकागो, एशविले और न्यूयॉर्क जाएंगी। एक रिपोर्ट।
1: वित्त मंत्री शिकागो में प्रमुख निवेशकों के साथ एक गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगी और निजी क्षेत्र के अग्रणी सीईओ, अध्यक्षों और वरिष्ठ प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगी। इन बैठकों में भारत में निवेश के अवसर, आर्थिक दृष्टिकोण और भारत और अमेरिका के बीच व्यापार और निवेश साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा होगी। श्रीमती सीतारामन शिकागो विश्वविद्यालय के पोलस्की सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन का दौरा करेंगी। वित्त मंत्री अपनी यात्रा के दौरान शिकागो में भारत समुदाय के सदस्यों से भी बातचीत करेंगी। इससे पहले वित्त मंत्री और कनाडा के वित्त तथा राष्ट्रीय राजस्व मंत्री फ्रांसवा फिलिप शैम्पेन के बीच कनाडा के टोरंटो में आर्थिक और वित्तीय वार्ता संपन्न हुई। दोनों पक्षों ने संयुक्त बयान में कहा कि ये बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के बीच इस वर्ष मार्च में नई दिल्ली में हुई बैठक में द्विपक्षीय आर्थिक और वित्तीय सहयोग को मजबूत करने के लिए किए गए वादे को आगे बढ़ाती है। दोनों देशों ने इस वर्ष के अंत तक भारत कनाडा व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर बातचीत पूरी करने की अपनी साझा प्रतिबद्धता को दोहराया। मंत्रियों ने वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 70 बिलियन कनाडाई डॉलर तक बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता को भी दोहराया। भारत ने जल्द से जल्द द्विपक्षीय निवेश संधि पर बातचीत शुरू करने की अपनी तत्परता व्यक्त की। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: श्रीलंका के नौसेना कमांडर वाइस एडमिरल डेमियन फर्नांडो भारत के आधिकारिक दौरे पर हैं। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इस दौरे का उद्देश्य द्विपक्षीय समुद्री सहयोग को और मजबूत करने के साथ साथ भारत और श्रीलंका के बीच नौसेना संबंधों को आगे बढ़ाना है। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन की यात्रा पर कल उज्बेकिस्तान जाएंगे। श्री मोदी उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के निमंत्रण पर ताशकंद का दौरा करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उज्बेकिस्तान की चौथी यात्रा होगी। इससे पहले प्रधानमंत्री 2015, 2016 और 2022 में इस मध्य एशियाई देश का दौरा कर चुके हैं। उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव भी 2018 और 2019 में भारत आ चुके हैं। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन केंद्र में मध्य एशियाई अध्ययन के प्रोफेसर राजन कुमार ने आकाशवाणी से खास बातचीत में कहा कि बार बार की गई ये यात्राएं ही दर्शाती हैं कि उज्बेकिस्तान भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है।
3: भारत को अगर यूरेशिया में कोऑपरेशन बढ़ाना है तो वैसे में मुझे लगता है कि सेंट्रल एशिया के देश काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं और सेंट्रल एशिया के देश जो हैं उसमें उज्बेकिस्तान बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि उसकी मिलिट्री सबसे ज्यादा पावरफुल है।
2: इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव व्यापार और निवेश, रक्षा, डिजिटल कनेक्टिविटी, ऊर्जा, शिक्षा और जन सहयोग संबंधी क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा करेंगे और आगे की कार्य योजना तैयार करेंगे। दोनों नेता विकसित भारत 2047 और उज्बेकिस्तान 2030 के साझा विकास लक्ष्यों को आगे बढ़ाने पर भी अपने विचार साझा करेंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद, उज्बेकिस्तान।
0: अमेरिका की लेक ओंटारियो का नाम बदलकर लेक अमेरिका कर दिया गया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा के साथ बढ़ते व्यापारिक तनाव के मद्देनजर यह निर्णय लिया। अमेरिका के गृह सचिव और भौगोलिक नामकरण बोर्ड को आधिकारिक मानचित्रों और नामकरण सूचना प्रणाली को अद्यतन करने के लिए 30 दिन का समय दिया गया है। श्री ट्रंप ने कहा कि यह झील अमेरिका के लिए एक महत्वपूर्ण आर्थिक और रणनीतिक संसाधन है जो जहाजरानी, व्यापार, कृषि, ऊर्जा और राष्ट्रीय रक्षा जैसे क्षेत्रों में सहायक है। इस बीच कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने झील के स्वदेशी मूल का हवाला देते हुए नाम बदलने का विरोध किया। उन्होंने कहा कि कनाडा इसे लेक ओंटारियो ही कहता रहेगा और ये नाम अतीत में भी इस्तेमाल किया गया है, आज भी इस्तेमाल किया जा रहा है और भविष्य में भी किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व संस्कृत दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि संस्कृत भाषा की शाश्वत समृद्धि को चिन्हित करने के लिए श्रावण पूर्णिमा को विश्व

संस्कृत दिवस मनाया जाता है। प्रधानमंत्री ने भारत और विश्व भर में उन सभी लोगों की सराहना की जो संस्कृत सीख रहे हैं और इस अनमोल खजाने को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने के लिए काम कर रही हैं। भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंद ग्रैंड शतरंज टूर जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। उन्होंने कल रात अमेरिका के सेंट लुइस में फाइनल में मौजूदा चैंपियन फैबियानो कारुआनो को 15-13 से हराकर शानदार जीत दर्ज की। प्रज्ञानंद ने $200,000 का पहला पुरस्कार जीतकर अगले साल के ग्रैंड शतरंज टूर में अपनी जगह भी पक्की कर ली है। भारतीय महिला हॉकी टीम ने कल जर्मनी को 3-1 से हराकर FIH विश्व कप में 5वां स्थान हासिल किया। इस प्रदर्शन से अगले महीने जापान में होने वाले एशियाई खेलों से पहले टीम का आत्मविश्वास चरम पर है। भारत के वेलवन सेंथिल कुमार कल रात स्क्वैश सेमीफाइनल में भारत के ही वीर चोटरानी को हराकर PSA बुडापेस्ट स्क्वैश ओपन के फाइनल में पहुंच गए हैं। फाइनल में आज रात वेलवन का मुकाबला हंगरी के खिलाड़ी बालास फारकस से होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नेपाल में विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 392 हुई। 1,468 लोग अभी भी लापता। भारत ने नेपाल में फंसे अपने नागरिकों को निकालने के प्रयास तेज किए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज से अमेरिका की 6 दिन की यात्रा पर। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लेक ओंटारियो का नाम बदलकर लेक अमेरिका किया। और खेलों में भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंद ने इतिहास रचा। ग्रैंड शतरंज टूर जीतने वाले पहले भारतीय बने। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त आरशी रेखा क्रिस्टल वॉइस। 10:31:12 हो चुके हैं और ये है दिल का मेल बॉक्स। जी हाँ, दिल का मेल बॉक्स जिसमें आप हमें अपनी फरमाइशें भेज सकते हैं। भेजनी कहाँ है बता दूँ, व्हाट्सएप नंबर है जिस पर आप हमें व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हैं 9868867 पर, यानी 9868867 पर, या फिर हमें ईमेल कर सकते हैं FM Gold AIR Delhi@gmail.com पर। जी हाँ, FM Gold AIR Delhi@gmail.com पर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। और हाँ, बहुत सारे हमारे श्रोता, आज हमें टाइम हुआ नहीं कि उससे पहले ही हमारे पास बहुत सारे मैसेजेस और ईमेल्स आने शुरू हो जाते हैं और हमें राखी के गीतों की बहुत सारी फरमाइशें आ रही हैं। लेकिन दोस्त, आपको याद दिला दूं कि अभी एक घंटे जो मैंने पूरे आपसे बात की थी 9 बजे से 10 बजे के बीच में, तो उसमें मैंने आपको बहुत सारे राखी के गीत सुनाए हैं। तो रिक्वेस्ट है कि वो वाले गीत आप रिक्वेस्ट ना भेजें, क्योंकि ऑलरेडी मैं आपको सुना चुकी हूँ। कुछ नई फरमाइशें हमें ज़रूर भेजें, राखी की ना हो तो भी चलेगा, भाई बहन की कोई और गीत ऐसा जो मेरे पास हो और मैं आपको सुनवा सकूँ। कोशिश तो रहेगी कि अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे गीत आप तक पहुँचाऊँ। फिलहाल आपके मैसेजेस को शामिल कर लेती हूँ। शिवाजी चौक कटनी से हमें लिखा है अनिल ताम्रकर, अमर, दिलीप, संजय सोनी, अरुण कनौजिया, पवन यादव, संजीव वर्मा, विपिन गुप्ता, रजक और लालू, सोना, मुना, हनी, यश ने, और उनके मम्मी पापा भी हमें सुन रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी जो गीत आपने लिखा है वो मैं सुनवा चुकी हूँ। सतप्रकाश सनोठिया, रोहिणी दिल्ली से हमें लिख रहे हैं मैसेज, और हमें लिखा है जिला खरगोन सनावत मध्य प्रदेश से मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज, आयुषी, रमेश चंद्र वर्मा, शेख मूसा भाईजान, भाई राजकुमार बुड़ाना ने, और सुदामा नगर खंडवा से लक्ष्मी नंदिनी, रोहित, ऋतु और मुकेश जगताप ने हमें ये मैसेज भेजा है। और हमारे पास अफरोज शेख का मैसेज भी पहुंचा है, कहां से, नेपुआ से, नेमुआ से, जी हाँ नेमुआ से हमें ये मैसेज आया है। और होली चौक उत्तम नगर दिल्ली से जयराम खोरवाल, सचिन खोरवाल, अमन, दीपांशु ने हमें मैसेज भेजा। साथ ही हमारे पास मुंबई से अनु बरजात्या, शमसुल खान, अनुराज बेनारा का मैसेज हमें मिला। और ग्राम नागर कोहरा से, राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से हमें बबलू साहू, जामुन देवी साहू, राजू, लला, पूजा, प्रांजल, समीक्षा, बेबी आराध्या साहू का मैसेज। शोभापुर गांव से हमें बाईपास मेरठ से दिग्दर्शन और कविता गौड़ का मैसेज। धर्मेंद्र शेपा, कपिल,

ईशान पूजा भोपालगढ़ राजस्थान से हमें लिख रहे हैं, और पटेल नगर मलोट से डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप आरजू गुड्डू का मैसेज, और राजेंद्र सिंह ओबरॉय पिंटू दीवाना पंखा रोड जनकपुरी से हमें लिख रहे हैं, कृष्णा पार्क से सुखविंदर सिंह जोड़ा सिटी दीवाना का मैसेज, मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक, बलवीर सिंह का मैसेज, ग्राम दुलापुर उत्तर प्रदेश मुरादाबाद से हमें लिख रहे हैं, रणधीर गुप्ता, बबीता रानी, सत्यम सुंदरम गुप्ता हमें लिख रहे हैं, ओखला संगम विहार दिल्ली से, राजनगर गांधी चौक मधुबनी से अरुण गुप्ता, मौसम और शिवम गुप्ता का मैसेज, और चमन पार्क दिल्ली से डॉक्टर सोनम, डॉक्टर सना और डॉक्टर अदीबा का मैसेज, उमरखेड़ से हमें भाई रजाक खान, जावेद खान और शबाना बेगम ने लिखा है, और इसके अलावा सलीम अख्तर का हमें मैसेज पहुंचा है, रेशमा बेगम के साथ लिख रहे हैं, आज हमारी भतीजी हुदा का बर्थडे है तो बहुत बहुत जन्मदिन की शुभकामनाएं आपकी भतीजी को और आप सभी को, परिवार के सदस्यों को। अजीत कसाना, माया देवी, ऋतिक और आदित्य कसाना तदावली जिला मुरादाबाद से हमें लिख रहे हैं, साथ ही हमारे पास सुरेश चौरसिया, सरोज चौरसिया, सुबोध सलोनी, संजू लल्ला, पवन गौड़ का मैसेज मिला है फरुखाबाद साहबगंज से, और योगेश नायक कासगंजी से हमें लिख रहे हैं। इसके अलावा होली नगर उत्तम नगर से हमें ये फिर से मैसेज पहुंच गया है, थांदला जिला झाबुआ एमपी से विठल शोभा, यश, श्वेता, आशी, दिव्या, आरती, दिव्या और कल्याणी का मैसेज, सुदर्शन शाह, पल्लवी, प्रखर, कुशल, नीति, सुरभि, अश्विन, मंगलाबेन, राजेंद्र जी, पद्मा टॉकीज नेपा नगर से, कमल बालूजा, मधु सागर का हमें, मजनू गाटीला से और सतना एमपी से उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक और माही मलिक का मैसेज। और इससे पहले कि बाकी के मैसेजेस को मैं शामिल करूं, एक गीत आप तक पहुंचाती हूं, और इस गीत की फरमाइश हमें भेजी है ऑरेंज सिटी नागपुर से विठल जादव, अनुसुया जादव, पवन राज जादव ने, छत्रपति संभाजी नगर से मंगेश इंगले, संध्या इंगले, स्वराज विराज ने, और भी बहुत सारे श्रोताओं ने इस गीत की फरमाइश भेजी है, नाम तो मैं उनके शामिल कर चुकी हूँ। अफरोज शेख ने नेमुआ से हमें इसकी फरमाइश भी भेजी है और बाकियों के नाम भी मैं शामिल कर चुकी हूँ। तो ये रहा आपकी पसंद का गीत

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।
1: और अब जल्दी से कुछ और नाम शामिल कर लूं। गगनदीप थांदी, तृप्ता कुमारी थांदी, डॉक्टर प्रियंका, डॉक्टर प्रशांत, डॉक्टर प्रियम, बेबी वामिका, वाणी थांदी का हमें नवाशहर पंजाब से मैसेज पहुंचा है और हमें लिखा है पीएस नाहवकर, निर्मला नाहवकर, विशाल नाहवकर ने नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से, मलकापुर महाराष्ट्र से, नारायण इंगले, सोपान दाड़े, आशीष मोहरकर का मैसेज। इसके अलावा हमारे पास मैसेज पहुंचा है संतोष भाकरे, सुनैना, सुकन्या और सविता भाकरे का, शाहजी नगर तिगलूर जिला नांदेड़ से, सैयद मसरूर, शाइना हसन, अक्सा अदीब, नाजिया, आफिया, इब्राहिम सद्दाम का, कुमार हिड़ा से, सहारनपुर से मैसेज, और उग्रसेन यादव, शकुंतला यादव, गरिमा का हमें मैसेज पहुंचा है नई दिल्ली से। और इसके अलावा दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा का ग्राम पीपर लोड सरगांव छत्तीसगढ़ से मैसेज पहुंचा। सलीम अख्तर, रेशमा बेगम का अलीगढ़ से मैसेज, संजय पार्थ, वृंदा कुमरावत का हमें बरवानी MP से मैसेज पहुंचा है। और इसके अलावा हमारे पास ऑरेंज सिटी नागपुर से हमें विठल जाधव, अनुसुया जाधव, पवन राज जाधव, छत्रपति संभाजी से मंगेश इंगले, संध्या इंगले और स्वराज विराज का मैसेज पहुंचा है। और इसके अलावा हमारे पास ये मैसेज बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से ममता मार्कंडे, संजय मार्कंडे और बेबी किट्टू का मैसेज, जतिन थवारिया का मैसेज जरोरा MP से, नबी हसन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, नवेद हसन, सुहेल हसन, अनम यशफ, रसीद वारसी, किदवई नगर मारहरा दरवाजा एटा से लिख रहे हैं, और किदवई नगर सिंह सिद्धपुरा टाउन से हमें जुबेर अली खान, सबीहा अंजुमन खान का मैसेज पहुंचा है। साथ ही हमारे पास संदीप मक्कड़, ज्योति मक्कड़, मन्नत भरत का, कमल साहनी, पिंगावाला चौक, गोराया जालंधर से हमें लिख रहे हैं, और ये मैसेज हमें पंकज मोहड़ का अमरावती महाराष्ट्र से मिला है। और इसके अलावा हमारे पास नरेश चिक, राम चिक, रेखा चिक और रचना, पूजा, ज्योति, करण का मैसेज संगम विहार हनुमान मंदिर से पहुंचा। राजकुमारी, अतर सिंह, अनुज, अंजलि, डॉक्टर पारुला द्विक समयपुर दिल्ली से हमें लिख रहे हैं।

ये मैसेज हमें प्रदीप सलूजा, संगीता सलूजा का जनकपुरी से मिला है और अर्फ ये है हमारे पास परवेज आलम, ग्राम बलमी सिरसिया, जिला पूर्वी चंपारण, मोतिहारी बिहार से हमें लिख रहे हैं। भाई पूरा पता ही लिख दिया आपने, अब ऐसा है कि मैं लंच करने आपके घर आ रही हूँ, ठीक है। परवेज आलम का हमें ये मैसेज पहुँचा है और इसके अलावा हमारे पास संदीप मक्कड़ का फिर से मैसेज, नाना, और ये जो दोबारा मैसेज भेज रहे हैं, कोशिश करिए कि दोबारा ना भेजें, मैं एक ही बार में आपका मैसेज शामिल करने की कोशिश करूंगी। वाइट फील्ड बेंगलुरु से भारत भूषण, अंजु श्रीवास्तव, देवेंदु भूषण, संस्कृति और पौरुष का मैसेज, शेरवानी स्कूल कंचनवाड़ा से आफ्ताब अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ, अनवर मास्टर, लुबना अंसारी, आलिया अंसारी का मैसेज, और हमें लिखा है टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह ने, डॉक्टर अमनदीप के साथ मोहाली चंडीगढ़ से, शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज, बिट्टा बजाज का हमें कालका से मैसेज पहुंचा, अमरजीत गवानकर, राही, श्रीमती सरिता गवानकर, प्रिंस एकांश और अर्जुन गवानकर डुगू का मैसेज मेहर नगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से हमें मिला है, कैथल हरियाणा से जयवीर सिंह ठाकुर ने अनिल शर्मा के साथ लिखा, हीरामणि वर्मा, पारसमणि, पुष्पेंद्रमणि, नोखीलाल वर्मा का दतरंगी भटापारा से, और हमारे पास ये मैसेज, बहुत सारे मैसेज हैं जो रिपीट हैं, सौराष्ट्र राजकोट से हमें जूली जगदीश गुजराती, प्राची और प्रवीण पुजारी का मैसेज मिला, चंडीगढ़ सिटी से सतीश अनेजा, बिमला अनेजा का मैसेज, अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक, मधु नायक, पहाड़गंज, मुल्तानी ढांडा से हमें लिख रहे हैं, और हमारे पास कीर्तनपुरी गोस्वामी का मैसेज पहुंचा है, लक्ष्मी देवी के साथ, जोगीशपुरी, ट्विंकल, डिंपल, मीनाक्षी, निशा तुलसी और दिशा गोस्वामी के साथ, नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से। इससे पहले कि बाकी के मैसेज को शामिल करूं, एक गीत शामिल करते हैं और इस गीत की फरमाइश हमें भेजी है जिला खरगोन सनावत मध्य प्रदेश से, मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना, अनुज, आयुषी, रमेश चंद्र, शेख मूसा, भाईजान, भाई राजकुमार बुड़ाना ने, और सुदामा नगर खंडवा से हमें लक्ष्मी नंदिनी, रोहित रितु, मुकेश जगताप ने। तो ये रहा आपकी पसंद का गीत बेईमान फिल्म से।

और अब हमारे पास बहुत सारे मैसेजेस और पहुंचे हैं। धानोरा बिटाली, तहसील नांदुरा, जिला बुरडाना, महाराष्ट्र से, मुझे लग रहा है ये मैंने पढ़ लिया है। भगवान पाटिल, मंगेश पाटिल, सचिन पाटिल का मैसेज, मोहम्मद यासीन अंजान, साइमा नवाज, हसन नवाज, बाबू अहद, मिफ्रा नवाज, बेबी चाहत सादिया का मैसेज, गिरडी झारखंड से, रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजू रंजना, वंदना प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा का हमीरपुर बुंदेलखंड से, और तेलंगाना भुवनगिर से हमें मोहम्मद बुरहानुद्दीन ने मैसेज पहुंचाया है। और साथ ही बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी और सुमित रमेश साहू का मैसेज, डुमराव बिहार से डॉक्टर डब्ल्यू अंसारी, डॉक्टर सोनम अदीबा, दानिश अंसारी का, गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभ्यानंद आर्य और परमानंद आर्य का, सारिमपुर बक्सर से राजेश डी अंसारी, आसमा खातून अंसारी और इकबाल मस्तान का मैसेज, गुरमीत सिंह मीता साउथ एक्सटेंशन से लिख रहे हैं। और साथ ही हमारे पास मनोहरलाल गांधी विजयनगर चाणक्य किशोर गाजियाबाद से मैसेज लिख रहे हैं, गांव फ्रांसी हिसार से राजकुमार दूधी, प्रमोद कुमार, पुष्पेंद्र कुमार दूधी का मैसेज, और हमें लिखा है सतप्रकाश सनोथिया ने रोहिणी दिल्ली से मैसेज, एक बहुत ही खूबसूरत सी कविता लिखकर भेजी है लेकिन समय की कमी है इसलिए पढ़ नहीं पा रही हूँ, मजबूर हूँ। इसके अलावा गांधी चौक बाड़मेर से बबलेश पवार, डैनी पवार, मोनीश पवार का, खलीफों की बावड़ी से खुदा बख्श खलीफा, रामदेवरा से दिनेश चौहान, डागरी से बाबूराम जयपाल का मैसेज, और इसके अलावा सुनीता पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, कव्या मल्होत्रा, सुचा सिंह पाठक का अनारकली, बाजार जगराओं पंजाब से, जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी डिकेस्ट्रो, पर्ल विलिस का मैसेज, जनकपुरी सहारनपुर से, और हमें लिखा है शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ से, मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी स्वर्णकार और आर्यन, कृष्णा और पीहू का मैसेज। और इसके अलावा हमारे पास दिलावर खान, हसीना बानो, अलीजा नायब और लड्डू का रघुवीर नगर से, गंजटुंडवाड़ा से शमसुल कमराही, शाहीन फातिमा, अदनान खान, अनु खान का मैसेज, मेहर अरोड़ा, ममता अरोड़ा, कीर्ति अरोड़ा, भूमिका अरोड़ा का मैसेज, पदमपुरा जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से, और श्रीपाल अकेला का, शीशपाल अकेला का गाजियाबाद से मैसेज, मोहम्मद यासीन हाशमी, नाजमा बेगम, मोहम्मद तौसीफ, कलीम का गंजटुंडवाड़ा से मैसेज, और ये मैसेज हमें पहुंचाया है महेश अग्रवाल ने बहादुरगढ़ हरियाणा से, अनवर साबरी, शनु साबरी, मुदस्सिर, मुजक्किर, जरीफ का सहारनपुर दाऊदसराय से, निसार सलमानी, नौशाद सलमानी का हमें, बेबी आलिया आयान बाबू के साथ तेलीवाड़ा

अरे मिस्टर जिजौर पहुंचे हैं अली का डब्बाली से। बसंत सिंह चंद, राजकुमार, कुलदीप गांधी का मैसेज हमें मिला है। मुलापुर दाखा से राजेश जैन, बिट्टू जैन, संजीव जैन, गोटना जैन का मैसेज, और मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतनमाला ओम कुमार का मैसेज, ऋषभ सुमन गुडविल और मुकेश का मैसेज हमें मिला है बिहार से, और हमारे पास तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन, चैतन्य मस्कीन और पूरे परिवार का मैसेज गोवर्धन कॉलोनी शाद्रा से पहुंचा है, और साथ हमारे पास ये मैसेज मिला है छिंदवाड़ा बेड़ी से नाना जी लाम से, मीना लाम से, तेजस जय का हर्षिता लाम से के साथ। और मैसेजेस तो बहुत सारे हैं, लेकिन दोस्त अब वक्त नहीं बचा है कि मैं किसी और मैसेज को शामिल कर पाऊं, तो फिलहाल वक्त है समाचारों का। हिंदी अंग्रेजी समाचार के बाद मैं फिर से मिलूंगी लेकर तस्वीर। जुड़े रहेगा आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 392 हो गई है। नेपाल में 389 और तिब्बत में 3 व्यक्तियों की मौत की खबर है। सीमा के दोनों तरफ 1468 व्यक्ति लापता हैं। नेपाल के अधिकारियों ने 910 व्यक्तियों के लापता होने की जानकारी दी है। भोटे कोशी नदी प्रणाली के स्रोत के पास नई झील बन गई है। इसके टूटने से पानी के एक और तेज बहाव के आने की आशंका बन गई है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि बाढ़ प्रभावित इलाकों में फंसे भारतीयों की स्थिति और सलामती का पता लगाने के लिए तत्काल प्रयास किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह से बात की और उन्हें भारत की ओर से सहायता का आश्वासन दिया। इस बीच नेपाल में बाढ़ के बाद बिहार में बाढ़ का खतरा फिलहाल टल गया है। बुधवार रात को गंडक नदी के जलस्तर में वृद्धि के बाद कल से इसमें गिरावट आ रही है। एहतियात के तौर पर गंडक नदी से प्रभावित सभी 8 जिलों को अलर्ट पर रखा गया है। जल संसाधन विभाग की टीम में तटबंधों की 24 घंटे निगरानी कर रही हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज से 6 दिन की अमरीका यात्रा पर हैं। यात्रा के दौरान वे शिकागो, एशविल और न्यूयॉर्क जाएंगी। वे शिकागो में प्रमुख निवेशकों के साथ गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगी और निजी क्षेत्र की प्रमुख कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों, अध्यक्षों और वरिष्ठ प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगी। इन बैठकों में भारत में निवेश के अवसर, आर्थिक दृष्टिकोण और भारत तथा अमरीका के बीच व्यापार और निवेश साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री जनधन योजना के आज 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। ये देश में वित्तीय समावेशन के परिदृश्य को बदलने की दिशा में प्रमुख पड़ाव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जनधन योजना के अभूतपूर्व परिवर्तनकारी परिणामों का प्रभाव बेमिसाल है। योजना के तहत अब तक 59 करोड़ से अधिक खाते खोले जा चुके हैं। इन खातों में कुल जमा राशि 3,17,000 करोड़ रुपये है। इस योजना का शुभारम्भ प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 में आज ही के दिन किया था। ये विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन पहल है। ये योजना सभी भारतीयों के लिए बैंकिंग पहुंच को सुलभ बना रही है। प्रधानमंत्री मोदी 2 दिन की यात्रा पर कल उज्बेकिस्तान जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के निमंत्रण पर ताशकंद का दौरा करेंगे। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति मिर्जियोयेव के साथ शिष्टमंडल स्तर की बातचीत करेंगे। रक्षाबंधन का त्यौहार आज देश भर में मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रक्षाबंधन के मौके पर देशवासियों को बधाई दी है। अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि रक्षाबंधन की पवित्र परंपरा प्राचीन काल से ही भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिक परंपराओं का अभिन्न अंग रही है। श्री राधाकृष्णन ने सभी के लिए खुशी, शांति और समृद्धि की कामना की। श्री मोदी ने कामना की कि रक्षाबंधन का त्यौहार सभी के जीवन में खुशहाली, समृद्धि और सफलता लेकर आए। प्रधानमंत्री मोदी ने विश्व संस्कृत दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि संस्कृत भाषा की शाश्वत समृद्धि को चिन्हित करने के लिए श्रावण पूर्णिमा को विश्व संस्कृत दिवस मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि संस्कृत भारत के ज्ञान, विचार और रचनात्मकता का निरंतर वाहक रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज समाज सुधारक और दूरदर्शी नेता महात्मा अयंकाली की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री सिंह ने कहा कि महात्मा अयंकाली ने अपना जीवन शोषितों के अधिकारों और सम्मान के लिए संघर्ष करने में समर्पित कर दिया। मौसम विभाग ने ओडिशा और बिहार में आंधी के साथ मूसलाधार वर्षा और बिजली कड़कने की आशंका तथा ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और झारखंड में भी तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। भारत के वेलविन सेंथिल कुमार कल रात स्क्वाश सेमीफाइनल में भारत के ही वीर चोटरानी को हराकर पीएसए बुडापेस्ट स्क्वाश ओपन के फाइनल में पहुंच गए। फाइनल में आज रात वेलविन का मुकाबला हंगरी के खिलाड़ी बाला अस्फारकस से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय निशित कुमार। The death toll in devastating Nepal-Tibet flash floods has risen to 392, while 1,468 people remain missing on both sides of the border. Nepalese authorities reported 910 people missing, while officials in Tibet said 558 people remain unaccounted for. Nepalese security personnel have evacuated more than 800 people from affected districts. The catastrophe has triggered a major rescue effort by India, with External Affairs Ministry saying 290 internationals in Nepal remain uncontactable. The missing Indians include hydropower workers and tourist groups from different states. External Affairs Ministry has also established a 24-hour control room to assist with tracing and evacuation efforts. India has so far rescued 84 nationals. The flood threat in Bihar has for now receded following severe floods in Nepal. After a rise in the Gandak River's water flow on Wednesday night, the discharge has been declining since yesterday. As a precautionary measure, all 8 Gandak-affected districts have been kept on alert. Water Resources Department teams are maintaining round-the-clock surveillance and patrolling of embankments. The Northern Range of the Delhi Police Special Cell has busted an alleged ISI-backed Pakistan-based espionage network and arrested a Delhi-based couple accused of working for Pakistani intelligence operatives through social media since 2024. According to Delhi Police, the couple allegedly provided logistical support to Pakistan-based handlers, including procuring Indian SIM cards and sending them to Pakistan via Dubai. The Directorate of Revenue Intelligence, DRI, in 2 intelligence-led operations in Assam and Mizoram, has seized 76 kilograms methamphetamine tablets. The Ministry of Finance said that 2 persons have been arrested under the provisions of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act 1985. Methamphetamine is a potent synthetic psychostimulant with a high potential for abuse and dependence. Raksha Bandhan, the festival of special bond between brothers and sisters, is being celebrated across the country. President Draupadi Murmu, Vice President C.P. Radhakrishnan, Prime Minister Narendra Modi and Lok Sabha Speaker Om Birla has extended greetings to the people on the occasion. Vice President and Prime Minister have extended greetings on World Sanskrit Day. In a social media post, Mr. Radhakrishnan said that Sanskrit is the timeless language of India's knowledge, philosophy and civilization and has shaped the country's rich cultural heritage and intellectual traditions. In a social media post, Mr. Modi said, World Sanskrit Day is celebrated on Shravan Purnima to mark the timeless richness of the Sanskrit language. The Prime Minister appreciated all those in India and across the world who are learning and teaching Sanskrit and working to pass on its timeless treasure to future generations. In Jammu and Kashmir, the annual Shri Amarnath Ji Yatra will officially culminate today with the traditional Chhadi Mubarak ceremony at the Holy Cave Shrine. It will proceed to the Holy Cave today, where special prayers and traditional rituals will be performed. The annual Buddha Amarnath Yatra will also culminate today. During the 12-day long Yatra held in the month of Shravan, pilgrims travel to Baba Buddha Amarnath Temple in Poonch district of Jammu and Kashmir to offer prayers. Defence Minister Rajnath Singh paid tribute to social reformer and visionary leader Mahatma Ayanakali on his birth anniversary today. In a social media post, Mr. Singh said that his life and legacy continues to inspire the collective pursuit of a more equitable and harmonious society founded on equality, dignity and social justice. The Pradhan Mantri Janadhan Yojana has completed 12 years today, marking

जी हाँ, ये है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर 11:11 सेकंड। देखिए कितना खूबसूरत वक्त है। तस्वीर का ही सफर, मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त आरजे रेखा क्रिस्टल वॉइस। और आज तस्वीर में कहाँ ले चल रही हूँ मैं आपको, भाई रक्षाबंधन का मौका है तो ऐसे में चले वृंदावन की सैर। क्योंकि भाई भगवान कृष्ण को द्रौपदी ने तो भाई माना ही था, लेकिन आज के समय में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ऐसी बहुत सी बहनें हैं जो भगवान कृष्ण को अपना भाई जैसे मानते हैं। और आज का दिन, रक्षाबंधन का दिन, वृंदावन में बहुत ख़ास तौर पर मनाया जाता है। तो चलिए आज वृंदावन की सैर करते हैं और वृंदावन के बारे में आपको बहुत सी ऐसी चीज़ें बताऊँगी जो शायद आपको ना पता हो, या पता भी हो तो कभी आपने हमारे साथ साझा ना की हो। तो चलिए बता दूं कि वृंदावन मथुरा से 12 किलोमीटर की दूरी पर है, उत्तर पश्चिम में यमुना तट पर स्थित है और ये कृष्ण की लीला स्थली है। हरिवंश पुराण, श्रीमद् भगवत गीता, विष्णु पुराण आदि में वृंदावन की महिमा का वर्णन किया गया है। श्रीमद् भगवत के अनुसार गोकुल के से कंस के अत्याचार से बचने के लिए नंद जी कुटुंबियों और अपने सजातियों के साथ वृंदावन निवास के लिए आए थे। विष्णु पुराण में इसी प्रसंग का उल्लेख है। विष्णु पुराण में वृंदावन में कृष्ण की लीलाओं का वर्णन भी है। वैसे कई लोग ये भी कहते हैं कि जो प्राचीन वृंदावन था वो इस वृंदावन से थोड़ा अलग था, लेकिन आज जहाँ पर लोग जाते हैं पूरी श्रद्धा के साथ इस वृंदावन को ही भगवान कृष्ण की जन्म जो लीला स्थली है वो माना जाता है। और अगर मैं बात करूँ गोवर्धन धारण की प्रसिद्ध कथा की, स्थली वृंदावन पारसौली के करीब मानी जाती है। अष्टछाप कवि सूरदास इसी ग्राम में दीर्घ काल तक रहे थे ऐसा भी कहा जाता है। वृंदावन का नाम आते ही मन पुलकित होता है। श्री कृष्ण की मनभावन मूर्ति आंखों के सामने आ जाती है। उनकी दिव्य अलौकिक लीलाओं की कल्पनाओं से ही मन भक्ति और श्रद्धा से नतमस्तक हो जाता है। वृंदावन को ब्रज का हृदय कहते हैं, जहां राधा कृष्ण ने अपनी दिव्य लीलाएं की हैं। इस पावन भूमि को पृथ्वी का अति उत्तम और परम गुप्त भाग कहा गया है। पद्म पुराण में इसे भगवान का साक्षात शरीर, पूर्ण ब्रह्म से संपर्क का स्थान और सुख का आश्रय बताया गया है। इसी वजह से ही अनादिकाल से भक्तों की श्रद्धा का केंद्र भी है। चैतन्य महाप्रभु, स्वामी हरिदास, हित हरिवंश महाप्रभु, वल्लभाचार्य आदि अनेक गोस्वामी भक्तों ने इसके वैभव को सजाने और संसार को अनश्वर संपत्ति के रूप में प्रस्तुत करने में जीवन लगाया है। किसी संत ने कहा

है, वृंदावन सो वन नहीं, नंदगांव सो गांव, बंशी वट सो वट नहीं, कृष्ण नाम सो नाम। तो भाई ये इतनी खूबसूरत स्थली है कि अगर आप जीवन में एक बार यहाँ चले जाएं, तो कहा जाता है कि हजारों सालों के, हजारों जन्मों के पुण्य उदय होते हैं तब ऐसा मौका मिलता है। तो वृंदावन अगर आप कभी नहीं गए हैं तो इस सफर के बाद आप जरूर यहाँ जाने का मन बनाएंगे। तो चलिए जुड़े रहिएगा तस्वीर के इस खूबसूरत सफर में, गीतों के साथ साथ आज सैर करेंगे वृंदावन की। रहूंगी मैं आपके साथ आपकी दोस्त आरजी रेखा, क्रिस्टल वॉइस 100.1 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर।

0: इसी गीत के साथ वापस जुड़ेंगे, लेकिन फिलहाल आपको एक प्रायोजित कार्यक्रम की तरफ ले चलती हूँ। आइए सुनते हैं मेरा वजूद, ये प्रायोजित कार्यक्रम ये रहा आपके लिए।
1: हेलो दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त आनंद,
2: और मैं अदिति।
1: हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रोग्राम मेरा वजूद, बताओ और कमाओ। मेरा वजूद के इस प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप घर बैठे ऑनलाइन रियल एस्टेट के रेफरल प्लेटफॉर्म से जुड़कर अपना वजूद बना सकते हैं,
2: क्योंकि मेरा वजूद का लक्ष्य ही हर व्यक्ति को रियल एस्टेट के लाभ से जोड़ना है। अब आप चाहे हाउसवाइफ हो, स्टूडेंट हो या रिटायर्ड पर्सन, जब ऑनलाइन का है जमाना तो ऑनलाइन से ही कमाना सही है ना?

0: दोस्तों, आज रक्षाबंधन है। भाई और बहन के पवित्र प्रेम, अटूट विश्वास और बहन को उम्र भर उसकी रक्षा करने के वचन का एक महान त्यौहार। इस दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं, उनकी लंबी उम्र और सुख शांति की कामना करती हैं।
1: और भाई उन्हें जीवन भर दुनिया की हर बुरी बला से सुरक्षित रखने का वचन देते हैं। ये सिर्फ एक धागा नहीं, बल्कि भाई बहन के बीच के स्नेह की वो अनमोल डोर है जिसकी पूरी दुनिया में कोई मिसाल नहीं है। बचपन की नोकझोंक, खट्टा मीठा प्यार और एक दूसरे का साथ इस रिश्ते की असली शान है।
0: आज के बदलते हुए समय में अक्सर बहुत सारे भाई बहन बिजनेस या जॉब के सिलसिले में अपनी बहन से दूर रहते हैं और कभी कभी रक्षाबंधन के इस पवित्र त्योहार पर भी उनसे मिलने उनके पास नहीं आ पाते। उनकी मजबूरी हो सकती है,
1: मगर उस बहन के दिल को कोई ये बात कैसे समझाए। आखिर बहनों के लिए तो ये त्योहार साल में सिर्फ एक दिन के लिए ही आता है, जिस दिन उसे ये एहसास और अधिकार होता है कि वो अपने भाई से रूठ भी सकती है, और अगर कोई भाई रूठा हो तो वो उसे मना भी सकती है।

0: कौन जानता था कि मेरे मल्टीटास्किंग स्किल्स एक दिन मुझे कमाई भी कराएंगे।
1: न मेरे कोई दुकान, न मेरा कोई ऑफिस, मेरा मोबाइल है मेरी दुकान,
2: मेरा वजूद। बताओ और कमाओ। आज ही रजिस्टर करें www.meravajood.com पर।
3: किसी शायर ने लिखा है कि गुलशन से कोई फूल मयसर न जब हुआ, तितली ने राखी बांध दी कांटे की नोक पर। यानी राखी वो पवित्र बंधन है जो दुश्मन को भी अपना मुहाफिज बना लेती है। ऐसी ही एक ऐतिहासिक और मशहूर लोक कथा है चित्तौड़ की रानी कर्णावती और मुगल सम्राट हुमायूं की है। कहते हैं कि जब गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया
2: तो विधवा रानी कर्णावती ने अपने राज्य की रक्षा के लिए हुमायूं को राखी बेचकर मदद मांगी थी। हुमायूं ने उस राखी का सम्मान किया और वे अपनी सेना लेकर रानी की मदद के लिए निकल पड़े। हालांकि दूर होने के कारण जब तक हुमायूं चित्तौड़ पहुंचे,
3: तब तक रानी कर्णावती अन्य महिलाओं के साथ जौहर कर चुकी थी। लेकिन हुमायूं ने राखी के उस बंधन की लाज रखी और बाद में बहादुर शाह को हराकर रानी के बेटे को वहां का सिंहासन सौंपा। ऐसा ही एक खूबसूरत वाक्या फिल्म बरसात की शूटिंग के समय का है। शूटिंग के पहले दिन एक्ट्रेस निम्मी बहुत डरी और घबराई हुई थी।
2: उनके डर को दूर करने और सहज महसूस कराने के लिए राज कपूर ने उनसे अपने हाथों पर राखी बंधवाई। इस तरह उन्होंने निम्मी का भाई बनकर उनको हौसला और विश्वास दिया।
3: बहुत चंचल, बहुत खुशनुमा सी होती है बहन, नाजुक सा दिल रखती है, मासूम सी होती है बहन।

0: सारा दिन बस नाश्ता, लंच और डिनर। सबकी जरूरतें पूरी करते करते जाने कब मेरा खुद का वजूद कहीं खो गया। क्या मेरी पहचान बस यहीं तक है?
1: मेरा वजूद बताओ और कमाओ। आज ही रजिस्टर करें www.meravajood.com पर।
2: भाई बहन का रिश्ता इस दुनिया में सबसे अनमोल, पवित्र और खट्टा मीठा होता है। इसमें बिना किसी स्वार्थ के अगाध प्रेम, बचपन की यादें और एक दूसरे के लिए जीवन भर की सुरक्षा की भावना जुड़ी होती है। बहनें जीवन के बगीचे में फूल की तरह होती हैं।
1: और बहन भाई की लड़ाई में तब तक मजा नहीं आता जब तक बहन अपने उधार दिए हुए पैसे वापस ना मांग ले। एक बहन के लिए उसका भाई हमेशा जरूरी होता है, फिर चाहे वो सगा हो या मुंह बोला। एक बार अगर किसी लड़के ने किसी लड़की को बहन बोल दिया
2: या किसी लड़की ने किसी लड़के को भाई बोल दिया, तो फिर प्यार और विश्वास का ये बंधन बहुत ही प्यारा और अटूट हो जाता है। कहते हैं कि जिक्र से नहीं बल्कि फिक्र से पता चलता है कि इस दुनिया में अपना कौन है।
1: और यकीन मानो, वो बहन ही होती है जिसको अपने भाई की फिक्र दुनिया में सबसे ज्यादा होती है। रुलाना हर किसी को आता है, मना भी हर कोई लेता है, मगर जो रुला कर मना ले वो भाई, और जो रुला कर खुद रो पड़े वो बहन।
2: कितनी अनमोल होती हैं बहनें, इस बात पर एक शायर ने क्या खूब कहा है, किसी के जख्म पर चाहत से पट्टी कौन बांधेगा, अगर बहनें नहीं होंगी तो राखी कौन बांधेगा।

0: हम गृहिणियों को मोहल्ले की हर खबर रहती है ना, कौन सा घर बिका, कौन सा खाली है, बस यही जानकारी मैंने मेरा वजूद पर डालना शुरू की। अब मैं बिजनेस भी संभालती हूँ।
1: मेरा वजूद, बताओ और कमाओ। आज ही रजिस्टर करें www.meravajood.com पर।
2: दोस्तों, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मेरा वजूद,
1: बताओ और कमाओ। इसे आप अपना हाई अर्निंग साइड इनकम का इनोवेशन भी कह सकते हैं। बस आपको जेन्युइन प्रॉपर्टी परचेजर सेलर की डिटेल मेरा वजूद एग्जीक्यूटिव के साथ शेयर करनी है।
2: ना कहीं आना और ना ही कहीं जाना, बाकी की सेल परचेज देखेगी हमारी कंपनी और फिर आपका फायदा ही फायदा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें मेरा वजूद 9355-387-21 पर।
3: इतनी परेशान क्यों लग रही हो?
4: मन करता है कि तुम्हारा हाथ बटाऊं, पर मुझे नौकरी देगा कौन?
5: आज तुम जैसी हजारों महिलाएं घर बैठे अपनी नॉलेज और नेटवर्क से लाखों कमा रही हैं।
4: कैसे?
1: मेरा वजूद, बताओ और कमाओ। आज ही रजिस्टर करें डब्ल्यू

0: www.meravajood.com पर। दोस्तों, प्रोग्राम आपने सुना, आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं, क्योंकि मेरा वजूद का लक्ष्य ही हर व्यक्ति को रियल स्टेट के लाभ से जोड़ना है।
1: जीवन में हम उसी दिन बड़े हो जाते हैं जब अपने आंसू खुद ही पोंछकर हम फिर से खड़े हो जाते हैं।
0: हमारा पता है मेरा वजूद बता

0: www.odoo.com पर।
1: एक बार फिर आज ही के दिन शुक्रवार सुबह 11:10 FM गोल्ड पर
0: हम आपके साथ होंगे लेकर प्रोग्राम मेरा वजूद।
1: बताओ और कमाओ, तब तक के लिए आनंद
0: और अदिति को इजाजत दीजिए। नमस्कार।

दोस्तों, जब बात हो रक्षाबंधन की तो वृंदावन और यहाँ की बहुत सी और आसपास की जगहें जैसे कि यहाँ मथुरा या फिर बरसाना या ब्रज, ये सभी याद आ जाते हैं। वृंदावन में रक्षाबंधन का पर्व बहुत अनोखा और भावुक परंपराओं के साथ मनाया जाता है। वृंदावन में भक्त ठाकुर बांके बिहारी को अपना भाई मानकर राखी भेजते हैं और पत्र के जरिए अपनी भावनाएं प्रकट करते हैं। माना जाता है कि सच्चे मन से बांके बिहारी को भाई मानने वालों की वो हमेशा रक्षा करते हैं। वृंदावन के आश्रमों में रहने वाली निराश्रित विधवा माताएं जो हैं, वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना भाई मानती हैं और कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जिनके सहयोग से ये माताएं हर साल प्रधानमंत्री के लिए विशेष और हस्तनिर्मित राखियां तैयार करती हैं। वृंदावन और ब्रज क्षेत्र में देश के सैनिकों के लिए राष्ट्र रक्षा सूत्र यात्रा के तहत लाखों राखियां भेजी जाती हैं ताकि सीमाओं पर देश की रक्षा करने वाले जवानों तक बहनों का प्यार पहुंच सके। रक्षाबंधन और भैयादूज के पावन अवसर पर श्रद्धालु यमुना नदी में स्नान करके अपने भाई बहन के रिश्ते की लंबी उम्र की मंगल कामना भी यहां पर करते हैं। और बात रक्षाबंधन की हो और मथुरा का नाम याद ना आए, ये तो हो नहीं सकता।

यहाँ पर भी इस त्योहार को बहुत ही धूमधाम के साथ, श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। भाई बहन के प्रेम के प्रतीक रक्षाबंधन पर्व का गहरा नाता ब्रज से भी है। वृंदावन में ठाकुर बांके बिहारी को बहनें अपना भाई मानकर, जैसा कि मैंने कहा, राखी भेजती हैं, उन्हें पत्राचार करती हैं, तो यमुना नदी में भैया दूज पर भाई बहन स्नान करते हैं और अपने इस रिश्ते की लंबी उम्र की कामना करते हैं। महाभारत काल की कथा के अनुसार जब शिशुपाल वध के समय भगवान कृष्ण की उंगली कट गई थी, तब द्रौपदी ने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर उनकी उंगली पर बांधा था। ठाकुर बांके बिहारी के प्रति भक्तों की अटूट आस्था है। जिस भक्त ने अपने आराध्य को जिस रूप में देखा, उसी रूप में भगवान भी उन्हें अपना आशीर्वाद देते हैं। देश भर से हजारों युवतियां और महिलाएं ऐसी हैं जिनके या तो भाई नहीं है या फिर उन्होंने भाई होने के बावजूद भगवान कृष्ण यानी ठाकुर बांके बिहारी के दर्शन एक भाई के रूप में किए हैं। वो महिलाएं और युवतियां जो हैं, वो हर साल ठाकुर जी के लिए रक्षाबंधन पर कलाई पर बांधने के लिए पत्र और राखी भेजती हैं। रक्षाबंधन के दिन ठाकुर जी को इन राखियों को धारण कराया जाता है और भक्तों को विशेष प्रसाद भी वितरित किया जाता है। और यहाँ जो पत्र यहाँ पर पहुँचते हैं, वो सब ठाकुर जी को अर्पित किए जाते हैं और उन्हें पढ़कर सुनाए जाते हैं, ऐसा भी कहा जाता है। मथुरा के विश्राम घाट पर दुनिया का एकमात्र भाई बहन का मंदिर स्थित है, जिसे श्री यमुना धर्मराज मंदिर कहा जाता है। सूर्य पुत्र यमराज और उनकी बहन यमुना के मधुर संबंध की कथा रक्षाबंधन और भाई दूज दोनों से जुड़ी है। एक पौराणिक कथा के अनुसार यमुना ने अपने भाई यमराज का स्वागत सत्कार कर उनकी कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा था। भाई बहन हाथ पकड़कर यमुना में डुबकी लगाते हैं, ऐसा करने से यम की फांस से उन्हें मुक्ति मिलती है। इसी धार्मिक मान्यता के साथ विश्राम घाट पर भाई बहन स्नान करते हैं और धर्मराज यमुना जी के मंदिर के दर्शन करते हैं। धर्मराज यमुना जी का मंदिर केवल मथुरा के विश्राम घाट पर ही है। यमराज ने यमुना को वरदान दिया था कि रक्षाबंधन और भाई दूज के दिन जो भाई बहन एक दूसरे का हाथ पकड़कर मथुरा के विश्राम घाट पर यमुना नदी में स्नान करेंगे और इस मंदिर में दर्शन करेंगे, उन्हें यमलोक के कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी। और द्रौपदी की कथा तो मैंने आपको बता ही दी कि उनका और भगवान कृष्ण का भाई बहन का नाता कैसे जुड़ा। यहाँ पर और भी कई मान्यताएं हैं, जैसा कि मैंने कहा कि मंदिर में आने वाली राखियों के साथ बहनों के पत्र भी आते हैं और उन्हें ठाकुर जी को पढ़कर सुनाया जाता है और ठाकुर जी के समक्ष उनकी जो भी परेशानियां हैं, जो भी दिक्कतें हैं, वो रखी जाती हैं और फिर ठाकुर जी उन्हें इससे मुक्ति दिलाने का काम करते हैं। सारी राखियों को रक्षाबंधन के दिन ठाकुर जी को अर्पित किया जाता है। और भी बहुत कुछ है जानने के लिए वृंदावन के बारे में, लेकिन इस गीत के बाद आपको और भी कुछ बताऊंगी।

0: एनसीआरईपीई से गुजरने वाले सभी श्रद्धालुओं एवं यात्रियों को पावन श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। कृपया प्रशासन द्वारा निर्धारित मार्ग का ही उपयोग करें और यातायात नियमों का पालन करें। किसी भी आपातकालीन सहायता के लिए तुरंत डायल करें 1033। आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।
2: दोस्तों आज हम सैर पर निकले हैं वृंदावन की, और वृंदावन में देखने के लिए बहुत सारी ऐसी खूबसूरत जगह हैं जहां पर आपको जरूर जाना चाहिए, जैसे कि कुछ मंदिर हैं यहां पर, गंगा यमुना के घाट हैं यहां पर, और बहुत से ऐसे खूबसूरत वन हैं जिन्हें आपको जरूर देखना चाहिए। अगर मैं बात करूँ यहाँ के बिरला मंदिर की, तो बिरला मंदिर जिसे यहाँ श्री रंगनाथ जी मंदिर भी कहते हैं, यूपी के वृंदावन में मौजूद एक फेमस हिंदू मंदिर है ये, और ये मंदिर भगवान कृष्ण को समर्पित है जिन्हें यहाँ भगवान रंगनाथ के रूप में पूजा जाता है। मंदिर का निर्माण फेमस बिरला परिवार ने करवाया था जो कि समाज सेवी कार्य

और धार्मिक योगदान के लिए भी जाने जाते हैं। बांके बिहारी मंदिर वृंदावन का ये भी बहुत मशहूर है, इसे भी आपको जरूर देखना चाहिए। कई पूजनीय मंदिरों में इसे शामिल किया जाता है और ये मंदिर भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है, जिन्हें यहाँ बांके बिहारी के नाम से पूजा जाता है। मंदिर वृंदावन के बीच स्थित है और देश विदेश से लाखों भक्त यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। और वृंदावन में अगर आप जाएं तो ये मंदिर जरूर दर्शनीय है, इसके बिना तो वृंदावन की जो यात्रा है वो अधूरी ही मानी जाती है। इस्कॉन मंदिर भी है यहाँ पर, श्री कृष्ण बलराम मंदिर भी इसे आप कह सकते हैं, जिसे कृष्ण बलराम मंदिर की, जिसमें कृष्ण और बलराम की पूजा की जाती है। वृंदावन का एक फेमस आध्यात्मिक केंद्र है ये, और ये मंदिर इस्कॉन द्वारा बनाया गया है। 1975 में इसे बनाया गया था, भक्ति वेदांत स्वामी मार्ग पर ये मौजूद है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण और उनके भाई बलराम की मूर्तियाँ स्थापित हैं और जब आप यहाँ जाएंगे तो सचमुच ये मंदिर आपको भक्ति में सराबोर कर देगा। वर्तमान वृंदावन में प्राचीनतम मंदिर गोविंद देव जी का मंदिर राजा मानसिंह द्वारा बनवाया हुआ है, ये भी आपको जरूर देखना चाहिए। ये मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल में बना था। मूलतः ये मंदिर 7 मंजिलों का बना हुआ है। ऊपर के 2 खंड औरंगजेब ने तुड़वा दिए थे। कहा जाता है कि इस मंदिर के सर्वोच्च शिखर पर जलने वाले दीप मथुरा से दिखाई पड़ते थे। यहाँ का विशालतम मंदिर रंगजी के नाम से प्रसिद्ध है। ये दक्षिणात्य शैली में बना हुआ है और इसके गोपुर बड़े विशाल हैं, भव्य हैं। ये मंदिर दक्षिण भारत के श्रीरंग मंदिर की तरह ही लगता है। वृंदावन के बाकी दर्शनीय स्थलों की बात करें तो निधि वन, कालियादेह, सेवा कुंज, ऐसी बहुत सी प्लेसेस हैं जो आपको जरूर देखनी चाहिए। बांके बिहारी जी का जो मंदिर है वो भी काफ़ी प्राचीन है, बहुत ही प्राचीन है, इसे आपको जरूर देखना चाहिए। और अगर मैं बात करूं वृंदावन की प्राकृतिक सौंदर्य की तो ये भी देखने लायक है। यमुना नदी इसके तीनों ओर से घेरे हुए है इस जगह को। यहाँ के सघन कुंजों की भांति भांति के फूलों से शोभित लता और ऊंचे ऊंचे घने वृक्ष मन को सचमुच उल्लास से भर देते हैं। बसंत ऋतु के आगमन पर यहाँ की छटा और सावन भादो की हरियाली आंखों को जो शीतलता देती है वो राधा कृष्ण के प्रतिबिंबों के दर्शनों का ही एक प्रतिफल जैसे लगती है और वृंदावन के कण कण को रसमय बना देती हैं। भक्ति और प्रेम का साम्राज्य यहाँ पर रहता है। जब भी आप जाएंगे आपको ऐसा कभी नहीं लगेगा कि यहाँ पर, इस धरती पर आपको कृष्ण के दर्शन नहीं हुए। हमेशा यहाँ पर हर कण कण में कृष्ण का वास महसूस होता है। और अगर मैं बात करूँ यहाँ के घाटों की तो यहाँ बहुत से घाट हैं जहाँ पर आपको ज़रूर एक बार जाना चाहिए। वराह घाट, कालिया दमन घाट, सूर्य घाट, युगल घाट, बिहार घाट, श्री आंधेर घाट, इमली घाट, ऐसे श्रृंगार घाट, अनेकों घाट हैं जहां पर आपको एक बार जरूर जाना चाहिए। आपको इस यात्रा का अगर पूरा आनंद लेना है तो पहुंचना कैसे है वृंदावन, ये भी आपको बता दूं कि वृंदावन पहुंचना काफ़ी आसान है। अगर आप दिल्ली से ड्राइव कर रहे हैं तो यमुना एक्सप्रेसवे से आसानी से आप यहां पहुंच सकते हैं। बसें भी ISBT से चलती रहती हैं। अगर आप ट्रेन से जाना चाहें तो मथुरा जंक्शन भी कनेक्टेड है, फिर यहाँ से आप वृंदावन के लिए रिक्शा ले सकते हैं। खाना क्या है आपको वृंदावन में, ये भी बताऊंगी, कहाँ ठहर सकते हैं ये भी, लेकिन फिलहाल ये खूबसूरत गीत आपके लिए।

दोस्तों, मथुरा वृंदावन का खाना लोगों को खूब पसंद आता है। यहाँ की कचौड़ी, बेडमी पूरी, समोसे, लस्सी और पेड़े खूब फेमस हैं। लेकिन एक सब्जी भी यहाँ काफी शौक से खाई जाती है, जिसे गड़ की सब्जी कहा जाता है। शादी, भंडारे या दूसरे फंक्शंस में पूरी के साथ गड़ की सब्जी जो होती है, वो खाना लोगों को खूब पसंद आता है। और इस सब्जी का स्वाद इतना गजब का होता है कि पनीर भी इसके आगे आपको फीका लगेगा। इसे आप मिक्स वेज भी कह सकते हैं, जिसे लुटपुटे स्टाइल में बनाया जाता है। और अगर मैं बात करूं इस जगह पर ठहरने की, तो भाई स्वाद चखने के बाद या इससे पहले आपको कहीं ठहरने का बंदोबस्त तो ज़रूर करना होगा। वृंदावन में ठहरने के लिए बजट, आश्रम, लग्जरी, तीनों तरह के बेहतरीन विकल्प मौजूद हैं। धर्मशालाएं भी हैं, आप जहां चाहें वहां रुक सकते हैं अपने बजट के अकॉर्डिंग। आप अपनी सुविधा और ज़रूरत के अनुसार इन जगहों का चुनाव कर सकते हैं। वृंदावन में आप ख़ास तौर से ख़रीदने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर लड्डू गोपाल और देवी देवताओं की मूर्तियाँ आपको मिल जाएंगी। पीतल, संगमरमर या लकड़ी की सुंदर कलात्मक मूर्तियाँ आपको यहाँ पर मिलेंगी। और पोशाक और श्रृंगार का सामान आपको यहाँ पर मिल जाता है। तुलसी माला, जप माला, गोटा पट्टी की बनाई हुई, जरी की बनाई हुई लड्डू गोपाल के लिए पोशाकें, हाथ से कढ़ाई किए हुए सुंदर वस्त्र, ऊनी वस्त्र, बहुत कुछ आपको मिलेगा।

0: का पीतल के दिए, अगरबत्ती स्टैंड, घंटी और ऐसी कई दैनिक पूजा की सामग्रियां आपको यहाँ मिल जाएंगी। और यहाँ के पेड़े तो आप बिल्कुल लाना मत भूलिएगा। खाने की चीजों में प्रसिद्ध और स्वादिष्ट ब्रज के पेड़े, जिन्हें आप उपहार के तौर पर या प्रसाद के तौर पर भी अपने घर ला सकते हैं, तो ये भी आपको जरूर लाना चाहिए। कुछ बाजारों की बात करूं तो जैसे लोई बाजार है, यहाँ पर पोशाक, मूर्तियां, पारंपरिक वस्त्र यहाँ मिलते हैं। इस्कॉन मंदिर के पास भी बाजार है, वहां से भी आप धार्मिक पुस्तकें, सीडीज जो चलाने के लिए गाने अगर आप चाहें वो खरीद सकते हैं, आध्यात्मिक वस्तुएं खरीद सकते हैं। बांके बिहारी मंदिर के सामने की गलियों में भी श्रृंगार का सामान, आसन और छोटी सजावटी आइटम आपको बहुत आसानी से मिल जाती है। और वृंदावन की संस्कृति पूरी तरह से भगवान कृष्ण और राधा रानी की भक्ति, प्रेम और उनकी लीलाओं के इर्द गिर्द घूमती है। तो यहां पर आपको इस जगह को एक बार अगर आप गए तो कभी भूलने का मौका नहीं मिलेगा। यहाँ की भाषा की बात करूं तो ब्रज भाषा यहाँ बोली जाती है और अपनी मिठास और प्रेम भाव के लिए जानी जाती है। यहाँ के मूल निवासियों को ब्रजवासी कहा जाता है, जिनका जीवन जो है वो अत्यंत सरल, पारंपरिक और भगवान के स्मरण में लीन रहता है। यहाँ सात्विक भोजन खासतौर पर खाया जाता है, पसंद किया जाता है। दूध, दही, घी, शहद, तुलसी, पारंपरिक मिठाइयाँ, ये सभी चीज़ें यहाँ पसंद की जाती हैं। श्री कृष्ण और गोपियों के प्रेम का प्रतीक रासलीला वृंदावन की सबसे प्रसिद्ध सांस्कृतिक नाट्य कला है, जिसे यहाँ पर प्रस्तुत किया जाता है। भगवान के प्रेम में गाए जाने वाले पारंपरिक लोकगीत रसिया भी यहाँ पर घर घर में गूंजते हैं। होली के अवसर पर सिर पर जलते दीपों को रखकर किया जाने वाला चरकुला नृत्य और फूलों की साझी कला यहाँ की अनूठी पहचान है। होली, लठमार होली, फूलों की होली विश्व भर में यहाँ पर प्रसिद्ध है। जन्माष्टमी और शरद पूर्णिमा, इन पर्वों पर मंदिरों और गलियों में भव्य उत्सव होता है। वृंदावन रक्षाबंधन के लिए भी खास तौर पर जाना जाता है, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था। तो बहुत कुछ है जो वृंदावन में है देखने के लिए। एक बार जब भी आपको अपने जीवन में मौका मिले इसे जरूर देखने चाहिए, क्योंकि ये सचमुच आपको एकदम भक्ति में तल्लीन कर देगा, भक्ति में डुबो देगा। फिलहाल एक और प्यारा सा गीत आपके लिए।
1: ओ कन्हैया

दोस्तों इसी गीत के साथ आज के सफर से लेती हूँ मैं आपकी दोस्त आरजे रेखा क्रिस्टल वॉइस विदा, लेकिन फिर किसी रोज किसी और सफर में मुलाकात जरूर होगी। जुड़े रहेगा आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ। इस गीत के बाद आप सुनेंगे हिंदी अंग्रेजी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 392 हो गई है। नेपाल में 389 और तिब्बत में 3 व्यक्तियों की मौत की खबर है। सीमा के दोनों तरफ 1468 व्यक्ति लापता है। भोटे कोशी नदी प्रणाली के स्रोत के पास नई झील बन गई है। इसके टूटने से पानी के एक और तेज बहाव के आने की आशंका बन गई है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि बाढ़ प्रभावित इलाकों में फंसे भारतीयों की स्थिति और सलामती का पता लगाने के लिए तत्काल प्रयास किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह से बात की और उन्हें भारत की ओर से सहायता का आश्वासन दिया। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने कल अमेरिका के उप विदेश मंत्री एलिसन हुकर से टेलीफोन पर बातचीत की। इस दौरान दोनों पक्षों ने राहत और बचाव कार्यों पर चर्चा की। अमेरिका ने नेपाल में राहत और बचाव कार्यों के लिए 5 लाख अमरीकी डॉलर की सहायता की घोषणा की। श्रीलंका ने भी नेपाल को 10 लाख अमरीकी डॉलर की आर्थिक मदद देने की घोषणा की है। इस बीच नेपाल में बाढ़ के बाद बिहार में बाढ़ का खतरा फिलहाल टल गया है। राज्य के उप मुख्यमंत्री और जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बताया कि गंडक नदी के जलस्तर में कल से गिरावट आ रही है।
1: गंडक नदी के पूरे प्रवाह में अभी जल स्तर भी ऊंचा नहीं था, बल्कि सामान्य से भी थोड़ा कम था। इसलिए जो भी पानी संभावित था या जो आया, उससे बहुत ज्यादा भयावह स्थिति नहीं बनी।
0: एहतियात के तौर पर गंडक नदी से प्रभावित सभी 8 जिलों को अलर्ट पर रखा गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज से 6 दिन की अमेरिका यात्रा पर हैं। यात्रा के दौरान वे शिकागो, एशविल और न्यूयॉर्क जाएंगी। वे शिकागो में प्रमुख निवेशकों के साथ गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगी और निजी क्षेत्र की प्रमुख कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों, अध्यक्षों और वरिष्ठ प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगी। इन बैठकों में भारत में निवेश के अवसर, आर्थिक दृष्टिकोण और भारत तथा अमरीका के बीच व्यापार और निवेश साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन की यात्रा पर कल उज्बेकिस्तान जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के निमंत्रण पर ताशकंद का दौरा करेंगे। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति मिर्जियोयेव के साथ शिष्टमंडल स्तर की बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री जनधन योजना के आज 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। ये देश में वित्तीय समावेशन के परिदृश्य को बदलने की दिशा में प्रमुख पड़ाव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जनधन योजना के अभूतपूर्व परिवर्तनकारी परिणामों का प्रभाव बेमिसाल है। योजना के तहत अब तक 59 करोड़ से अधिक खाते खोले जा चुके हैं। ये योजना सभी भारतीयों के लिए बैंकिंग पहुँच को सुलभ बना रही है। दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ की उत्तरी रेंज ने ISI समर्थित पाकिस्तान के एक जासूसी नेटवर्क का पर्दाफाश कर दिल्ली के एक दंपति को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार दंपति कथित तौर पर पाकिस्तान के हैंडलर्स को सहायता प्रदान करता था। इसमें भारतीय सिम कार्ड खरीदना और उन्हें पाकिस्तान भेजना शामिल था। भारत में सिम कार्ड खरीदने के लिए दिल्ली के स्थानीय लोगों को भर्ती किया गया था। भारत में 7 स्थानों पर 24 परमाणु ऊर्जा रिएक्टर संचालित हैं, जिनकी कुल स्थापित क्षमता 8.78 गीगावाट है। परमाणु ऊर्जा विभाग के अनुसार 9 अतिरिक्त रिएक्टर निर्माणाधीन हैं। भारत के परमाणु ऊर्जा मिशन का लक्ष्य 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता प्राप्त करना है। मौसम विभाग ने ओडिशा और बिहार में आंधी के साथ मूसलाधार वर्षा और बिजली का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने छत्तीसगढ़

ஆங்கன். घर आंगन कार्यक्रम के आज की इस खास प्रस्तुति में आप सबका स्वागत है। आज मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त मंजुला। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। और अभी आप हमें सुन रहे हैं आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। साथ ही साथ आप हमें सुन सकते हैं इंद्रप्रस्थ चैनल मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्ज़ पर। और दोस्तों, जब रिश्ते विश्वास की डोर से बंधते हैं तब हर दिन एक उत्सव बन जाता है। और रिश्तों की सबसे मजबूत डोर वो होती है जिसे प्यार, विश्वास और सम्मान हर दिन थोड़ा थोड़ा मजबूत करते हैं। इसी खूबसूरत विचार के साथ आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज संस्कृत दिवस भी है और खास प्रस्तुति एक कदम बुजुर्गों की ओर भी, तो इन सब के बारे में हम और भी बातें करेंगे। लेकिन पहले आज का सवाल आपके लिए, रक्षाबंधन की कौन सी बात सबसे खास है? कोई ऐसी याद, कोई परंपरा या कोई भावना जो इस त्योहार को आपके लिए स्पेशल बनाती हो, अपने विचार हमें भेजिए इस मेल आईडी पर fmgoldga@gmail.com। आपके जवाब का बेसब्री से इंतजार रहेगा। प्यार की ये डोर, बुजुर्गों का साथ, अपनी संस्कृति का एहसास, बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए घर आंगन।

अभी हम सुन रहे थे आशा भोसले को, फिल्म थी काजल। और रिश्ते बहुत होते हैं दोस्तों, लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्हें शब्दों से नहीं, एक छोटी सी डोर से बांधा जाता है। रक्षाबंधन भी ऐसा ही खूबसूरत पर्व है जो भाई बहन के प्रेम, विश्वास और अपनापन का उत्सव है। राखी की उस नन्ही सी डोर में आखिर इतना अपनापन आता कहाँ से है? शायद बचपन की उन अनगिनत यादों से, जब भाई बहन कभी एक दूसरे के सबसे अच्छे दोस्त होते हैं तो कभी सबसे बड़े दुश्मन, कभी खिलौने के लिए लड़ाई, कभी चॉकलेट के लिए झगड़ा और अगले ही पर साथ बैठकर हंसी मजाक। लेकिन बड़े होने के साथ रिश्तों की भाषा बदल जाती है। बहन का फोन आता है, खाना खाया और भाई पूछता है घर पहुंच गई, और बिना कहे भी दोनों समझ जाते हैं कि सामने वाला ठीक है या नहीं। यही तो रक्षाबंधन का असली अर्थ है। रक्षा केवल भाई की जिम्मेदारी नहीं बल्कि एक दूसरे के सुख दुख में साथ खड़ी रहने का वादा है। आज की राखी सिर्फ ये कहने का दिन नहीं है कि भाई मेरी रक्षा करेगा, बल्कि ये कहने का दिन भी है कि हम एक दूसरे की ताकत बनेंगे। तो इस रक्षाबंधन राखी बांधते समय केवल मिठाई और उपहार ना दें, एक वादा भी दें, मुश्किल समय में साथ रहने का, दूर रहकर भी हाल पूछने का, और उम्र चाहे जितनी बढ़ जाए बचपन वाली शरारतों को दिल में जिंदा रखने का। क्योंकि राखी की डोर कलाई पर कुछ पल के लिए बंधती है, लेकिन उसका प्रेम दिल में जीवन भर रहता है। और किसी ने क्या खूब कहा है कि रिश्तों की खूबसूरती साथ रहने में नहीं, दूर रहकर भी दिल के पास रहने में है। राखी की डोर बस एक धागा नहीं, भाई बहन के अटूट विश्वास का वादा है।

अभी हम सुन रहे थे लता मंगेशकर को फिल्म छोटी बहन से। और रक्षाबंधन यानी वो दिन जब बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधकर उसके सुख सुरक्षा और लंबी उम्र की कामना करती है। लेकिन हर साल कुछ कलाइयां ऐसी भी होती हैं जो राखी के धागे का इंतजार तो करती हैं मगर ड्यूटी की जिम्मेदारियां उन्हें घर तक नहीं आने देती। कोई भाई सीमा पार देश की रक्षा कर रहा है, कोई पुलिस की वर्दी पहनकर हमारी सुरक्षा में खड़ा है, कोई डॉक्टर हॉस्पिटल में किसी अनजान की जान बचाने में जुटा है, कोई रेल की पटरियों पर यात्रियों की सुरक्षा यात्रा सुनिश्चित कर रहा है, कोई मेट्रो विमान या आपदा राहत सेवा में अपने कर्तव्य निभा रहा है। इनकी बहनों के लिए रक्षाबंधन सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि गर्व और इंतजार का संगम होता है। राखी कभी डाक से पहुंचती है, कभी तस्वीरों में बंधती है, तो कभी सिर्फ दुआओं में। लेकिन प्यार वो हर दूरी से बड़ा होता है। और कहते हैं भाई अपनी बहन की रक्षा करता है, लेकिन सच तो ये है दोस्तों कि जब कोई सैनिक सीमा पर खड़ा होता है, कोई पुलिसकर्मी रात भर जागता है, कोई डॉक्टर हॉस्पिटल में सेवा देता है, या कोई रेल या विमान सेवा का कर्मचारी अपने कर्तव्य पर डटा रहता है, तब वो सिर्फ अपनी बहन ही नहीं बल्कि पूरे देश के बहनों की सुरक्षा और मुस्कान की रक्षा कर रहे होते हैं। तो इस रक्षाबंधन पर उन सभी भाई बहनों को हमारा स्नेह, सम्मान और शुभकामनाएं। जिनके बीच दूरियां तो हैं लेकिन दिलों के रिश्ते पहले से कहीं अधिक मजबूत हैं। यदि आपके भाई सेना बल में या फिर पुलिस, चिकित्सीय सेवा, रेलवे, मेट्रो, विमानन या किसी ऐसी सेवा में है जहां ड्यूटी की वजह से वो इस रक्षाबंधन पर घर नहीं आ पा रहे हैं, तो उनके लिए अपना संदेश हमें भेजिए। और यदि आप स्वयं ऐसी सेवा में हैं तो अपनी प्यारी बहन के नाम अपना संदेश लेकर हमें भेजिए। ईमेल आईडी तो आपको पता ही होगा, fmgoldga@gmail.com। और या फिर आप रक्षाबंधन से रिलेटेड कुछ भी अच्छा सा लिखना चाहते हैं तो हमें लिखकर भेजिए। रक्षाबंधन के इस विशेष अवसर पर आपके इन अनमोल संदेशों को अपने हम प्रोग्राम में जरूर शामिल करेंगे, क्योंकि रिश्तों की असली डोर दूरी नहीं दिल से बंधी होती है।

अब ये हम सुन रहे थे लता मंगेशकर और मुकेश को फिल्म बेईमान से। और दोस्तों 28 अगस्त को मनाया जाता है संस्कृत दिवस। यह दिन हमें उस भाषा से जोड़ता है जिसे भारत की ज्ञान परंपरा की आधारशिला माना जाता है। संस्कृत एक ऐसी भाषा जिसके शब्दों में केवल अर्थ नहीं बल्कि हमारी सभ्यता की संस्कृतियां भी बसी हैं, इसलिए इसे देववाणी भी कहा जाता है। और सबसे रोचक बात कि संस्कृत का प्रभाव केवल धर्म और दर्शन तक सीमित नहीं है, संस्कृत की संरचना इतनी व्यवस्थित है कि आधुनिक समय में भी इसके व्याकरण और भाषिक संरचना पर शोध किया जाता है। तो संस्कृत दिवस इसलिए केवल संस्कृत बोलने या पढ़ने का दिन नहीं है, ये अपनी जड़ों को पहचानने का अवसर है, युवाओं को संस्कृत सीखने और बोलने के प्रति रुचि बढ़ाना भी है। तो आज के समय में जब हम नई भाषाएं सीख रहे हैं, नई तकनीक अपना रहे हैं और दुनिया से जुड़ रहे हैं, तब अपनी प्राचीन भाषाई विरासत को जानना भी उतना ही आवश्यक है, क्योंकि आधुनिक होना अपनी जड़ों को भूलना नहीं बल्कि अपनी जड़ों से शक्ति लेकर आगे बढ़ना है। और चलिए कुछ ईमेल्स भी आ गए हैं तो क्यों ना उसको पढ़ लिया जाए। सबसे पहला ईमेल है नवीन भाटिया जी का, बहुत ही अच्छी बात उन्होंने लिखी है कि मेरी जो बड़ी बहन है गीता, वो 1991 में अमरावती ट्रेनिंग के लिए गई थी, उन्हें छुट्टी नहीं मिली इसलिए वो वहां जाकर राखी बंधवा लिया। अनिल मेहता जी लिखते हैं कि भाई बहन के पवित्र रिश्ते और अटूट प्यार का प्रतीक होना ही

असली रक्षाबंधन है। और ऐना लिखती हैं, नमस्ते, मेरे लिए राखी की सबसे खास बात सिर्फ भाई की कलाई पर राखी बांधना नहीं है, बल्कि उस रिश्ते को महसूस करना है जिसमें बचपन की नोक झोंक, ढेर सारी यादें और बिना कहे एक दूसरे का साथ देने का भरोसा होता है। समय के साथ जिंदगी बदल जाती है, दूरियां बढ़ जाती हैं, लेकिन भाई बहन का रिश्ता वही मासूमियत बनाए रखता है। और

यू सो मच. और रक्षाबंधन का इंतजार रहता है, बहुत अच्छे गीत सुनने को मिलते हैं. जाति मजहब से बढ़कर रक्षाबंधन का त्यौहार है. और डॉक्टर राजेश्वर राव जी ने एक छोटी सी कहानी लिखी है कि इसके पीछे क्यों ये रक्षाबंधन मनाया जाता है. इसके पीछे बहुत सारी कहानियां हैं, लेकिन उन्होंने कहा है कि इंदिरा और साची की कहानी जो सबसे इम्पॉर्टेंट है. जब वो जो लड़ाई थी, युद्ध थी, वो हार रहे थे, तो साची ने एक सीक्रेट धागा इंद्र के कलाई पर बांधा और जो ईश्वर हैं उनकी जीत हो गई. बहुत ही अच्छे अच्छे मेल्स आए हैं और आप आगे भी अभी लिखते रहिए. हमारा ईमेल आईडी है fmgoldga@gmail.com.

अभी हम सुन रहे थे सुमन कल्याणपुर को फिल्म रेशम की डोरी। और एक और मेल है हमारे सामने। राधा पाठक जी लिखती हैं कि हमारे यहाँ सुबह सुबह दरवाजे पर सोनी सोना बनकर उन्हें खीर से पूजा जाता है, फिर जो खीर बनती है उसी से टीका होता है भाई का और राखी बांधी जाती है। तो थैंक यू सो मच फॉर द मेल। और हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, कहते हैं अनुभव की कोई कीमत नहीं होती, और इस अनमोल अनुभव का सबसे बड़ा खजाना होते हैं हमारे बुजुर्ग। उन्होंने सिर्फ जिंदगी नहीं जी बल्कि हर सुख दुख, हर उतार चढ़ाव से ऐसी सीखें जुटाई जो आने वाली पीढ़ियों का रास्ता रोशन करती है। ऐसी ही एक सीख है पैसों की समझ और संतोष का महत्व। आज की दुनिया में कमाने की रफ्तार तो बढ़ गई है, लेकिन बचाने की आदत कहीं पीछे छूटती जा रही है। नई चीजें खरीदना आसान हो गया है, मगर जरूरत और चाहत के बीच का फर्क समझना मुश्किल। ऐसे में अगर किसी से सीखनी हो आर्थिक समझ, तो एक बार अपने घर के बुजुर्गों की ओर जरूर देखिए। उन्होंने हमें सिखाया कि कमाई चाहे कम हो, लेकिन हिसाब हमेशा साफ होना चाहिए। पहले बचत, फिर जरूरत और उसके बाद ही शौक। यही छोटी सी आदत उन्हें हर मुश्किल समय में मजबूत बनाती थी। बुजुर्गों की एक और खूबी थी, वो चीजों की नहीं उनकी उपयोगिता की कद्र करते थे। कपड़े पुराने हो जाएं तो उन्हें संभाल कर पहनते थे, चीजें खराब हो तो मरम्मत करवा लेते थे, रिपेयर करवा लेते थे। उनके लिए सादगी मजबूरी नहीं समझदारी थी। और फिर आती है सबसे बड़ी दौलत, संतोष। तो याद रखिए, पैसा जीवन को सुविधाएं देता है, लेकिन संतोष जीवन को सुकून देता है, और सुकून किसी भी बैंक में नहीं मिलता। और आज जब घर के किसी बुजुर्ग के साथ आप बैठें, उनसे पैसों की नहीं उनके एक्सपीरियंस, उनके अनुभव की पूंजी जरूर मांगिए। यकीन मानिए, वो विरासत किसी भी संपत्ति से कहीं अधिक मूल्यवान होगी। उम्र ने जो खामोशी से सिखाया वो कोई किताब पढ़ा न सकी। दौलत से नहीं संतोष से जो जीना सीखा, वही सीख जिंदगी कभी भुला न सकी।

अभी हम सुन रहे थे किशोर कुमार और आशा भोंसले को फिल्म बातों बातों में। और एक और मेल है मेरे सामने, श्रीपाल गोयल जी लिखते हैं बहादुरगढ़ हरियाणा से। भाई बहन के प्रेम, विश्वास और अटूट स्नेह का ये पवित्र त्यौहार आपके जीवन में ढेरों खुशियां, समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य लाए, आपको भी। और राखी पर उन रिश्तों को भी सलाम जिन्होंने भाई का फर्ज निभाया। दोस्तों, रक्षाबंधन का नाम आते ही आंखों के सामने एक भाई एक बहन राखी का खूबसूरत रिश्ता उभर आता है। लेकिन आज हम उसके बारे में भी बात करेंगे, उन रिश्तों की जिसमें खून का रिश्ता तो नहीं था, फिर भी निभाया गया भाई का फर्ज पूरी शिद्दत से, पूरे दिल से। जिंदगी में कई बार ऐसे लोग मिल जाते हैं जो जन्म से भाई नहीं होते, लेकिन मुश्किल वक्त में सबसे पहले हमारे साथ खड़े दिखाई देते हैं। कभी बड़ी बहन अपने छोटे भाई की तरह पूरे परिवार की जिम्मेदारी उठा लेती है, कभी चचेरे, ममेरे या फुफेरे भाई सगे से भी बढ़कर साथ निभा जाते हैं, और कभी पड़ोस का कोई बेटा बचपन का दोस्त, सहकर्मी या गुरु बिना किसी स्वार्थ के हमारी सुरक्षा, सम्मान और खुशियों की चिंता करता है। रिश्ते सिर्फ जन्म से नहीं बनते दोस्तों, विश्वास से बनते हैं। राखी केवल कलाई पर बंधा धागा नहीं, बल्कि यह उस भरोसे का नाम है जो कहता है तुम अकेले नहीं हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तो इस रक्षाबंधन पर आइए उन सभी लोगों को दिल से धन्यवाद करें जिन्होंने किसी न किसी मोड़ पर भाई बनकर हमारा हाथ थामा, क्योंकि दुनिया में सबसे अनमोल वही रिश्ता है जो बिना किसी अपेक्षा के साथ बस निभाता जाता है।

और अभी हम सुन रहे थे लता मंगेशकर और साथियों को फिल्म थी अनपढ़। और दोस्तों, आज के खास सेगमेंट एक कदम बुजुर्गों की ओर को भी हमें नहीं भूलना है, तो बुजुर्गों की प्रेम कहानियां साथ निभाने के असली मायने। दोस्तों, कहते हैं प्यार सिर्फ आई लव यू कह देने का नाम नहीं होता, प्यार वो होता है जब बिना कहे सामने वाले की दवा का समय याद रहे, जब चश्मा ढूंढने से पहले हाथ उसी तरफ बढ़ जाए, और जब 70 की उम्र में भी कोई पूछे चाय में चीनी कम रखूं ना। जरा सोचिए, आजकल रिश्ते कुछ मिनटों में नाराजगी भी नहीं झेल पाते, लेकिन हमारे बुजुर्गों ने तो पूरी जिंदगी साथ निभाया है। सुख दुख, तंगी अमीरी बीमारी, सेहत, हर मौसम में एक दूसरे का हाथ थामे रखा। कई दादाजी आज भी बाजार जाते समय दादी जी के लिए उनकी पसंद की इमली या चूड़ियां ले आते हैं। कई दादी जी आज भी सबसे पहले अपने जीवन साथी की थाली सजाती हैं। ये छोटे छोटे काम शायद दुनिया को नजर ना आए, लेकिन यही तो प्रेम की सबसे बड़ी भाषा है। हम अक्सर सोचते हैं कि प्यार बड़े बड़े उपहारों से जताया जाता है, लेकिन हमारे बुजुर्ग सिखाते हैं कि प्यार रोजमर्रा की छोटी छोटी आदतों में बसता है। दवा समय पर दे देना, थक जाने पर बिना कहे पानी का ग्लास पकड़ाना, और हर मुश्किल में सिर्फ इतना कहना कि मैं हूं ना। आज जब दुनिया बहुत तेज दौड़ रही है, शायद हमें थोड़ा रुककर अपने घर के उन दो चेहरों को देखना चाहिए जिनकी प्रेम कहानी किसी फिल्म से कम नहीं, बस उसमें शोर नहीं सुकून है। तो आज घर जाइए, अपने दादा दादी नाना नानी या मम्मी पापा से पूछिए कि आपकी पहली मुलाकात कैसी थी। यकीन मानिए, आपको सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि रिश्तों की पूरी किताब सुनने को मिलेगी, क्योंकि सच्चा साथ वही है जहां उम्र चेहरे पर बढ़ती है लेकिन अपनापन दिल में हमेशा जवां रहता है। सफेद बालों में भी मोहब्बत का रंग गहरा है, हर झुर्री में उम्र नहीं साथ का पहरा होता है, जो हाथ आखिरी सांस तक थामे रहे, असल में वही प्रेम जीवन का सबसे सुनहरा चेहरा होता है।

अभी हम सुन रहे थे लता मंगेशकर और किशोर कुमार को फिल्म थी थोड़ी सी बेवफाई। और दोस्तों, क्या आपने महसूस किया है कि आज बेटियां या बहनें सिर्फ रक्षा की अपेक्षा नहीं करती बल्कि अपने भाइयों की सबसे मजबूत रक्षा कवच भी बन रही हैं। वो मुश्किल समय में उनका हौसला बनती हैं, सही सलाह देती हैं, परिवार की जिम्मेदारियां निभाती हैं और कई बार माता पिता की तरह उनका ध्यान भी रखती हैं। सोचिए कितने घरों में बहनें अपने भाई की पढ़ाई में मदद भी करती हैं, उसके सपनों को पूरा करने के लिए अपना समय और मेहनत लगाती हैं। जब भाई किसी परेशानी में होता है तो सबसे पहले उसकी बहन ही कहती है, चिंता मत करो मैं हूं ना। और आज की बेटियां आत्मनिर्भर हैं, शिक्षित हैं और हर क्षेत्र

में आगे बढ़ रही हैं, वो ये साबित कर रही हैं कि सुरक्षा केवल शारीरिक ताकत से नहीं बल्कि विश्वास, समझ, साहस और साथ निभाने से भी मिलती है। रक्षाबंधन का असली संदेश भी यही है कि ये केवल भाई का बहन के प्रति कर्तव्य नहीं बल्कि दोनों का एक दूसरे के लिए अटूट विश्वास और साथ निभाने का वादा है। रिश्ते बराबरी से और प्रेम से और भी सुंदर बनते हैं, तो जरा आज अपने जीवन की उस बहन को धन्यवाद कहना मत भूलिए जिसने कभी आपकी हिम्मत बढ़ाई, आपका मनोबल संभाला या बिना कहे आपका साथ दिया।

अभी हम सुन रहे हैं किशोर कुमार को, फिल्म का नाम है हरे रामा हरे कृष्णा। और इसी के साथ आज की खास प्रस्तुति को देते हैं यहीं विराम। रक्षाबंधन की ढेरों शुभकामनाएं आप सबको, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, दीजिए मंजुला को इजाजत, नमस्कार।

0: का अरोड़ा। नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 469 हो गई है और 1545 लोग लापता हैं। भोटे कोशी नदी प्रणाली के स्रोत के पास नई झील बन गई है। इसके टूटने से पानी के एक और तेज बहाव की आशंका है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि बाढ़ प्रभावित इलाकों में फंसे भारतीयों की स्थिति और सलामती का पता लगाने के लिए तत्काल प्रयास किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह से बात की और उन्हें भारत की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। नेपाल में बाढ़ के बाद बिहार में बाढ़ का खतरा फिलहाल टल गया है। राज्य के उप मुख्यमंत्री और जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बताया कि गंडक नदी के जलस्तर में कल से गिरावट आ रही है।
1: गंडक नदी के पूरे प्रवाह में अभी जल स्तर भी ऊंचा नहीं था, बल्कि सामान्य से भी थोड़ा कम था। इसलिए जो भी पानी संभावित था या जो आया, उससे बहुत ज्यादा भयावह स्थिति नहीं बनी।
0: एहतियात के तौर पर गंडक नदी से प्रभावित सभी 8 जिलों को अलर्ट पर रखा गया है। इस बीच सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे एक फर्जी वीडियो का खंडन किया है, जिसमें भाकरा नांगल बांध की दीवार 1.77 इंच झुकने का दावा किया गया है। वीडियो में कहा गया है कि बांध में दरार आने से दिल्ली सहित कई शहरों में बाढ़ आ सकती है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि बांध के तनाव, खिंचाव, छिद्र दाब और रिसाव के सभी मापदंड निर्धारित अनुमेय सीमाओं के भीतर हैं और बांध पूरी तरह सुरक्षित है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज से 6 दिन की अमरीका यात्रा पर हैं। यात्रा के दौरान वे शिकागो, एशविल और न्यूयॉर्क जाएंगी। वे शिकागो में प्रमुख निवेशकों के साथ गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगी और निजी क्षेत्र की प्रमुख कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों, अध्यक्षों और वरिष्ठ प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगी। इन बैठकों में भारत में निवेश के अवसर, आर्थिक दृष्टिकोण और भारत तथा अमरीका के बीच व्यापार और निवेश साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन की यात्रा पर कल उज्बेकिस्तान जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के निमंत्रण पर ताशकंद का दौरा करेंगे। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति मिर्जियोयेव के साथ शिष्टमंडल स्तर की बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री जनधन योजना के आज 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। ये देश में वित्तीय समावेशन के परिदृश्य को बदलने की दिशा में प्रमुख पड़ाव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में जनधन योजना के अभूतपूर्व परिवर्तनकारी परिणामों का प्रभाव बेमिसाल है। श्री मोदी ने कहा कि जनधन योजना वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और देश के लोगों को सक्षम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। योजना के तहत अब तक 59 करोड़ से अधिक खाते खोले जा चुके हैं। ये योजना सभी भारतीयों के लिए बैंकिंग पहुंच को सुलभ बना रही है। महाराष्ट्र के नाशिक से 450 टन से अधिक प्याज लेकर पहली कांदा एक्सप्रेस आज सुबह दिल्ली पहुंची। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कहा है कि सरकार ने प्याज की उपलब्धता सुनिश्चित करने और कीमतों में नियंत्रण के लिए बफर स्टॉक से प्याज की नियंत्रित बिक्री शुरू की है। सरकार के मूल्य नियंत्रण बफर स्टॉक का प्याज 35 रुपये प्रति किलोग्राम की रियायती दर पर बेचा जा रहा है। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज मामूली बढ़त देखी गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 159 अंक बढ़कर 77,093 पर और निफ्टी 15 अंक बढ़कर 24,106 पर पहुंच गया। भारत के वेलवेन सेंथिल कुमार कल रात स्क्वाश सेमीफाइनल में भारत के ही वीर चोटरानी को हराकर पीएसए बुडापेस्ट स्क्वाश ओपन के फाइनल में पहुंच गए। फाइनल में आज रात वेलवेन का मुकाबला हंगरी के खिलाड़ी बालास फारकस से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज। वक्त हुआ है ठीक 1:11 और ये वक्त रहता है कलाकार बेमिसाल का। कलाकार बेमिसाल में निर्माता निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी, भारतीय फिल्म सिनेमा के जाने माने फिल्म मेकर, जिनकी फिल्में जब भी देखो उतने ही चाव और आनंद के साथ देखी जाती हैं जितनी कि उनके रिलीज के वक्त देखी गई होंगी। शायद ही कोई सिने प्रेमी होगा जो उनके फिल्म मेकिंग के अंदाज स्टाइल से वाकिफ ना हो। अपनी फिल्म में उन्होंने छोटे छोटे विषयों को बड़ी संजीदगी के साथ पेश किया। यही नहीं, फिल्मों का एंटरटेनमेंट पक्ष भी पूरी तरह से बरकरार रखा जाता रहा। यही वजह है सत्यकाम, आनंद, आशीर्वाद, चुपके चुपके जैसी मूवीज आज की पीढ़ी भी उतना ही पसंद करती है। गौर करें तो ज्यादातर फिल्म्स उनकी पारिवारिक सामाजिक रही। उनके कलाकार भी उतनी ही शिद्दत से पात्रों में डूब जाया करते थे जितनी लगन और मेहनत से वो फिल्म मेकिंग किया करते थे। तो आज के इस सफर पर निर्माता निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी के सिने करियर की बातें, उनकी फिल्मों के गीत सुनते रहें आप आकाशवाणी गोल्ड 100.1। अंजलि है आपके साथ।

0: जाने माने फिल्म मेकर ऋषिकेश मुखर्जी का जिक्र हो रहा है इस वक्त, सुन रहे हैं आप आकाशवाणी गोल्ड 100.1। फिल्मों से जुड़े लोग उन्हें ऋषि दा के नाम से ज्यादा पुकारा करते रहे। जन्म इनका हुआ 30 सितंबर 1922 को कोलकाता में। फिल्मों में आने से पहले ऋषि दा गणित और साइंस के शिक्षक रह चुके हैं। शतरंज खेलने का भी इन्हें काफी शौक रहा है। फिल्मों में आने का चस्का इन्हें हुआ कहां से, कोलकाता के न्यू थिएटर से। और फिल्मों में उनके करियर को सही दिशा देने में प्रसिद्ध निर्देशक बिमल रॉय का काफी सहयोग और साथ रहा।
1: मैंने

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।
1: और बात हो रही है इस वक्त जाने माने फिल्म मेकर ऋषिकेश मुखर्जी के फिल्मी करियर की। इनके फिल्मी करियर की बात करने पर ये बात सामने आती है कि भाई इनके फिल्मी करियर की शुरुआत हुई 1951 की फिल्म 2 बीघा जमीन से। इस फिल्म में वो एक सहायक के तौर पर जुड़े हुए थे। जाने माने दिग्गज फिल्म डायरेक्टर बिमल रॉय के असिस्टेंट के तौर पर उन्होंने अपनी शुरुआत की। लगभग 6 साल तक वो एक सहायक के तौर पर काम करते रहे और निखरते रहे। स्वतंत्र रूप से 1957 की फिल्म मुसाफिर में उन्होंने एज अ डायरेक्टर फिल्म का निर्देशन किया। मुसाफिर फिल्म हालांकि बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा कमाल तो नहीं दिखा पाई, पर शोमैन राज कपूर उनके काम से इतने प्रभावित हुए कि अपनी फिल्म अनाड़ी, जो कि 1959 की फिल्म थी, इसके निर्देशन की जो बागडोर थी वो ऋषिदा को सौंप दी। अनाड़ी फिल्म भी आपने जरूर देखी होगी। फिल्म दर्शकों के दिलों पर गहरा असर छोड़ती है और गीत संगीत की तो कहने ही क्या, फिल्म का गीत संगीत लाजवाब रहा। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले इसी फिल्म का एक गीत क्यों ना सुन लिया जाए। अनाड़ी फिल्म से ये गीत है। किसकी आवाज में है? लता जी की आवाज में है और साथ में है मुकेश साहब।

1959 की फिल्म अनाड़ी की समीक्षकों ने भी काफी प्रशंसा की। ऋषिकेश मुखर्जी ने इसके बाद कभी मुड़कर पीछे नहीं देखा। अनुराधा, अनुपमा, आशीर्वाद जैसी फिल्म्स का उन्होंने निर्देशन किया। लगभग चार दशक के अपने करियर में उन्होंने एक से बढ़कर एक हिट मूवी दी और हमेशा स्टोरी चाहे गंभीर हो या हल्की फुल्की, कुछ न कुछ नया करने का प्रयास किया। ऋषिदा का फिल्म डायरेक्शन का एक अलहदा ही तरीका रहा। अपने दौर के अन्य जाने माने फिल्म निर्माताओं और निर्देशकों के साथ उनका कोई कमर्शियल कंपटीशन नहीं रहा। उनका अपना एक अलग स्टाइल रहा और एक अलग धारा।

जाने माने फिल्म मेकर ऋषिकेश मुखर्जी। फिल्म्स के अलावा उन्होंने कई टीवी धारावाहिकों के लिए भी काम किया। तलाश, हम हिंदुस्तानी, धूप छाओ, रिश्ते, उजाले, इन धारावाहिकों के लिए भी उनका काम सराहनीय रहा। इसके अलावा उनके गीत फिल्मांकन का तरीका भी बेजोड़ रहा। एक बार उन्होंने कहा था कि पर्दे पर किसी जटिल दृश्य के बजाय साधारण भाव को चित्रित करना कहीं ज्यादा मुश्किल काम है, इसलिए मैं इस तरह के विषय में अधिक रुचि रखता हूं। मैं अपनी फिल्म्स में संदेश को मीठी चाशनी में पेश करता हूं और कोशिश करता हूं कि एक बैलेंस बना रहे।

ऐसे बेजोड़ उत्कृष्ट फिल्म निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी को अनेक सम्मानों से सम्मानित भी किया जाता रहा। उनकी फिल्म्स और उनके काम को लेकर 1961 में ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म अनुराधा को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1972 में उनकी फिल्म आनंद को सर्वश्रेष्ठ कहानी के फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके अलावा उनकी फिल्म 1956 की नौकरी और 1959 की मधुमती और 1972 की आनंद को बेस्ट एडिटिंग अवार्ड से सम्मानित किया गया। सन 1999 में भारतीय फिल्म जगत के शीर्ष सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार से भी ऋषिदा को नवाजा गया और 2001 में ऋषिदा को पद्म विभूषण से नवाजा गया।

निर्देशक बिमल रॉय से जुड़ने से पहले 40 के दशक में ऋषिकेश मुखर्जी ने अपने सिने करियर की शुरुआत की न्यू थिएटर में बतौर कैमरामैन।

यही उनकी मुलाकात जाने माने संपादक सुबोध मित्र से हुई और उनके साथ रहकर ऋषिदा ने फिल्म संपादन का काम सीखा। ऋषिदा ने बाद में बिमल रॉय से जुड़कर उनकी फिल्म दो बीघा जमीन और देवदास का संपादन भी किया। अपने करियर की शुरुआत में ही दिग्गज कलाकारों को अपने निर्देशन में काम कराने का उन्हें बहुत ही सुनहरी मौका मिला। मुसाफिर फिल्म जिसका उन्होंने स्वतंत्र रूप से निर्देशन किया था, दिलीप कुमार, किशोर कुमार, सुचित्रा सेन जैसे कलाकार रहे इस फिल्म में। इसके बाद अनाड़ी में भी उन्होंने राज कपूर जैसे शोमैन महान अभिनेता को अपने निर्देशन में काम करवाया। अनाड़ी फिल्म सुपरहिट मूवी रही और इस फिल्म ने उन्हें भी फिल्म इंडस्ट्री में स्टैब्लिश कर दिया।

बड़े बड़े कलाकारों ने ऋषि दाह के निर्देशन में काम किया। उनके निर्देशन में कलाकारों का उत्कृष्ट अभिनय सामने आया। बेजोड़ अभिनेत्री जया बहादुरी को प्रारंभिक सफलता दिलाने में निर्माता निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म्स का काफी योगदान रहा। जया बहादुरी को पहला ब्रेक भी उन्हीं की फिल्म 1971 की गुड्डी से मिला। अपने किरदार को जया जी ने भी इतने चुलबुले अंदाज में निभाया, इतनी अच्छे तरीके से निभाया कि दर्शक उस भूमिका को आज तक नहीं भूल पाए। बाद में जया जी ने उनके निर्देशन में बावर्ची, अभिमान, चुपके चुपके, मिली जैसी कई सुपरहिट फिल्म्स में काम किया। ऋषिकेश मुखर्जी उन गिने चुने चंद फिल्मकारों में शामिल रहे जो कि

कहते हैं कि संख्या से अधिक गुणवत्ता पर ध्यान दिया करते थे, यकीन किया करते थे। फिल्म निर्माण के अलावा उन्होंने कई फिल्म्स का संपादन भी किया। कई फिल्म्स की कहानी स्क्रीन प्ले भी उन्होंने लिखा। ऐसे महानतम फिल्म मेकर्स हमेशा हमारी यादों में यूं ही बसे रहेंगे। उनकी फिल्में, उनका जो काम है, हमें ऐसे ही मनोरंजन और प्रेरणा देते रहेंगे।

0: इसी के साथ अंजलि फिलहाल आपसे ले रही है इजाजत, लेकिन आप सुनते रहे हमेशा आकाशवाणी गोल्ड 100.1। 2:30 पर आपसे फिर मुलाकात होगी, कुछ ही देर में सुनिएगा और दो खबरें और उसके बाद अंग्रेजी और हिंदी में समाचार।
1: ची ची ची ची ची,

आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं महताब आलम। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जनधन योजना मुल्क भर में माली शमूलियत को तेजी से आगे ले जाने और लोगों को बाख्तियार बनाने के सिलसिले में अहम रोल अदा कर रही है। नेपाल तिब्बत में आए अचानक तबाहकुन सैलाब से मरने वालों की तादाद बढ़कर 469 हो गई है। सरहद के दोनों अतराफ

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जनधन योजना की वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और लोगों को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका। नेपाल तिब्बत सीमा पर अचानक आई भीषण

0: बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 469 हुई। सीमा के दोनों ओर 1500 से अधिक लोग लापता। विदेश मंत्रालय ने कहा, नेपाल में 290 भारतीय नागरिक अब भी संपर्क से बाहर, बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में बचाव अभियान जारी। चीन के सिचुआन प्रांत में 5.1 तीव्रता के भूकंप के बाद नेपाल में फिर बाढ़ की चेतावनी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज से अमेरिका की 6 दिन की यात्रा पर, और भारत के वेल्विन सेंथिल कुमार पीएसए बुडापेस्ट स्क्वाश ओपन में आज रात फाइनल में हंगरी के बालास फारकाश से मुकाबला करेंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री जनधन योजना के आज 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। ये देश में वित्तीय समावेशन के परिदृश्य को बदलने की दिशा में प्रमुख पड़ाव है। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में जनधन योजना के अभूतपूर्व परिवर्तनकारी परिणामों का प्रभाव बेमिसाल है। श्री मोदी ने कहा कि जनधन योजना वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और देश के लोगों को सक्षम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इस योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 में आज ही के दिन किया था। योजना के तहत अब तक 59 करोड़ से अधिक खाते खोले जा चुके हैं। ये योजना सभी भारतीयों के लिए बैंकिंग पहुँच को सुलभ बना रही है। योजना के तहत महिलाओं के लगभग 56% खातों सहित 78% खाते ग्रामीण या अर्ध शहरी क्षेत्रों में खोले गए हैं। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: नेपाल तिब्बत सीमा पर अचानक आई विनाशकारी बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 469 हो गई है और सीमा के दोनों तरफ 1545 लोग लापता है। नेपाल के सुरक्षा कर्मियों ने प्रभावित जिलों में 800 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया है। एक रिपोर्ट।
2: भोटेकोशी नदी प्रणाली के स्रोत के पास नई झील बन गई है। इसके टूटने से पानी के एक और तेज बहाव की आशंका है, इससे बचाव कार्यों में बाधा आ सकती है। इस बीच आज चीन के सिचुआन प्रांत में 5.1 तीव्रता के भूकंप के बाद नेपाल में बाढ़ की नई चेतावनी जारी की गई है। अधिकारियों ने त्रिशूली क्षेत्र में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने का आदेश दिया है। नेपाल पुलिस ने बताया कि तिब्बत की ओर स्थित एक बांध फिर टूट गया है। वहां के निवासियों और सुरक्षा कर्मियों से सुरक्षित स्थानों पर जाने को कहा गया है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि नेपाल में फंसे 290 भारतीय नागरिक अब भी लापता हैं। उनका पता लगाने और सुरक्षित निकालने के प्रयास जारी हैं। खोज और बचाव कार्यों में सहायता के लिए नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह से बात कर उन्हें सहायता का आश्वासन दिया। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
0: नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने कल अमरीका की उप विदेश मंत्री एलिसन हुकर से टेलीफोन पर बातचीत की। अमरीका ने नेपाल में राहत और बचाव कार्यों के लिए 5 लाख अमरीकी डॉलर की सहायता की घोषणा की है। श्रीलंका ने भी नेपाल को 10 लाख अमरीकी डॉलर की आर्थिक मदद देने की घोषणा की है। इस बीच नेपाल में बाढ़ के बाद बिहार में बाढ़ का खतरा फिलहाल टल गया है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
3: नेपाल में आई भीषण बाढ़ के बाद बिहार में गंडक नदी से बाढ़ का खतरा फिलहाल टल गया है। बुधवार रात गंडक नदी के जल प्रवाह में बढ़ोतरी के बाद अब इसमें लगातार कमी दर्ज की जा रही है। उप मुख्यमंत्री और जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बताया कि फिलहाल गंडक नदी में जल प्रवाह सामान्य है। उन्होंने कहा कि नेपाल की भोटेकोशी, त्रिशूली और नारायणी नदियों से होते हुए पानी के गंडक तक पहुंचने के दौरान जल प्रवाह की गति कम हुई है, जिससे बिहार में इसका प्रभाव भी कम हो गया है। श्री चौधरी ने बताया कि हाट के तौर पर गंडक नदी से प्रभावित सभी 8 जिलों को अलर्ट पर रखा गया है। जल संसाधन विभाग की टीमें तटबंधों की 24 घंटे पेट्रोलिंग और निगरानी कर रही हैं। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
0: सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे एक फर्जी वीडियो का खंडन किया है, जिसमें भाखड़ा नांगल बांध की दीवार 1.77 इंच झुकने का दावा किया गया है। वीडियो में कहा गया है कि बांध में दरार आने से दिल्ली सहित कई शहरों में बाढ़ आ सकती है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि बांध के तनाव, खिंचाव, छिद्र दाब और रिसाव के सभी मापदंड निर्धारित सीमाओं के भीतर हैं और बांध पूरी तरह सुरक्षित है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
4: अपडेट रहे, आगे रहे। @AIRNews हिंदी और इंस्टाग्राम पर AIRNews अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत।

0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज से 6 दिन की अमरीका यात्रा पर हैं। यात्रा के दौरान वे शिकागो, एशविल और न्यूयॉर्क जाएंगी। एक रिपोर्ट।
1: वित्त मंत्री शिकागो में प्रमुख निवेशकों के साथ गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगी और निजी क्षेत्र की प्रमुख कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों, अध्यक्षों और वरिष्ठ प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगी। इन बैठकों में भारत में निवेश के अवसर, आर्थिक दृष्टिकोण और भारत अमेरिका व्यापार तथा निवेश साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा होगी। श्रीमती सीतारामन शिकागो विश्वविद्यालय के पोल्सकी सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन का दौरा करेंगी। वित्त मंत्री अपनी यात्रा के दौरान शिकागो में भारतीय समुदाय के सदस्यों से भी बातचीत करेंगी। एशविले में सुश्री सीतारामन की अध्यक्षता में आयोजित G20 सदस्य देशों के वित्त मंत्री, केंद्रीय बैंक गवर्नर तथा वरिष्ठ आर्थिक अधिकारी वैश्विक आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। ये बैठक 31 अगस्त और 1 सितंबर को होगी। समाचार कक्ष से मैं वीरेंद्र कौशिक।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन की यात्रा पर कल उज्बेकिस्तान जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के निमंत्रण पर ताशकंद का दौरा करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति मिर्जियोयेव के साथ शिष्टमंडल स्तर की बातचीत करेंगे।
2: अपनी 2 दिनों की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ताशकंद में शास्त्री मेमोरियल जाने की उम्मीद है। ताशकंद शहर में शास्त्री स्ट्रीट पर भारत के तीसरे प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री के सम्मान में एक कांसे की प्रतिमा स्थापित की गई थी। 1976 में शुरू हुए इस मेमोरियल को स्थानीय उज्बेक मूर्तिकार याकोव शापिरो ने डिजाइन किया था। ताशकंद आने वाले भारतीय पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि देने के लिए बड़ी संख्या में यहां पहुंचते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ताशकंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ ओरिएंटल स्टडीज में महात्मा गांधी सेंटर जाने की भी उम्मीद है। ये सेंटर भारतीय साहित्य, खासतौर पर हिंदी और दूसरी भारतीय भाषाओं के इतिहास और विकास पर एकेडमिक रिसर्च करता है और उज्बेकिस्तान और भारत के बीच आपसी सहयोग को मजबूत करने पर केंद्रित है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद, उज्बेकिस्तान।
0: दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ की उत्तरी रेंज ने ISI समर्थित पाकिस्तान के एक जासूसी नेटवर्क का पर्दाफाश कर दिल्ली के एक दंपति को गिरफ्तार किया है। दंपति पर 2024 से पाकिस्तानी खुफिया एजेंट्स के लिए काम करने का आरोप है। पुलिस के अनुसार दंपति कथित तौर पर पाकिस्तान के हैंडलर्स को सहायता प्रदान करता था। इसमें भारतीय सिम कार्ड खरीदना और उन्हें पाकिस्तान भेजना शामिल था। भारत में सिम कार्ड खरीदने के लिए दिल्ली के स्थानीय लोगों को भर्ती किया गया था। महाराष्ट्र के नाशिक से 450 टन से अधिक प्याज लेकर पहली कांदा एक्सप्रेस आज सुबह दिल्ली पहुंची। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कहा है कि सरकार ने प्याज की उपलब्धता सुनिश्चित करने और कीमतों में नियंत्रण के लिए बफर स्टॉक से प्याज की नियंत्रित बिक्री शुरू की है। चेन्नई, कोलकाता, एर्नाकुलम, गुवाहाटी, वाराणसी, लखनऊ, पटना, चंडीगढ़, जम्मू और अमृतसर जैसे अन्य प्रमुख उपभोग केंद्रों तक भी प्याज की आपूर्ति की जा रही है। सरकार के मूल्य नियंत्रण बफर स्टॉक का प्याज 35 रुपये प्रति किलोग्राम की रियायती दर पर बेचा जा रहा है। भारत में 7 स्थानों पर 24 परमाणु ऊर्जा रिएक्टर संचालित हैं, जिनकी कुल स्थापित क्षमता 8.78 गीगावाट है। परमाणु ऊर्जा विभाग के अनुसार 9 अतिरिक्त रिएक्टर निर्माणाधीन हैं। परमाणु ऊर्जा भारत के विकास पथ का एक महत्वपूर्ण घटक बनकर उभरी है, जो न केवल बिजली उत्पादन बल्कि स्वास्थ्य सेवा, कृषि और विभिन्न औद्योगिक अनुप्रयोगों में भी योगदान देती है। भारत के परमाणु ऊर्जा मिशन का लक्ष्य 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता प्राप्त करना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
3: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, @AIRNewsHindi को फॉलो करें और ताज़ा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
0: ये आकाशवाणी है। रक्षा बंधन का त्योहार आज देश भर में मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में विभिन्न स्कूलों और संगठनों में रक्षाबंधन का पर्व मनाया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि रक्षाबंधन का महत्व भाई बहन के रिश्ते से कहीं आगे है। उन्होंने कहा कि राखी का पवित्र

धागा परिवार के सदस्यों, मित्रों और यहाँ तक कि पेड़ों को भी बांधा जा सकता है, जो प्रेम और देखभाल के बंधन का प्रतीक है। राष्ट्रपति ने पर्यावरण संरक्षण के महत्व पर जोर देते हुए बच्चों से पौधों और पेड़ों की देखभाल करने का भी आग्रह किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि रक्षाबंधन प्रेम, विश्वास और सुरक्षा के सुंदर बंधन का प्रतीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर शुभकामनाएं देते हुए कहा कि ये त्योहार सभी के बीच स्नेह और सद्भाव के बंधन को मजबूत करने तथा खुशहाली और समृद्धि का पर्व है। पंजाब में जेल विभाग ने आज कैदियों को भाई बहनों के बीच प्रेम और सम्मान का त्यौहार रक्षाबंधन मनाने की अनुमति दी है। विभाग ने सुरक्षा संबंधी नियमों का ध्यान रखे जाने की पूरी व्यवस्था की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज समाज सुधारक और दूरदर्शी नेता महात्मा अयंकाली की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री सिंह ने कहा कि महात्मा अयंकाली ने अपना जीवन शोषितों के अधिकारों और सम्मान के लिए संघर्ष करने में समर्पित कर दिया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने भी महात्मा अयंकाली और श्री नारायण गुरु की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री राधाकृष्णन ने कहा कि महात्मा अयंकाली को एक अग्रणी समाज सुधारक और दूरदर्शी नेता के रूप में याद किया जाता है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि श्री नारायण गुरु की आध्यात्मिक समझ और समानता तथा मानवीय गरिमा के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता ने लोगों को भेदभाव से ऊपर उठाया। मौसम विभाग ने उड़ीसा और बिहार में कल तक तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र और पूर्वोत्तर राज्यों में भी आज तेज बारिश की संभावना है। अगले दो दिन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में तेज हवाओं के साथ आंधी की संभावना है। कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में भी कल तक ऐसे ही मौसम का अनुमान है। मौसम विभाग ने मछुआरों को 1 सितंबर तक अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में न जाने की सलाह दी है। भारत के वेल्विन सेंथिल कुमार आज रात पीएसए बुडापेस्ट स्क्वाश ओपन फाइनल में हंगरी के खिलाड़ी बालास फारकाश से मुकाबला करेंगे। कल रात सेमीफाइनल में सेंथिल कुमार ने भारत के ही वीर चोटरानी को हराया। भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने 2026 डायमंड लीग फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। प्रतियोगिता अगले महीने ब्रसल्स में आयोजित होगी। नीरज ने रैंकिंग में 12 अंक हासिल किए। उन्होंने जून में दोहा मीट में 85.69 मीटर भाला फेंक कर चौथा स्थान हासिल किया था। उन्होंने इस महीने की शुरुआत में लुसानी मीट में 88.05 मीटर का सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ दूसरा स्थान प्राप्त किया। भारतीय महिला हॉकी टीम ने कल जर्मनी को 3-1 से हराकर एफआईएच विश्व कप में 5वां स्थान हासिल किया। पिछले 52 वर्षों में यह भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। इससे पहले 1974 में हुए पहले विश्व कप में टीम चौथे स्थान पर रही थी। इस प्रदर्शन से अगले महीने जापान में होने वाले एशियाई खेलों से पहले टीम का आत्मविश्वास चरम पर है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जनधन योजना की वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और लोगों को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका। नेपाल तिब्बत सीमा पर अचानक आई भीषण बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 469 हुई। सीमा के दोनों ओर 1500 से अधिक लोग लापता। विदेश मंत्रालय ने कहा, नेपाल में 290 भारतीय नागरिक अब भी संपर्क से बाहर। बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में बचाव अभियान जारी। चीन के सिचुआन प्रांत में 5.1 तीव्रता के भूकंप के बाद नेपाल में फिर बाढ़ की चेतावनी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज से अमेरिका की 6 दिन की यात्रा पर। और भारत के वेल्विन सेंथिल कुमार का पीएसए बुडापेस्ट स्क्वाश ओपन में आज रात फाइनल में हंगरी के बालास फारकाश से मुकाबला। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।

हैं, बल्कि इनमें फिल्म से जुड़े कुछ राज, कुछ बातें, कुछ किस्से, कहानी का मूड और मौसम, माहौल, सभी कुछ समाहित होता है। बहुत बार गाने फिल्म के अलावा भी देश और समाज की परिस्थितियों और हालातों के रंग भी अपने अंदर समेटे होते हैं। तो जनाब, कहने का सीधा सा मतलब है, गाने सिर्फ नाचने गाने या गम दर्द को बयां करने का एक बहाना ही नहीं, बहुत कुछ होता है जो गानों का हिस्सा होते हैं या फिल्म का उतार चढ़ाव इन गानों का हिस्सा बन जाते हैं। इसी तरह इनसे जुड़ा जो संगीत है, उनकी भी एक अपनी दास्ता होती है। और कुल मिलाकर फिल्म, जो पूरी की पूरी फिल्म की बात करें तो अपने आप में वो भी एक कहानी तो होती ही है, उसके पीछे भी एक दास्ता जुड़ी रहती है। और हम इस तरह संगीत.com में इनका जिक्र जब तब करते रहते हैं। तो सबसे पहला गीत जो आप तक पहुंच रहा है, उसके बारे में अगर हम करें बात करें तो क्राइम ड्रामा मूवी रही फिल्म शक्ति का गीत आप तक पे आपके लिए पेश होगा। अभी 1982 की एक बहुत ही चर्चित और बहुत ही, जैसे बोलते हैं, ब्लॉकबस्टर फिल्म रही। डायरेक्टर फिल्म के रहे रमेश सिप्पी, सलीम जावेद की कहानी, दिलीप कुमार, अमिताभ, राखी और स्मिता पाटिल, साथ ही कुलभूषण खरबंदा मुख्य भूमिकाओं में फिल्म में हमें दिखे। और जो गीत आप सुनने जा रहे हैं, किशोर कुमार लता जी की आवाज़ में, संगीत से सजाया है आर डी बर्मन साहब ने और गीत के बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने। फिल्म शक्ति का ये गीत। संगीत.com, आकाशवाणी गोल्ड 100.1, अंजलि है आपके साथ।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के यूट्यूब चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें रविवार 30 अगस्त
1: FM गोल्ड 100.1 गीत संगीत का ये सफर संगीत.com पर हम तय कर रहे हैं। फिल्में, गीत संगीत और उनसे जुड़ी कुछ मनोरंजक बातें, यही कुछ साझा होता है आपके साथ संगीत.com के सफर पर। ज्वेल थी फिल्म आपने जरूर देखी होगी, नहीं देखी तो देखिएगा जरूर। जबरदस्त सस्पेंस मूवी है और लास्ट तक फिल्म आपको बांध कर रखती है। और बहुत सारे करेक्टर, खासकर जो नेगेटिव करेक्टर है ना, वो तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन इसमें विलेन है और क्या क्या प्लानिंग्स चल रही हैं उनकी। तो इस तरह सबसे पहले इसकी अगर स्क्रिप्ट पर हम गौर करें तो RK नारायण कहानीकार लेखक जो थे अक्सर देवानंद से मिला करते थे और उन्हें कुछ स्टोरीज सुनाया करते थे जिन पर फिल्म बन सके। इसी तरह उन्होंने एक स्टोरी सुनाई जिसमें लास्ट तक जो नेगेटिव करेक्टर है उसका पता ही नहीं चलता, सब लोग सस्पेंस में रहते हैं, सुनने वाले भी और देखने वाले भी। गोल्डी यानी कि विजय आनंद साहब जो कि देवानंद के भाई हैं, उन्हें स्टोरीज को अपनी तरह से पेश करने की मतलब बहुत मेहनत करते हैं वो स्टोरीज पर और अपनी तरह से पेश करते हैं फिल्म की कहानी। उन्होंने इस कहानी को भी पूरा रीराइट किया क्योंकि कहानी लिखना एक अलग काम होता है और फिल्म के लिए पट कथा लिखना बिल्कुल अलहदा काम होता है। तो भाई और वैसे भी ज्वेल थीफ की पटकथा लिखने से पहले विजय आनंद कुछ मतलब परेशान पशुपेश में रहे क्योंकि अक्सर ज़्यादातर लोग उनसे फिल्म गाइड के बाद यही कुछ उम्मीद कर रहे थे कि वो अपना नेक्स्ट प्रोजेक्ट भी कुछ इसी तरह का रखें स्क्रीन प्ले राइटर के रूप में। विजय आनंद ने काफ़ी मेहनत की इस फिल्म में ज्वेल थीफ पर और पूरी फिल्मी स्क्रिप्ट को उन्होंने अपनी तरह से तैयार किया और काफी वक्त लगा इस स्क्रिप्ट को लिखने में। खैर ज्वेल थी फिल्म की स्टोरी तैयार हो गई और फिल्म भी बन गई, लेकिन पहले गीत सुन लेते हैं इसका, फिर आगे बढ़ते हैं।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल सी विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात
1: 100.1 आकाशवाणी गोल्ड। गीत संगीत से जुड़ा संगीत.com का ये सफर इस वक्त हम तय कर रहे हैं और बात कर रहे थे हम ज्वेल थीफ की, जो कि बीच में ही हमने रोक दी थी। गीत तो सुनेंगे हम, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही कर्णप्रिय सा मधुर सा गीत लता जी और मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में। लेकिन अगर इस फिल्म से जुड़ी एक और किस्सा हम बताएं, जानते हैं कि हीरोइन के तौर पर आपको स्क्रीन पर ज़रूर वैजयंती माला दिखी, लेकिन इससे पहले सायरा बानो को फिल्म के लिए सेलेक्ट किया गया था और उन्हें एज अ हीरोइन लेने का मन बनाया गया था। लेकिन सायरा बानो और दिलीप साहब का तभी निकाह हुआ था और उस वक्त वो फिल्म करने के लिए समय नहीं निकाल पा रही थी। फिर वैजयंती माला को फिल्म में लेने का विचार किया गया। जब गोल्डी उन्हें फिल्म की स्क्रिप्ट सुनाने गए, यानी कि विजय आनंद साहब, तो वहां पर भी एक इंटरेस्टिंग किस्सा हुआ। पूरी को कहानी सुनने के बाद वैजयंती माला बोली कि आखिर इसमें विलेन है कौन। और साथ ही बैठे डॉक्टर बाली, जो कि उस वक्त तक उनके पति नहीं बने थे, उन्होंने कहा कि लो पूरी रामायण सुन ली और आप पूछ रही हो कि कौन सा कैरेक्टर क्या है। तो आप समझ सकते हैं कि इतनी सस्पेंस थ्रिलर मूवी है ज्वेल थीफ। देखिएगा जरूरी से, देख ली है तो दोबारा भी आप बहुत ही मजे के साथ इसे देख सकते हैं। तो चलिए, इसी फिल्म से ये गीत पहुंच रहा है आप तक।

कुछ गीत फिल्मों से पहले ही तैयार हो जाते हैं और उन्हें फिल्म में सिचुएशन के अनुसार रख लिया जाता है। बहुत बार ऐसा भी हुआ है कि अच्छे और जैसे बोलते हैं मधुर गीत जो बेहतरीन गानों के लिए सिचुएशन तैयार की जाती है, क्योंकि वो गाना फिल्म में डालना था इसलिए कहानी में थोड़ा हेर फेर करके उस गाने के लिए जगह बनाई जाती है। और बहुत बार ऐसा होता है कि पूरी फिल्म तैयार हो जाती है और लास्ट में हमें लगता है कि फिल्म की कहानी को सार्थक करता या फिल्म के रहस्यों को उजागर करता या फिर उसकी किसी न किसी जो मेन थीम होता है उस पर फोकस्ड कोई गाना फिल्म में होना चाहिए और लास्ट मोमेंट में फिल्म तैयार होने के बाद भी गीत उसमें डाल दिया जाता है बनाकर। इसी तरह की आनंद फिल्म का गीत है ये जिंदगी कैसी है पहली हाय, जैसे बोलते हैं पूरी फिल्म का रहस्य जिंदगी का रहस्य उजागर करता है ये जो गीत है। लास्ट में पूरी फिल्म बन जाने के बाद इस गीत को योगेश ने लिखा, सलील चौधरी ने इसका संगीत तैयार किया और मन्ना डे साहब ने गाया इस गीत को और फिल्म में इस गीत को जोड़ा गया एडिट के तौर पर। लेकिन अब जो इस गीत को तो नहीं लेकिन जिस गीत को अब आप सुनने जा रहे हैं वो शराबी फिल्म से है, प्रकाश मेहरा द्वारा निर्देशित एक प्रसिद्ध हिंदी ड्रामा फिल्म जिसमें अमिताभ बच्चन, जयाप्रदा, प्राण और ओम प्रकाश मुख्य किरदार में रहे। अमिताभ ने इसमें विक्की कपूर नाम के एक अमीर लेकिन दुखी और शराबी युवक की भूमिका निभाई है। डायलॉग लिखे हैं इस फिल्म के लिए कादर खान साहब ने और संगीत तैयार किया है बप्पी लहरी ने और गीतकार हैं फिल्म के अनजान और प्रकाश मेहरा। गीत मुझे लगता है आपको भी बेहद पसंद आएगा, मुझे तो बहुत पसंद है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री जनधन योजना के आज 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। ये देश में वित्तीय समावेशन के परिदृश्य को बदलने की दिशा में प्रमुख पड़ाव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में जनधन योजना के अभूतपूर्व परिवर्तनकारी परिणामों का प्रभाव बेमिसाल है। श्री मोदी ने कहा कि जनधन योजना वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और देश के लोगों को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जनधन योजना के अभूतपूर्व परिणाम बेमिसाल रहे हैं। नेपाल तिब्बत सीमा पर अचानक आई विनाशकारी बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 469 हो गई है और सीमा के दोनों तरफ 1545 लोग लापता हैं। नेपाल के सुरक्षा कर्मियों ने प्रभावित जिलों से 800 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। एक रिपोर्ट।
1: भोटे कोशी नदी प्रणाली के

0: स्रोत के पास नई झील बन गई है। इसके टूटने से पानी के एक और तेज बहाव की आशंका है। इससे बचाव कार्यों में बाधा आ सकती है। इस बीच आज चीन के सिचुआन प्रांत में 5.1 तीव्रता के भूकंप के बाद नेपाल में बाढ़ की नई चेतावनी जारी की गई है। अधिकारियों ने त्रिशूली क्षेत्र में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने का आदेश दिया है। नेपाल पुलिस ने बताया कि तिब्बत की ओर स्थित एक बांध फिर टूट गया है। वहां के निवासियों और सुरक्षा कर्मियों से सुरक्षित स्थानों पर जाने को कहा गया है। समाचार कक्ष से मैं सर फिरोजी।
1: विदेश मंत्रालय ने बताया है कि नेपाल में फंसे 290 भारतीय नागरिक अब भी लापता हैं। उनका पता लगाने और सुरक्षित निकालने के प्रयास जारी हैं। खोज और बचाव कार्यों में सहायता के लिए नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह से बात कर उन्हें सहायता का आश्वासन दिया है। प्रधानमंत्री मोदी 2 दिन की यात्रा पर कल उज्बेकिस्तान जाएंगे। वे उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के निमंत्रण पर ताशकंद का दौरा करेंगे। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति मिर्जियोयेव के साथ शिष्टमंडल स्तर की बातचीत करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज से 6 दिन की अमरीका यात्रा पर हैं। इस यात्रा के दौरान वे शिकागो, एशविल और न्यूयॉर्क जाएंगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन शिकागो में प्रमुख निवेशकों के साथ एक गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगी और निजी क्षेत्र की प्रमुख कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों, अध्यक्षों और वरिष्ठ प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगी। इन बैठकों में भारत में निवेश के अवसर, आर्थिक दृष्टिकोण और भारत अमरीका व्यापार तथा निवेश साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा होगी। एशविल में श्रीमती सीतारामन की अध्यक्षता में आयोजित G20 सदस्य देशों के वित्त मंत्री, केंद्रीय बैंक गवर्नर तथा वरिष्ठ आर्थिक अधिकारी वैश्विक आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। ये बैठक 31 अगस्त और 1 सितंबर को होगी। दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ की उत्तरी रेंज ने ISI समर्थित पाकिस्तान के एक जासूसी नेटवर्क का पर्दाफाश कर दिल्ली के एक दंपति को गिरफ्तार किया है। दंपति पर 2024 से पाकिस्तानी खुफिया एजेंटों के लिए काम करने का आरोप है। पुलिस के अनुसार दंपति कथित तौर पर पाकिस्तान के हैंडलर्स को सहायता प्रदान करता था। महाराष्ट्र के नाशिक से 450 टन से अधिक प्याज लेकर पहली कांदा एक्सप्रेस आज सुबह दिल्ली पहुंची। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने बताया है कि सरकार ने प्याज की उपलब्धता सुनिश्चित करने और कीमतों में नियंत्रण के लिए बफर स्टॉक से प्याज की नियंत्रित बिक्री शुरू की है। चेन्नई, कोलकाता, एर्नाकुलम, गुवाहाटी, वाराणसी, लखनऊ, पटना, चंडीगढ़, जम्मू और अमृतसर जैसे अन्य प्रमुख उपभोग केंद्रों तक भी प्याज की आपूर्ति की जा रही है। सरकार के मूल्य नियंत्रण बफर स्टॉक का प्याज 35 रुपये प्रति किलोग्राम की रियायती दर पर बेचा जा रहा है। रक्षाबंधन का त्यौहार आज देश भर में मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में विभिन्न स्कूलों और संगठनों में रक्षाबंधन का पर्व मनाया। भारत के वेल्विन सेंथिल कुमार आज रात PSA बुडापेस्ट स्क्वाश ओपन फाइनल में हंगरी के खिलाड़ी बालास फारकाश से मुकाबला करेंगे। कल रात सेमीफाइनल में सेंथिल कुमार ने भारत के ही वीर चोटरानी को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani. The news read by Anuja Kumar. The Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana has completed 12 years today, marking a significant milestone in transforming country's financial inclusion landscape. In a social media post, Prime Minister Narendra Modi has said that the scheme has delivered an unprecedented scale and transformative outcomes with an unparalleled impact in the last 12 years. Mr. Modi said that the scheme is playing a significant role in advancing financial inclusion and empowering people across the country. The death toll from devastating flash floods in Nepal, Tibet has risen to 469, while 1,545 people remain missing on both sides of the border. Rescue teams are searching riverbanks and isolated settlements for survivors and recovering bodies swept downstream. However, concerns remain over a newly formed barrier lake near the source of the Bhotei Koshi River system. Authorities fear

नमस्कार, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त राम प्रकाश, लेकर हाजिर हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम मन भावन।

दोस्तों, आज रक्षाबंधन है, तो आप सभी को रक्षाबंधन के पावन पर्व की पूरे एफएम गोल्ड परिवार की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। रक्षाबंधन सिर्फ कलाई पर राखी बांधने का पर्व नहीं है, बल्कि ये प्यार, विश्वास, अपनेपन और एक दूसरे की रक्षा के संकल्प का खूबसूरत उत्सव है। एक बहन जब भाई की कलाई पर राखी बांधती है तो उसे धागे में केवल रेशम के रंग नहीं होते, बल्कि उसमें बचपन की अनगिनत यादें, ढेर सारी दुआएं और जीवन भर साथ निभाने का विश्वास भी बंधा होता है। राखी का ये नन्हा सा धागा हमें याद दिलाता है कि जीवन की राहों में चाहे कितनी भी दूरियां क्यों ना आ जाएं, लेकिन अपनों के लिए दिल में बसा प्यार कभी भी कम नहीं होना चाहिए। तो चलिए समर्पित करते हैं कार्यक्रम का पहला गाना अपनी सभी बहनों के लिए, और तब तक आप हमें लिख भेजिए अपना प्यारा सा संदेश, रक्षाबंधन के प्रति अपनी शुभकामनाएं या अपने गाने की फरमाइश। आप जानते हैं ये आपको कहाँ भेजना है। ये आपको भेजना है fmgoldairdelhi@gmail.com पर। जी हाँ, fmgoldairdelhi@gmail.com। और आप इसे हमें WhatsApp भी कर सकते हैं, अपनी फरमाइश, अपना संदेश हम तक WhatsApp नंबर द्वारा भी पहुंचा सकते हैं। हमारा WhatsApp नंबर है 9868868753। आइए तब तक हम आपको सुनवाते हैं रक्षाबंधन का ये खूबसूरत गीत।

जी हाँ दोस्तों, इस संसार में सबसे प्यारा भाई बहन का प्यार है और आज के दिन उसका यादगार है और साक्षी है। ये खूबसूरत गीत आप सुन रहे थे फरिश्ते फिल्म से, आवाजें मोहम्मद अजीज, अमित कुमार और अनुराधा पौडवाल की, संगीत बप्पी लहरी का और बोल आनंद बख्शी के। दोस्तों आइए रुख करते हैं मेल बॉक्स की तरफ और देखते हैं कि पहला संदेश हम तक कहां से पहुंचा है। तो पहला संदेश हमें आया है हरजिंदर सिंह भाटिया का और इनके साथ इस मेल में शामिल हैं एंजल भाटिया, सोनू भाटिया और तमन्ना भाटिया। इसी के साथ अगला मेल हमें आया है मलियान सरधना मेरठ से और इसे लिख रहे हैं अनिल जैन, जैन साहब, संयम जैन, मुस्कान जैन, मास्टर जिव्यम जैन। तो आपका शुक्रिया इस सुंदर मेल के लिए। इसी के साथ हमें पद्मा टॉकीज नेपाल नगर से, मध्य प्रदेश से ये मेल आया है और इसे लिख रहे हैं सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, अश्विनी शाह, मंगलाबेन शाह, राजेंद्र जी शाह। और इसी के साथ एक और मेल हमें आया है, ये लिख रहे हैं आदरणीय प्रसारक महोदय जी, आपको हमारी ओर से प्यार भरा आदाब नमस्कार। तो जी आपको भी आदाब और नमस्कार। आप कह रहे हैं किसी भी सदाबहार गीत में हमारा नाम शामिल कीजिए। बिल्कुल, हम आपका नाम शामिल कर रहे हैं। आपका नाम है ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मरोज जहां, आज़ाद नगर लक्सर, हरिद्वार से ये हमें मैसेज कर रहे हैं। इसी के साथ अगला मेल हमें आया है शेरवानी स्कूल गंज डुंगवारा उत्तर प्रदेश से और इसे लिख रहे हैं आफ्ताब अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ, अनवर मास्टर, लुबाना अंसारी और आलिया अंसारी। इसी के साथ हमें एक और खूबसूरत मेल आया है और इन्होंने अपने मैसेज की शुरुआत बड़ी सुंदर लाइनों से की है। इन्होंने लिखा है किसी के जख्म पर चाहत से पट्टी कौन बांधेगा, अगर बहनें नहीं होंगी तो राखी कौन बांधेगा। बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरत बात कही है आपने। आपने लिखा है भाई और बहन के प्रेम के प्रतीक रक्षाबंधन पर्व की आपको और पूरे परिवार को अनंत आशोष यानी आशीष कोटिश वगैरह लिखा है आपने, बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। तो आपको भी जी बहुत बहुत बधाइयां आज के पर्व की। ये खूबसूरत मेल हमें जिला खरगोन सनावद मध्य प्रदेश से आया है और इसे लिख रहे हैं मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज वर्मा, आयुषी वर्मा, रमेश चंद्र वर्मा, शेख मूसा भाईजान, भाई राजकुमार बोडाना और सुदामा नगर खंडवा से लक्ष्मी, नंदिनी, रोहित, ऋतु और मुकेश जी। इसी के साथ एक और खूबसूरत मैसेज हमें आया है

इन्होंने भी बड़ी सुंदर लाइनें लिखी हैं, धागा नहीं ये वादा है जिंदगी भर का, भाई बहन के प्यार का, विश्वास का और हक का। राखी के इस कच्चे धागे में इतनी है ताकत, बांधते ही बन जाता है भाई पूरी कायनात। जी बहुत शुक्रिया आपका इस सुंदर मैसेज के लिए। ये मेल हमें मुंबई से अनु बड़जातिया, शमशुल खान और अनुराज बेनारा जी का आया है। इसी के साथ छत्तीसगढ़ चूड़ी लाइन मुंगेरी से हमें मोहम्मद इसहाक, खातिजा बेगम, मोहम्मद अशफाक, आफरीन कौसर, मोहम्मद अल्ताफ, नीलोफर फातिमा जी भी मैसेज कर रहे हैं। और एक खूबसूरत मैसेज हमें अलीगढ़ से आया है और इसे लिख रहे हैं सलीम अख्तर जी, और इन्होंने लिखा है, नमस्कार सर जी, आज हमारी भतीजी हुदा का बर्थडे है, कोई भी सॉन्ग चलाकर विश कर दीजिएगा। तो लीजिए जनाब, खुदा के लिए ये प्यारा सा गीत हम बजा रहे हैं और उसको जन्मदिन की ढेरों बधाइयां।

जी हाँ, हमारे और आपके बीच में ये बंधन अनजाना तो नहीं है, क्योंकि हम हर बार इसी समय पर आपसे मिलते हैं और एक नया रिश्ता जोड़ते हैं। और वैसे भी आज रक्षाबंधन का दिन है। ये खूबसूरत गीत आप सुन रहे थे फिल्म एक दूजे के लिए से, आवाज लता मंगेशकर की, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का और बोल आनंद बख्शी के। आइए एक बार फिर शामिल करते हैं आपके संदेश। और इस बार हमें पहला संदेश आया है नागचुन रोड संजय कॉलोनी खंडवा से। भाई ये कहीं वही तो खंडवा नहीं है जहां हमारे किशोर दा ने जन्म लिया था। बहरहाल कोई भी खंडवा हो, हम आपका नाम जरूर शामिल करेंगे। और इस खूबसूरत मेल को लिखा है अब्दुल गफ्फार डावर खुश नसीब ने। इनके साथ हैं अब्दुल हक डावर, जियाउल हक डावर, मोहम्मद उमर डावर, राजेंद्र कटारे भाटापारा छत्तीसगढ़ से, सोहन जोशी और पायल जोशी भी इस मेल में शामिल हैं। तो जी शुक्रिया आपका इस खूबसूरत मेल के लिए। इसी के साथ एक और मेल हमें किशन वंजानी, नीलम स्वाति और कीशु का रेलवे कॉलोनी आनंद विहार से आया है। इन्होंने लिखा है किसी भी गीत में हमारा नाम शामिल करें। तो लीजिए जनाब, हमने आपका नाम शामिल कर लिया। इसी के साथ एक खूबसूरत संदेश हमें आया है सतीश अनेजा जी का और ये लिख रहे हैं नमस्कार राम प्रकाश भाई जी, खूबसूरत प्रोग्राम में आपका हार्दिक अभिनंदन है, रक्षाबंधन की अनंत शुभकामनाएं। तो जी आपको भी रक्षाबंधन की ढेरों शुभकामनाएं और आपका भी एक बार फिर से स्वागत है आज के कार्यक्रम में। आपने आगे भी बहुत बड़ा और प्यारा सा मैसेज लिखा है, माफ कीजिएगा उसे हम आज शामिल नहीं करेंगे क्योंकि वक्त जरा कम होता है। इसलिए हम आपसे गुजारिश करते हैं कि चंद लाइनों में ही अपना संदेश हमें लिख भेजें, और यही तो कला होती है कि आप कम शब्दों में गहरी बात कह दें। इसी के साथ एक और हमें मेल आया है शबाना भारती का, इनके साथ है नवाब अहमद, अरहान अहमद, सूफिया नवाब, बल्ली मारान से हमें मैसेज कर रहे हैं और लिख रहे हैं रामप्रकाश जी नमस्कार, हमारी पसंद कभी नहीं चलाएंगे आप। क्यों भाई, ऐसी क्या बात है, हम आपकी पसंद ज़रूर पूरी करेंगे। और इन्होंने लिखा है कि आपका प्रोग्राम हमें बहुत अच्छा लगता है, तो शुक्रिया इस मैसेज के लिए। इसी के साथ हमें मोर टक्का माफी जिला खंडवा से किसान श्रोता जगन्नाथ पटेल, कमला पटेल, अंतिम पटेल, ज्योति पटेल, शुभम, देवी किशन, भावना मनमानस का ये मेल आया है और क्या आप कह रहे हैं कि कोई भी गाना हमें सुनवा दीजिए, बिल्कुल सुनवा देंगे जनाब। और इसी के साथ एक और मेल आया है, वो लिख रहे हैं अपने विचारों पर ध्यान दें वो तुम्हारे शब्द बनेंगे, अपने शब्दों पर ध्यान दें वो तुम्हारे कर्म बनेंगे, अपने कर्म पर ध्यान दो वो तुम स्वयं बनोगे। क्या बात कही है आपने, और ये बात कही है मोहम्मद सईद अब्बासी, निहत परवीन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सुहान अब्बासी, अरजान अब्बासी, अवान अब्बासी और पूरा अब्बासी परिवार। ये हमें लिख रहे हैं मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से। इसी के साथ एक और हमें मैसेज आया है और ये लिख रहे हैं प्लीज़ कोई भी गीत में शामिल कीजिएगा, तो लीजिए हमने शामिल कर लिया। और ये नाम है अनिल बुरांडे, उषा बुरांडे, अनुश्री बुरांडे, धनुश्री, धनश्री बुरांडे। और इसी के साथ अगला मेल हमें आया है

को भी पूरे एफएम गोल्ड के परिवार की तरफ से एक बार फिर से रक्षाबंधन की ढेरों शुभकामनाएं। और आपने एक बहुत ही खूबसूरत गीत की फरमाइश की है, तो लीजिए, आपकी फरमाइश पर पेश खिदमत है ये प्यारा सनगमा।

0: ये खूबसूरत गीत आप सुन रहे थे फिल्म अंधा कानून से, आवाजें किशोर कुमार और आशा भोसले की, गीत आनंद बख्शी का और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। दोस्तों, कार्यक्रम मनभावन में वक्त है एक छोटे से अंतराल का। तब तक अगर आपने हमें मेल नहीं किया है तो आप हमें मेल कर दीजिए और अपनी फरमाइश हम तक भेज दीजिए। और साथ ही अगर आप कोई प्यारा सा संदेश हमें भेजना चाहते हैं तो वो भी आप भेज सकते हैं। आपको ये भेजना है fmgoldairdelhi@gmail.com पर। और आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9868868753।
1: NCREPE से गुजरने वाले सभी श्रद्धालुओं एवं यात्रियों को पावन श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। कृपया प्रशासन द्वारा निर्धारित मार्ग का ही उपयोग करें और यातायात नियमों का पालन करें। किसी भी आपातकालीन सहायता के लिए तुरंत डायल करें 1033। आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प।
2: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।
0: जी हाँ, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। कार्यक्रम मनभावन सुन रहे हैं आप अपने दोस्त राम प्रकाश वर्मा के साथ। आइए रुख करते हैं मेल बॉक्स की तरफ और देखते हैं किसका संदेश हम तक पहुंच चुका है। ये मेल हमें आया है संजय पाटिल का और इनके साथ हैं उषा पाटिल, प्रथमेश पाटिल, निवृत्ति शीरसागर और संजय चौहान। ये हमें लिख रहे हैं नसवाला चौक मलकापुर से। इसी के साथ अगला मेल हमें आया है भोपालगढ़ राजस्थान से और ये लिख रहे हैं धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा, ईशान छीपा, पूजा परिहार। इन्होंने लिखा है, आदरणीय सर राम प्रकाश जी, आपको हार्दिक नमस्कार और आपको और सभी श्रोता मित्रों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। तो जी, आपको भी रक्षाबंधन के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आपने आगे लिखा है, बेहतरीन प्रस्तुति आप दे रहे हैं और बेहतरीन नगमे आप सुनवा रहे हैं। जी हाँ, हम बेहतरीन नगमे क्यों ना सुनवाएं आपको, क्योंकि बेहतरीन फरमाइश तो आपकी होती ही है ना। इसी के साथ अगला मेल हमें आया है कस्बा गुन्नौर यूपी से और ये लिख रहे हैं फारूख अली खान, फैजी फराज, फरहीन फरान, फारिया ताहिरा। और इन्होंने लिखा है, सभी भाई बहनों को रक्षाबंधन बहुत बहुत मुबारक हो। हर एक त्यौहार बेशुमार खुशियां लेकर आता है, क्यों ना हम इन खुशियों को अपने दामन में समेट लें। क्या बात कही है आपने। और इसी के साथ एक और मेल हमें आया है, इन्होंने लिखा है, जिंदगी एक हसीन ख्वाब है जिसमें जीने की चाहत होनी चाहिए, गम खुद ही खुशी में बदल जाएगा, सिर्फ मुस्कुराने की आदत होनी चाहिए। बहुत खूब, ये मेल हमें लिखा है कमलकांत गुप्ता ने पिपरिया से। इसी के साथ एक और कस्बा बिलराम से हमें मैसेज आया है और ये लिख रहे हैं इरशाद अहमद शाह, शाहजहां बेगम और मरियम जैनब। इन्होंने लिखा है, आदाब आदरणीय बड़े भाईजान, तो जी आपको भी रक्षाबंधन की शुभकामनाएं और आदाब। तो दोस्तों, आइए आप सभी श्रोताओं की फरमाइश पर आप तक पहुंचाते हैं ये खूबसूरत नगमा।

फिल्म सनम बेवफा से ये खूबसूरत गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में, संगीत महेश किशोर का और बोल सावन कुमार के।

आइए रुख करते हैं मेल बॉक्स की तरफ और देखते हैं किसने हमें अपना प्यारा सा संदेश लिखकर भेज दिया है। तो ये संदेश हमें आया है मास्टर खिल्लू परवेज, बेगम इमराना नाज, नवाजिश शेख, वनी दानिश शेख, अमन फर आफरीदी और राधा नामदेव का। ये हमें लिख रहे हैं सेव वाटर सेफ लाइफ। जी हाँ, बहुत अच्छी बात लिखी है आपने। आपने मेल कहाँ से लिखा है, अपना एड्रेस आपने नहीं बताया। इसी के साथ हमें एक और मेल आया है और ये लिख रहे हैं कोई भी राखी का गीत सुनवा दीजिए। ये हमें लिखा है राज पैलेस मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से। हमें लिख रहे हैं राजेश राज वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक आर्यन वर्मा और इन्हीं के साथ इस मेल में शामिल है मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी स्वर्णकार, आर्यन कृष्णा और पीहू स्वर्णकार। इसी के साथ एक और खूबसूरत मेल हमें आया है और लिख रहे हैं आदरणीय राम प्रकाश सर जी नमस्कार, तू जी नमस्कार। और इन्होंने लिखा है रेशम की डोरी रंग बिरंगी राखी लाई, सदा खुश रहें बहना और भाई। बिल्कुल। और ये मेल हमें लिखा है अभिजीत गावांडकर राही, श्रीमती सरिता गावांडकर, परणिता सिद्धांत गावांडकर, प्रिंस एकांश गावांडकर, अर्जुन गावांडकर, टुक टुक। और इनके साथ इस मेल में शामिल है वैशाली शैलेश, श्वेता सुमित, कुमारी ध्वनि। इसी के साथ एक और हमें मेल आया है और लिख रहे हैं आदरणीय प्रस्तुतकर्ता महोदय जी को प्यार भरा नमस्कार और आपको रक्षाबंधन के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। तो जी आपको भी हार्दिक शुभकामनाएं। ये मेल हमें काशी निवास बंगाली पंजा नागपुर से आया है और इसे लिख रहे हैं प्रकाश रंभाडे, भारती रंभाडे, जाह्नवी रंभाडे, वैष्णवी और हर्षल रंभांडे, माफ़ कीजिएगा कई बार टाइपिंग मिस्टेक होती है। और इसी के साथ एक और मेल हमें जिला मुरादाबाद ग्राम दूल्हापुर उत्तर प्रदेश से आया है और इसे लिख रहे हैं मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार और नरगिस खातून। इन्होंने कहा है कि हमें किसी भी गीत में शामिल कर लीजिए। तो लीजिए जनाब, हमने आपका नाम इस गीत में शामिल कर लिया और आपकी फरमाइश पर आपको सुनवा रहे हैं राखी का ये खूबसूरत गीत।

दोस्तों आइए एक बार फिर नजर डालते हैं मेल बॉक्स की तरफ और व्हाट्सएप चैट पर और देखते हैं किसका मेल किसका मैसेज हम तक आया है। तो इस बार हमें मैसेज आया है फरुखाबाद साहबगंज चौराहा यूपी से और ये मैसेज हमें लिख रहे हैं सुरेश चौरसिया, श्रीमती सरोज चौरसिया, सुबोध चौरसिया, सलोनी चौरसिया, संजू चौरसिया, लल्ला चौरसिया और पवन गौड़ इनके साथ। और इन्होंने लिखा है योगेंद्र नायक कासगंजी ने भी ये मैसेज हमें लिखा है इनके साथ। इसके साथ हमें राहट गांव कैंप अमरावती महाराष्ट्र से मैसेज आया है और इसे लिख रहे हैं हर्षा रामेकर, दिलीप रामेकर, अक्षय रामेकर, रुद्रा रामेकर और पूरा रामेकर परिवार। इन्होंने लिखा है राम प्रकाश जी रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं, हम लाइव सुन रहे हैं। जी हाँ बिल्कुल, आप लाइव ही हमें सुनते हैं और इसके लिए आपका धन्यवाद। इसी के साथ हमें एक और मेल गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से आया है और इसे लिख रहे हैं बबलेश पवार, डैनी पवार, मनीष पवार, खलीफों की बावड़ी से खुदा बश खलीफा ने लिखा है। दिनेश चौहान भी इनके साथ शामिल हैं और बाबूराम जयपाल भी शामिल हैं। इसी के साथ एक और हमें मेल जैन मंदिर वाली गली कुरावली से आया है और इसे लिख रहे हैं राशिद हुसैन अंसारी, नसरीन अंसारी, नौरीन अंसारी, आसना अंसारी, मोहम्मद कैफ अंसारी। इसी के साथ हमें तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन, आशीष राजा, चैतन्य मस्कीन, मेघा मस्कीन, राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु रिधान खुराना का मैसेज आया है। ये हमें मैसेज लिख रहे हैं बिहारी कॉलोनी दिल्ली शाहदरा से और रक्षाबंधन की शुभकामनाएं इन्होंने भेजी हैं। इसी के साथ एक और मेल हमें आया है उत्तम नगर से जयराम खोरवाल जी का, तो आपका भी शुक्रिया इस खूबसूरत मेल के लिए। इसी के साथ हमें एक और मेल आया है ग्राम ममना जिला हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से और ये लिख रहे हैं रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजू रंजना, वंदना, प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा। इसी के साथ एक और मेल हमें प्रेम सराय रजवाड़े, सोमार साय, मेर साय, श्री भगत हेमंत कुमार, राम खिलावन सिंह पैकारा फिल्म ये हमें लिख रहे हैं सोनगरा जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ से इन्होंने हमें मेल किया है। इसी के साथ एक और मेल हमें उग्रसेन यादव, शकुंतला यादव, गरिमा न्यू दिल्ली से हमें मेल कर रहे हैं। तो दोस्तों ये खूबसूरत मेल थे आपके और मैसेज थे हमने आज के कार्यक्रम में शामिल किए। इसके अलावा अगर किसी का मेल हम नहीं पढ़ पाए हों तो उसके लिए क्षमा कीजिएगा क्योंकि वक्त हमारे पास बहुत कम होता है, लेकिन आप मायूस मत होइए क्योंकि कल फिर कोई आएगा

और आपका संदेश, आपका मेल आप तक जरूर पहुंचाएगा। फिलहाल मैं आपको छोड़े जा रहा हूं इस खूबसूरत गीत के साथ, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि मैं आपसे मिलूंगा ठीक 4:10 पे कुछ और खूबसूरत गीतों के साथ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री जनधन योजना के आज 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। ये देश में वित्तीय समावेशन के परिदृश्य को बदलने की दिशा में प्रमुख पड़ाव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में जनधन योजना के अभूतपूर्व परिवर्तनकारी परिणामों का प्रभाव बेमिसाल है। श्री मोदी ने कहा कि जनधन योजना वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और देश के लोगों को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। योजना के अंतर्गत अब तक 59 करोड़ से अधिक खाते खोले जा चुके हैं। नेपाल तिब्बत सीमा पर अचानक आई विनाशकारी बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 469 हो गई है और सीमा के दोनों तरफ 1545 लोग लापता हैं। नेपाल के सुरक्षाकर्मियों ने प्रभावित जिलों से 800 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। एक रिपोर्ट।
1: भोटेकोशी नदी प्रणाली के स्रोत के पास नई झील बन गई है। इसके टूटने से पानी के एक और तेज बहाव की आशंका है, इससे बचाव कार्यों में बाधा आ सकती है। इस बीच आज चीन के सिचुआन प्रांत में 5.1 तीव्रता के भूकंप के बाद नेपाल में बाढ़ की नई चेतावनी जारी की गई है। अधिकारियों ने त्रिशूली क्षेत्र में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने का आदेश दिया है। नेपाल पुलिस ने बताया कि तिब्बत की ओर स्थित एक बांध फिर टूट गया है। वहां के निवासियों और सुरक्षा कर्मियों से सुरक्षित स्थानों पर जाने को कहा गया है। समाचार कक्ष से मैं सर फिरोजी।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नेपाल में जारी राहत और बचाव कार्यों पर चर्चा की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि काठमांडू और पेचिंग में भारतीय दूतावासों ने भारतीय नागरिकों की स्थिति और उनकी सलामत

के बारे में नई जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि विदेश मंत्रालय के संबंधित विभागों ने नेपाल भेजी जाने वाली राहत सामग्री के बारे में जानकारी दी है। इस बीच विदेश मंत्रालय ने बताया कि नेपाल में फंसे 290 भारतीय नागरिक अब भी लापता हैं। उनका पता लगाने और सुरक्षित निकालने के प्रयास जारी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन की यात्रा पर कल उज्बेकिस्तान जाएंगे। वे उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के निमंत्रण पर ताशकंद का दौरा करेंगे। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी और मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति मिर्जियोयेव के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज से 6 दिन की अमरीका यात्रा पर हैं। यात्रा के दौरान वे शिकागो, एशविल और न्यूयॉर्क जाएंगी। वित्त मंत्री सीतारामन शिकागो में प्रमुख निवेशकों के साथ एक गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगी और निजी क्षेत्र की प्रमुख कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों, अध्यक्षों और वरिष्ठ प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगी। इन बैठकों में भारत में निवेश के अवसर, आर्थिक दृष्टिकोण और भारत अमरीका व्यापार और निवेश साझेदारी मजबूत करने पर चर्चा होगी। एशविल में श्रीमती सीतारामन की अध्यक्षता में G20 सदस्य देशों के वित्त मंत्री, केंद्रीय बैंक गवर्नर तथा वरिष्ठ आर्थिक अधिकारी वैश्विक आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। महाराष्ट्र के नाशिक से 450 टन से अधिक प्याज लेकर पहली कांदा एक्सप्रेस आज सुबह दिल्ली पहुंची। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने कहा कि सरकार ने प्याज की उपलब्धता सुनिश्चित करने और कीमतों में नियंत्रण के लिए बफर स्टॉक से प्याज की नियंत्रित बिक्री शुरू की है। सरकार के मूल्य नियंत्रण वाला प्याज 35 रुपये प्रति किलोग्राम की रियायती दर पर बेचा जा रहा है। दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ की उत्तरी रेंज ने ISI समर्थित पाकिस्तान के एक जासूसी नेटवर्क का भंडाफोड़ कर दिल्ली के एक दंपत्ति को गिरफ्तार किया है। दंपत्ति पर वर्ष 2024 से पाकिस्तानी खुफिया एजेंट्स के लिए काम करने का आरोप है। पुलिस के अनुसार दंपत्ति कथित तौर पर पाकिस्तान के हैंडलर्स को सहायता प्रदान करता था। रक्षाबंधन का त्यौहार आज देशभर में मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में विभिन्न स्कूलों और संगठनों में रक्षाबंधन का पर्व मनाया। मुंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 311 अंक बढ़कर 77,265 पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 85 अंक की बढ़त से 24,176 दर्ज हुआ। भारत के विल्वन सेंथिल कुमार आज रात PSA बुडापेस्ट स्क्वाश ओपन फाइनल में हंगरी के खिलाड़ी बालाज फारकश से मुकाबला करेंगे। कल रात सेमीफाइनल में सेंथिल कुमार ने भारत के ही वीर चोटरानी को हराया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल पर, जिसे आप सुन रहे हैं 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। मैं हूं आपका दोस्त राम प्रकाश। दोस्तों, रक्षाबंधन के पावन पर्व की एक बार फिर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए आपको सुनवाते हैं कुछ और बेहतरीन नगमे

ये खूबसूरत गीत आप सुन रहे थे फिल्म अनजाना से, आवाज लता मंगेशकर की, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का और बोल आनंद बख्शी के। आइए श्रोताओं, आपको सुनवाते हैं अगला गाना फिल्म मुद्दत से, आवाजें आशा भोसले मोहम्मद अजीज की, संगीत बप्पी लहड़ी का और बोल इंदेवर के।

दोस्तों इसी गीत के साथ अपने दोस्त राम प्रकाश वर्मा को अनुमति दीजिए। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर।

0: तैनाती के स्थान संबंधी आवश्यक जानकारियां भी मिल जाएंगी। वस्तु एवं सेवा कर परिषद में सलाहकार ग्रेड वन का एक पद रिक्त है। इसे भरने के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। विस्तृत जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं वस्तु एवं सेवा कर परिषद यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल की वेबसाइट से। वेबसाइट है www.gstcouncil.gov.in। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान मंगलागिरी आंध्र प्रदेश में इन पदों को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। प्रोफेसर, अतिरिक्त प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर। प्रोफेसर के कुल 17 पद उपलब्ध हैं, जबकि अतिरिक्त प्रोफेसर के 11, एसोसिएट प्रोफेसर के 14 तथा असिस्टेंट प्रोफेसर के 37 पद रिक्त हैं। जिन विभागों में ये नियुक्तियां की जानी हैं, उन विभागों के नाम हैं एनेस्थीसिया, बर्न एंड प्लास्टिक सर्जरी, कार्डियोलॉजी, कार्डियोथोरेसिक एंड वैस्कुलर सर्जरी, डर्मेटोलॉजी, एंडोक्रेनोलॉजी एंड मेटाबॉलिज्म, गैस्ट्रो एंट्रोलॉजी, जनरल मेडिसिन, मेडिकल ऑन्कोलॉजी, मेडिकल हेमेटोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, नियोनेटोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, न्यूरोलॉजी, न्यूरोसर्जरी, न्यूक्लियर मेडिसिन, ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनोकोलॉजी, ऑप्थेल्मोलॉजी, पीडियाट्रिक सर्जरी, पीडियाट्रिक्स पैथोलॉजी, फिजिकल मेडिसिन एंड रिहेबिलिटेशन, फिजियोलॉजी, पल्मोनरी मेडिसिन, मनोचिकित्सा, रेडियोलॉजी, रेडियोथेरेपी, रोमेटोलॉजी एंड क्लिनिकल इम्यूनोलॉजी, सर्जिकल गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन और ब्लड बैंक, ट्रॉमा और इमरजेंसी मेडिसिन तथा यूरोलॉजी। विस्तृत जानकारी के लिए देखिए वेबसाइट faculty.rec@aims.mangalagiri.edu.in। आवेदन का ऑनलाइन पंजीकरण संस्थान की इस वेबसाइट पर उपलब्ध होगा www.aimsmangalagiri.edu.in। आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
1: दिस प्रोग्राम वॉज प्रोड्यूस्ड एंड प्रेजेंटेड बाय द न्यूज सर्विसेज डिवीजन ऑफ आकाशवाणी।

0: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
1: नमस्कार श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में ठीक 4:30 बजे हैं और ये समय है आपके अपने न्यूज मैगजीन परिक्रमा का। इसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं वो सभी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जगत के समाचार होंगे, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे क्या कुछ है उनके पास खास। इसके अलावा खेल जगत की गतिविधियों पर भी हमारी नजर रहेगी और उन विशिष्ट व्यक्तियों को भी हम याद करेंगे जिनकी आज है पुण्यतिथि या जन्मदिवस। तो श्रोताओं, परिक्रमा की संघ के साथ मैं हूं मुकेश कुमार और मेरे साथ है मेरी सहयोगी शगुन चोपड़ा। शगुन, आपको भी मेरा नमस्कार।
2: नमस्कार मुकेश एंड टू आवर लिसनर्स, नमस्कार, गुड डे एवरीबॉडी। वेल, दिस इज परिक्रमा ऑन 100.1 एफएम विद मी शगुन चोपड़ा एंड टुडे आई एम वेरी थ्रिल्ड बिकॉज मुकेश इज देयर विद मी एंड व्हाट अ फैंटास्टिक एंड अ स्पेक्टेकुलर डे टू बी अलाइव। सो टर्न दोज डायल्स अप बिकॉज टुडे इज नॉट जस्ट एन ऑर्डिनरी डे लिसनर्स, द कैलेंडर इज एब्सोल्युटली पैक्ड विद फैंटास्टिक ऑब्जर्वेंसेस व्हिच वी विल टॉक अबाउट एट ग्रेट लेंथ इन आवर डिस्कशन सेगमेंट डेटलाइन इंडिया एंड वी हैव रिपोर्ट्स, कैप्सूल्स एंड एट्रिब्यूट्स विल बी देयर towards the end of the program. So listeners, make sure that you are tuned in for the next 30 minutes. Over the next 30 minutes, we are going to present you all of that. First, we are beginning with the headlines.
1: जी बिल्कुल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जन धन योजना की वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और लोगों को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका।
2: Death toll in devastating Nepal Tibet flash floods rises to 469. Over 1500 people remain missing on both sides of the border.
1: विदेश मंत्रालय ने कहा, नेपाल में 200

0: 190 भारतीय नागरिकों से अब भी संपर्क नहीं, बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में बचाव अभियान जारी।
1: Fresh flood warning issued in Nepal as 5.1 magnitude earthquake hits Sichuan province of China.
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज से अमेरिका की 6 दिन की यात्रा पर।
1: And India's Vellavan Senthilkumar to take on Bolos Farkas of Hungary in the final of PSA Budapest squash open tonight.

0: Sanskrit, it is the timeless language of India's knowledge, India's philosophy and civilization, and has shaped country's rich cultural heritage and intellectual traditions.
1: बिल्कुल, प्राचीन भारत में संस्कृत ज्ञान और विद्वानों के बीच विचारों के आदान प्रदान का माध्यम थी. संस्कृत साहित्य का दायरा बहुत बड़ा था. ये प्राचीन हिंदू सभ्यता की समृद्धि दर्शाता है. संस्कृत में सिर्फ धर्म, आध्यात्मिकता, दर्शन, संगीत, खगोल विज्ञान, ज्योतिष, चिकित्सा, वास्तुकला और राजनीति जैसे गंभीर विषयों पर ही बात नहीं होती, बल्कि संस्कृत का एक हल्का फुल्का पहलू भी था, जैसे प्रहसन यानी हास्य नाटक जो दर्शकों को हंसाता और गुदगुदाता था. राजा शूद्रक का नाटक मृच्छकटिकम ये बताता है कि संस्कृत साहित्य प्राचीन भारतीयों के रोजमर्रा के जीवन से गहराई से जुड़ा हुआ था, और जब ये जुड़ाव कमजोर पड़ा तो संस्कृत पवित्र दायरों तक ही सिमट कर रह गई.
0: Well, yes, Mukesh, and Sanskrit has been the medium for India's ancient scriptures, philosophies and scientific treaties for thousands of years. Its roots can be traced back to the Vedic period around 1500 BCE, and this makes a cornerstone of Indian civilization. The history of World Sanskrit Day dates back to 1969, the year 1969, when the government of India declared the full moon day of Shravan to be Sanskrit Day. And today it's also it's full moon day today. So this was done to commemorate the birth anniversary of Panini, the Sanskrit scholar and, well, the grammarian, who is considered the father of Sanskrit grammar, Panini.
1: जी, ब्रिटिश शासन के आने से संस्कृत एक उलझन भरी स्थिति में आ गई. वॉरेन हेस्टिंग्स से शुरू की गई ओरिएंटलिज्म यानी प्राच्यवाद की नीति के अंतर्गत अंग्रेजों ने भारत में दो संस्कृत महाविद्यालय स्थापित किए. बनारस में केंद्रीय संस्कृत महाविद्यालय, इसकी स्थापना 1791 में हुई, और अब ये वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय का हिस्सा है. और कलकत्ता में संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना 1824 में हुई. एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 में हुई, और अब हो चुके फोर्ट विलियम कॉलेज ने संस्कृत पांडुलिपियों की खोज, उनके अनुवाद और प्रकाशन में बेहतरीन भूमिका निभाई है. पहली बार इस प्राचीन भाषा को प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का फायदा मिला, जिसे अंग्रेजों ने 1770 के दशक में भारत में शुरू किया था. इससे संस्कृत ग्रंथों का पारंपरिक रूप से बदलकर आधुनिक हार्ड बाउंड या पेपरबैक किताबों जैसा हो गया.
0: Well, yes, and it's also important to mention that Sanskrit came under intense stress during the medieval era with the advent of Muslim rule. The destruction of the vast library at Nalanda, Mahavihara, has become legendary. So historian Ashirvadi Lal Srivastav notes that after Lal Biruni, no outstanding Muslim figure was associated with Sanskrit learning, and there were translated works. They were primarily of practical interest, and there is no evidence of any Sanskrit scholar being present at the court of any Sultan of Delhi. Well, though considered an ancient language, Sanskrit continues to influence modern languages, especially in South Asia. And many Indian languages borrow heavily from its vocabulary and structure. Globally, scholars are studying Sanskrit for insights into linguistics, philosophy, and even computational linguistics, and because of its precise grammar, that's the reason. So Mukesh, overall, World Sanskrit Day is more than just a celebration. It's a reminder of our duty to preserve and promote a language that shaped much of India's intellectual and spiritual heritage. Through awareness and education, Sanskrit can continue to thrive for generations to come. Right?
1: Bilkul.
0: So we are now proceeding, listeners. Today, it's Raksha Bandhan, the festival of special bond between brothers and sisters, and it's being celebrated with full festive gaiety across the country. And on this occasion, if somebody doesn't know, sisters tie colorful rakhi around the wrist of their brothers and pray for their prosperity, health and well-being. And in return, brothers pledge to protect and support their sisters and present them gifts. That's the best part.

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रक्षाबंधन पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति ने सभी नागरिकों से परिवारों और समुदायों के बीच आपसी रिश्तों को मजबूत करने का संकल्प लेने और इसी भावना के साथ विकसित भारत की ओर आगे बढ़ने का आग्रह किया है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि रक्षाबंधन प्यार, भरोसे और सुरक्षा के खूबसूरत बंधन का प्रतीक है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी रक्षाबंधन पर शुभकामनाएं दी हैं। श्री मोदी ने आशा व्यक्त की कि रक्षाबंधन का त्यौहार

0: विश्वविद्यालय में महत्वपूर्ण शोध सामने आया है, तो इस बारे में सुनते हैं रिपोर्ट।
1: नागपुर के राष्ट्र संत तुकड़ोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर गणित विभाग के विद्यार्थियों ने तनाव की पहचान करने वाली एक अभिनव प्रणाली विकसित की है। खास बात यह है कि इस प्रणाली में गणित की फ्रैक्टल तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। शोधकर्ता छात्राएं गौरी झाड़े और बबीता गायधने ने विभाग अध्यक्ष डॉक्टर गणेश केदार और जरीना जोया के मार्गदर्शन में यह शोध किया है। शोध परियोजना का नाम है सिस्टम एंड मेथड फॉर स्ट्रेस डिटेक्शन इन वेरिएबल डिवाइस यूजिंग हाइब्रिड HRV फ्रैक्टल फीचर। यह प्रणाली हार्ट रेट वेरिएबिलिटी यानी HRV के आधार पर तनाव का पता लगाने में मदद करेगी। HRV में दिल की धड़कनों के बीच के सूक्ष्म अंतर का अध्ययन किया जाता है। तनाव की स्थिति में शरीर में होने वाले बदलावों का संकेत इससे मिल सकता है। इस शोध की खासियत यह है कि भविष्य में स्मार्ट वेरिएबल डिवाइस के जरिए तनाव की निगरानी करना और उसका शुरुआती स्तर पर पता लगाना संभव हो सकता है। इससे अस्पतालों में इस्तेमाल होने वाले पारंपरिक उपकरणों के साथ साथ पहनने योग्य स्मार्ट तकनीक के नए उपयोग की राह खुल सकती है। भारतीय पेटेंट कार्यालय ने इस शोध परियोजना को प्रकाशित भी किया है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने इस अभिनव शोध के लिए विद्यार्थियों और उनके मार्गदर्शकों का अभिनंदन किया है। परिक्रमा के लिए आकाशवाणी नागपुर से धनंजय वानखेड़े के साथ मैं हिमांगी कुलकर्णी।
2: From Nagpur, we are now heading to Shillong, Meghalaya's first eco-sustainable habitat called the Pine Home and its first open-air museum, the Thwal Hongwar, were inaugurated on August 17th. We have a detailed report. Listen in.
3: Meghalaya recently got its first eco-sustainable habitat called the Pine Home and its first open-air museum, the Thwal Hongwar. Chief Minister Conrad K. Sangma on the 17th of August inaugurated Meghalaya's first eco-sustainable habitat called the Pine Home. Built around the principles of green living and community participation, the Pine Home project at Maulangweer village in Maukirwat has blended indigenous architectural practices with modern engineering. The project is funded by the state government through the Meghalayan Age Limited at a total cost of rupees 4 crores. It was built by local professionals with the architectural designs and technologies being brought from Slovakia, Europe. Locally sourced materials form a major part of the project, while natural heating, recycled materials and rainwater conservation add to its sustainable design. The project has placed local communities at its heart, with local masons, artisans and workers contributing to its construction, thereby creating livelihoods while preserving traditional skills. Meghalaya's newly inaugurated first eco-sustainable habitat has guest rooms, a restaurant, community and conference facilities, training spaces and also a tourism information center. Pine Home can be viewed as a model for community-led sustainable tourism. And while Pine Home looks to the future, Meghalaya is also turning to its past. The Chief Minister on the 17th of August also remotely inaugurated Thwal Hongwar, an open-air museum in the Mosinram area of East Khasi Hills. The site preserves the remains of a mid-18th century Khasi settlement with more than 20 structures, megaliths, an ancient market, an iron furnace and traces of historic trade routes. Both Pine Home and Thwal Hongwar open-air museum tell a larger story of a Meghalaya, where tourism is also about protecting the environment, empowering communities and keeping the state's heritage alive for generations to come. For Parikrama, Anumita Das, Shillong.
0: और अब चलते हैं खेल के मैदान में और जानते हैं वहां की हलचल। तो सबसे पहले बात करते हैं स्क्वाश की। भारत के वलवन सेंथिल कुमार आज रात पीएससी बुडापेस्ट स्क्वाश ओपन फाइनल में हंगरी के खिलाड़ी बालाज फारकस से खेलेंगे। कल रात सेमीफाइनल में सेंथिल कुमार ने भारत के ही वीर चोटरानी को हराकर अंतिम चार में जगह बनाई।
2: नाउ इन सम बिजनेस न्यूज, benchmark domestic equity indices ended in positive zone today. The Sensex advanced 331 points or 0.43% to close at 77,265. The Nifty gained 85 points or 0.35% to settle at 24,176. In the broader market at the National Stock Exchange, the Mid-Cap 100 Index eked out a marginal gain, while the Small Caps 100 Index added 0.2%. For more updates about the market activities, tune into Akashwani's bilingual program Market Mantra at 6:30 p.m. this evening.
0: और अब हम याद करेंगे महान स्वतंत्रता सेनानी को और बात करेंगे उन महान व्यक्तियों की जिनकी आज पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन।
4: Today, we bring you the story of a great freedom fighter and social reformer from Gujarat, Jhaverchand Meghani. Jhaverchand Meghani was born on this day in 1896 in Chotila town of Surinam.

0: Indranagar district in Gujarat. Inclined towards literature from a young age, he wrote his very first poem when he was just 12. He went on to pursue degrees in both Sanskrit and English literature. In 1930, the noted poet and writer was sentenced to 2 years in jail for writing the book Sindhudo that contained songs to inspire the youth participating in the struggle for independence from the British Raj.
1: It was during this time that he wrote Kavya Tripoti, based on Gandhiji's visit to London for the Round Table Conference. He was conferred the title of Rashtra Shayar, or a national poet, by Mahatma Gandhi. Sardar Vallabhbhai Patel praised him and said he was a voice full of courage. One of his most famous songs, Mor Bani Thangat Kare, My Mind Dances Like a Peacock, was used in the 2013 Hindi film Goliyon Ki Rasleela Ramleela.
0: Meghani authored more than 100 books. His first book was a translation work of Rabindranath Tagore's ballad Kotha O Kahini, titled Kurbani Niye Kotha, Stories of Martyrdom, which was first published in 1922. He was also the editor of Phool Chhab newspaper of Janmabhoomi Group, which is being published till date from Rajkot.
1: It was also on this day in 1928 that the Nehru Committee Report, or the Nehru Report, was submitted at the Lucknow session of the All Party Conference. A committee headed by Motilal Nehru, with Jawaharlal Nehru as the secretary, was set up to draft a constitution. When the Simon Commission came to India in 1928, it was vehemently opposed by Indians, especially by the Indian National Congress, for the lack of a single Indian in the commission. So, the Secretary of the State for India, Lord Birkenhead, challenged the Indian leaders to draft a constitution for India, implicitly implying that Indians were not capable of finding a common path and drafting a constitution.
0: The political leaders accepted this challenge, and an all-party conference was held and a committee report appointed with the task of drafting a constitution. The Nehru report had the primary motive of assigning dominion status to India within the British Commonwealth. Some of the main recommendations of the report were the formation of a federal form of government with residuary powers in the hands of centre, enshrinement of 19 fundamental rights, including the right to vote for men and women above 21 years of age, equal rights for men and women as citizens, no state religion, and a proposal for the creation of a Supreme Court. In fact, the Nehru Report was the first major attempt by Indians to draft a constitution of India.
1: Today is the death anniversary of the great freedom fighter Chengjapao Dongel from Manipur, popularly known as Chengjapao Kuki. He was one of the Kuki leaders who questioned the British authority during the Kuki uprising of 1917-1919. During the Second World War, he organized Kukis against colonial and feudal authority of the British under the banner of the Indian National Army. He was the chief of Assen, the city of Dongal clan. During the reign of Chengjapao, Assen's glory spread far and wide and it became the most powerful city. The British government saw the rise of Chengjapao Dongel and the revolt of the Kukis as a serious threat to the eastern part of India. Chengjapao Dongel was arrested and sent to jail for 4 years.
0: After India gained its independence, the government, in recognition of the bravery shown by the Kuki heroes and in memory of the war of independence they had fought, gave a grant for the construction of Kuki Inn, which today stands in the heart of the Imphal town. Chengjapao Dongel's name will continue to be remembered with honor and reverence in the history of India's freedom struggle.
2: और अब हम याद कर रहे हैं वेद वेदांग संस्कृत व्याकरण और भाषा विज्ञान के अप्रतिम विद्वान कपिल देव द्विवेदी को. आज उनकी पुण्यतिथि है. उन्होंने इस विषयों पर 75 से अधिक ग्रंथ लिखे थे. उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भी भाग लिया और 6 महीने के कठोर कारावास की सजा भी भोगी. कपिल देव द्विवेदी गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के कुलपति भी रहे. उन्हें भारत सरकार ने 1991 में पद्मश्री से अलंकृत किया था. कपिल देव द्विवेदी की गणना विश्व के प्रमुख प्राच्य विद्याविदों, भाषाविदों और वेदविदों में की जाती है. वो संस्कृत के सरलीकरण पद्धति के उन्नायक और प्रवर्तक माने जाते हैं. संस्कृत को लोकप्रिय बनाने में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है. कपिल देव द्विवेदी ने 35 वर्ष की अवस्था से ही ग्रंथों का लेखन कार्य आरंभ कर दिया था और देहांत के 1 वर्ष पूर्व तक निरंतर लेखन कार्य करते रहे. उन्होंने 80 से अधिक ग्रंथों की रचना की. उत्कृष्ट रचनाओं से उन्होंने संस्कृत साहित्य को समृद्ध किया और अनेक सम्मान और पुरस्कारों से अलंकृत हुए। उनकी कृतियों में 5 लाख से भी अधिक व्यक्ति संस्कृत भाषा सीख चुके हैं और ये ग्रंथ आज भी संस्कृत भाषा के प्रचार और प्रसार के महत्वपूर्ण माध्यम हैं।
3: Today, listeners, we are also remembering the actor and playwright Chadwick Boseman. Through his 2-decade career, he appeared in a number of projects spanning both blockbuster and I think his fans might know, they will definitely know Wakanda Forever, that's what he's famous for, and also independent films, and received various accolades including Actor Award, Golden Globe, Primetime Emmy, and in addition to nominations for Academy Award and BAFTA as well. And his first major role was in a series, Persons Unknown, and he landed breakthrough role as a baseball player, which he played in Jackie Robinson. I was telling you about Chadwick Boseman.
2: और आज ही पुण्यतिथि है भारतीय मूर्तिकार और कलाकार शंकु चौधरी की। उन्हें भारत की कला जगत में प्रतिष्ठित हस्ती माना जाता है और एक परंपरा के उनकी पारिवारिक परंपरा के अनुसार उनका नाम नारायण रैन था, लेकिन वे अपने उपनाम शंखों से अधिक प्रसिद्ध थे। राम किंकर बैज उनके गुरु थे। उन्होंने घनवाद से शुरुआत की और फिर इस्तवान ब्योथी से प्रभावित हुए, जिनसे उनकी मुलाकात पेरिस में हुई। उनके विषयों में नारी आकृति और वन्य जीव शामिल हैं। उन्होंने विभिन्न माध्यमों में काम किया और बड़े पैमाने पर रिलीफ और मोबाइल बनाए। उन्हें 1971 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार और ललित कला अकादमी नई दिल्ली के फेलोशिप से 1956 और 1982 में सम्मानित किया गया। 1974 में सेंट्रो एस्कोलर यूनिवर्सिटी फिलीपींस द्वारा डीलिट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया और विश्व भारती विश्वविद्यालय द्वारा 1981 में उन्हें अबान गोहन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वे मुंबई के भारतीय मूर्तिकार संघ के प्रथम मानद संयुक्त सचिव थे। 1980 के दशक के उत्तरार्ध में वे नई दिल्ली स्थित ललित कला अकादमी के अध्यक्ष रहे और 1997 में MGMA में उनकी कृतियों की एक पूर्वव्यापी प्रदर्शनी आयोजित की गई थी।
3: Well, listeners, everyone thinks of changing the world, but no one thinks of changing himself. Said who? Said Leo Tolstoy. Well, Leo Tolstoy's life became larger than literature because he was not only trying to write great books, he was trying to understand how to live a good life without losing his soul in the process. And the moment that changed his life came after achieving everything most writers dream of. His novel, War and Peace, made him one of the most celebrated authors in the world. But instead of the fulfillment and success, that pushed him into a deep spiritual crisis. So Tolstoy became obsessed with questions about death, meaning, and how a human being should truly live. Which reminds me of another quote by him. Well, it's very meaningful and profound. So can I share it? Mm-hmm. Happiness does not depend on outward things, but on the way we see them. It makes me get through the hardest times. I like it. That's why I wanted to share with our listeners. I was telling you about Leo Tolstoy.
2: और अब हम याद कर रहे हैं भारत के प्रसिद्ध उर्दू शायर फिराक गोरखपुरी को। फिराक उनका तखल्लुस था और उन्हें उर्दू कविता की बोलियों से जोड़कर उनमें नई लोच और रंगत पैदा करने का श्रेय दिया जाता है। और उनका जो वास्तविक नाम था वो रघुपत सहाय था। फिराक गोरखपुरी ने अपने साहित्यिक जीवन का आरंभ गजल से किया था। फारसी, हिंदी, ब्रजभाषा और भारतीय संस्कृत की गहरी समझ होने के कारण उनकी शायरी में भारत की मूल पहचान रच बस गई। उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार और सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। वर्ष 1970 में उन्हें साहित्य अकादमी का सदस्य भी मनोनीत किया गया था। और उनकी 20वीं सदी की इन जो गंभीर और विद्वता का अंदाजा इस शायरी से पता चलता है जब वो लिखा करते थे, जाओ ना तुम हमारी इस बेखबरी पर कि हमारे हर ख्वाब से एक अहद की बुनियाद पड़ी है। और फिराक साहब की कविता में सौंदर्य के बड़े कोमल और अछूते अनुभव व्यक्त करते हुए एक शेर है, किसी का यूं तो हुआ कौन उम्र भर फिर भी, ये हुस्नो इश्क धोखा है सब मगर फिर भी। और 1962 की चीन की लड़ाई के समय फिराक साहब की ये गजल बहुत मशहूर हुई थी, सुखन की शम्मा जलाओ बहुत उदास है रात, नवाए मीर सुनाओ बहुत उदास है रात, कोई कहे ये ख्यालों और ख्वाबों से दिलों से दूर ना जाओ बहुत उदास है रात, पड़े हो धुंधली फिजाओं में मुंह लपेटे हुए, सितारों सामने आओ बहुत उदास है रात।
3: आई वुड लाइक टू री रीड दैट, इट्स ग्रेट। Listeners, today we're also remembering Billy Wayne Grammer, the country music singer, accomplished guitar player as well. He recorded the million-selling Gotta Travel On, which made into both the country and pop music charts in 1959.

0: और अब हम याद कर रहे हैं भोपाल रियासत की राजकुमारी आबिदा सुल्तान को। आबिदा सुल्तान को भारत की पहली महिला पायलट होने का गौरव प्राप्त था। इन्हें 25 जनवरी 1942 को उड़ान का लाइसेंस मिला था। उपमहाद्वीप के मुस्लिम राजनीति में सक्रिय भूमिका अदा करने वाली आबिदा सुल्तान ने अपने पिता हमीदुल्ला खान के कैबिनेट के अध्यक्ष और मुख्य सचिव की जिम्मेदारी भी संभाली। आबिदा पोलो और स्क्वाश जैसे खेलों में दिलचस्पी रखती थी और 1949 में भी अखिल भारतीय महिला स्क्वाश की चैंपियन रहीं। और अब हम याद कर रहे हैं भारत के प्रसिद्ध सितार वादक विलायत खां को। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत ख्याति प्राप्त की थी। उस्ताद विलायत खां की पिछली कई पुश्तें सितार वादन से जुड़ी रही थी। उनके पिता इनायत हुसैन खां ने पहले उस्ताद इमदाद हुसैन खां भी जाने माने सितार वादक रहे थे। विलायत खां ने सितार वादन की अपनी अलग गायन शैली विकसित की थी जिसमें श्रोताओं पर गायन का एहसास होता था। उनकी कला के सम्मान में राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने उन्हें आफताबे सितार का सम्मान दिया था और ये सम्मान पाने वाले भी एकमात्र सितार वादक थे।
1: Well, yes, his mastery was perhaps most evident in his renditions of great traditional rags such as Yaman, Shri, Todi, Darbari and

0: और उस्ताद विलायत खान ने कुछ प्रसिद्ध फिल्मों में भी संगीत दिया। 1958 में निर्मित सत्यजीत रे की बांग्ला फिल्म जलसाघर, 1969 में मर्चेंट आइवरी की फिल्म द गुरु और 1976 में मधुसूदन कुमार की हिंदी फिल्म कादंबरी में उस्ताद विलायत खान ने संगीत दिया। तो श्रोताओं, आज का कार्यक्रम यही समाप्त करते हैं। मुकेश कुमार और शगुन चोपड़ा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। नेपाल तिब्बत सीमा पर अचानक आई विनाशकारी बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 538 हो गई है और सीमा के दोनों तरफ 1545 लोग लापता हैं। नेपाल के सुरक्षा कर्मियों ने प्रभावित जिलों से 800 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। एक रिपोर्ट।
2: भोटे कोशी नदी प्रणाली के स्रोत के पास नई झील बन गई है। इसके टूटने से पानी के एक और तेज बहाव की आशंका है, इससे बचाव कार्यों में बाधा आ सकती है। इस बीच आज चीन के सिचुआन प्रांत में 5.1 तीव्रता के भूकंप के बाद नेपाल में बाढ़ की नई चेतावनी जारी की गई है। अधिकारियों ने त्रिशूली क्षेत्र में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने का आदेश दिया है। नेपाल पुलिस ने बताया कि तिब्बत की ओर स्थित एक बांध फिर टूट गया है। वहां के निवासियों और सुरक्षा कर्मियों से सुरक्षित स्थानों पर जाने को कहा गया है। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
1: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि नेपाल में बुधवार को अचानक आई त्रासदी के बाद 320 भारतीय नागरिकों से संपर्क नहीं हो पा रहा है। उन्होंने कहा कि भारतीय मूल के लगभग 100 लोगों से भी संपर्क नहीं हो पाया है जो अन्य देशों के नागरिक हैं। श्री जायसवाल ने आज नई दिल्ली में मीडिया को बताया कि त्रिशूली एक जल विद्युत परियोजना में काम कर रहे 63 भारतीय नागरिकों को प्रभावित इलाकों से बचाया गया। उन्होंने कहा कि चीन की तरफ फंसे 96 भारतीय नागरिक सुरक्षित रूप से जमीन के रास्ते नेपाल पहुंच गए हैं और उन्हें वहां से निकालने के प्रयास जारी हैं। इस बीच भारत ने नेपाल को मानवीय सहायता बढ़ा दी है। श्री जायसवाल ने बताया कि सरकार ने विदेश मंत्रालय में 24 घंटे कार्यरत नियंत्रण कक्ष बनाया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नेपाल में राहत और बचाव कार्यों पर चर्चा की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि काठमांडू और पेचिंग में भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों की स्थिति और उनकी सलामती के बारे में नई जानकारी दी है। सरकार ने कहा है कि देश में चीनी की कोई कमी नहीं है, उचित कीमतों पर पर्याप्त मात्रा में चीनी उपलब्ध कराने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जाएंगे। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने बताया कि हाल के दिनों में चीनी मिलों से बाहर चीनी की कीमतों में लगभग 20% की गिरावट आई है, जबकि खुदरा चीनी की कीमतों भी कम होने लगी हैं। प्रधानमंत्री जन धन योजना के आज 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। ये देश में वित्तीय समावेशन के परिदृश्य को बदलने की दिशा में प्रमुख पड़ाव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जन धन योजना वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और देश के लोगों को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। योजना के अंतर्गत अब तक 59 करोड़ से अधिक खाते खोले जा चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन की यात्रा पर कल उज्बेकिस्तान जाएंगे। वे उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्ज़ोयोयेव के निमंत्रण पर ताशकंद का दौरा करेंगे। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी और मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन आज से 6 दिन की अमरीका यात्रा पर हैं। यात्रा के दौरान वे शिकागो, एशविल और न्यूयॉर्क जाएंगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन शिकागो में प्रमुख निवेशकों के साथ एक गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगी और निजी क्षेत्र की प्रमुख कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों, अध्यक्षों और वरिष्ठ प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगी। एशविल में श्रीमती सीतारमन की अध्यक्षता में G20 सदस्य देशों के वित्त मंत्री, केंद्रीय बैंक गवर्नर तथा वरिष्ठ आर्थिक अधिकारी वैश्विक आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। महाराष्ट्र के नाशिक से 450 टन से अधिक प्याज लेकर पहली कांदा एक्सप्रेस आज सुबह दिल्ली पहुंची। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने कहा कि सरकार ने प्याज की उपलब्धता सुनिश्चित करने और कीमतों में नियंत्रण के लिए बफर स्टॉक से प्याज की नियंत्रित बिक्री शुरू कर दी है। दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ की उत्तरी रेंज ने ISI समर्थित पाकिस्तान के एक जासूसी नेटवर्क का भंडाफोड़ कर दिल्ली के एक दंपत्ति को गिरफ्तार किया है। दंपत्ति पर वर्ष 2024 से पाकिस्तानी खुफिया एजेंट्स के लिए काम करने का आरोप है। पुलिस के अनुसार दंपत्ति कथित तौर पर पाकिस्तान के हैंडलर्स को सहायता प्रदान करता था। रक्षाबंधन का त्यौहार आज देशभर में मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में विभिन्न स्कूलों और संगठनों में रक्षाबंधन का पर्व मनाया। खेलों में भारत के वेलवन सेंथिल कुमार आज रात पीएसए बुडापेस्ट स्क्वाश ओपन के फाइनल में हंगरी के खिलाड़ी बालाज फारकस से मुकाबला करेंगे। कल रात सेमीफाइनल में सेंथिल कुमार ने भारत के ही वीर चोटरानी को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर पेश है पानी पर लिखी कहानी। आज की कहानी है प्यारा बंधन।

जाते जाते कोई कहानी ही तो कह रहे हैं। कहानी मेरी, आपकी, हम सबकी। ये कहानी भी हमारी ही जिंदगी के किसी आते जाते लम्हे से टूटकर बनी है। ये कहानी बयां करती है एक बहन के दिल में उसके भाई के लिए उमड़ते स्नेह प्यार की, एक ऐसे इंसान की जिसे हालातों ने जीते जी मार डाला, लेकिन बहन ने उसे बचा लिया। आइए सुनते हैं कहानी प्यारा बंधन।

वो फुटपाथ के एक कोने में दीवार के सहारे दुबका बैठा था। कंबल लेने वालों की लाइन लगी थी, लेकिन वो उठकर नहीं आ रहा था। और जाने क्यों, सीमा की नजर बार बार उसकी ओर जा रही थी। उसने एक मैली कुचैली चादर में खुद को लपेट रखा था, सिर्फ आंखें ही नजर आ रही थी। जाने क्यों सीमा को लगा कि शायद वो वही होगा। सभी को कंबल देने के बाद सीमा उसकी ओर बढ़ गई। सीमा को अपनी ओर आती देखकर वो डर के मारे सिमट गया। ना जाने किस बात का डर था उसे, लेकिन जितना जितना वो खुद को छिपाता जा रहा था, उसे देखने की इच्छा सीमा के भीतर उतनी ही बलवती होती जा रही थी। जैसे ही सीमा उसके पास पहुंची, वो चुपचाप उठकर दूसरी ओर चला गया। सीमा ने उसे आवाज दी, लेकिन उसने अनसुना कर दिया। मन में हजारों अनसुलझे सवाल लेकर सीमा एक बार फिर से निराश मन और भारी कदमों से वापस घर की ओर मुड़ चली। उसके मन में ख्याल आ रहा था कि फुटपाथ पर बैठे इन लोगों में कोई किसी का पिता होगा, कोई किसी का बेटा, तो कोई किसी का भाई होगा। अनेक दयनीय निगाहें सीमा को उम्मीद भरी नजरों से देख रही थी और मानो कह रही

उस दिन के बाद सीमा जब भी उस रोड से गुजरती तो एक अनजानी आस जागती और निगाहें फिर उसी इंसान को खोजने लगती। उसे जाने क्यों बार बार लगता कि ये वही है जिसे वो ढूंढ रही है। इस महानगर की गलियों ने बरसों पहले निगल लिया था सीमा के छोटे भाई को। तब से गाहे बगाहे कंबल या खाना देने के बहाने वो इन फुटपाथों पर आ जाती और हर चेहरे में तलाशने लगती उसे जिससे बचपन से एक प्यारा बंधन जुड़ा हुआ था। जब भी सावन का महीना और राखी का त्योहार आता तो भाई की याद में सीमा की आंखें सावन बन जाती। दिन भर उसकी राह निहारने के बाद जब रात को आसमान में चांद निकलता तो अनायास ही उसके होठों पर ये गीत

उस दिन राखी का त्योहार था। भाई के लिए स्नेह प्रेम हर दीवार को तोड़ता हुआ महसूस हो रहा था और सीमा के कदम अनायास ही उस तरफ चल पड़े जहां उसने उस अजनबी को देखा था। सीमा ने मन ही मन में ये तय कर लिया कि हो ना हो आज मैं जरूर उससे बात करूंगी। वहां पहुंची तो वो अजनबी कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। थोड़ी देर ढूंढने के बाद एक अंधेरे कोने में वो बैठा हुआ दिखाई दे ही गया। वही फटे कंबल में लिपटी उसकी आकृति बहुत डरावनी लग रही थी, लेकिन सीमा ने महसूस किया कि जब दिल में दया करुणा स्नेह प्रेम का भाव उठ रहा हो तो डर कहीं गायब हो जाता है। शायद दया करुणा प्रेम के भाव हर भाव से कहीं ज्यादा मजबूत होते हैं। सीमा उसकी ओर बढ़ चली। सीमा को देखते ही वो उठकर जाने लगा तो सीमा ने सामने जाकर उसे रोक लिया। वो ठिटका लेकिन रुका नहीं। सीमा ने उसे आवाज दी, सुनो भैया, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वो रुक गया लेकिन बोला कुछ नहीं, बस सिर झुकाए खड़ा रहा। सीमा पूरे अपनत्व को समेट कर फिर बोली, कहाँ चले गए थे तुम? मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही हूं। सीमा को इस तरह अपने सामने पाकर वो घबरा रहा था और खुद को भरसक छिपाने की कोशिश कर रहा था। सीमा बोली, डरो मत, मैं तुम्हारी बहन हूं, पहचाना नहीं मुझे? उसने अपनी आंखों से थोड़ा सा कंबल हटाया और धीरे से बोला, मुझे कुछ खाने को दे दो, बहुत भूख लगी है। सीमा ने जल्दी से अपना बैग खोला, उसमें कुछ बिस्कुट पड़े थे। उसे पकड़ाते हुए बोली, अभी यही है मेरे पास। उसने जल्दी से बिस्कुट लिया और मुंह दूसरी तरफ करके इस तरह खाने लगा जैसे कई दिनों का भूखा हो। ये देखकर सीमा की आंखों में आंसू आ गए और वो सोचने लगी, किस्मत के खेल कितने निराले हैं, ना जाने किसको कौन सा दिन दिखा दे।

बिस्कुट खाने के बाद वो फिर मुड़कर जाने लगा तो सीमा बोली, सुनो मुझे तुमसे बात करनी है। उसने कहा, मुझसे क्या बात करनी है, मैं आपको नहीं जानता। लेकिन मुझे लगता है मैं आपको जानती हूं, आप मेरे भाई हो। सीमा ने कहा तो उसने मुंह दूसरी ओर घुमाकर कहा, मैं किसी का भाई नहीं, आप जाइए यहां से। और हाँ, यहां बार बार मत आया कीजिए, ये जगह आपके लिए अच्छी नहीं। ठीक है मैं चली जाऊंगी, बस ये कंबल हटा दो। क्यों? उसने सवाल किया। क्योंकि मुझे तुम्हें देखना है, मेरा भाई खो गया है, मैं उसे ही ढूंढ रही हूं, मुझ पर दया करो। कौन खो गया है आपका? उसने धीरे से पूछा। मेरा इकलौता भाई, वो दिमागी तौर पर कमजोर है, गांव से यहां दिल्ली लेकर आई थी इलाज कराने, 12 साल का था। यहीं इसी रोड पर उसकी उंगली छूट गई और ना जाने कहां गुम हो गया मेरा भाई। तब से आज तक ढूंढ रही हूं, दिल्ली की हर गली छान मारी, हर न्यूज़पेपर में उसकी फोटो छपवाई, पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवाई, लेकिन वो नहीं मिला, कहीं नहीं मिला। 10 साल हो गए तब से अपने भाई की तलाश में भटक रही हूं। अपनी आप बीती सुनाती सुनाती सीमा रोने लगी थी।

सीमा रो रही थी और वो बस चुप था। अब सीमा को उसकी खामोशी खलने लगी थी और उसे गुस्सा आने लगा। उसने चिढ़कर कहा, लगता है कि तुम्हारे भीतर सारी संवेदनाएं मर चुकी हैं, और वैसे भी तुम नकारा लोगों को संवेदनाओं और रिश्तों नातों से क्या, तुम मेरे भाई हो ही नहीं सकते। ये कहकर जैसे ही वापस वो मुड़ने को हुई, उस अजनबी ने ओढ़ा हुआ कंबल गिरा दिया। सीमा की नजर उसके चेहरे पर पड़ी तो उसकी चीख निकल गई। डर के मारे उसने अपनी आंखें बंद कर ली। उसका जला हुआ चेहरा बहुत बदसूरत

सोहन एक संपन्न परिवार का एक लौता बेटा था। पिता सोहनलाल कपड़ों के बिजनेसमैन थे। घर में माँ और एक छोटी बहन थी। किसी चीज की कोई कमी ना थी। माता पिता ने मोहन को बड़े प्यार और दुलार से बड़ा किया। दुख तकलीफ ने मोहन को छुआ भी ना था। मोहन जब बड़ा हुआ तो उसकी शादी उसकी पसंद की एक लड़की कामना से हुई। कामना बेहद खूबसूरत और समझदार थी। दिन बहुत अच्छे से गुजर रहे थे कि अचानक एक दिन सोहनलाल को दिल का दौरा पड़ा और वो अपनी सारी जिम्मेदारी मोहन के कंधों पर डालकर चल बसे। मोहन को तब पहली बार पता चला कि दुख हो या सुख, इंसान को ठहरना नहीं है, बस आगे बढ़ते जाना है।

जी हाँ, सभी की जिंदगी की डोर वक्त के हाथों में है। ये जैसे चाहे इंसान को नाचना ही पड़ता है। मोहन की जिंदगी फिर से आगे बढ़ने लगी थी और वो जी जान से अपना परिवार और बिजनेस संभालने लगा। मोहन की पत्नी कामना भी बिजनेस में उसका हाथ बटाने लगी। मोहन अपने परिवार से बहुत प्यार करता था, खास तौर पर अपनी बूढ़ी माँ और छोटी बहन कमला से। जब भी राखी या भाई दूज का त्योहार आता तो मोहन सारे काम छोड़कर छुट्टी ले लेता और दोनों भाई बहन खूब खुशियां मनाते। मोहन अक्सर अपनी बहन को ये गीत गाकर छेड़ा करता था।

सुख या दुख, समय कोई भी हो, हमेशा एक सा नहीं रहता। एक दिन मोहन ऑफिस में बैठा काम कर रहा था, तभी पड़ोस के गुप्ता अंकल की कॉल आई। हेलो हेलो मोहन बेटा, तुम्हारे घर से धुआं उठ रहा है, जल्दी घर आ जाओ। मोहन बदहवास घर की ओर भागा। घर पहुंचकर उसने देखा कि घर से लपटें उठ रही हैं। वो माँ माँ चीखता हुआ जलते घर में कूद पड़ा। मोहन को जब हॉस्पिटल में होश आया तो उसकी दुनिया लुट चुकी थी। उसकी माँ और बहन को आग निगल गई थी और वो हमेशा के लिए अपना खूबसूरत चेहरा खो चुका था।

मोहन निराशा के भंवर में डूबने लगा। न किसी से मिलता, न किसी से बात करता, बस घर के एक कोने में पड़ा रहता। वो इस अपराध बोध से ग्रसित था कि वो अपनी बूढ़ी माँ और छोटी बहन को बचा नहीं पाया। मोहन एक गहरे डिप्रेशन में जा चुका था और फिर एक रात चुपचाप उसने घर छोड़ दिया।

मोहन ने कई बार मर जाने की सोची, लेकिन जिंदगी मौत से ज्यादा ताकतवर निकली। जाने कब कहां कहां से भटकते भटकते यहां फुटपाथ पर आ बैठा। दिन भर उजाले में छिपकर सोया रहता, रात को खाने की तलाश में निकलता और कहीं कुछ इधर उधर से किसी का फेंका हुआ खाने को मिल जाता तो वो

उसी से अपना पेट भर लेता। ये कोई जिंदगी तो नहीं थी, मगर इसके अलावा मोहन के पास कोई और रास्ता भी नहीं था। या यूं कहें कि जब इंसान की जीने की इच्छा ही मर जाए तो रास्ते होते हुए भी खो जाते हैं और इंसान बस एक जिंदा लाश बनकर रह जाता है और जिंदगी एक पहेली।

मोहन अपनी दर्द भरी दास्तां सुनाकर चुप हो चुका था। अब शायद वो सीमा की प्रतिक्रिया जानना चाहता था। सीमा को खामोश देखकर उसने अपना कंबल उठाया और चल दिया। सीमा सोच रही थी कि अब क्या करना है। अचानक उसने पीछे से मोहन का हाथ पकड़ लिया और बोली, भैया घर चलो, माँ तुम्हारा इंतजार कर रही है। आज राखी है ना, देखो तुम्हारी कलाई सोनी है और मेरी राखी भी अधूरी।

साथियों, तो ये थी कहानी प्यारा बंधन। कहानी की प्रस्तुति और निर्देशन रश्मि कुकरेती का। आपको ये कहानी कैसी लगी, आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर 9868868753 पर मैसेज करके बता सकते हैं। इसके अलावा आप अपने सुझाव हमारी मेल आईडी fmgoldairdaily@gmail.com पर भी हमें भेज सकते हैं। तो अब दीजिए इजाजत मुझे यानी कुसुम को। नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। नेपाल और तिब्बत में विनाशकारी बाढ़ से मृतकों की संख्या बढ़कर 538 हो गई है। 1545 लोग अब भी लापता हैं। राहत और बचाव दल नदी के किनारों और बस्तियों में जीवित बचे लोगों और बाढ़ में बह गए शवों की तलाश कर रहे हैं। दक्षिण पश्चिमी चीन में 5.1 तीव्रता के भूकंप के बाद फिर से बाढ़ की आशंका बढ़ गई है। अधिकारियों ने प्रभावित जिलों से 800 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। भोटे कोशी नदी के उद्गम स्थल के पास बाढ़ के मलबे से बनी झील और तिब्बत के एक बांध के टूटने की खबर ने एक बार फिर बाढ़ की आशंका को बढ़ा दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज बताया कि नेपाल में बुधवार को अचानक बाढ़ त्रासदी के बाद 320 भारतीय नागरिकों से संपर्क नहीं हो पा रहा है। उन्होंने कहा कि अन्य देशों के भारतीय मूल के लगभग 100 लोगों से भी संपर्क नहीं हो पा रहा। श्री जायसवाल ने नई दिल्ली में मीडिया को बताया कि त्रिशूली वन जल विद्युत परियोजना में काम कर रहे 63 भारतीय नागरिकों को प्रभावित इलाकों से बचाया गया है। उन्होंने कहा कि चीन की तरफ फंसे 96 भारतीय नागरिक सुरक्षित रूप से जमीन के रास्ते नेपाल पहुंच गए हैं और उन्हें वहां से निकालने के प्रयास किए जा रहे हैं। श्री जायसवाल ने कहा कि चीन की तरफ लगभग 400 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और अपने परिवारों के संपर्क में हैं। इस बीच भारत ने नेपाल को मानवीय सहायता बढ़ा दी है। भारत ने बचाव और राहत कार्यों में मदद के लिए 47 टन से अधिक आपातकालीन राहत सामग्री भेजी है। श्री जायसवाल ने कहा कि सरकार ने विदेश मंत्रालय में 24 घंटे कार्यरत नियंत्रण कक्ष बनाया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने तमिलनाडु के 21 तीर्थयात्रियों से मुलाकात की जिन्हें नेपाल से बचाया गया। ये तीर्थयात्री कल बाढ़ प्रभावित क्षेत्र से काठमांडू पहुंचे थे और आज दोपहर नई दिल्ली पहुंचे। डॉ जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में नेपाली सेना और सरकार को इसके लिए धन्यवाद दिया। सिक्किम सरकार नेपाल में बाढ़ की स्थिति पर कड़ी नजर रख रही है। सरकार वहां फंसे सिक्किम निवासियों की सुरक्षा और कुशल क्षेम सुनिश्चित करने के लिए समुचित कदम उठा रही है। सरकार ने कहा है कि देश में चीनी की कोई कमी नहीं है। उचित कीमतों पर पर्याप्त मात्रा में चीनी उपलब्ध कराने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जाएंगे। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने बताया कि हाल के दिनों में चीनी मिलों से बाहर चीनी की कीमतों में लगभग 20% की गिरावट आई है, जबकि खुदरा चीनी की कीमतें भी अब कम होने लगी हैं। सरकार ने चीनी की समयबद्ध उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा मासिक कोटा प्रणाली के स्थान पर अगले महीने से पाक्षिक चीनी आवंटन प्रणाली शुरू करने का निर्णय लिया है। नए सीजन के लिए गन्ने की पेराई 15 अक्टूबर से शुरू होगी और उम्मीद है कि इस दौरान 10 लाख टन से अधिक चीनी का उत्पादन होगा। सरकार ने चीनी मिलों को अक्टूबर में उत्पादित चीनी को बिना किसी प्रतिबंध के बेचने की अनुमति दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन की यात्रा पर कल उज्बेकिस्तान जाएंगे। वे उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत

0: आकाशवाणी समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति विश्लेषण।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के कार्यक्रम विश्लेषण के नए अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका अरोड़ा। श्रोताओं, पिछले कुछ दशकों में भारत की कृषि ने देश की खाद्य जरूरतों को पूरा करने के साथ अपनी क्षमता और उत्पादन में भी लगातार बढ़ोतरी की है। वित्त वर्ष 2016 से 2025 के बीच कृषि और उससे जुड़े क्षेत्रों ने औसतन 4.45% की वृद्धि दर्ज की है, जो पिछले दशकों में सबसे अधिक है। लेकिन वर्षों से लगातार खेती, रासायनिक पदार्थों के अधिक इस्तेमाल और जलवायु परिवर्तन का असर कई क्षेत्रों में मिट्टी की सेहत पर पड़ा है। ऐसे में खेती का एक ऐसा तरीका जरूरी है जो केवल पैदावार पर ध्यान न दे, बल्कि आने वाले वर्षों के लिए मिट्टी और पूरे कृषि तंत्र को भी मजबूत बनाए। खेती को लंबे समय तक मजबूत और टिकाऊ बनाने की इसी सोच से जुड़ी है पुनर्योजी कृषि। आज के कार्यक्रम में जानेंगे कि पुनर्योजी कृषि क्या है, इसकी जरूरत क्यों महसूस की जा रही है, खेतों में इसे किस तरह अपनाया जा सकता है और सरकार की विभिन्न योजनाएं किसानों को इन तरीकों को अपनाने में किस प्रकार मदद कर रही हैं। श्रोताओं, पुनर्योजी कृषि खेती का एक ऐसा तरीका है जिसमें मिट्टी की सेहत सुधारने, जैव विविधता बढ़ाने और खेती को लंबे समय तक मजबूत बनाए रखने पर ध्यान दिया जाता है। सरल शब्दों में कहें तो इसका उद्देश्य खेत से केवल फसल लेना नहीं, बल्कि खेत की मिट्टी और प्राकृतिक व्यवस्था को भी लगातार बेहतर बनाना है। लेकिन पुनर्योजी कृषि कोई तकनीक नहीं है, ये खेती के कई ऐसे तरीकों का समूह है जिनका उद्देश्य पानी, मिट्टी, पोषक तत्वों और दूसरे संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल करना है। आइए अब जानते हैं कि पुनर्योजी कृषि के अलग अलग तरीके किस तरह खेती को अधिक मजबूत और संसाधनों की दृष्टि से बेहतर बना सकते हैं।
2: पुनर्योजी कृषि में सबसे पहले बात आती है पानी और संसाधनों के बेहतर इस्तेमाल की। सूक्ष्म सिंचाई यानी ड्रिप और स्प्रिंकलर जैसी प्रणालियों में पानी को पौधों तक अधिक नियंत्रित तरीके से पहुंचाया जाता है। ड्रिप सिंचाई में पानी सीधे पौधों की जड़ों तक पहुंचता है, जिससे पानी की बर्बादी कम होती है। स्प्रिंकलर से खेत में पानी अपेक्षाकृत समान रूप से पहुंचाया जाता है। इसी तरह खेती में मशीनों और उपकरणों का सही इस्तेमाल भी संसाधनों की बर्बादी कम करने में मदद कर सकता है। मिट्टी और पोषक तत्वों का सही प्रबंधन भी इसका महत्वपूर्ण हिस्सा है। नाइट्रोजन, उर्वरक की सही मात्रा और सही समय पर इस्तेमाल फसल की जरूरत पूरी करने के साथ साथ नाइट्रस ऑक्साइड जैसे उत्सर्जन को कम करने में मदद कर सकती है। इसके अलावा मिट्टी की सेहत सुधारने के लिए हरी खाद, कवर क्रॉपिंग और मल्चिंग जैसे तरीके अपनाए जाते हैं। हरी खाद में ऐसी फसलें उगाकर मिट्टी में मिलाई जाती हैं जिनसे मिट्टी में जैव पदार्थ और पोषक तत्व बढ़ाने में सहायता प्राप्त होती है। कवर क्रॉपिंग में मुख्य फसल के अलावा मिट्टी को ढकने के लिए फसलें उगाई जाती हैं। इससे मिट्टी के कटाव को कम करने और उसमें जैव कार्बन बनाए रखने में मदद मिलती है। वहीं मल्चिंग में पत्तियों, पुआल और दूसरे जैविक अवशेषों से मिट्टी की सतह को ढका जाता है। इससे मिट्टी में नमी बनाए रखने, तापमान को नियंत्रित करने और खरपतवार को कम करने में मदद मिलती है। प्राकृतिक खेती भी पुनर्योजी कृषि के महत्वपूर्ण तरीकों में शामिल है। इसमें खेत में ही तैयार किए जाने वाले जैविक पदार्थों जैसे जीवामृत और बीजामृत का इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह जलवायु अनुकूल खेती में पानी का सही इस्तेमाल, संतुलित उर्वरक उपयोग, कीट प्रबंधन और मिट्टी की नमी बचाने जैसे तरीकों पर जोर दिया जाता है। निखिल कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: श्रोताओं, इन तरीकों को बड़े स्तर पर अपनाने के लिए किसानों को जानकारी, प्रशिक्षण, तकनीक और आर्थिक सहायता की जरूरत होती है। इसलिए सरकार ने प्राकृतिक खेती, जैविक खेती, सूक्ष्म सिंचाई और वैज्ञानिक मिट्टी प्रबंधन से जुड़ी कई पहल शुरू की हैं। आइए अब जानते हैं कि इन प्रयासों के जरिए पुनर्योजी कृषि को किस तरह बढ़ावा दिया जा रहा है और इससे किसानों तथा पर्यावरण को क्या लाभ मिल सकते हैं।
3: वर्ष 2024 में शुरू किया गया राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन किसानों को धीरे धीरे प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ने में मदद करता है। इसके तहत प्रति किसान एक एकड़ भूमि पर 2 वर्षों तक हर साल 4,000 रुपए का प्रोत्साहन दिया जाता है। किसानों को जीवामृत और बीजामृत जैसे जैविक पदार्थ आसानी से उपलब्ध कराने के लिए 10,000 बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर बनाए जाने हैं। प्राकृतिक खेती के क्लस्टर भी विकसित किए जा रहे हैं। 5 मार्च 2026 तक देश में 18,786 ऐसे क्लस्टर बनाए जा चुके थे। इनसे 8,80,000 हेक्टेयर क्षेत्र जुड़ा था और 18,19,000 किसान इसमें शामिल थे। किसानों को मार्गदर्शन देने के लिए 33,676 कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन को प्रशिक्षण दिया गया था। जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2015 में शुरू की गई परंपरागत कृषि विकास योजना भी महत्वपूर्ण है। इसके तहत जैविक खेती करने वाले किसानों को 3 वर्षों में प्रति हेक्टेयर 31,500 रुपए की सहायता दी जाती है। अक्टूबर 2025 तक इस योजना के तहत 16,90,000 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर किया जा चुका था। पानी के बेहतर इस्तेमाल के लिए हर बूंद अधिक फसल यानी पर ड्रॉप मोर क्रॉप योजना भी लागू है। इसके तहत ड्रिप और स्प्रिंकलर जैसी सूक्ष्म सिंचाई प्रणालियों को बढ़ावा दिया जाता है। छोटे और सीमांत किसानों को इन प्रणालियों के लिए 55% और अन्य किसानों को 45% आर्थिक सहायता दी जाती है। मई 2026 तक इस योजना के तहत करीब 109 लाख हेक्टेयर भूमि को कवर किया जा चुका था और 26,325 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता जारी की गई थी। इसी तरह वर्षा आधारित क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत एकीकृत कृषि प्रणाली को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसमें फसल उत्पादन के साथ बागवानी, पशुपालन, मछली पालन और मधुमक्खी पालन जैसी गतिविधियों को जोड़ा जाता है। दिसंबर 2025 तक इस कार्यक्रम के तहत 9,53,000 हेक्टेयर भूमि को शामिल किया गया था और 15,73,000 किसानों को लाभ मिला था। मिट्टी की सेहत को समझने और सही मात्रा में खाद एवं दूसरे पोषक तत्वों के इस्तेमाल के लिए मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना भी महत्वपूर्ण है। इस योजना के तहत किसानों को उनकी जमीन की मिट्टी की वैज्ञानिक जांच के आधार पर रिपोर्ट दी जाती है। इसमें मिट्टी के 12 प्रमुख मानकों की जांच की जाती है और फसल के अनुसार उर्वरक तथा दूसरे पोषक तत्वों के इस्तेमाल की सलाह दी जाती है। 13 मार्च 2026 तक इस योजना के तहत 25,89,00,000 मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके थे। अब बात पुनर्योजी कृषि से होने वाले फायदों की। पुनर्योजी कृषि से स्वस्थ मिट्टी बनने पर सिंचाई रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों पर निर्भरता कम करने में मदद मिल सकती है। इससे खेती की लागत कम होने, पैदावार को स्थिर रखने और किसान की आय बढ़ाने की संभावना बनती है। इसके साथ ही मिट्टी में पानी रोकने की क्षमता बढ़ने से सूखे जैसी स्थिति का सामना करने में मदद मिल सकती है। मिट्टी का कटाव कम हो सकता है और नदियों तथा जलाशयों में मिट्टी और प्रदूषकों के बहाव को भी सीमित किया जा सकता है। पुनर्योजी कृषि रोजगार के नए अवसर भी पैदा कर सकती है। खेती के साथ सलाह, तकनीकी और पर्यावरण प्रबंधन जैसी गतिविधियों में काम के नए अवसर बन सकते हैं। पुनर्योजी कृषि से जैव विविधता को भी बढ़ावा मिलता है।

0: खेत में परागण करने वाले जीव, उपयोगी कीट और मिट्टी के सूक्ष्म जीव कृषि व्यवस्था को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। इस पद्धति का एक महत्वपूर्ण पहलू जलवायु परिवर्तन से निपटने की क्षमता बढ़ाना भी है। पुनर्योजी कृषि में मिट्टी में जैव पदार्थ बढ़ाने से कार्बन को मिट्टी में रखने की क्षमता भी बढ़ सकती है। इस तरह यह खेती की उत्पादकता के साथ साथ पर्यावरण की सुरक्षा में भी योगदान देती है। यानी पुनर्योजी कृषि का मूल विचार सीधा है, स्वस्थ मिट्टी, बेहतर संसाधन उपयोग और अधिक मजबूती। समाचार कक्ष से विशेष शुक्ला।
1: श्रोताओं, भारत की कृषि ने पिछले वर्षों में उल्लेखनीय प्रगति की है। अब इस प्रगति को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए खेती की बुनियाद को मजबूत करना भी जरूरी है। पुनर्योजी कृषि इसी दिशा में एक रास्ता दिखाती है। इसका आधार बहुत सरल है, मिट्टी को स्वस्थ रखें, पानी का समझदारी से इस्तेमाल करें, खेती में विविधता बढ़ाएं और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करें। इसी के साथ कार्यक्रम विश्लेषण में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। इस कार्यक्रम को तैयार किया अनिकेत ने।

0: This is Akashvani. Good evening and welcome to Market Mantra. I'm Arjun Chaudhary and with me is my co-anchor in Hindi, Manoj Pathak.
1: नमस्कार. मार्केट मंत्र के ताज़ा अंक में आपका स्वागत है. आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह हम देश और दुनिया की चुनी हुई कारोबारी, आर्थिक और शेयर बाजार से संबंधित ताज़ा खबरों को लेकर हाजिर हैं. हमारे साथ खबरों पर चर्चा के लिए आज इस स्टूडियो में आमंत्रित हैं देश के आर्थिक मामलों के जाने माने विशेषज्ञ AK भट्टाचार्य. श्री भट्टाचार्य जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है.
2: नमस्कार, धन्यवाद.
1: आइए शुरुआत करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइन से.
0: बेंचमार्क डोमेस्टिक स्टॉक मार्केट इंडिसेस राइज, सेंसेक्स एड्स ओवर 300 पॉइंट्स, निफ्टी सेटल्स नियर 24,200 लेवल. इंडियाज इंडस्ट्रियल आउटपुट ग्रोज बाय 6.7% इन जुलाई दिस ईयर एंड इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व सर्ज टू अ रिकॉर्ड हाई ऑफ 729.3 बिलियन US एज ऑफ द प्रीवियस वीक.
1: घरेलू शेयर बाजार में प्रमुख सूचकांक लाभ के साथ हुए बंद. सेंसेक्स 300 अंक से अधिक उछला. निफ्टी 24,200 के स्तर के नजदीक बंद हुआ. देश के औद्योगिक उत्पादन में इस वर्ष जुलाई में 6.7% की वृद्धि हुई और देश का विदेशी मुद्रा भंडार 21 अगस्त को समाप्त सप्ताह में बढ़कर अब तक के सर्वोच्च स्तर 729 अरब 30 करोड़ डॉलर पर पहुंचा.

0: Patra. And before we take our main stories in detail, here is an important disclaimer. The views and opinions expressed by the experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: Aaiye ab shuru karein share bazaar se khabron ka silsila. घरेलू शेयर बाजार में आज खरीदारी तेज रही और प्रमुख सूचकांक लाभ में रहे। कारोबार के अंत में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 331 अंक यानी 0.43% की बढ़त के साथ 77,265 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 85 अंक यानी 0.35% की तेजी दर्ज करता हुआ 24,176 पर पहुंच गया। विस्तारित बाजार की ओर चलें तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के विस्तृत बाजार में मिड कैप 100 इंडेक्स में मामूली बढ़त देखने को मिली, जबकि स्मॉल कैप 100 इंडेक्स

0: throughout the day.
1: नजर डालें सेंसेक्स पैक पर तो 30 में से 21 कंपनियों के शेयर आज लाभ के साथ बंद हुए. लाभ उठाने वाली प्रमुख कंपनियों में सबसे अव्वल रही टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज जिसके शेयर 4.1% बढ़त के साथ बंद हुए. इन्फोसिस को 3.3% का और टेक महिंद्रा के शेयर 3.2% मुनाफे के साथ बंद हुए. उधर घाटा उठाने वाली प्रमुख कंपनियों में ICICI बैंक के शेयर 1.3% लुढ़क गए. अल्ट्राटेक सीमेंट को 1.2% का नुकसान हुआ जबकि एशियन पेंट्स के शेयर 1.1% नीचे आकर बंद हुए.
0: In the sectoral indices on the Bombay Stock Exchange, 17 out of the 28 sectors edged upward. Among the top gainers, focused IT jumped 3.4%, information technology climbed 3.3%, and PSU banks rose by 1.3%. In contrast, insurance decreased by 0.6%, realty, consumer durables, and oil and gas each dipped by 0.3%, and FMCG as well as energy fell by 0.2%. The overall market breadth at the BSE was positive as shares of 2,308 companies advanced, 2,029 companies declined, and 212 companies remain unchanged.
1: नजर डालें रुपए की स्थिति पर तो अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में एक डॉलर की तुलना में रुपया आज 16 पैसे मजबूत हुआ, 95.39 रुपए के स्तर पर बंद हुआ. एकेबी, आज हम बाजार की गतिविधि पर आपकी प्रतिक्रिया समझना चाहेंगे. बाजार में तेजी रही, क्या प्रमुख कारण रहे आज की तेजी के पीछे?
2: प्रधान जो कारण जो आज हमें दिखने को मिला वो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर की जो परफॉर्मेंस जो है उसके ऊपर स्टॉक मार्केट ने काफ़ी इसमें प्रकाश डाला है. अगर आपको आपको मालूम होगा कि वैश्विक बाजार में एनवीडिया का जो परफॉर्मेंस रहा है एक दो दिन पहले उसका जो परफॉर्मेंस जो है वो काफ़ी आशाजनक रही है और उस आशाजनक परफॉर्मेंस से अनुप्राणित तो होकर आज की आईटी सेक्टर में काफ़ी उछाल दिखने को आई है. हालांकि बैंकिंग सेक्टर में भी काफ़ी उछाल आई है पर उतना नहीं आया जितना कि आईटी सेक्टर में आई है. मैं कहूंगा कि जो पिछले दो दिन की जो गिरावट के बाद जो बैंकिंग और मेटल स्टॉक्स में ज़्यादा सेंटर्ड थी आज की जो रिवाइवल जो है स्टॉक मार्केट की वो आईटी सेक्टर से ज़्यादा जुड़ा हुआ है. करीबन 3% आईटी सेक्टर का एक दिन में बढ़ना ये आईटी सेक्टर का एक नया असेसमेंट मुझे लग रहा है कि हो रहा है कि पहले में जो एआई लेड जो एक हताशा एक छा रही थी मुझे लग रहा है कि वो हताशा को दूसरी तरह से उसका एक आकलन किया जा रहा है. उसी का परिणाम आज स्टॉक मार्केट हुआ था पहली बात. दूसरी बात ये है कि जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो हैं वो अभी भी पैसा ले जा रहे हैं पर अगर आप नेट बाई नेट खरीदी और नेट बेचने में अगर उसको देखें कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स और फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स की जो बेचना जो है उसकी गति थोड़ी कम हुई है और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स की जो खरीदना नेट बाई जो हुआ है उसमें भी बढ़ोतरी हुई है तो उससे जो मार्केट में थोड़ी बहुत एक स्टेबिलिटी आई है वही आज के मार्केट में वो दर्शा रहा है. और तीसरी बात यह है कि मार्केट में शायद कुछ आशा की किरणें को दिखने को आई. वो आशा की किरणें लगा कि मुझे दो तरफ से आई. एक तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के जो नंबर जो आए हैं उसमें हालांकि वो लैगिंग नंबर्स हैं वो फॉरवर्ड लुकिंग नंबर्स नहीं है पर उसमें ये लगा कि शायद फेस्टिवल सीजन के आने वाले में भी शायद इंडस्ट्रियल ग्रोथ स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में वो जो एक स्ट्रेंथ है वो बरकरार रहेगी. और दूसरी बात कि बहुत जो मार्केट के जो खिलवाड़ जो हैं वो समझ रहे हैं कि जो केविन वॉश का जो जैक्सन होल में जो उनका एक बहुत ही एक एक एक घंटे डेढ़ घंटे बाद मेरे ख्याल से जो वायोमिंग में जो हर साल में एक कॉन्फ्रेंस होता है जैक्सन होल में वो उसको सारा विश्व के सारे जो मार्केट विशेषज्ञ हैं वो देखते रहते हैं कि उनका इन्फ्लेशन के ऊपर इंटरेस्ट रेट के ऊपर और वैश्विक परिस्थिति के ऊपर उनकी क्या टिप्पणियाँ होंगी क्या उनके इंगित होंगे उसको देखे हुए और जो खबरें में

0: 191 अरब 30 करोड़ डॉलर तक पहुंच गया। वहीं स्वर्ण भंडार में 2 अरब 80 करोड़ डॉलर की बढ़ोतरी हुई है और ये बढ़कर 114 अरब 20 करोड़ डॉलर पर पहुंच गया। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत के सुरक्षित भंडार में 26 मिलियन डॉलर की बढ़ोतरी हुई और ये 4 अरब 90 करोड़ डॉलर के आसपास पहुंच गया है। उधर विशेष आहरण अधिकार यानी एसटीआर में 112 मिलियन डॉलर की बढ़ोतरी हुई और ये 18 अरब 80 करोड़ डॉलर के स्तर तक पहुंच गया है। एकेबी रिकॉर्ड स्तर पर मुद्रा भंडार अपना पहुंचा है, क्या दर्शा रहा ये और किन कारणों से इसमें यह बढ़ोतरी हम देख रहे हैं?
1: अगर जब पश्चिम एशियाई में जब युद्ध छिड़ा जब उसके बाद तेलों के दाम बढ़े तब हमारे पास उस समय करीबन 722 बिलियन डॉलर की विदेशी मुद्रा कोष था। उसके बाद ये काफ़ी नीचे आ गया था, करीबन 680 तक 685 तक आ गया था। और आपको ये शायद नोटिस करेंगे, ये नंबर जो है ये 21 अगस्त के नंबर हैं और 21 अगस्त तक हमारी जो नई जो स्कीम्स जो थी FCNRB के नीम्स जो NRI के जो पैसे जो आ रहे थे वो पैसे काफ़ी अंदर आए हैं। करीबन 50 बिलियन डॉलर या 56 बिलियन डॉलर की पैसे जो आए अगस्त 31 तक उसका अवधि है वो आएंगे। मुझे लगता है कि ये अभी नहीं है और भी थोड़ा बढ़ेगा और ये बढ़ने का मतलब ये है कि हमारी जो मंथली इम्पोर्ट की जो बिल जो हैं वो 10 महीने नहीं शायद 11 से 12 महीने तक की हमारी जो कैपेसिटी है उसमें वृद्धि होगी। ये एक मैक्रो इकोनॉमिक दृष्टिभंगी से एक्सटर्नल सेक्टर की ये जो छवि जो है ये मार्केट के लिए इकोनॉमी के लिए ये एक पॉजिटिव एक सिग्नल है।
0: यहाँ पर श्रोताओं के हित में FCNRB ने किस तरह से भूमिका निभाई बहुत संक्षेप में? ये
1: NRI को एक फैसिलिटी दी थी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कि वो अपनी जो विदेश के मुद्रा यहाँ पे वो जमा कर सकते हैं और उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा उसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक सब्सिडी भी देगी जिससे कि और जो काफ़ी कमर्शियल बैंकों ने का उनका लेवरेज देकर वो पैसा यहाँ पे ला सकते हैं। तो जो समस्या नॉर्मल जो जो जो जो FCNR NRI डिपॉजिट में होता है कि एक्सचेंज रेट के जो तारतम्य जो होता है उससे ज़्यादा इंसेंटिवाइज नहीं होते हैं, इस इंटरेस्ट रेट की जो जो जो स्ट्रक्चर जो थी वो उससे NRI ने काफ़ी
0: लाभ
1: उनका लाभ उठाया और इसीलिए करीबन 56 बिलियन डॉलर का पैसा अभी तक आ चुका है।
0: जी।
2: In more news, Prime Minister Narendra Modi has said that the Jan Dhan Yojana has delivered unprecedented scale and transformative outcomes with an unparalleled impact in the last 12 years. In a social media post, Mr. Modi said that the Jan Dhan Yojana is playing a significant role in advancing financial inclusion and empowering people across the country. Under the Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana, more than 59 crore accounts have been opened so far, with total deposits amounting to 3,17,000 crore rupees. The scheme was launched by Prime Minister Modi on this day in 2014. As the world's largest financial inclusion initiative, the scheme continues to redefine access to banking for all Indians. We have a report.
3: Under the Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana, more than 59 crore accounts have been opened so far, with total deposits amounting to 3,17,000 crore rupees. As the world's largest financial inclusion initiative, the scheme continues to redefine access to banking for all Indians. The average deposit per account is 5,356 rupees. Under the Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana, 78% of the accounts have been opened in rural or semi-urban areas, and approximately 56% of the accounts are owned by women. Over 41 crore rupee cards have been issued to Jan Dhan account holders. The scheme has also empowered millions, particularly the marginalized sections, to access banking and financial services to improve their socio-economic conditions. Due to initiatives like Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana, India's financial inclusion index has risen from 53.9 in 2018 to 67 this year, showcasing deeper access to credit, insurance, saving and digital payments. Anupam Mishra, Akashwani News, Delhi.
0: आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन तथा कनाडा के वित्त और राष्ट्रीय राजस्व मंत्री फ्रांस्वा फिलिप शैम्पेन के बीच कनाडा के टोरंटो में आर्थिक और वित्तीय वार्ता संपन्न हुई। दोनों पक्षों ने संयुक्त बयान में कहा कि ये बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के बीच इस वर्ष मार्च में नई दिल्ली में हुई बैठक में द्विपक्षीय आर्थिक और वित्तीय सहयोग को मजबूत करने के लिए किए गए वादे को आगे बढ़ाती है। दोनों देशों ने 2026 के अंत तक भारत कनाडा व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर बातचीत पूरी करने की अपनी साझा प्रतिबद्धता को दोहराया। मंत्रियों ने वैश्विक आर्थिक घटनाक्रमों और घरेलू नीतिगत प्राथमिकताओं पर विचार विमर्श किया। उन्होंने द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों को और मजबूत करने तथा दोनों देशों के बीच वित्तीय और वाणिज्यिक संबंधों का विस्तार करने के तरीकों पर चर्चा की। मंत्रियों ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को $70 बिलियन कनाडाई डॉलर तक बढ़ाने की इच्छा को भी दोहराया। भारत ने जल्द से जल्द द्विपक्षीय निवेश संधि पर बातचीत शुरू करने की अपनी तत्परता व्यक्त की। और आगे बढ़ते हैं
2: टू द एशियन मार्केट्स
0: और नजर डालें एशिया के प्रमुख बाजार दक्षिण कोरिया पर। वहां कोस्पी सूचकांक 1.8% बिकवाली के दबाव में नीचे आ गया। उधर जापान के निक्केई 225 सूचकांक में 0.4% की वृद्धि हुई। यूरोपीय बाजार की ओर चलें तो ताजा समाचार मिलने तक अंतरदिवसीय कारोबार में जर्मनी का डेक्स 0.6% ऊपर कारोबार कर रहा था, जबकि लंदन के फुटसी 100 में 0.2% की बढ़त दिख रही थी।
2: Moving on to the US stock market, US stock markets ended higher yesterday, supported by chip stocks after a leading semiconductor firm reported better than expected results and strong guidance. Among the major indices, the Nasdaq Composite surged 1.6%, the S&P 500 rose 0.7%, and the Dow Jones Industrial Average gained 0.2%. Investors are keeping a close eye on the Fed Reserve's annual symposium in Jackson Hole, Wyoming, where Kevin Warsh is slated to deliver a keynote speech tonight. AKB, what's the importance of this speech, where the title of the program is called Financial Innovation, Implications for Payments and Policy? Because typically when we look at the Fed Reserve, we're talking about the discount rate, which is at 3.75%, the Fed funds rate, which is effectively at 3.63%, and there is a backdrop of buyback of treasuries and that is expected to double by September 9. How do you see inflation as being a very important topic on which there is going to be discussion and debate?
1: Well, Jackson Hole is a conference where it is the Fed Reserve Chairman's speech which holds the center stage. There is no debate or discussion that happens on the stage, but what he says on inflation, on jobs,
2: it'll invoke one. A debate and discussion, it'll invoke one based on what he says.
1: But that doesn't happen at the Jackson Hole conference itself. What happens is it sets off a chain reaction among experts, market participants, other Fed governors. They do that. So it doesn't get discussed in Jackson Hole. The very structure of Jackson Hole is that you don't discuss these things on the forum, but these things get amplified outside Jackson Hole. So in this case, what the governor says about inflation, about the monetary policy management, and most importantly, the job situation, and whether it gives a signal on whether interest rates will have to be raised or not, which is a big issue and big debate right now going on. People will try to suss the Fed governor's speech in the way they want to understand.
2: In more news, Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi said renewed diplomacy with Washington remains possible if the U.S. changes its approach and abandons coercion. Ms. Araghchi said in a social media post that the U.S. should build trust, speak respectfully, acknowledge our rights and uphold commitments. He also described recent talks with Qatar's Prime Minister and Foreign Minister Sheikh Mohammed bin Al Thani as productive and creative. Moving on to the crude oil market, global crude oil prices eased today. Brent crude was trading 0.5% down at $89.30 per barrel in intraday trade. West Texas Intermediate crude was trading 0.8% lower at $82.84 per barrel when reports last came in.
0: आइए श्रोताओं, आपको लिए चलें अंतिम चरण में सर्राफा बाजार। भारतीय सराफा बाजार में 24 कैरेट सोने का मूल्य समाचार तैयार किए जाने तक 0.7% बढ़कर 1,59,578 रुपए प्रति 10 ग्राम पर चल रहा था। वहीं चांदी 1.8% बढ़कर 2,43,892 रुपए प्रति किलो पर

0: कारोबार कर रही थी। और बस यहीं पर श्रोताओं की ओर से के भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: नमस्कार, धन्यवाद।
2: And before we close, a reminder of the headlines. Benchmark domestic stock market indices rise. Sensex adds over 300 points. Nifty settles nearly 24,200 level. India's industrial output grows by 6.7% in July this year. And India's foreign exchange reserves surged to a record high of $729.3 billion as of the previous week. And that's it in this edition of Market Mantra for now. Goodbye.
3: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। नेपाल और तिब्बत में विनाशकारी बाढ़ से मृतकों की संख्या बढ़कर 547 हो गई है। 1545 लोग अब भी लापता हैं। राहत और बचाव दल लापता लोगों की तलाश कर रहे हैं। दक्षिण पश्चिमी चीन में 5.1 तीव्रता के भूकंप के बाद फिर से बाढ़ की आशंका बढ़ गई है। अधिकारियों ने प्रभावित जिलों से 800 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि नेपाल में बुधवार को अचानक बाढ़ के बाद 320 भारतीय नागरिकों से संपर्क नहीं हो सका है। उन्होंने कहा कि अन्य देशों के भारतीय मूल के लगभग 100 लोगों से भी संपर्क नहीं हो सका है। श्री जायसवाल ने नई दिल्ली में बताया कि तमिलनाडु के 21 भारतीय नागरिक बाढ़ प्रभावित इलाके से नई दिल्ली पहुंच गए हैं।
1: 21 भारतीय नागरिक जो फंसे हुए थे कैलाश मानसरोवर की यात्रा पे गए थे, कल काठमांडू पहुंचे उस क्षेत्र से जहां पर ये हादसा हुआ, और कल हमारे राजदूत उनसे मिले, उनका हालचाल पूछा और हमारी एम्बेसी ने उनके लिए ये ट्रैवल अरेंजमेंट बनाया। आज वो दिल्ली पहुंच चुके हैं। उसके अलावा 63 भारतीय नागरिक जो त्रिशूली हाइड्रो पावर में काम करते हैं, त्रिशूली 1, उनको भी वहां से बचाया गया है। 96 भारतीय नागरिक चीन से नेपाल की तरफ आ चुके हैं और ये सभी लोग सुरक्षित हैं।
0: श्री जायसवाल ने कहा कि चीन की तरफ फंसे 96 भारतीय नागरिक सुरक्षित रूप से जमीन के रास्ते नेपाल पहुंच गए हैं और उन्हें वहां से निकालने के प्रयास जारी हैं। उन्होंने कहा कि चीन की तरफ लगभग 400 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और अपने परिवारों के संपर्क में हैं। इस बीच भारत ने नेपाल को मानवीय सहायता बढ़ा दी है। भारत ने बचाव और राहत कार्यों में मदद के लिए 47 टन से अधिक राहत सामग्री भेजी है। श्री जायसवाल ने कहा कि सरकार ने विदेश मंत्रालय में 24 घंटे कार्यरत नियंत्रण कक्ष बनाया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नेपाल से सुरक्षित वापस आए तमिलनाडु के 21 तीर्थयात्रियों से मुलाकात की। ये तीर्थयात्री कल बाढ़ प्रभावित क्षेत्र से काठमांडू पहुंचे थे और आज दोपहर नई दिल्ली पहुंचे। डॉ जयशंकर ने नेपाली सेना और सरकार को इसके लिए धन्यवाद दिया। सरकार ने कहा है कि देश में चीनी की कोई कमी नहीं है और उचित कीमतों पर पर्याप्त मात्रा में चीनी उपलब्ध कराने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जाएंगे। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने बताया कि हाल के दिनों में चीनी की कीमतों में लगभग 20% की गिरावट आई है, जबकि खुदरा चीनी की कीमतें भी कम होने लगी हैं। सरकार ने चीनी की समयबद्ध उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा मासिक कोटा प्रणाली के स्थान पर अगले महीने से पाक्षिक चीनी आवंटन प्रणाली शुरू करने का निर्णय लिया है। नए सीजन के लिए गन्ने की पेराई 15 अक्टूबर से शुरू होगी। इस दौरान 10 लाख टन से अधिक चीनी उत्पादन की संभावना है। सरकार ने चीनी मिलों को अक्टूबर में उत्पादित चीनी को बिना किसी प्रतिबंध के बेचने की अनुमति दे दी है। परीक्षा सुधारों के लिए गठित उच्च स्तरीय कार्यबल ने विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों सहित सभी हितधारकों से सुझाव आमंत्रित किए हैं। सुझाव 13 सितंबर तक वेबसाइट, व्हाट्सएप या फोन नंबर 1800-1804747 के माध्यम से भेजे जा सकते हैं। ये सुझाव ईमेल एग्जाम रिफॉर्म्स टास्क फोर्स @dopt.gov.in के माध्यम से भी भेजे जा सकते हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना के आज 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। ये देश में वित्तीय समावेशन की दिशा में प्रमुख पड़ाव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जनधन योजना वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और देश के लोगों को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। योजना के अंतर्गत अब तक 59 करोड़ से अधिक खाते

0: सुर्खियों में
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए, हिमालय क्षेत्र में प्राकृतिक आपदाओं से निपटने में पूर्व चेतावनी, आपदा प्रबंधन और क्षेत्रीय सहयोग के महत्व पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के प्रोफेसर सूर्य प्रकाश और आकाशवाणी संवाददाता निखिल कुमार।
2: प्रोफेसर सूर्य प्रकाश जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
3: धन्यवाद।
2: प्रोफेसर साहब, सबसे पहले अगर हम बात करें तो हिमालयी क्षेत्र जो है, जो ये इलाके हैं, यहाँ पर फ्लैश फ्लड्स यानी कि अचानक आने वाली बाढ़ है, तो ये अब इतनी गंभीर और अनिश्चित क्यों होती जा रही है? इसमें जलवायु परिवर्तन की क्या भूमिका है और ग्लेशियर के पिघलने या फिर जो निर्माण कार्य चल रहे हैं उनकी, या फिर भूमि के इस्तेमाल में जो बदलाव हो रहा है, कौन से ऐसे मूल कारण हैं?
3: देखिए, ये जो हमारी तीव्र गति की बाढ़ है, ये जो पहाड़ी क्षेत्रों में होती है ज्यादातर, और सडन आकस्मिक होती है और काफी सीवियर भी होती है इसके इम्पैक्ट्स। और जलवायु परिवर्तन की वजह से जो हमारी वर्षा की इंटेंसिटी बदल रही है, माप बदल रहा है और उसका डिस्ट्रीब्यूशन बदल रहा है, उसकी वजह से काफी इम्पैक्ट आ रहा है। और दूसरा, जो टेम्परेचर चेंजेज हो रहे हैं जिसकी वजह से ग्लेशियर भी पिघल रहे हैं, ग्लेशियर मेल्ट भी बढ़ रहा है, डिस्चार्ज बढ़ रहा है रिवर्स में, और इसके अलावा हाई अल्टीट्यूड लेवल्स में जो है भूस्खलन की घटनाएं भी काफी घटित हो रही हैं। तो इस तरह से मिलकर, एक तो ग्लेशियर का पिघलना जलवायु परिवर्तन की वजह से, जिसमें हमारे एवरेज टेम्परेचर्स राइज कर रहे हैं, दूसरा हमारे यहाँ जो वर्षा अधिक मात्रा में हो रही है जिसको हम क्लाउड बर्स्ट बोलते हैं, और तीसरा भूस्खलन भी हो रहे हैं इनके साथ। तो बड़े रॉक डिटैचमेंट्स में, जैसे कि हमारी धौलीगंगा रिवर में भी हुआ था पहले, ऋषि गंगा और धौलीगंगा में 7 फरवरी 2021 में, और ऐसे ही सिक्किम में लोनाक लेक में हुआ था 4 अक्टूबर 2023 में। तो इसी तरह की ये घटना इस बार नेपाल में घटित हुई है। मौसम के पूर्वानुमान के बावजूद भी संभावनाएं नहीं पल लगा पाए कि इस तरह की तीव्र गति की बाढ़ आ सकती है, जो जिसका ओरिजिन जो है चाइना से हुआ, और उसकी टाइमली इंफॉर्मेशन ना होने की वजह से काफी लोग उसमें मौत का शिकार हुए
2: जी,
3: और आपदा से ग्रसित हुए। अभी भी काफी लोग लापता हैं, और इस तरह की परिस्थितियां ऐसा नहीं है कि हमारे सामने पहली बार आई हैं। कई बार, जैसे मैंने आपको उदाहरण के तौर पे चमोली का दिया, सिक्किम का दिया, और ऐसे ही और कई इलाकों में भी बाढ़ आती रही है, हिमाचल में भी आई है
2: जी,
3: और जम्मू एंड कश्मीर में भी आई है। तो इस तरह का प्रक्रियाएं प्राकृतिक हैं, परंतु इसमें हमारी मानवीय दखलअंदाजी जो है ज्यादातर हमारे शिकार होने का कारण बनती है, क्योंकि हम ऐसे क्षेत्रों में अपने निवास स्थल भवन बना रहे हैं, संरचनाएं बना रहे हैं जो बाढ़ आपदा से ग्रसित रहती हैं। यहाँ पर अक्सर बाढ़ आती है, और सामान्य मौसम की जानकारी होते हुए भी, जो कि हमारा भारतीय मौसम विभाग जैसे अक्सर 7 दिन पहले या पूरे मानसून सीजन का पूर्वानुमान देता है, और उसके 3 दिन का भी देता है, फिर डेली बेसिस और ओवरली बेसिस पे भी डॉपलर वेदर रडार के जरिए वो सूचनाएं प्रदान करता रहे।
2: ये जो ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड है, यानी कि जिसे हम हिंदी में कह सकते हैं कि हिमनदीय झील के अचानक फटने से आने वाली बाढ़ है, तो इसको क्या मॉनिटर करना इतना कठिन है, या फिर इसकी इंटेंसिटी इतनी बढ़ जाती है कि हम इसे जल्दी से पता नहीं लगा सकते हैं, तो ये बड़े पैमाने पर नुकसान अचानक से आकर पहुंचा देती है?
3: देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा
2: जी,
3: कि हम आकस्मिक ऐसी तीव्र बाढ़ में क्यों फंस जाते हैं, जबकि हमारे पास मौसम का तो पूर्वानुमान है, परंतु जो हाई अल्टीट्यूड के, जैसे मैंने कहा, भूस्खलन होते हैं, उनकी सही हमारे पास जानकारियां कई बार नहीं होती हैं। और ग्लेशियर बॉडी, जैसे मैंने बताया चमोली में भी ऐसा ही ग्लेशियर बॉडी डिटैच हुआ था एक बड़े रॉकफॉल के साथ, इसी तरह से ये इस बार भी हुआ कि 1 किलोमीटर से ज्यादा का स्लोप फेस गिरा और उसके साथ ग्लेशियर बॉडी भी आई, और उसके बाद एक लेक बनी और सडन उसका ब्रेचिंग हुआ। तो ये जानकारी भूस्खलन व संबंधित जो समय अवधि के अनुसार, ये थोड़ा सा मुश्किल होती है। अदरवाइज मौसम की और ग्लेशियर मेल्ट की जानकारियां डिस्चार्ज और एटमॉस्फेरिक मॉनिटरिंग के जरिए हम रखते
2: जी
3: हैं वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम्स के द्वारा।
2: प्रोफेसर साहब, कई बार इस तरह की जब आपदाएं आती हैं तो सवाल ये उठता है कि ये घटना पूरी तरह से प्राकृतिक रही है या इंसानी गतिविधियों ने इसकी इंटेंसिटी बढ़ाई जिसकी वजह से हमें ऐसी विनाशकारी परिस्थिति देखने को पड़ी है। एक वैज्ञानिक नजरिए से आप इसे किस तरह से देखते हैं? क्या हिमालय में मानवीय हस्तक्षेप के बाद बाढ़ के खतरे बढ़ रहे हैं?
3: आपने बिल्कुल सही बोला है, मानवीय दखलंदाजी बाढ़ ग्रसित क्षेत्रों में बढ़ गई है। हम लोग जो भी बाढ़ क्षेत्र थे, जो जैसे हम तीन जोन में फ्लड जोनेशन में बात करते हैं,
2: जी
3: एक तो है प्रोविटेड जोन जिसमें नदी को हमेशा आना है जाना है और मानसून में उसका बड़ी मात्रा में डिस्चार्ज वहां पे दिखना है, परंतु उसके बाद हमारा एक रेस्ट्रिक्टेड जोन होता है और एक हमारा होता है परमिटेड, परमिटेड विद रेगुलेशंस। हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रोविटेड जोन में ही बना दे रहे हैं और उसकी वजह से हमारे यहाँ ज्यादा नुकसान। अगर आपने देखा हो इस बाढ़ में भी नदी किनारे बहुत सारे घर थे
2: राइट
3: और नदी के बीचों बीच जो अक्षर में ब्रिजेज भी बन रहे हैं ना, वो हम अभी भी शॉर्टेस्ट स्पैन देख के बना रहे हैं, हम
2: जी
3: सेफ्टी मेजर्स देखते हुए नहीं बना रहे हैं। शॉर्टेस्ट स्पैन में पानी की वेलोसिटी काफी बढ़ जाती है और उसके साथ जब सेडिमेंट आता है तो उसकी इरोजिव कैपेसिटी कई गुना हो जाती है, तो ऐसे में ब्रिज के पियर्स बिल्कुल जो है इरोड हो जाते हैं और साथ ही साथ ब्रिज भी पानी के साथ बहता हुआ जाता है।
2: जी
3: तो इस तरह की परिस्थितियां आती हैं कि आपके रोप वेज हैं या झूला पुल है या दूसरे पुल बने हुए हैं, बांध बने हुए हैं या फिर सड़कें हैं, ये सब भी आपदा का शिकार बन जाती हैं क्योंकि उनका जो डिजाइन प्लानिंग कंस्ट्रक्शन ये उस हिसाब से नहीं है जिसमें एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स का ध्यान दिया गया हो।
2: जी
3: तो अगर हम ये नहीं देखेंगे कि किस तरह की आपदाएं से हमारी जो संरचनाएं या भवन प्रभावित हो सकते हैं और उसके लिए क्या बचाव कार्य हमें करने चाहिए और किस तरह का निर्माण कार्य हमें करना चाहिए, विकास कार्य करना चाहिए, तब तक हम सुरक्षित अपने को महसूस नहीं कर सकते हैं।
2: जी
3: एक चीज और मैं आपको यहाँ पे बताना
2: जी
3: चाहूंगा,
2: जरूर जरूर।
3: अगर आपने नेपाल की खबरें सुनी है तो बहुत सारे लोग हैं जो आउटसाइडर्स होते हैं जिनको इस लोकल फिनोमिनास का आइडिया भी नहीं होता, उन्होंने कभी ऐसी फ्लैश फ्लड्स देखी भी नहीं है, वो इसका ज्यादा शिकार बनते हैं। जो स्थानीय लोग हैं, जन समुदाय होते हैं, उन्होंने कई बार अपने जीवन में इस तरह की प्रक्रियाएं देखी होती हैं तो उनको पता है कि ऐसा कुछ भी घटित होता है तो जान माल का खतरा है और ऊपर की तरफ चले जाना चाहिए और जो बहुमूल्य वस्तुएं हैं उनको भी अपने साथ ऊपर ले जाना चाहिए, वो पहले से तैयारी करते हैं मानसून सीजन के लिए। हमारे यहाँ जो विभाग है उनको भी पहले से मानसून के लिए तैयार किया जाता है और पहले से रिसोर्सेज भी डेडिकेट किए जाते हैं और पहले से प्रीपोजिशनिंग भी करते हैं हम अपने रेस्पॉन्स फोर्सेज की।
2: जी
3: तो ये सब प्रक्रियाएं होते हुए इसके अलावा पूर्व चेतावनी उस पर्टिकुलर भौगोलिक क्षेत्र में दी जाती है ताकि वो लोग पहले से अपने सही सुरक्षित स्थान पर रिक्तिकरण कर पाए।
2: प्रोफेसर साहब, आप नेपाल की बात कर रहे हैं तो मैं इस क्वेश्चन पर आने वाला था। हम अगर नेपाल की बात करते हैं तो ये जो अचानक से बाढ़ आई जिसके बाद हमने देखा बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ, जानमाल का भी वहां पर लॉस हुआ है, तो राहत और बचाव अभियान शायद उस लेवल तक नहीं पहुंच पाए क्योंकि रास्ता नहीं मिला, सड़कें तबाह हुई, पुल और संचार व्यवस्था सब एक साथ बाधित हुए। तो भारत के नजरिए से अगर हम इस फ्लड को देखते हैं तो हमें क्या समझना चाहिए, किस तरह की रणनीति अपनानी चाहिए?
3: देखिए, जैसे मैंने कहा आपका सारा एक्सेसिबिलिटी उसमें मुश्किल हो जाएगा, इसलिए हमें पहले से ये जो रेड अलर्ट देते हैं और जो हाई रिस्क जोन में हम डिफाइन कर देते हैं एरिया को,
2: जी
3: वहां के लिए पूर्व

0: तैयारी की बहुत जरूरत होती है। आपदा के दौरान हम कुछ ज्यादा नहीं कर सकते अगर हमने पूर्व तैयारी नहीं की है, तो उस केस आप स्ट्रीम एरिया से हेल्प इजीली आ सकती है, डाउन स्ट्रीम एरिया कट ऑफ हो जाते हैं। तो ऐसे में जो नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे तो जो जल का प्रवाह भी बढ़ जाता है और उसकी मात्रा भी बढ़ जाती है और उसका कटाव भी बढ़ जाता है। तो इस वजह से नीचे से ऊपर की तरफ को मदद पहुंचाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, परंतु ऊपरी क्षेत्र है जहां पर हमने पहले से इस तरह की सामग्री एकत्रित की हो,
1: जी
0: जो हम आपदा से जो प्रताड़ित लोग हैं उनको मदद के लिए पहुंचा सके, तो वो ज्यादा अच्छा रहता है। तो इसीलिए ये प्री पोजिशनिंग की, जो मैंने कहा, रिसोर्सेज की भी और पर्सनल की भी, ये बहुत जरूरी होता है।
1: प्रोफेसर साहब, अभी अगर हम वर्तमान चीजों की बात करते हैं तो उपग्रह चित्र होते हैं हमारे पास, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ड्रोन है, दूर संवेदी तकनीक है, इन सब का काफी विकास हो रहा है और इन तकनीकों की मदद से मौसम से संबंधित जो गतिविधियां होती हैं उन पर नजर रखी जाती है। लेकिन क्या आपको लगता है कि अभी भी हमें इस दिशा में बहुत कामकाज करने की जरूरत है, क्योंकि अचानक से जो बाढ़ आ रही है उसकी जानकारी इकट्ठा कर पाना शायद अभी उतना आसान नहीं हो पाया है?
0: बाढ़ एक वार्षिक प्रक्रिया है। मौसम की जानकारी, जैसे आपने भी बोला, काफी अच्छे तरह से आज के दिन में हम कर पा रहे हैं, परंतु जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं, जो पर्वतीय क्षेत्रों की ढाल की जो स्थिरता की परिस्थितियां हैं, उसके बारे में हमें कंप्लीट जानकारी नहीं। हालांकि हम स्थिरता निर्धारित कर देते हैं कि अस्थिर है या कम स्थिर है या एवरेज औसत स्थिरता है या अस्थिरता है, ये सारी चीजों का हमें एक भूस्खलन जोखिम प्रबंधन के लिए हम जुनेशन मैपिंग करते हैं, उसके जरिए आइडिया लगा लेते हैं। परंतु किस समय इस तरह के भूस्खलन होंगे जिनसे नदियां बाधित हो सकती हैं, जिनसे ग्लोप या लॉप, जिसको हम बोलते हैं ग्लेशियर लेक आउटबर्स फ्लड, और लॉप बोलते हैं लैंडस्लाइड लेक आउटबर्स फ्लड, वो बन सकती हैं और उससे फ्लैश फ्लड्स हो सकती हैं। तो ये गंभीर परिस्थिति है जिसके बारे में हमें और अच्छा रिलायबल क्रेडिबल पूर्व चेतावनी तंत्र लगाने की जरूरत है। इसके अलावा ये एरियाज काफी कठिन होते हैं पहुंच के हिसाब से,
1: जी
0: और वहां पर एक कार्य करना, तकनीक का इस्तेमाल करना और भी मुश्किल होता है। तो इसलिए हमको वहां पर समुदाय आधारित जोखिम आपदा प्रबंधन की ज्यादा जरूरत है। वहां पे समुदाय आधारित पूर्व चेतावनी तंत्र लगाने चाहिए जो लोकल कम्युनिटी खुद से ऑपरेट कर सके और पहले से अलर्ट्स अपने आप से जारी कर सके और वहां के लोगों को इवैक्यूएट कर सके। तो स्थानीय कम्युनिटी बेस्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम्स की भी जरूरत है, जहां हम सैटेलाइट बेस्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम या एआई बेस्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम को प्रमोट करें। एआई हमारे लिए हेल्पफुल है क्योंकि हम पे इसमें बहुत सारा डाटा एक साथ मल्टीपली और डिफरेंटली यूज कर सकते हैं प्रेडिक्शंस के लिए, अर्ली वार्निंग सिस्टम्स के लिए। परंतु सैटेलाइट हो, एआई हो या और कोई भी सिस्टम हो, उसका फायदा तब है जब स्थानीय जो जनता है, जन
1: जी
0: समुदाय है, उस तक वो सूचना पहुंचे जो उससे प्रभावित होने वाले हैं, ताकि वो अपने बचाव के लिए उचित कार्रवाइयां कर सकें।
1: प्रोफेसर सूर्य प्रकाश, जैसे आपने जिक्र किया कि लोकल कम्युनिटी का सहयोग बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इस चीज़ में, तो हमें इस चीज़ की ज़रूरत है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी उन तक पहुंचाएं और साथ में ही ऐसी व्यवस्था करें कि अगर इस तरह की कोई आपदा आती है तो सबसे पहले मानवीय और तकनीकी सहायता जल्द से जल्द उपलब्ध कराई जा सके।
0: बिल्कुल सही बोला आपने। हमारे यहाँ राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जो है, वहां से एक ऐप को लॉन्च किया गया, सचेत ऐप को,
1: जी
0: जो जियो फेंस्ड है और मल्टीलिंगुअल है, तो लोकल एरियाज के लिए इंफॉर्मेशन देने के लिए पुश मैसेजिंग स्कीम है। तो इस तरह की जो एप्स हैं, जिसको हम कॉमन एरर प्रोटोकॉल के जरिए अपनी आपदा प्रबंधन जो इकाइयां हैं उनको भी देते हैं, और इसके अलावा हर व्यक्ति तक पहुंचाने की हम कोशिश करते हैं, क्योंकि आजकल हर घर में एक ना एक व्यक्ति के पास तो मोबाइल रहता ही है।
1: जी
0: तो मोबाइल के जरिए जो हम ये आउटरीच की कोशिश कर रहे हैं और पूरक चेतावनी देने की कोशिश कर रहे हैं, वो बहुत ही अच्छी है। इसके अलावा कहीं और भी स्मार्ट एप्स डेवलप हो रही हैं, जैसे तमिलनाडु ने टीएन स्मार्ट बनाया, ऐसे ही असम ने फ्लूज करके मॉडल बनाया फ्लड अर्ली वार्निंग सिस्टम के लिए, मुंबई चेन्नई ने भी आई फ्लूज करके बनाया, और हमारे सेंट्रल वाटर कमीशन ने भी एक ऐप लॉन्च करी फ्लड वॉच करके।
1: जी
0: तो इस तरह की सारी ये जो इंफॉर्मेशन है, अगर सबके पास हो और इसके अलावा अगर आप

0: जाते हैं उस सब के बावजूद भी, तो आप डिसास्टर हेल्पलाइन 112 पे कॉल कर पाएं।
1: प्रोफेसर सूर्य प्रकाश जी, इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और हमसे चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी।
2: अभी आप सुन रहे थे हिमालय क्षेत्र में प्राकृतिक आपदाओं से निपटने में पूर्व चेतावनी, आपदा प्रबंधन और क्षेत्रीय सहयोग के महत्व पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के प्रोफेसर सूर्य प्रकाश और आकाशवाणी संवाददाता निखिल कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
3: सुर्खियों में

आकाशवाणी एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर 7:56 हो रहे हैं और आप जानते ही हैं कि ये कार्यक्रम आपका कौन सा कार्यक्रम है, सांझ ढले। सांझ ढल चुकी है तो क्यों ना उस सांझ ढले का फ़ायदा भी उठाया जाए, उसको और फील किया जाए और अपने आप को और आपको कुछ संगीत के ऐसे हवाले कर दिया जाए कि बस ये शाम और ज़्यादा खूबसूरत और सुहानी हो जाए। तो क्यों ना कुछ ऐसे नगमे सुनते हैं जो नगमे काफ़ी पुराने हो चुके हैं लेकिन सदाबहार नगमे हैं, बल्कि उनमें से कुछ नगमे ऐसे भी हैं कि जो अपने वक्त में बहुत ज़्यादा फेमस रहे लेकिन धीरे धीरे धीरे धीरे उनको भुला दिया गया, लेकिन जो संगीत प्रेमी हैं, फिल्मों के संगीत के प्रेमी हैं, उनको कहीं ना कहीं ये गीत जहनशी हैं, आज भी याद करते हैं, उन्हें गाते हैं, गुनगुनाते हैं। और अगर आप में से कुछ इन गीतों को भूल भी जाते हैं तो क्या हुआ, हम हैं ना इन गीतों को आप तक पहुँचाने के लिए और आप की यादों को ताज़ा करने के लिए। चलिए तो शुरुआत करते हैं आज के सांझ ढले कार्यक्रम के। आपके साथ मैं हूँ नईम अख्तर, सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल। और आज के सांझ ढले कार्यक्रम का जो पहला गीत हम लेके आए हैं वो है 1950 की सुपर डुपर हिट फिल्म बावरे नैन का। बावरे नैन का ये गीत सुनिए और मज़ा लीजिए उस दौर का, जिस दौर में ये गीत आप तक पहुंचाया था, हमारे श्रोताओं तक, हमारे अपने दर्शकों तक पहुंचाया था इस फिल्म को बनाने वालों ने।

0: NCREPE से गुजरने वाले सभी श्रद्धालुओं एवं यात्रियों को पावन श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। कृपया प्रशासन द्वारा निर्धारित मार्ग का ही उपयोग करें और यातायात नियमों का पालन करें। किसी भी आपातकालीन सहायता के लिए तुरंत डायल करें 1033। आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प।
1: आकाशवाणी FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर शाम के 7:32 और 58 सेकंड हुए हैं। कार्यक्रम आप जानते ही हैं, सांझ ढले। और सांझ ढले में हम और आप कुछ ऐसे नगमों के साथ आगे बढ़ रहे हैं जो नगमे हैं बहुत पुराने, उस वक्त के बेहतरीन और सुपरहिट नगमे, लेकिन वक्त के साथ साथ लोगों ने या कुछ कहें कि नई पीढ़ी ने उन्हें किसी हद तक भुला दिया, पर आज भी जब वो सुने जाते हैं तो उनके साथ गुनगुनाना मजबूरी हो जाती है क्योंकि वो बहुत ही मधुर नगमे हैं। जैसे कि अभी हमने सुना, ख्यालों में किसी के इस तरह आया नहीं करते। आवाज़ें थीं मुकेश और गीता रॉय की। गीता रॉय, वही गीता रॉय जो बाद में गुरुदत्त से शादी करके गीता दत्त बन गई थी। और उसके बाद तो खैर उन्होंने कितने बेहतरीन नगमे दिए हैं ये बताने की बात नहीं है। उनके अपने करियर में उनके गीतों का जो सक्सेस रेशियो है वो 80-90% है। बहुत कम नगमे उनके गाए हुए ऐसे रहे जो मकबूल नहीं हुए, अदरवाइज तो सभी गीत उनके एक से बढ़कर एक हिट हुए। एक और आवाज़ थी उसी दौर में, मीना कपूर की आवाज़। मीना कपूर की आवाज़ में एक ऐसी फिल्म का नगमा हम आपको सुना रहे हैं कि जो जिस नाम से फिल्म बार बार बार बार बार बार बनती आ रही है आज तक। जी हाँ, फिल्म का नाम था

शब्द हैं जो शब्द देसी डायलेक्ट को कहीं ना कहीं उजागर करते हैं। जैसे पहली ही लाइन है, मोरी अटरिया पे कागा बोले, मोरा जिया जियारा डोले, कोई आ रहा है। अब मोरी, वैसे हम और आप आमतौर पर मेरी बोलते हैं, अटरिया शब्द शहरों में तो असल में इस्तेमाल होता ही नहीं है, गांवों में फिर भी होता है। कागा अब कौन बोलता है, कौवा तो बोलते हैं लेकिन कागा नहीं बोला जाता है। लेकिन ये वो खूबसूरत अल्फाज हैं जिन अल्फाज ने इस गीत को और भी ज़्यादा मधुर और मनमोहक बना दिया। सुनते हैं मीना कपूर की आवाज़ में ये बहुत ही प्यारा सा नगमा।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।

आकाशवाणी एफ एम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर 7:39, 10 सेकंड 5-6 मिनट बचे हुए हैं अभी हमारे पास। हम उसमें एक या दो गीत आप तक जरूर पहुंचाने की कोशिश करेंगे। ये गीत बताइए आपको कैसा लगा, और इस गीत में उत्तर प्रदेश की आंचलिक भाषा के कितने सारे शब्द थे जो आपने नोटिस किए, बहुत सारे थे ना, वही इस गीत की खूबसूरती थे। खैर, एक और गीत हम आपको सुना रहे हैं।

कला फिल्म से। और इस गीत में आपको हमें ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये आवाज़ किन की है, क्योंकि वो आवाज़ न सिर्फ उस दशक में बल्कि उससे पहले भी और अब से चंद बरस पहले तक हमारा साथ देती रही, हमारा मनोरंजन करती रही और हमेशा के लिए हमारे कानों में, हमारे दिल में, हमारे दिमाग में बस चुकी है। तो सुनते हैं उसी गीत को।

0: कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
1: ऐ दिल मुझे ऐसी जगह ले चल जहाँ कोई ना हो। तलत महमूद की आवाज़ थी और आरजू फिल्म का ये गीत था। और आप भी सोच रहे होंगे कि निराला फिल्म की बात करी थी नईम ने, गीत तो ये आरजू फिल्म का है। जी हाँ, हुआ कुछ ऐसा कि हम आपको चाह रहे थे कार्यक्रम में शामिल करना अपने साथ, और कुछ हमसे ही गड़बड़ हो गई। हमारी उंगलियाँ एक गीत के बजाय किसी दूसरे गीत के ऊपर जाकर अटक गई और हमने आपको निराला फिल्म के बजाय ये गीत सुनवा दिया जो आरजू फिल्म का था। खैर, अभी आपको निराला फिल्म का वही गीत सुनवा रहे हैं और अब हम आपसे गेस करने को बिल्कुल नहीं कहेंगे क्योंकि आप भी पहचान लेंगे और हमारे पास उसके बाद वक्त नहीं होगा। ये आवाज होगी लता मंगेशकर की। नईम अख्तर को अभी इजाजत दीजिए इस कार्यक्रम से जिसका नाम है सांझ ढले। आप सुनते रहिए 101.1 MHz पर आकाशवाणी का FM गोल्ड चैनल।

0: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, प्रधानमंत्री जनधन योजना ने गरीब परिवारों के परिश्रम को पहचान और बचत को सुरक्षा दी। महाराष्ट्र के नाशिक से 450 टन प्याज लेकर पहली कांदा एक्सप्रेस दिल्ली पहुंची। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में नेपाल से सुरक्षित वापस आए तमिलनाडु के 21 तीर्थयात्रियों से मुलाकात की। उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रक्षाबंधन पर दिल्ली के लोगों को शुभकामनाएं दी। यातायात पुलिस ने रक्षाबंधन पर राखी का वादा, सुरक्षा का इरादा, सड़क सुरक्षा और यातायात अनुशासन अभियान चलाया और दिल्ली पुलिस ने ISI समर्थित पाकिस्तानी जासूसी नेटवर्क का भंडाफोड़ किया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना ने गरीब परिवारों के परिश्रम को पहचान दी है और उनकी बचत को सुरक्षा दी है। इस योजना के 12 वर्ष पूरे होने पर श्रीमती गुप्ता ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज 59 करोड़ से अधिक जनधन खाते खोले जा चुके हैं। इसमें लगभग 56% हिस्सेदारी महिलाओं की है।
1: मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री जनधन योजना ने महिलाओं को आर्थिक निर्णय लेने में सशक्त बनाया है। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि जनधन योजना ने न केवल बैंकिंग की सुविधा दी बल्कि गरीब परिवारों को भरोसा दिलाया कि देश की प्रगति में उनका भी समान अधिकार और समान स्थान है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत अब तक 59 करोड़ से अधिक खाते खोले जा चुके हैं। इन खातों में कुल जमा राशि 3,17,000 करोड़ रुपए है। इस योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री मोदी ने 28 अगस्त 2014 को किया था। ये विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन पहल है। ये योजना सभी भारतीयों के लिए बैंकिंग पहुंच को सुलभ बना रही है। इस योजना के तहत महिलाओं के लगभग 56% खातों सहित 78% खाते ग्रामीण या अर्ध शहरी क्षेत्रों में खोले गए हैं। प्रादेशिक समाचार के लिए विशाल शर्मा।
0: महाराष्ट्र के नाशिक से 450 टन से अधिक प्याज लेकर पहली कांदा एक्सप्रेस आज सवेरे दिल्ली पहुंची। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने कहा कि सरकार ने प्याज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और कीमतों में स्थिरता बनाए रखने के लिए बफर स्टॉक की सुनियोजित और लक्षित निकासी शुरू कर दी है। कांदा एक्सप्रेस पहल उत्पादन क्षेत्रों से उपभोग केंद्रों तक भारी मात्रा में प्याज पहुंचाने के लिए प्रभावी लॉजिस्टिक उपाय है। सड़क परिवहन के माध्यम से अन्य प्रमुख उपभोग केंद्रों चेन्नई, कोलकाता, एर्नाकुलम, गुवाहाटी, वाराणसी, लखनऊ, पटना, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, अमृतसर तक प्याज की आपूर्ति की जा रही है। मंत्रालय ने बताया कि 2025-26 में 307 लाख टन से अधिक के अनुमानित उत्पादन के कारण आने वाले महीनों में घरेलू मांग को पूरा करने के लिए प्याज की पर्याप्त उपलब्धता है। जनता के लिए कल से मोबाइल वैन और NCCF और NAFED यानी नेफेड के खुदरा आउटलेट के साथ सफल और केंद्रीय भंडारों के माध्यम से 35 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से प्याज की बिक्री शुरू की गई है। सरकार ने कहा है कि देश में चीनी की कोई कमी नहीं है और उचित कीमतों पर पर्याप्त मात्रा में चीनी उपलब्ध कराने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जाएंगे। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने बताया कि हाल के दिनों में चीनी की कीमतों में लगभग 20% की गिरावट आई है, जबकि खुदरा चीनी की कीमतें भी कम होने लगी हैं। सरकार ने चीनी की समयबद्ध उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा मासिक कोटा प्रणाली के स्थान पर अगले महीने की पाक्षिक चीनी आवंटन प्रणाली शुरू करने का निर्णय लिया है। नए सीजन के लिए गन्ने की पेराई 15 अक्टूबर से शुरू होगी। इस दौरान 10 लाख टन से अधिक चीनी उत्पादन की संभावना है। सरकार ने चीनी मिलों को अक्टूबर में उत्पादित चीनी को बिना किसी प्रतिबंध के बेचने की अनुमति दी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि नेपाल में बुधवार को अचानक बाढ़ के बाद 320 भारतीय नागरिकों से संपर्क नहीं हो सका। उन्होंने कहा कि अन्य देशों के भारतीय मूल के लगभग 100 लोगों से भी संपर्क नहीं हो पा रहा है। श्री जायसवाल ने नई दिल्ली में बताया कि तमिलनाडु के 21 भारतीय नागरिक बाढ़ प्रभावित इलाकों से नई दिल्ली पहुंच गए हैं।
2: 21 भारतीय नागरिक

0: जो फंसे हुए थे कैलाश मानसरोवर की यात्रा पे गए थे, कल काठमांडू पहुंचे उस क्षेत्र से जहां पर ये हादसा हुआ, और कल हमारे राजदूत उनसे मिले, उनका हालचाल पूछा और हमारी एम्बेसी ने उनके लिए ये ट्रैवल अरेंजमेंट बनाया। आज वो दिल्ली पहुंच चुके हैं। उसके अलावा आप 63 भारतीय नागरिक जो त्रिशूली हाइड्रो पावर में काम करते हैं, त्रिशूली 1, उनको भी वहां से बचाया गया है। 96 भारतीय नागरिक चीन से नेपाल की तरफ आ चुके हैं और ये सभी लोग सुरक्षित हैं।
1: श्री जायसवाल ने कहा कि चीन की तरफ लगभग 400 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और अपने परिवारों के संपर्क में हैं। इस बीच भारत ने नेपाल को मानवीय सहायता बढ़ा दी है। भारत ने बचाव और राहत कार्यों में सहायता के लिए 47 टन से अधिक राहत सामग्री भेजी है। श्री जायसवाल ने कहा कि सरकार ने विदेश मंत्रालय में 24 घंटे कार्यरत नियंत्रण कक्ष बनाया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में तमिलनाडु के 21 तीर्थयात्रियों से मुलाकात की। इन्हें नेपाल से बचाया गया है। ये तीर्थयात्री कल बाढ़ प्रभावित क्षेत्र से काठमांडू पहुंचे थे और आज दोपहर नई दिल्ली पहुंचे। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि नेपाली सेना और सरकार इसके लिए धन्यवाद की पात्र है। उन्होंने भारत में उनकी सुगम वापसी सुनिश्चित करने के लिए काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास की भी सराहना की। डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि भारत सरकार बाढ़ के बाद राहत और बचाव कार्यों में नेपाल की सहायता कर रही है। डॉक्टर जयशंकर ने आज सवेरे नेपाल के विदेश मंत्री से बात की और उन्हें हर संभव सहायता की पेशकश की। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधु और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रक्षाबंधन के अवसर पर सभी दिल्लीवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री संधु ने कहा कि ये पर्व लोगों को एक दूसरे की सुरक्षा, सम्मान और जीवन भर साथ निभाने का संदेश देता है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रक्षाबंधन को स्नेह, विश्वास और कर्तव्य का पर्व बताया। उन्होंने कामना की कि पवित्र बंधन सभी के घरों में सुख, समृद्धि और आत्मीयता बढ़ाए तथा भाई बहन का प्रेम सदैव अटूट बना रहे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज स्कूली विद्यार्थियों से रक्षाबंधन पर्व के मूल तत्व स्नेह, सुरक्षा और संरक्षण के साथ पर्यावरण संरक्षण पर बल दिया। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में देश भर से आए विद्यार्थियों के साथ रक्षाबंधन मनाते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि ये त्यौहार प्रेम के ऐसे बंधन का प्रतीक है जिसे परिवार के सदस्यों, मित्रों और यहां तक कि पेड़ों के साथ भी साझा किया जा सकता है। पर्यावरण के बिगड़ते संतुलन पर चिंता व्यक्त करते हुए राष्ट्रपति ने विद्यार्थियों से जीवन के लिए आवश्यक संतुलन बनाए रखने के लिए पौधों और पेड़ों को राखी बांधने का आग्रह किया। इस विशेष समारोह में लगभग 90 विद्यार्थियों ने भाग लिया, जिनमें 17 राज्यों, एक केंद्र शासित प्रदेश, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नवोदय विद्यालय समिति के 13 दिव्यांग बच्चे शामिल थे। दिल्ली यातायात पुलिस ने रक्षाबंधन के अवसर पर राखी का वादा, सुरक्षा का इरादा नामक एक विशेष सड़क सुरक्षा यातायात अनुशासन अभियान चलाया। इसका उद्देश्य शिक्षा, प्रवर्तन और प्रोत्साहन के अनूठे संयोजन के माध्यम से सड़क सुरक्षा का संदेश लोगों तक पहुंचाना है। अभियान के दौरान महिला पुलिस अधिकारियों ने जिम्मेदार सड़क उपयोगकर्ताओं की कलाई पर राखी बांधकर सुरक्षा और संरक्षण के वादे का संदेश दिया। लोगों को हेलमेट पहनने, सीट बेल्ट लगाने, ट्रैफिक सिग्नल का पालन करने, लेन अनुशासन बनाए रखने, वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल न करने, शराब पीकर वाहन न चलाने तथा पैदल यात्रियों और अन्य संवेदनशील सड़क उपयोगकर्ताओं का सम्मान करने के लिए जागरूक किया गया। अखिल भारतीय व्यापारी परिसंघ कैट के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल ने बताया कि इस वर्ष राखियों का कारोबार लगभग 25,000 करोड़ रुपए का हुआ। मिठाइयों, ड्राई फ्रूट्स, परिधानों, फैशन, गिफ्ट्स पैक, आभूषणों, इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों तथा अन्य उपहारों का लगभग 5,000 करोड़ रुपए का व्यापार हुआ। श्री खंडेलवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वोकल फॉर लोकल के मंत्र को भी इस वर्ष रक्षाबंधन पर व्यापक समर्थन मिला। देश भर में उपभोक्ताओं ने बड़ी संख्या में स्वदेशी उत्पादों को प्राथमिकता दी। हस्तनिर्मित राखियों, पारंपरिक उपहारों, स्थानीय कारीगरों द्वारा निर्मित वस्तुओं तथा महिला स्व सहायता समूहों और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के उत्पादों की मांग में महत्वपूर्ण वृद्धि दर्ज हुई। दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा ने आईएसआई समर्थित पाकिस्तान स्थित एक जासूसी नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। इस मामले में दिल्ली के एक दंपत्ति को गिरफ्तार किया गया। आरोप है कि 2024 से सोशल मीडिया के माध्यम से पाकिस्तानी खुफिया एजेंटों के लिए वो काम कर रहे थे। दिल्ली पुलिस का कहना है कि ये दंपत्ति कथित तौर पर पाकिस्तान के हैंडलर्स को लॉजिस्टिक सहायता प्रदान करते थे। इसमें भारतीय सिम कार्ड खरीदना,

0: और उन्हें दुबई के रास्ते पाकिस्तान भेजना शामिल था। इन सिम कार्डों का इस्तेमाल पाकिस्तानी एजेंट्स व्हाट्सएप अकाउंट बनाने और भारतीयों से संपर्क करने के लिए करते थे। इस नेटवर्क में भारतीय सिम कार्ड खरीदने में सहायता के लिए दिल्ली के स्थानीय लोगों को भर्ती किया जाता था। इसके बाद पाकिस्तान में इन नंबरों पर व्हाट्सएप अकाउंट बनाए जाते थे। कथित तौर पर पाकिस्तानी खुफिया एजेंट भारतीय व्हाट्सएप ग्रुप में घुसकर जानकारी जुटाने के लिए इनका इस्तेमाल करते थे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। दिल्ली सरकार राजधानी के बुजुर्ग नागरिकों के लिए वयो आनंद योजना शुरू कर रही है। इस योजना के अंतर्गत ऐसे केंद्र विकसित किए जाएंगे जहां बुजुर्ग नागरिकों को खाली समय में आराम करने, इंडोर गेम खेलने, एक दूसरे से मिलने जुलने और सामाजिक गतिविधियों में शामिल होने के लिए बेहतर माहौल उपलब्ध हो सके। एक रिपोर्ट।
1: दिल्ली सरकार ने बताया है कि यह केंद्र सप्ताह में कम से कम 5 दिन खुले रहेंगे और प्रतिदिन न्यूनतम 7 घंटे संचालित होंगे। इन केंद्रों का संचालन सुबह 7 बजे से रात 8 बजे के बीच किया जाएगा। योजना के अंतर्गत मनोरंजन केंद्रों में कम से कम 200 ऐसे सदस्य होना जरूरी है जिनकी उम्र 60 वर्ष या उससे अधिक हो। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत पात्र मनोरंजन केंद्र को एक वित्तीय वर्ष में 2,40,000 रुपए की सहायता दी जाएगी। वरिष्ठ नागरिकों के लिए इन केंद्रों में योग और ध्यान की कक्षाएं भी आयोजित की जाएंगी। इसके साथ ही इनमें मासिक चिकित्सा शिविर और प्राथमिक उपचार किट की भी व्यवस्था होगी। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों को उनके आसपास ही ऐसे सुरक्षित और सुविधाजनक स्थान उपलब्ध कराना है जहां वे अपने हमउम्र लोगों के साथ समय बिता सकें, मनोरंजन और स्वास्थ्य संबंधी गतिविधियों में शामिल हो सकें तथा अकेलेपन से दूर सक्रिय सामाजिक जीवन जी सकें। प्रादेशिक समाचार के लिए सौम्या शरण।
0: सरकार द्वारा सार्वजनिक परीक्षा सुधारों के लिए गठित उच्च स्तरीय कार्यबल ने विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों सहित सभी हितधारकों से सुझाव आमंत्रित किए हैं। ये सुझाव ईमेल examreformstaskforce@dopt.gov.in के माध्यम से भी भेजे जा सकते हैं।
2: परीक्षा के संचालन, सुरक्षा, डिजाइन, मूल्यांकन पद्धति, शासन, जवाबदेही और संस्थागत व्यवस्थाओं के अलावा परीक्षा में अनुचित साधनों का पता लगाने, रोकथाम करने और उनके समाधान सहित अन्य संबंधित क्षेत्रों के बारे में सुझाव आमंत्रित किए गए हैं। कार्यबल संस्थागत प्रणालियों और प्रक्रियाओं को मजबूत करने, परीक्षा की निष्पक्षता तथा सुरक्षा सुनिश्चित करने, उपयुक्त तकनीकों को लागू करने, परीक्षा अवसंरचना को बढ़ाने और विद्यार्थियों के हितों की रक्षा करने के उपायों की जांच कर रहा है। इसका उद्देश्य मजबूत, सुरक्षित, पारदर्शी, न्याय संगत और भविष्य के लिए तैयार सार्वजनिक परीक्षा प्रणाली विकसित करना है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA द्वारा आयोजित परीक्षाओं सहित सार्वजनिक परीक्षाओं से संबंधित व्यापक सुधारों की जाँच और सिफारिश करने के लिए प्रसिद्ध प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ नंदन निलेकणी की अध्यक्षता में कार्यबल का गठन किया गया है। प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से मैं जसपाल कौर।
0: दिल्ली पुलिस ने ऑपरेशन विश्वास के अंतर्गत 300 से अधिक मोबाइल फोन बरामद किए हैं। पुलिस ने बताया कि इन मोबाइल फोन को हस खास स्थित NCUI ऑडिटोरियम में आयोजित विशेष कार्यक्रम में नागरिकों को सौंपे जाएंगे। मीडिया से बातचीत में दक्षिणी दिल्ली पुलिस उपायुक्त आनंद मित्तल ने लोगों से आग्रह किया है कि फोन खोने पर दिल्ली पुलिस की वेबसाइट पर मोबाइल फोन खोने की रिपोर्ट लिखवाएं।
3: जिला दिल्ली पुलिस ने करीब 300 मोबाइल फोन आज उनके राइटफुल ओनर्स को जो खोए हुए थे अलग अलग जगहों से वापस ला करके सौंपे हैं। निरंतर हमारी कोशिश ये रहती है कि जो भी मोबाइल फोन खोया जाए उसका टेक्निकल एनालिसिस करके उसको वापस ढूंढा जाए और दिल्ली पुलिस निरंतर इस पे लगी हुई है। जल्द ही हम इससे भी ज्यादा बड़ी संख्या में और भी लोगों को वापस करें।
0: दिल्ली भारतीय जनता पार्टी ने आज OBC मोर्चा दिल्ली प्रदेश और किसान मोर्चा दिल्ली प्रदेश के नवनियुक्त प्रदेश पदाधिकारियों और जिला अध्यक्षों की घोषणा की है। राजधानी दिल्ली में आज दिन के समय धूप खिली रही। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 35.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। विभाग ने बताया कि कल राजधानी में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। वहीं कल का अधिकतम तापमान 35 से 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 से 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, प्रधानमंत्री जनधन योजना ने गरीब परिवारों के परिश्रम को पहचान और बचत को सुरक्षा दी। महाराष्ट्र के नाशिक से 450 टन प्याज लेकर पहली कांदा एक्सप्रेस दिल्ली पहुंची। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में नेपाल से सुरक्षित वापस आए तमिलनाडु के 21 तीर्थयात्रियों से मुलाकात की। यातायात पुलिस ने

रक्षाबंधन पर राखी का वादा, सुरक्षा का इरादा, सड़क सुरक्षा और यातायात अनुशासन अभियान चलाया। उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रक्षाबंधन पर दिल्ली के लोगों को शुभकामनाएं दी और दिल्ली पुलिस ने ISI समर्थित पाकिस्तानी जासूसी नेटवर्क का भंडाफोड़ किया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। नेपाल और तिब्बत में विनाशकारी बाढ़ से मृतकों की संख्या बढ़कर 547 हो गई है। 1545 लोग अब भी लापता हैं। राहत और बचाव दल लापता लोगों की तलाश कर रहे हैं। दक्षिण पश्चिमी चीन में 5.1 तीव्रता के भूकंप के बाद बाढ़ की आशंका फिर से बढ़ गई है। अधिकारियों ने प्रभावित जिलों से 800 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि नेपाल में बुधवार को अचानक बाढ़ के बाद 320 भारतीय नागरिकों से संपर्क नहीं हो सका है। उन्होंने कहा कि अन्य देशों के भारतीय मूल के लगभग 100 लोगों से भी संपर्क नहीं हो पा रहा है। श्री जायसवाल ने नई दिल्ली में बताया कि तमिलनाडु के 21 भारतीय नागरिक बाढ़ प्रभावित इलाके से नई दिल्ली पहुंच गए हैं।
1: 21 भारतीय नागरिक जो फंसे हुए थे कैलाश मानसरोवर की यात्रा पे गए थे, कल काठमांडू पहुंचे उस क्षेत्र से जहां पर ये हादसा हुआ, और कल हमारे राजदूत उनसे मिले, उनका हालचाल पूछा और हमारी एम्बेसी ने उनके लिए ये ट्रैवल अरेंजमेंट बनाया। आज वो दिल्ली पहुंच चुके हैं। उसके अलावा 63 भारतीय नागरिक जो त्रिशूली हाइड्रो पावर में काम करते हैं, त्रिशूली 1, उनको भी वहां से बचाया गया है। 96 भारतीय नागरिक चीन से नेपाल की तरफ आ चुके हैं और ये सभी लोग सुरक्षित हैं।
0: इस बीच भारत ने नेपाल को मानवीय सहायता बढ़ा दी है। भारत ने बचाव और राहत कार्यों में मदद के लिए 47 टन से ज्यादा राहत सामग्री भेजी है। श्री जायसवाल ने कहा कि सरकार ने विदेश मंत्रालय में 24 घंटे कार्यरत नियंत्रण कक्ष बनाया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नेपाल से सुरक्षित वापस आए तमिलनाडु के 21 तीर्थयात्रियों से मुलाकात की। ये तीर्थयात्री कल बाढ़ प्रभावित क्षेत्र से काठमांडू पहुंचे थे और आज दोपहर नई दिल्ली पहुंचे। डॉ जयशंकर ने नेपाली सेना और सरकार को इसके लिए धन्यवाद दिया। सरकार ने कहा है कि देश में चीनी की कोई कमी नहीं है और उचित कीमतों पर पर्याप्त मात्रा में चीनी उपलब्ध कराने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जाएंगे। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने बताया कि हाल के दिनों में चीनी की कीमतों में लगभग 20% की गिरावट आई है, जबकि खुदरा चीनी की कीमतें भी कम होने लगी हैं। सरकार ने चीनी की समयबद्ध उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा मासिक कोटा प्रणाली के स्थान पर अगले महीने से पाक्षिक चीनी आवंटन प्रणाली शुरू करने का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन की यात्रा पर कल उज्बेकिस्तान जाएंगे। श्री मोदी उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेफ के निमंत्रण पर जा रहे हैं। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी और मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति मिर्जियोयेफ के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज से 6 दिन की अमरीका यात्रा पर हैं। यात्रा के दौरान वित्त मंत्री शिकागो, एशविल और न्यूयॉर्क जाएंगी। वे शिकागो में प्रमुख निवेशकों के साथ एक गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगी। एशविल में श्रीमती सीतारामन की अध्यक्षता में G20 सदस्य देशों के वित्त मंत्री, केंद्रीय बैंक गवर्नर तथा वरिष्ठ आर्थिक अधिकारी वैश्विक आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। प्रधानमंत्री जनधन योजना के आज 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। ये देश में वित्तीय समावेशन की दिशा में एक प्रमुख पड़ाव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जनधन योजना वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और देश के लोगों को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। योजना के अंतर्गत अब तक 59 करोड़ से अधिक खाते खोले जा चुके हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने उत्तर प्रदेश में बलिया जिले के सरकारी स्कूल में पिछले 2 वर्षों से 6 से 8 कक्षा के विद्यार्थियों को दोपहर का भोजन नहीं परोसे जाने के मामले में मुख्य सचिव को नोटिस जारी किया है। आयोग ने स्वतः संज्ञान लेते हुए 2 सप्ताह के भीतर इस बारे में विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। परीक्षा सुधारों के लिए गठित उच्चस्तरीय कार्यबल ने विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों सहित सभी हितधारकों से सुझाव आमंत्रित किए हैं। सुझाव 13 सितंबर तक वेबसाइट, व्हाट्सएप या फोन नंबर 1800-180-4747 के माध्यम से भेजे जा सकते हैं। जम्मू कश्मीर में वार्षिक श्री अमरनाथ जी यात्रा आज पारंपरिक छड़ी मुबारक की रस्मों के साथ संपन्न हो गई और इसी के साथ 57 दिन तक चली यात्रा औपचारिक रूप से समाप्त हुई।

0: of King Harald V of Norway. The Prime Minister recalled his meeting with King Harald V during his visit to Norway earlier this year. Raksha Bandhan, the festival of special bond between brothers and sisters, is being celebrated today across the country. President, Vice President and Prime Minister celebrated the occasion with children and students of various schools and organizations in New Delhi today. And that is the end of this news bulletin.
1: ये आकाशवाणी दिल्ली है, कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है, विश्व संस्कृत दिवस के अवसर पर लीजिए सुनिए महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय उज्जैन के कुलगुरु प्रोफेसर शिव शंकर मिश्र से एक विशेष भेंट वार्ता। आपसे भेंट कर रहे हैं हिंदू कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय के सहायक आचार्य डॉक्टर सुनील जोशी।
2: नमस्कार। श्रावण पूर्णिमा के इस परम पावन मंगलमय एवं सांस्कृतिक महापर्व पर मनाए जाने वाले संस्कृत दिवस के इस विशेष विचार उत्तेजक और ज्ञानवर्धक कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत करता हूं। संस्कृत केवल विश्व की प्राचीनतम भाषाओं में से एक नहीं, बल्कि भारत की सनातन ज्ञान परंपरा, आध्यात्मिक चेतना, वैज्ञानिक दृष्टि, दार्शनिक चिंतन और सांस्कृतिक अस्मिता की सुदृढ़ आधारशिला है। वेदों, उपनिषदों, रामायण, महाभारत, गीता, आयुर्वेद, योग, ज्योतिष, गणित, खगोल, व्याकरण, नाट्यशास्त्र तथा असंख्य ज्ञान विज्ञान के मूल स्रोत संस्कृत में ही निहित हैं। आज जब विश्व भारतीय ज्ञान परंपरा, योग, आयुर्वेद और सतत विकास के भारतीय दृष्टिकोण की ओर आकर्षित हो रहा है, तब संस्कृत की प्रासंगिकता और अधिक बढ़ जाती है। इन्हीं महत्वपूर्ण एवं समसामयिक विषयों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए आज हमारे मध्य उपस्थित हैं महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय के माननीय कुलगुरु प्रोफेसर शिवशंकर मिश्र जी, जो शिक्षा, भारतीय ज्ञान परंपरा तथा संस्कृत के संवर्धन के क्षेत्र में अपनी दूरदर्शी नेतृत्व क्षमता एवं विशिष्ट योगदान के लिए सुख्यात हैं। माननीय कुलगुरु जी, आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन।
3: नमस्कार।
2: जैसा कि हम सभी जानते हैं, संस्कृत दिवस मात्र एक स्मृति दिवस नहीं है, बल्कि हमारी प्राचीन ज्ञान परंपरा, ऋषि संस्कृति, सांस्कृतिक अस्मिता और राष्ट्रीय गौरव का भी उत्सव है। आपके विचार से संस्कृत दिवस मनाने के पीछे जो ऐतिहासिक, सांस्कृतिक या हम कहें जो राष्ट्रीय महत्व है, उसको हम जानना चाहेंगे।
3: सर्वप्रथम संस्कृत दिवस की समस्त भारतवासियों को मंगल कामनाएं। संस्कृत दिवस समग्र देश में बहुत ही उत्साह के साथ अभी भी संस्कृत के पढ़ने लिखने वाले लोग, संस्कृतानुरागी गण मनाते हैं। भारत में काल का बड़ा महत्व है और हमारे भारतीय जो काल गणना है, उस हिसाब से जो हमारे 12 मास हैं, उनमें से श्रावण का जो मास है वह अत्यंत पवित्र मास है। श्रावण मास में भगवान शिव की आराधना की जाती है और इसी क्रम में श्रावण की जो पूर्णिमा तिथि है, उसमें समस्त भारतवासी उसे संस्कृत दिवस के रूप में मनाते हैं। संस्कृत दिवस के रूप में इस कार्यक्रम के आयोजन का मुख्य जो संदेश है वह यह है कि हम इस तिथि को सभी संस्कृतानुरागी, हम ऋषियों का पूजन करते हैं। पूजन के माध्यम से उन ऋषियों के योगदान का, उनके संदेश का, उनकी ज्ञान परंपरा का स्मरण करते हैं और हम श्रावणी उपाकर्म करते हैं सभी भारतवासी। संस्कृत इस देश की प्राणभूत भाषा है। यदि हमारा देश बोलता है तो उसकी जो वाणी है वह संस्कृत है, और वह संस्कृत है तो वेद है, संस्कृत है तो उपनिषद है, संस्कृत है तो स्मृति है, संस्कृत है तो रामायण है, संस्कृत है तो महाभारत है, अर्थात इन सभी धर्म ग्रंथों की, इन सभी शास्त्रों की भाषा संस्कृत है। तो हम इस तिथि को, यह जो कार्यक्रम करते हैं, वह नई युवा पीढ़ी को यह संदेश देने के लिए कि हमें संस्कृत केवल स्मरण के लिए नहीं, बल्कि संस्कृत हमारे भारत की संवाहिका है, संस्कृत हमारे संस्कार की संवाहिका है, संस्कृत हमारे भारतीय ज्ञान विज्ञान की संवाहिका है, संस्कृत योग की संवाहिका है, संस्कृत आयुर्वेद की संवाहिका है, संस्कृत हमारे सदाचरण की संवाहिका है, और यदि संस्कृत है तो भारत है। मेरी दृष्टि में संस्कृत और भारत ये दो नाम नहीं है, संस्कृत ही भारत है और भारत ही संस्कृत है। बिना वेदम, बिना गीताम, बिना रामायणीम कथाम, बिना कविम कालिदासम भारतम भारतम नहीं, कालिदास के बिना, वेद के बिना।

0: गीता के बिना, रामायण के बिना हम भारत की कल्पना ही नहीं कर सकते हैं।
1: जी निश्चित रूप से, संस्कृत केवल अतीत की भाषा नहीं बल्कि भारत के उज्जवल भविष्य की आधारशिला है। प्रोफेसर मिश्र जी, आज का यह जो युग है वो विज्ञान का है, प्रौद्योगिकी का है, बल्कि वैश्वीकरण का यह युग है। ऐसे समय में यह प्रश्न स्वाभाविक रूप से उठता है कि संस्कृत की जो समकालीन प्रासंगिकता है वह क्या है। आपके विचार से वर्तमान भारत और वैश्विक परिदृश्य में संस्कृत भाषा किन किन क्षेत्रों में नई संभावनाओं के साथ उभर सकती है?
0: सुनील जी, बहुत अच्छी जिज्ञासा आपने की है कि संस्कृत ज्ञान और विज्ञान की भाषा है। हमारा समग्र जो दर्शन का साहित्य है वह समग्र विज्ञानमय है। अगर मैं एक संकेत के रूप में न्याय दर्शन की बात करूं तो न्याय दर्शन में सबसे पहले हम अपने विद्यार्थियों को बोधन कराते हैं कि 16 पदार्थ होते हैं, और हम वैशेषिक दर्शन के बारे में चर्चा करें तो कहते हैं कि 7 पदार्थ होते हैं। वो 16 पदार्थ हैं प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, जल्प, वितंडा, हेत्वाभास, छल, जाति और निग्रह स्थान। ऐसे ही हम वैशेषिक दर्शन के 7 पदार्थों की चर्चा करते हैं तो कहते हैं द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, अभाव। कल्पना कीजिए कि संस्कृत के इन ग्रंथों में कितनी बड़ी ज्ञान और विज्ञान की संपदा निहित है। भारत का बहुत सारा ज्ञान विज्ञान, चाहे हम शिक्षा के क्षेत्र में देखें, चाहे हम आयुर्वेद के क्षेत्र में देखें, चाहे हम योग के क्षेत्र में देखें, तो यह सारा ज्ञान विज्ञान पहले से ही संस्कृत में निहित है। तो यह अतीत में हमारा जो ज्ञान विज्ञान था वर्तमान में भी अत्यंत प्रासंगिक है और इसका अत्यंत उत्तम भविष्य भी है। संस्कृत आज AI के लिए अत्यंत उपयुक्त भाषा है क्योंकि इसका बहुत समृद्ध तर्कसम्मत व्याकरण है और भाषा ही बहुत व्यवस्थित और बहुत तर्कसम्मत है। इस भाषा के शब्दों को और इस भाषा का पूरा जो विज्ञान है, पूरा जो इसका साहित्य है, वह भविष्य के लिए अत्यंत उपयोगी है। आज देश में बहुत सारे आधुनिक विषयों के साथ संस्कृत को जोड़ करके रिसर्चित की जा रही है, चाहे गीता का मैनेजमेंट के साथ हो, चाहे वास्तुशास्त्र का आर्किटेक्ट के साथ हो, चाहे वह वैदिक गणित का पूरा ज्ञान विज्ञान हो, और AI के साथ भी, जैसा कि अभी हमने सुना है कि केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय ने AI को आधार मान करके BTech का कोर्स प्रारंभ किया है। उन्होंने विधि शास्त्र को दृष्टि में रख करके 1 लाख का कोर्स प्रारंभ किया है। सिविल सर्विसेज का पाठ्यक्रम भी आरंभ किया है। इससे बहुत स्पष्ट रूप से हम ऐसा अनुभव कर सकते हैं कि संस्कृत जितनी पुरातन है उतनी अधुनातन भी है और इसका प्रभाव भी लोगों के बीच में बहुत अच्छे से जा रहा है। लोग इधर उन्मुख भी हो रहे हैं और संस्कृत पढ़ने के प्रति बहुत अच्छी प्रवृत्ति भी आ रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने मन की बात में भी AI के इस पाठ्यक्रम की चर्चा की है। वो लगातार संस्कृत को समग्र विश्व में प्रचारित करते हैं, विदेशों में जाते हैं तो वहाँ के संग्रहालयों में जाकर के वहाँ की मूर्तियों का अवलोकन करते हैं और वहाँ के लोगों को संस्कृत का संदेश देते हैं, वो सुभाषित के बारे में चर्चा करते हैं। निश्चित रूप से यह भारत के लिए एक अत्यंत स्वर्णिम अवसर है जब भारत का नेतृत्व ही संस्कृत के प्रति इतना समर्पित है।
1: प्रोफेसर मिश्र जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि संस्कृत का जो वैज्ञानिक स्वरूप है वो आधुनिक तकनीकों के साथ समन्वय स्थापित कर मानवता को ज्ञान, संतुलन और सतत विकास की नई दिशा प्रदान कर सकता है, और यह परंपरा और आधुनिकता के बीच में एक सशक्त सेतु है। प्रोफेसर मिश्र जी, हम सभी जानते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत भारतीय ज्ञान परंपरा पर विशेष बल दिया जा रहा है। आपके विचार से भारतीय ज्ञान परंपरा की मूल अवधारणा क्या है?
0: सुनील जी, जो शिक्षा की नीतियां बनी उनमें से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। इस शिक्षा नीति के आने से पूरे भारत के अध्ययन की परंपरा को एक नई दिशा मिली है। ऐसा इसलिए हुआ है कि भारतीय ज्ञान परंपरा है, उस भारतीय ज्ञान परंपरा को राष्ट्रीय शिक्षा नीति में विशेष रूप से उसको स्थान दिया गया, क्योंकि भारत की जो एक विशद ज्ञान परंपरा है वो विद्याएं धीरे धीरे भारतीय ज्ञान परंपरा की माध्यम से इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में उनको स्थान मिल रहा है। ये एक अच्छी बात है कि पूरे देश में इस समय नए नए पाठ्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं, जैसे IKS भारतीय ज्ञान परंपरा में PG पाठ्यक्रम संचालित हो रहे हैं। इसी प्रकार हिंदू स्टडीज एक पाठ्यक्रम आया है जो पूरे देश में प्रायः 35 से अधिक विश्वविद्यालयों में हिंदू अध्ययन का पाठ्यक्रम प्रवर्तित हुआ है और उसमें समग्र भारतीय ज्ञान परंपरा का अध्ययन कराया जा रहा है। मैं समझता हूं कि यह जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है और उसमें आज हम भारत के वनस्पति विज्ञान की चर्चा कर रहे हैं, हम आज भारत के भौतिक विज्ञान की चर्चा कर रहे हैं, आयुर्वेद की चर्चा कर रहे हैं, और आज विश्वविद्यालयों में इस तरह के पाठ्यक्रम लाए जा रहे हैं कि जो आज फिजिक्स पढ़ा रहा है वो भारतीय

0: से भी परिचित हो, जो वनस्पति विज्ञान पढ़ा रहा है वो भारत की भी वनस्पति संपदा से अवगत हो। ऋषियों ने जो ज्ञान विज्ञान प्रवर्तित किया था उसको आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से पाठ्यक्रम में स्थान मिल रहा है और ये निश्चित रूप से भारत के लिए बहुत अच्छा संकेत है, भारतीय विद्याओं के लिए बहुत अच्छा संकेत है।
1: जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा, भारतीय ज्ञान परंपरा समग्र मूल्यपरक और जीवनोपयोगी ज्ञान की एक ऐसी परंपरा है जिसका मूल आधार संस्कृत है। प्रोफेसर मिश्री जी, जैसा कि हम जानते हैं उज्जैन को भारत की सप्त मोक्षपुरियों में विशेष स्थान प्राप्त है। यह नगरी प्राचीन काल से ही संस्कृत साहित्य, दर्शन, खगोल और आध्यात्मिक साधना का एक प्रमुख केंद्र रही है। आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपके विचार से संस्कृत भाषा और भारतीय ज्ञान परंपरा को जीवंत बनाए रखने में उज्जैन का ऐतिहासिक तथा समकालिक योगदान किस प्रकार का है?
0: बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा है। उज्जैनी में भगवान श्री कृष्ण ने अध्ययन किया था महर्षि शांतिपिनी के गुरुकुल में आकर। उज्जैनी महाराज विक्रमादित्य की वो भूमि है जहाँ उनके दरबार में नौ रत्न थे, जो अपने अपने विषय के प्रकांड पंडित थे, जिनके बारे में एक बहुत सुंदर श्लोक प्रचलित है, धनवंतरि क्षपण कामर सिंह संकु बेताल भट्ट घट खरपर कालिदासः ख्यातो बराह मीरो नृपते शभायाम रत्नानि वै बररुचिर नौ विक्रमस्य। विक्रमादित्य की वह भूमि रही है और विक्रमादित्य के ये नवरत्न वहां पर स्थान पाते रहे हैं। वह महाराज भर्तृहरि की भूमि रही है और उस भूमि पर सदियों से ज्ञान विज्ञान की परंपरा रही। वहां भगवान महाकाल हैं जो कि विद्या के अधिपति देवता हैं। यह महाकवि कालिदास की भूमि रही है, कालिदास ने वहीं पर अपने काव्य का प्रणयन किया। स्कंद पुराण में एक ऐसा उल्लेख मिलता है कि महर्षि वाल्मीकि ने उज्जैनी में रह करके वाल्मीकि रामायण की रचना की थी, इसलिए उज्जैनी का अत्यंत महत्व है। उज्जैनी सात पुरियों में एक प्रतिष्ठित पुरी है, अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी द्वारावती, चैव सप्तैता, मोक्षदायिका, इन परिगणित सप्त पुरियों में अवंती का अत्यंत महत्व है, उज्जैनी का अत्यंत महत्व है। ऐसी पावन नगरी उज्जैनी में महर्षि पाणिनि के नाम से विश्वविद्यालय स्थापित है, जो संस्कृत के विभिन्न क्षेत्रों में, व्याकरण के क्षेत्र में, दर्शन के क्षेत्र में, वास्तु के क्षेत्र में, विभिन्न विषयों में अध्ययन अध्यापन का कार्य वहां हो रहा है। उज्जैनी कुंभ भूमि भी है, यहां प्रति 12 वर्ष में सिंहस्थ महाकुंभ का आयोजन होता है।
1: जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि उज्जैन अतीत की गौरवशाली विरासत और भविष्य की ज्ञान यात्रा की प्रेरणादायी संगम है। प्रोफेसर मिश्र जी, आज विश्व समुदाय भारत की संस्कृति, योग, आयुर्वेद, दर्शन और जीवन मूल्यों के प्रति विशेष आकर्षण अनुभव कर रहा है। ऐसे समय में संस्कृत भाषा भारत की जो सांस्कृतिक कूटनीति है, जिसे हम कल्चरल डिप्लोमेसी कहते हैं, उसको किस प्रकार से और अधिक प्रभावशाली बना सकती है? इस दिशा में विश्वविद्यालयों, सांस्कृतिक संस्थानों तथा इसमें सरकार की क्या भूमिका होनी चाहिए?
0: बहुत अच्छी बात है ये कि भारत की जो संस्कृति है वह विश्व की समस्त संस्कृतियों को आत्मसात करके भी आज प्रतिष्ठित है। भारत की संस्कृति ऐसी है जिसमें किसी भी संस्कृति का कोई विरोध नहीं है, क्योंकि यह विश्व बंधुत्व की संस्कृति है, यह सर्वे भवन्तु की संस्कृति है और यह संस्कृति आती है संस्कृत से। संस्कृतम संस्कृतेर मूलम श्रेयसे समुपाश्यताम। संस्कृत संस्कृति की मूल है और कल्याण के लिए उसकी उपासना करनी चाहिए। भारत को जो प्रतिष्ठा मिली है संपूर्ण विश्व में वो भारत की संस्कृति से और भारत की भाषा संस्कृत से मिली है। तो यह जो विश्वविद्यालय है, जिन विश्वविद्यालयों में हम संस्कृत का अध्यापन कराते हैं, अध्ययन कराते हैं, वह वस्तुतः सही पूछिए तो भारत की हम संस्कृति का ही अध्ययन कराते हैं, संस्कृति और परंपरा का ही अध्यापन कराते हैं। और हमारी जो संस्कृति है वह सर्व कल्याण मूलक संस्कृति है। विश्व में कोई भी संस्कृति होगी वो हमारी संस्कृति से निश्चित रूप से उसे प्रेरणा मिलेगी और इस कार्य में संस्कृत विश्वविद्यालयों का महनीय योगदान भी है। संस्कृत विश्वविद्यालय के विद्यार्थी का जो जीवन है वह निश्चित रूप से अत्यंत सुसंस्कृत जीवन होता है, क्योंकि जो मूल गुण है, जो नीति है, जो सदाचरण है, वह संस्कृत के ग्रंथों से ही आती है। हम ही पढ़ाते हैं कि मातृदेवो भव, हम ही पढ़ाते हैं कि पितृदेवो भव, अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव, ये हमारी संस्कृति का पार्ट है। हम बताते हैं लोगों को कि मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ठवत, दूसरी सभी स्त्रियों पर माता की बुद्धि होनी चाहिए और दूसरे के द्रव्य में लोष्ठ की बुद्धि होनी चाहिए। हम अलग से छात्रों को ये बोध नहीं कराते, वो हमारे पाठ्यक्रम का पार्ट है। पढ़ते पढ़ते वो चीजें स्वयं सीखते हैं और एक सुसंस्कृत सुसभ्य नागरिक बनते हैं और उनका निश्चित रूप से उनकी उपयोगिता, उनका महत्व केवल अपने क्षेत्र में नहीं है, वो जहां भी जाते हैं दूसरों को भी प्रकाशित करते हैं और दूसरों को भी अपने सद्गुणों से आलोकित करते हैं।
1: जी आपने

0: बिल्कुल ठीक कहा प्रोफेसर मिश्र जी कि संस्कृत विश्व को शांति, सह अस्तित्व और मानवीय मूल्यों का संदेश देने वाली एक दिव्य भाषा है। प्रोफेसर मिश्र जी, यदि हमें संस्कृत को केवल शिक्षण संस्थानों तक सीमित न रखकर जन जन की भाषा और जीवन का हिस्सा बनाना है तो विशेष रूप से युवाओं में इसके प्रति रुचि और आत्मीयता को कैसे विकसित किया जा सकता है, इस पर हम आपके विचार चाहेंगे।
1: संस्कृत वस्तुतः भारत के किसी एक व्यक्ति की भाषा नहीं है, संस्कृत भारत के समस्त मनुष्यों की भाषा है। और इतना ही नहीं, मैं तो कहूंगा कि यह विश्व की भाषा है, क्योंकि संस्कृत भाषा में जो गुण हैं, जो मूल्य हैं, वह किसी व्यक्ति, किसी समुदाय, किसी जाति, किसी धर्म, किसी क्षेत्र के नहीं है, अपितु वह सार्वभौम है। तो संस्कृत कभी थी भी जन जन की भाषा। यदि हम संस्कृत के अतीत के बारे में इसके ऐतिहासिक साक्ष्यों को देखें तो संस्कृत अतीत में जन सामान्य की भाषा थी। शंकराचार्य के समय आपको ऐसा प्रसंग मिलता है कि भगवान शंकराचार्य जब मंडन मिश्र से मिलने गए तो उन्होंने वहां के जन सामान्य लोगों से पूछा कि कुत्रालयो मंडन पंडितस्य, पंडित मंडन मिश्र का घर कहाँ है। संस्कृत जन सामान्य की भाषा थी, इसीलिए हम विश्व गुरु थे, क्योंकि हमारे यहाँ हर व्यक्ति सुसंस्कृत था, हर व्यक्ति सदाचरण संपन्न था, हर व्यक्ति सुसभ्य था, हर व्यक्ति परोपकारी सद्गुणी था। तो हमारे देश में यह संस्कृत को जन सामान्य की भाषा बनानी है। और इस समय जो हमारी भारत की नीतियां हैं, जो हमारे भारत का नेतृत्व है, संस्कृत को जन सामान्य में ले जाने के लिए प्रयत्नशील है और इसके सकारात्मक संदेश भी मिल रहे हैं। संस्कृत भारती संगठन के द्वारा भी संस्कृत का प्रचार प्रसार बहुत व्यापक स्तर पर किया जा रहा है। ऐसे ऐसे लोग भी हमें मिलते हैं जो संस्कृत की पृष्ठभूमि से नहीं है, जिन्होंने संस्कृत पढ़ी नहीं है, लेकिन वो संस्कृत बोलते हैं और संस्कृत के सद्गुणों को अपने जीवन में अपनाते हैं। तो निश्चित रूप से एक समय ऐसा आएगा कि भारत के सभी लोग संस्कृत में व्यवहार करेंगे और वस्तुतः वही विकसित भारत होगा।
0: जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा, जब संस्कृत आधुनिक जीवन का हिस्सा बनेगी तभी इसका व्यापक जन आंदोलन संभव होगा। प्रोफेसर मिश्र जी, हम जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने की जिस संकल्पना के साथ जुड़े हैं और जिसके साथ पूरा देश जुड़ रहा है, ऐसे में शिक्षा, अनुसंधान, नवाचार, भारतीय ज्ञान परंपरा, सांस्कृतिक पुनर्जागरण और वैश्विक नेतृत्व के संदर्भ में आप संस्कृत की भूमिका को किस प्रकार देखते हैं?
1: माननीय प्रधानमंत्री जी के इस दूरदर्शी नेतृत्व का बहुत प्रशंसक हूँ। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि विकसित भारत का अभिप्राय यह है कि हम केवल भौतिकता की दृष्टि से ही विकसित न हो, हमारे भारत की जो ज्ञान परंपराएं हैं वो भी विकसित हों, हमारे भारत का जो जीवन दर्शन है, हमारी भारत की जो चिंतन पद्धति है, हमारी भारत की जो रहन सहन है, हमारी भारत की जो व्यंजन है, हमारे भारत के जो त्योहार हैं, हमारे भारत की जो जीवन शैली है, वो सब विकसित होगी तभी भारत देश विकसित है, ऐसा मैं समझता हूँ। वही विकसित भारत देश होगा। हमारे संस्कृत के इस प्रभाव से जो 2047 तक मुझे ऐसा लगता है कि समस्त शिक्षा पद्धति में संस्कृत संस्कृत भाषा के रूप में भले ना प्रवेश करे, लेकिन संस्कृत के जो विचार हैं, संस्कृत का जो चिंतन है, वह हिंदी भाषा के रूप में, बंगला भाषा के रूप में, उड़िया भाषा के रूप में, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ भाषा के रूप में हमारे साहित्य में प्रवेश कर जाएगा। निश्चित रूप से संस्कृत का जो ज्ञान विज्ञान है वह संस्कृत मुखेन और अन्य भाषा मुखेन हमारे जीवन में उसका अवश्य अवतरण होगा।
0: जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि भविष्य का भारत तभी आत्मनिर्भर और विश्वगुरु बन सकेगा जब अपनी प्राचीन ज्ञान परंपरा को आधुनिक दृष्टि के साथ आत्मसात करेगा। माननीय कुलगुरु जी, आपने अत्यंत सरल, सारगर्भित और दूरदर्शी विचारों के माध्यम से संस्कृत दिवस के ऐतिहासिक महत्व, भारतीय ज्ञान परंपरा की वैश्विक प्रासंगिकता, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, सांस्कृतिक कूटनीति, युवा शक्ति तथा विकसित भारत 2047 के संदर्भ में संस्कृत की भूमिका पर अत्यंत प्रेरणादायक दृष्टिकोण हम सभी श्रोताओं के समक्ष प्रस्तुत किया है। निसंदेह आपके विचार हमें यह संदेश देते हैं कि संस्कृत केवल अतीत की धरोहर नहीं बल्कि भविष्य के भारत के निर्माण की एक सशक्त आधारशिला है। हम आपके अमूल्य समय, प्रेरक विचारों और इस सार्थक संवाद के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
2: विश्व संस्कृत दिवस के अवसर पर अभी आप महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय उज्जैन के कुलगुरु प्रोफेसर शिव शंकर मिश्र से ये विशेष भेंट वार्ता सुन रहे थे। आपसे भेंट कर रहे थे हिंदू कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय के सहायक आचार्य डॉक्टर सुनील जोशी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।

नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं शक्ति सिंह। हम एक बार फिर मौजूद हैं लेकर के खेल के मैदान का सारा लेखा जोखा आपके इस कार्यक्रम स्पोर्ट्स कैन में। तो आज कार्यक्रम में बात की जाएगी चेस की, जहां भारत के आर प्रज्ञानानंदा ने रचा है इतिहास और बन गए हैं ग्रैंड शतरंज टूर खिताब जीतने वाले पहले भारतीय शतरंज खिलाड़ी। आज रुख किया जाएगा नीरज चोपड़ा का, जिन्होंने बिना डायमंड लीग में पार्टिसिपेट किए डायमंड लीग फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। जीरो के अंतिम दौर में उन्होंने प्रतिभाग नहीं किया था, हालांकि भारत का ये स्टार खिलाड़ी पहुंच गया है डायमंड लीग फाइनल में, जो अगले महीने खेली जाएगी। पीएसए बुदापेस्ट स्क्वाश ओपन के फाइनल में आज भारत के वेलनवल सेंथिल कुमार का मुकाबला हंगरी के ब्लाज फारकस से होगा। और अंत में कार्यक्रम में जिक्र किया जाएगा महिला क्रिकेट एशिया कप का, जो आज से संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई में शुरू हो गया है। भारतीय टीम रविवार को हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में अपने अभियान का आगाज करेगी।

0: तो आज के कार्यक्रम को शुरू किया जाए शतरंज के पिसाज से आई हुई एक शानदार उपलब्धि से, जहां रमेश बाबू प्रज्ञानानंदा ने ग्रैंड चेस टूर का खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है। वे ये खिताब जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी हैं। 21 वर्षीय प्रज्ञानानंदा ने अमेरिका के सेंट लुइस में हुए फाइनल में फेबियानो करुआना को 15-13 से हराकर ये खिताब जीता।
1: भारतीय युवा शतरंज खिलाड़ी रमेश बाबू प्रज्ञानानंद ने एक और ऐतिहासिक उपलब्धि भारतीय शतरंज के हिस्से में जोड़ दी है। ग्रैंड चेस टूर के फाइनल मुकाबले की शुरुआती बाजियों में पिछड़ने के बाद प्रज्ञानानंद ने शानदार वापसी की और खिताब अपने नाम किया। भारतीय स्टार खिलाड़ी ने क्लासिकल चेस में 3-9 से हारने के बाद रैपिड सेक्शन में वापसी की और 8-0 से जीत दर्ज की। इसके बाद ब्लिट्ज प्रारूप में मुकाबला 4-4 से बराबरी पर छूटा, इससे वो कुल 15-13 के स्कोर के साथ खिताब जीतने में सफल रहे। आनंद ने पहले सेमीफाइनल में कीमर को 19-9 से हराकर फाइनल में जगह बनाई थी, जबकि कारुआना ने दूसरे सेमीफाइनल में वेस्ली सो को 18-12 से हराया। प्रज्ञानानंद 2018 में सिर्फ 13 साल की उम्र में ग्रैंड मास्टर बने थे। उनकी मौजूदा रेटिंग 2750 है और अगस्त 2026 की ताज़ा फिडे क्लासिकल रैंकिंग में वो दुनिया के 12वें नंबर के खिलाड़ी हैं। नॉकआउट टूर्नामेंट में प्रज्ञानानंद को पहली वरीयता मिली थी, वहीं तीसरे स्थान के लिए खेले गए मुकाबले में अमरीका के वेस्ली सो ने जर्मनी के विंसेंट कीमर जीत दर्ज की। इस प्रतियोगिता में शीर्ष 3 स्थान हासिल करने वाले खिलाड़ियों को 2027 के ग्रैंड चेस टूर में सीधा प्रवेश भी मिल गया है। मुकेश कुमार, स्पोर्ट्स कैन।
0: तो अगले साल के ग्रैंड चेस टूर के लिए अपना स्पॉट फिक्स कर लिया है कि 21 वर्षीय भारतीय खिलाड़ी ने। प्रज्ञानानंदा ने अपनी जीत को लेकर के क्या कहा, ये भी सुनते हैं।
2: I won a close final match against Fabiano Caruana. Managed to come back today in rapid and blitz after being down by 6 points in the classical portion. It was really close. It went down to the wire till the last game, and I really enjoyed the fighting games.
0: अगर कभी वापसी की बात की जाए, हम जैसे क्रिकेट में करते हैं, फुटबॉल हॉकी में करते हैं कि आप 3 या 4 गोल से या इतने रन से पीछे थे और एक शानदार वापसी को जीत में बदल देते हैं, ऐसा ही कुछ चेस में देखने को मिला, जहां ये खिलाड़ी पहले दिन 3 दिन के ये फाइनल मुकाबले होते हैं और क्लासिक राउंड में 6 अंकों से पीछे था। दूसरे बार जब इनको मौका मिला बराबरी का तो अच्छी बढ़त थी, लेकिन ड्रॉ पे समाप्त हुआ। कल तक लोगों को लग रहा था कि किस तरह ये फाइनल में अपने आप को विजेता बना पाते हैं, लेकिन इस खिलाड़ी ने जो संतुलन और जिस खेल का प्रदर्शन किया, वाकई ऐतिहासिक प्रदर्शन जो भारतीय शतरंज में वर्षों तक याद किया जाएगा। और अब बात की जाए 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता स्टार जेवलिन थ्रो खिलाड़ी नीरज चोपड़ा की, जिन्होंने डायमंड लीग फाइनल में क्वालिफाई कर लिया है। ये प्रतियोगिता सितंबर में बेल्जियम के ब्रसल्स में खेली जाएगी।
3: इस वर्ष हुई 14 डायमंड लीग प्रतियोगिताओं में से 5 में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा शामिल थी, लेकिन नीरज चोपड़ा 2 प्रतियोगिताओं में ही शामिल हुए। नीरज ने 19 जून को दोहा और 21 अगस्त को लुसाने में हुई डायमंड लीग में 2रा स्थान हासिल किया। कल ज्यूरिख में श्रृंखला के 14वें और आखिरी चरण के बाद आई अंक तालिका में नीरज 12 अंकों के साथ 6ठे स्थान पर रहे। हाल में हुए ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में वे

0: लेकिन इसके बावजूद उन्होंने 85.83 मीटर के सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ रजत पदक हासिल कर लिया। इसके बाद उन्होंने लुसाने डायमंड लीग में अपने प्रदर्शन में सुधार करते हुए 88.5 मीटर का थ्रो किया। कूद और थ्रो स्पर्धाओं में अंक तालिका के शीर्ष 6 खिलाड़ी 4-5 सितंबर को ब्रसेल्स में डायमंड लीग फाइनल में हिस्सा लेंगे। प्रतियोगिता में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा 5 सितंबर को होगी। श्रीलंका के उभरते स्टार रोमेश पथिरागे 39 अंक के साथ अंक तालिका में शीर्ष पर हैं। दो बार के विश्व चैंपियन ग्रेनेडा के एंडरसन पीटर्स 35 अंक के साथ दूसरे और मौजूदा विश्व चैंपियन त्रिनिदाद और टोबेगो के केसोर वॉलकॉट 23 अंक लेकर तीसरे स्थान पर हैं। नीरज पहली बार होने वाली विश्व एथलेटिक्स अल्टीमेट चैंपियनशिप के लिए भी क्वालिफाई करने की राह पर हैं। यह प्रतियोगिता 11 से 13 सितंबर तक बुडापेस्ट में होगी। 5 सितंबर को ब्रसेल्स में होने वाले डायमंड लीग फाइनल के विजेता को अल्टीमेट चैंपियनशिप में सीधे प्रवेश मिलेगा। चंद्रशेखर शर्मा, स्पोर्ट्स स्कैन।
1: नीरज चोपड़ा ने अपने लिए इतने बड़े मानक तय किए हैं कि जब सिल्वर मेडल भी ये खिलाड़ी जीतता है तो लोगों को लगता है कि यहाँ से स्वर्ण की गुंजाइश थी। और नीरज चोपड़ा की शानदार एंट्री पर जो उन्होंने डायमंड लीग के फाइनल में की है, हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं हमारे सहयोगी विशेष शुक्ला जो अधिक जानकारी देंगे। विशेष, कल जब ज्यूरिख में टूर्नामेंट हुआ वहाँ पर नीरज नहीं थे, लेकिन नीरज ने अपना स्पॉट फिक्स किया है। हालांकि इस बार चुनौती हर बार से अधिक होगी 2022 के डायमंड लीग चैंपियन के सामने।
2: ये बिल्कुल शक्ति, और इस बार चुनौती नीरज के लिए इसलिए भी चुनौतीपूर्ण होगी क्योंकि इस बार जो उनका मुकाबला है वो पथिरागे जैसे खिलाड़ियों से होगा जो 90 मीटर का थ्रो बहुत ही आसानी से कर दे रहे हैं। इसके अलावा नीरज चोपड़ा चोट के चलते काफ़ी समय से अपना बेस्ट प्रदर्शन नहीं दे पा रहे हैं, हालांकि वो अभी कोशिश में लगे हुए हैं कि कैसे वो इस चोट से उबर पाएं। उनका मुकाबला अभी जो होने वाला है पथिरागे से, उन्होंने अभी रिसेंट में ही 92.07 मीटर का थ्रो फेंका, इससे पहले भी वो 90 मीटर का थ्रो फेंक चुके थे, तो इससे ये पता लगाया जा सकता है कि नीरज के ऊपर कितना दबाव होगा। इसके अलावा जूलियन वेवर जो है वो चोट के चलते इस प्रतियोगिता में अब हिस्सा नहीं ले पाएंगे, हालांकि उनका भी रिकॉर्ड 90.40 मीटर का रहा है। इसके अलावा एंडरसन पीटर्स हो गए और टोबेगो के केशोर्ड वॉलकॉट, अमेरिका के कार्टिस थॉम्पसन, ये सभी खिलाड़ी जो है नीरज के सामने चुनौती पेश करेंगे। हालांकि नीरज ने एक बार 90.03 मीटर का जो है भाला एक बार फेंका था, लेकिन उसके बाद से वो 90 का आंकड़ा जो है क्रॉस नहीं कर पाए हैं, तो काफी चुनौतीपूर्ण होगा उनके लिए।
1: जी बिल्कुल, चुनौती देखने को मिलेगी। पथिरागे एक नए सितारे की तरह जैवलिन की दुनिया में सामने आए हैं। मैं रिकॉर्ड के लिए ये चीज बताना चाहूंगा कि इस वर्ष हुए 12 टूर्नामेंट में से 11 टूर्नामेंट का खिताब इस खिलाड़ी ने जीता है, और 3 बार नीरज चोपड़ा जब आमने सामने थे तो उनको दूसरे स्थान या फिर थोड़ा पथिरागे से पीछे रहकर ही संतोष करना पड़ा है। तो कह सकते हैं कि कड़ी चुनौती इंतजार कर रही होगी।
2: जी बिल्कुल, नीरज के लिए एक बहुत ही कड़ी चुनौती जो है इंतजार कर रही है, और इस सत्र में जो है 90 मीटर से ज्यादा का थ्रो करने वाले जो दूसरे खिलाड़ी हैं जूलियन वेबर, इससे नीरज को एक फायदा ये मिल सकता है कि वो प्रतियोगिता का हिस्सा नहीं है। अरशद नदीम जिन्होंने 2024 पेरिस ओलंपिक्स में गोल्ड जीता था, वो खराब फॉर्म और अपनी चोट के चलते जो है वो अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं, तो काफी हद तक नीरज के लिए कुछ पॉजिटिव्स भी हैं और कुछ नेगेटिव्स भी।
1: जी बिल्कुल, लेकिन एक कड़ा मुकाबला हो सकता है 4 से 5 सितंबर को खेल प्रेमियों को देखने को मिले, और उम्मीद होगी कि पिछले चार अगर हम डायमंड लीग फाइनल की बात की जाए, 2022 में स्वर्ण पदक, 2023, 2024, 2025 लगातार नीरज चोपड़ा जो हैं वो को विनर रहे हैं, सिल्वर मेडल उन्होंने जीता है। इस बार सबको उम्मीद होगी अपने इस स्टार खिलाड़ी से कि एक शानदार फॉर्म के साथ मैदान पर लौटें और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करें। और नीरज चोपड़ा के बाद अब बात की जाए स्क्वाश की, जहां पीएसए बुडापेस्ट स्क्वाश ओपन के पुरुष वर्ग के फाइनल में आज भारत के वेलनवन सेंथिल कुमार का मुकाबला विश्व की 55वीं वरीयता प्राप्त हंगरी के बलाज फारकस से होगा। यह मुकाबला भारतीय समय अनुसार रात 10:30 खेला जाएगा। इससे पहले कल सेंथिल कुमार ने सेमीफाइनल में भारत के ही वीर चोटरानी को एक कड़े मुकाबले में 9-11, 11-7, 11-8, 1-11 और 12-10 से हराया था। वहीं फारकस ने मिश्र के मुस्तफ़ा एलसीटी को लगातार सेटों में 11-4, 11-3, 11-7 से हराकर फाइनल में प्रवेश किया है। तो जिस तरह की फॉर्म देखने को मिली, हालांकि वीर चोटरानी कल उनको बाहर होना पड़ा क्योंकि सेमीफाइनल के इस ड्रॉ में दोनों ही भारतीय खिलाड़ी आ गए थे, ऐसे में उम्मीद होगी कि वो छोटी सी कसक शायद फाइनल में दोनों खिलाड़ी ना भिड़ पाएं, लेकिन सेंथिल कुमार पूरी करते हुए नजर आएंगे और इस बेहतरीन खिलाड़ी से टीम को एक पदक की जरूरत होगी। गृहमंत्री अमित शाह ने कल अहमदाबाद में आगामी खेल प्रतियोगिताओं की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि सरकार बड़े स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों की मेजबानी करके भारत को वैश्विक खेल गंतव्य बनाने के लिए प्रति

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। भारत ने बाढ़ प्रभावित नेपाल के लिए तीसरी उड़ान से 10 टन मानवीय सहायता भेजी। विदेश मंत्रालय ने कहा 320 भारतीय नागरिकों से अब भी कोई संपर्क नहीं। नेपाल तिब्बत में विनाशकारी बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 547 हुई। सीमा के दोनों तरफ 1500 से अधिक लोग अब भी लापता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की 4 दिवसीय यात्रा पर रवाना होंगे। सरकारी उपायों से बाजार में चीनी की उपलब्धता बढ़ी। मिलों से सीधे प्राप्त चीनी की कीमतों में लगभग 20% की गिरावट। देश के औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दर इस वर्ष जुलाई में 6.7% रही। और बुडापेस्ट स्क्वाश ओपन के फाइनल में आज रात भारत के वेलवन सेंथिल कुमार का सामना हंगरी के बालाज फारकश से। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया है कि नेपाल में बुधवार को अचानक बाढ़ के बाद 320 भारतीय नागरिकों से कोई संपर्क नहीं हो सका है। उन्होंने कहा कि अन्य देशों के भारतीय मूल के लगभग 100 लोगों से भी संपर्क नहीं हो पा रहा है। श्री जायसवाल ने नई दिल्ली में बताया कि तमिलनाडु के 21 भारतीय नागरिक बाढ़ प्रभावित इलाकों से नई दिल्ली पहुंच गए हैं।
1: 21 भारतीय नागरिक जो फंसे हुए थे कैलाश मानसरोवर की यात्रा पे गए थे, कल काठमांडू पहुंचे उस क्षेत्र से जहां पर ये हादसा हुआ, और कल हमारे राजदूत उनसे मिले, उनका हालचाल पूछा और हमारी एम्बेसी ने उनके लिए ये ट्रैवल अरेंजमेंट बनाया। आज वो दिल्ली पहुंच चुके हैं। उसके अलावा आप 63 भारतीय नागरिक जो त्रिशूली हाइड्रो पावर में काम करते हैं, त्रिशूली 1, उनको भी वहां से बचाया गया है। 96 भारतीय नागरिक चीन से नेपाल की तरफ आ चुके हैं और ये सभी लोग सुरक्षित हैं।
0: इस बीच भारत ने नेपाल को मानवीय सहायता बढ़ा दी है। 10 टन मानवीय सहायता लेकर तीसरी उड़ान काठमांडू के लिए रवाना हो गई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए यह जानकारी दी। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि इस उड़ान में डॉक्टरों, पैरामेडिक्स और टनल रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए रेकी टीम के 11 सदस्य भी शामिल हैं। नेपाल और तिब्बत में विनाशकारी बाढ़ से मृतकों की संख्या बढ़कर 547 हो गई है। 1545 लोग अब भी लापता हैं। राहत और बचाव दल लापता लोगों की तलाश कर रहे हैं। दक्षिण पश्चिम चीन में 5.1 तीव्रता के भूकंप के बाद बाढ़ की आशंका फिर बढ़ गई है। अधिकारियों ने प्रभावित जिलों से 800 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। भोटे कोशी नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण त्रिशूली क्षेत्र के निवासियों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने का आदेश दिया गया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नेपाल से सुरक्षित वापस आए तमिलनाडु के 21 तीर्थयात्रियों से मुलाकात की। ये तीर्थयात्री कल बाढ़ प्रभावित क्षेत्र से काठमांडू पहुंचे थे और आज दोपहर नई दिल्ली पहुंचे। डॉक्टर जयशंकर ने नेपाली सेना और सरकार को इसके लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने नेपाल के विदेश मंत्री से बात की और हर संभव सहायता देने की पेशकश की।
2: They told me about exactly what happened to them, how the floods came.
3: उन्होंने मुझे बताया कि उनके साथ असल में क्या हुआ था और बाढ़ कैसे आई थी। वे बहुत आभारी हैं, खासकर नेपाल सेना के, जिन्होंने उस बेहद मुश्किल जगह से निकालने के लिए इतना बड़ा प्रयास किया। इसलिए अभी हमारा प्रयास लोगों की राहत और बचाव कार्यों में नेपाल की मदद करने का है। आज सुबह ही मैंने नेपाल के विदेश मंत्री से बात की है। हमने उन्हें कई तरह की सहायता की पेशकश भी की है।
2: We have given them range of support offers.
0: सिक्किम सरकार नेपाल में बाढ़ की स्थिति पर कड़ी नजर रख रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सरकार वहां फंसे सिक्किम निवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए समुचित कदम उठा रही है।
4: सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तवांगोले ने सिक्किम के 8 निवासियों से फोन पर बात की। जानकारी मिली है कि सभी 8 लोग सुरक्षित हैं। फंसे हुए सिक्किम का निवासियों के लिए सिक्किम सरकार ने कल नेपाल फ्लैश फ्लड टास्क फोर्स का गठन किया है। टास्क फोर्स को स्थिति से प्रभावित सिक्किम के नागरिकों के लिए आवश्यक सहायता के समग्र समन्वय, निगरानी और सुविधा प्रदान करने की जिम्मेवारी सौंपी गई है। टास्क फोर्स भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के साथ नियमित समन्वय बनाए हुए है और संबंधित सिक्किम निवासियों तथा उनका परिवारों के साथ भी लगातार संपर्क में है। मोइनक चटर्जी, आकाशवाणी समाचार, गैंगटॉक।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
5: मेरी बैंक हमेशा मेरे साथ चलती है। सुबह उठती हूँ तो पैसे जमा कर आती है, कस्टमर ज्यादा हो जाते हैं तो पूरा गल्ला संभाल लेती है, आधी रात को भी उठा के बताती है कि मैडम लक्ष्मी फल भंडार का पेमेंट आ गया है, जनधन बैंक खाता क्या मिला,

0: मुझे तो उंगलियों के छोर पर बीमा, पेंशन, डीबीटी, सारी बैंकिंग सुविधाएं मिल गई हैं।
1: 12 साल में 59 करोड़ जनधन खाते खुले, जिसमें 56% खाते तो सिर्फ महिलाओं के हैं। पीएम जनधन योजना के 12 साल, ज्यादा बचत, ज्यादा काम।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के आज 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। ये देश में वित्तीय समावेशन की दिशा में प्रमुख पड़ाव है। एक रिपोर्ट।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में जनधन योजना के अभूतपूर्व परिवर्तनकारी परिणामों का प्रभाव बेमिसाल है। श्री मोदी ने कहा कि जनधन योजना वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और देश के लोगों को सक्षम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इस योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 में आज ही के दिन किया था। योजना के तहत अब तक 59 करोड़ से अधिक खाते खोले जा चुके हैं। ये योजना सभी भारतीयों के लिए बैंकिंग पहुँच को सुलभ बना रही है। योजना के तहत महिलाओं के लगभग 56% खातों सहित 78% खाते ग्रामीण या अर्ध शहरी क्षेत्रों में खोले गए हैं। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की 4 दिवसीय यात्रा पर रवाना होंगे। प्रधानमंत्री मोदी उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के निमंत्रण पर ताशकंद का दौरा करेंगे। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी और मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति मिर्जियोयेव के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत करेंगे।
4: भारत और उज्बेकिस्तान ने 2011 में अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। तब से द्विपक्षीय संबंध कई क्षेत्रों में व्यापक रूप से बढ़े हैं। प्रधानमंत्री की आगामी यात्रा भारत और उज्बेकिस्तान के बीच करीबी, बहुआयामी और बढ़ते राजनीतिक साझेदारी को बढ़ावा देगी। चर्चा के दौरान आपसी सहयोग के कई इलाकों को शामिल किए जाने और द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के नए रास्ते तलाशने की उम्मीद है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद, उज्बेकिस्तान।
2: सरकार ने कहा है कि देश में चीनी की कोई कमी नहीं है और उचित कीमतों पर पर्याप्त मात्रा में चीनी उपलब्ध कराने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जाएंगे। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने बताया कि हाल के दिनों में चीनी की कीमतों में लगभग 20% की गिरावट आई है, जबकि खुदरा चीनी की कीमतें भी कम होने लगी हैं।
5: पाक्षिक कोटा के अंतर्गत चीनी मिलों को आवंटित मात्रा से कम 40% चीनी पहले सप्ताह में और शेष मात्रा अगले सप्ताह में बेचनी होगी। मंत्रालय के अनुसार नए सीजन के लिए गन्ने की पेराई 15 अक्टूबर से शुरू होगी। अक्टूबर महीने के दौरान 10 लाख टन से अधिक चीनी उत्पादन होने की उम्मीद है। सरकार ने चीनी मिलों को अक्टूबर में उत्पादित चीनी को बिना किसी प्रतिबंध के बेचने की भी अनुमति दी है, जिससे नए सीजन का उत्पादन जल्द से जल्द घरेलू बाजार में उपलब्ध हो सके। नवंबर में चीनी का उत्पादन लगभग 45 लाख टन रहने की उम्मीद है, जिससे घरेलू खपत के लिए चीनी की अतिरिक्त आपूर्ति में पर्याप्त वृद्धि होगी। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: कृषि, किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पंजाब के किसानों को आश्वासन दिया है कि केंद्र सरकार उनके हितों से कोई समझौता नहीं करेगी और किसी भी देश के साथ किए गए हर समझौते में किसानों के हितों को सर्वोपरि रखा जाएगा। अमृतसर जिले के बाबा बकाला में आज एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी समेत विपक्षी दल ये झूठा प्रचार कर रहे हैं कि केंद्र सरकार किसानों के हितों के खिलाफ समझौते कर रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। कृषि मंत्री ने विशेष रूप से पंजाब सरकार को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू न करने के लिए जिम्मेदार ठहराया।
6: भारत सरकार ने योजना बनाई किसानों की आमदनी बढ़ाने की, आय बढ़ाने की, हम पंजाब में भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपकी भ्रष्ट सरकार के कारण हमारी कोशिशें सफल नहीं हो रही। पंजाब के कृषि के लिए एक नया रोड मैप टॉप के साइंटिस्टों की टीम बनाएगी। हम पंजाब की कृषि की दशा बदलेंगे, दिशा बदलेंगे और किसान की हालत बदलेंगे।
2: परीक्षा सुधारों के लिए गठित उच्चस्तरीय कार्यबल ने विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों सहित सभी हितधारकों से सुझाव आमंत्रित किए हैं। सुझाव 13 सितंबर तक वेबसाइट, व्हाट्सएप या फोन नंबर 1800184747 के माध्यम से भेजे जा सकते हैं। ये सुझाव ईमेल examreformstaskforce@dopt.gov.in के माध्यम से भी भेजे जा सकते हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
7: परीक्षा के संचालन, सुरक्षा, जवाबदेही और संस्थागत व्यवस्थाओं के अलावा परीक्षा में अनुचित साधनों का पता लगाने, रोकथाम करने और उनके समाधान सहित अन्य संबंधित क्षेत्रों के बारे में सुझाव आमंत्रित किए गए हैं। कार्यबल संस्थागत प्रणालियों और प्रक्रियाओं को मजबूत करने, परीक्षा की निष्पक्षता, उपयुक्त तकनीकों को लागू करने और विद्यार्थियों के हितों की रक्षा करने के उपायों की जाँच कर रहा है।

0: है। इसका उद्देश्य मजबूत, सुरक्षित, पारदर्शी, न्यायसंगत और भविष्य के लिए तैयार सार्वजनिक परीक्षा प्रणाली विकसित करना है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा आयोजित परीक्षाओं सहित सार्वजनिक परीक्षाओं के सुगम संचालन और प्रशासन से संबंधित व्यापक सुधारों की जांच के लिए प्रसिद्ध प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ नंदन नीलेकणी की अध्यक्षता में कार्यबल का गठन किया गया है। आनंद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं चंद्रशेखर शर्मा।
1: इस बीच राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने यूजीसी नेट 2026 की 84 विषयों की अंतिम उत्तर कुंजी जारी कर दी है। उत्तर कुंजी ugcnet.nta.nic.in पर उपलब्ध है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव को नोटिस जारी किया है। ये नोटिस मालदा मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में इस महीने 60 नवजात शिशुओं की मौत की खबर पर जारी किया गया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने उत्तर प्रदेश में बलिया जिले के सरकारी स्कूल में पिछले 2 वर्षों से 6 से 8 कक्षा के विद्यार्थियों को दोपहर का भोजन नहीं परोसे जाने के मामले में मुख्य सचिव को नोटिस जारी किया है। आयोग ने संज्ञान लेते हुए 2 सप्ताह के भीतर इस मामले पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
2: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
1: ये आकाशवाणी है। देश में इस वर्ष जुलाई में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP द्वारा मापी गई औद्योगिक उत्पादन वृद्धि दर वार्षिक आधार पर 6.7% रही। इन आंकड़ों से संकेत मिलता है कि इस दौरान औद्योगिक गतिविधियों में अच्छी गति से वृद्धि जारी रही। हालांकि इस अवधि में विकास की गति जून के संशोधित स्तर से कम रही। एक रिपोर्ट।
3: जून में IIP वृद्धि दर 7.3% से बढ़कर 8.8% पहुंच गई थी, जो यह भी संकेत देती है कि जुलाई तिमाही में प्रवेश करने वाली औद्योगिक गति शुरू में अनुमान से अधिक मजबूत रही। आज जारी सरकारी आंकड़ों के अनुसार IIP सूचकांक में सबसे अधिक महत्व रखने वाले विनिर्माण क्षेत्र में जुलाई में 7.3% की वृद्धि हुई, जबकि बिजली और गैस की आपूर्ति में 8.7% की वृद्धि दर्ज हुई। जलापूर्ति, सीवरेज और अपिष्ट प्रबंधन में 7.4% की वृद्धि हुई। हालांकि खनन क्षेत्र पिछले महीने 0.9% की नकारात्मक वृद्धि दर्ज करते हुए पिछड़ गया। इंतखाब की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशेष शुक्ला।
1: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज से 6 दिन की अमेरिका यात्रा पर हैं। यात्रा के दौरान वित्त मंत्री शिकागो, एशविल और न्यूयॉर्क जाएंगी। एशविल में श्रीमती सीतारमण की अध्यक्षता में G20 सदस्य देशों के वित्त मंत्री, केंद्रीय बैंक गवर्नर तथा वरिष्ठ अधिकारी वैश्विक आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। जम्मू कश्मीर में वार्षिक श्री अमरनाथ जी यात्रा आज पारंपरिक छड़ी मुबारक की रस्मों के साथ संपन्न हो गई। ये यात्रा 3 जुलाई को शुरू हुई थी। इस वर्ष 4,80,000 से ज्यादा तीर्थयात्रियों ने पवित्र गुफा में दर्शन किए। भारत के विल्वन सेंथिल कुमार आज रात बुडापेस्ट स्क्वाश ओपन के फाइनल में हंगरी के खिलाड़ी बालाज फारकश से खेलेंगे। सेमीफाइनल में कल सेंथिल कुमार ने भारत के ही वीर चोटरानी को हराया था। नॉर्वे के सम्राट हेराल्ड पंचम का आज ओस्लो में निधन हो गया। वे 89 वर्ष के थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने इस वर्ष की शुरुआत में नॉर्वे की यात्रा के दौरान सम्राट हेराल्ड पंचम से अपनी मुलाकात को याद किया। और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने ओडिशा के कुछ इलाकों में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कल बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, मैदानी पश्चिम बंगाल, झारखंड, उत्तराखंड और उत्तर पूर्वी राज्यों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इस बीच दिल्ली के कुछ हिस्सों में आज हल्की बारिश हुई। कल राजधानी में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने बाढ़ प्रभावित नेपाल के लिए तीसरी उड़ान से 10 टन मानवीय सहायता भेजी। विदेश मंत्रालय ने कहा 320 भारतीय नागरिकों से अब भी कोई संपर्क नहीं। नेपाल तिब्बत में विनाशकारी बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 547 हुई। सीमा के दोनों तरफ 1500 से अधिक लोग अब भी लापता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की 4 दिवसीय यात्रा पर रवाना होंगे। सरकारी उपायों से बाजार में चीनी की उपलब्धता बढ़ी। मिलों से सीधे प्राप्त चीनी की कीमतों में लगभग 20% की गिरावट। देश के औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दर इस वर्ष जुलाई में 6.7% रही। और बुडापेस्ट स्क्वाश ओपन के फाइनल में आज रात भारत के वेलवन सेंथिल कुमार का सामना हंगरी के बालाज फारकश से होगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि नेपाल में बुधवार को अचानक आई बाढ़ के बाद 320 भारतीय नागरिकों से संपर्क नहीं हो सका है। उन्होंने कहा कि अन्य देशों के भारतीय मूल के लगभग 100 लोगों से भी संपर्क नहीं हो पा रहा है। श्री जायसवाल ने नई दिल्ली में बताया कि तमिलनाडु के 21 भारतीय नागरिक बाढ़ प्रभावित इलाकों

0: से नई दिल्ली पहुंच गए हैं।
1: 21 भारतीय नागरिक जो फंसे हुए थे कैलाश मानसरोवर की यात्रा पे गए थे, कल काठमांडू पहुंचे उस क्षेत्र से जहां पर ये हादसा हुआ, और कल हमारे राजदूत उनसे मिले, उनका हालचाल पूछा और हमारी एम्बेसी ने उनके लिए ये ट्रैवल अरेंजमेंट बनाया। आज वो दिल्ली पहुंच चुके हैं। उसके अलावा 63 भारतीय नागरिक जो त्रिशूली हाइड्रो पावर में काम करते हैं, त्रिशूली 1, उनको भी वहां से बचाया गया है। 96 भारतीय नागरिक चीन से नेपाल की तरफ आ चुके हैं और ये सभी लोग सुरक्षित हैं।
0: इस बीच भारत ने नेपाल को मानवीय सहायता बढ़ा दी है। 10 टन मानवीय सहायता लेकर तीसरी उड़ान काठमांडू के लिए रवाना हो गई है। नेपाल और तिब्बत में विनाशकारी बाढ़ से मृतकों की संख्या बढ़कर 547 हो गई। 1,545 लोग अभी भी लापता हैं। दक्षिणी पश्चिम चीन में 5.1 की तीव्रता के भूकंप के बाद फिर से बाढ़ की आशंका बढ़ गई है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के आज 12 वर्ष पूरे हो गए। ये देश में वित्तीय समावेशन की दिशा में एक प्रमुख पड़ाव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में जनधन योजना के अभूतपूर्व परिवर्तनकारी परिणामों का प्रभाव बेमिसाल है। श्री मोदी ने कहा कि जनधन योजना वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और देश के लोगों को सक्षम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इस योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में आज ही के दिन किया था। योजना के अंतर्गत अब तक 59 करोड़ से अधिक खाते खोले जा चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की 4 दिवसीय यात्रा पर रवाना होंगे। प्रधानमंत्री मोदी उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जी योयेफ के निमंत्रण पर ताशकंद का दौरा करेंगे। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी और मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। भारत और उज्बेकिस्तान ने 2011 में अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया था। तब से द्विपक्षीय संबंध कई क्षेत्रों में व्यापक रूप से बढ़े हैं। सरकार ने कहा है कि देश में चीनी की कोई कमी नहीं है और उचित कीमतों पर पर्याप्त मात्रा में चीनी उपलब्ध कराने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जाएंगे। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने बताया कि हाल ही के दिनों में चीनी की कीमतों में लगभग 20% की गिरावट आई है, जबकि खुदरा चीनी की कीमतों में भी कमी हुई है। परीक्षा सुधारों के लिए गठित उच्च स्तरीय कार्यबल ने विद्यार्थियों, अभिभावकों, शिक्षकों सहित सभी हितधारकों से सुझाव आमंत्रित किए हैं। सुझाव 13 सितंबर तक वेबसाइट, व्हाट्सएप या फोन नंबर द्वारा भेजे जा सकते हैं। ये सुझाव ईमेल examforstaxforce@dopt.gov के माध्यम से भेजे जा सकते हैं। इस बीच राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने UGC नेट 2026 की 84 विषयों की अंतिम उत्तर कुंजी जारी कर दी है। उत्तर कुंजी UGCnet.NTA.NIC पर उपलब्ध है। कृषि, किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पंजाब के किसानों को आश्वासन दिया है कि केंद्र सरकार उनके हितों से कोई समझौता नहीं करेगी और किसी भी देश के साथ किए गए हर समझौते में किसानों के हितों को सर्वोपरि रखा जाएगा। अमृतसर जिले के बाबा बकाला में आज एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी समेत विपक्षी दल यह झूठा प्रचार कर रहे हैं कि केंद्र सरकार किसानों के हितों के खिलाफ समझौते कर रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। देश में इस वर्ष जुलाई में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP द्वारा मापी गई औद्योगिक उत्पादन वृद्धि दर वार्षिक आधार पर 6.7% रही। इन आंकड़ों से संकेत मिलता है कि इस दौरान औद्योगिक गतिविधि में अच्छी गति से वृद्धि जारी है। मौसम विभाग ने ओडिशा के कुछ इलाकों में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कल बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, मैदानी पश्चिम बंगाल, झारखंड, उत्तराखंड और उत्तर पूर्वी राज्यों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। खेलों में भारत के वेलवन सेंथिल कुमार आज रात PSA बुदापेस्ट स्क्वाश ओपन के फाइनल में हंगरी के खिलाड़ी बालाज फारकस से खेलेंगे। सेमीफाइनल में कल सेंथिल कुमार ने भारत के ही वीर चोटरानी को हराया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Manoj Singh Rana. India has stepped up humanitarian assistance to Nepal affected by flash floods as the third flight carrying 10 tons of humanitarian assistance has departed for Kathmandu. External Affairs Minister Dr. S.J. Shankar informed this in a social media post. The minister said that the assistance includes portable generator sets, dignity kits,

0: food packets and water purification tablets. Dr. Jayashankar said that an 11-member team of doctors, paramedics and recce team for tunnel rescue operations is also on board. He also reiterated India's support to Nepal's ongoing relief and rescue efforts. Earlier, India had sent more than 47 tons of emergency relief supplies in two flights. Meanwhile, the death toll from devastating flash floods in Nepal and Tibet has risen to 547, with 1,545 people still missing, as rescue teams search riverbanks and isolated settlements for survivors and bodies swept downstream. Authorities have evacuated more than 800 people from affected districts and issued fresh warnings after a 5.1 magnitude earthquake struck southwestern China, raising fears of further flooding. India has launched a major rescue and relief operation. The Ministry of External Affairs has said that 320 Indian nationals remain uncontactable or are reportedly missing following the flash flood tragedy on Wednesday. External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal said around 100 people of Indian origin holding other nationalities also remain uncontactable. Addressing the media in New Delhi today, Mr. Jaiswal said that 63 Indian nationals working at the Shuli 1 hydropower project were rescued from the affected area. Mr. Jaiswal informed the media that 21 Indian nationals from Tamil Nadu who had reached Kathmandu from the flood-affected area yesterday have arrived in New Delhi this afternoon. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar today met the group of 21 pilgrims belonging to Tamil Nadu in New Delhi who were rescued from Nepal. Later, talking to the media, he thanked the government of Nepal and its army for the rescue efforts.
1: They told me about exactly what happened to them, how the floods came, and they were very thankful, particularly to the Nepal army, which made this great effort to get them out of that very difficult place where they were. So right now, our effort is on supporting Nepal in the relief, in the rescue of people. So even today, I spoke in the morning to the Nepal foreign minister. We have given them a range of support offers.
0: On the Chinese side, External Affairs Ministry spokesperson Jaiswal said that around 400 Indian nationals are safe and in contact with their families. Mr. Jaiswal said that the government has set up a control room in the Ministry of External Affairs, which is working round the clock. He said Indian embassies both in Kathmandu and Beijing have also set up 24/7 helplines. Prime Minister Narendra Modi will embark on a four-day visit to Uzbekistan and Kyrgyzstan tomorrow. In the first leg of the trip, Mr. Modi will reach Uzbekistan's capital, Tashkent, tomorrow. During the visit, Prime Minister Modi and President of Uzbekistan, Shavkat Mirziyoyev, will review cooperation in different sectors. The government has said that there is no shortage of sugar in the country and all necessary measures will be taken for adequate availability of sugar at reasonable prices. The Consumer Affairs Ministry said that ex-sugar prices have declined by around 20% in recent days, while retail sugar prices have also started coming down. The ministry said that it has taken a series of proactive measures to ensure adequate availability of sugar and prevent artificial tightening of supplies in the domestic market. The Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana has completed 12 years today, marking a significant milestone in transforming country's financial inclusion landscape. In a social media post, Prime Minister Narendra Modi has said that the scheme has delivered an unprecedented scale and transformative outcomes with an unparalleled impact in the last 12 years. India's Vilavan Senthilkumar will take on Hungary's Blaž Farkas in the final of the PSA Budapest Squash Open tonight. Vilavan stormed into the title clash with a thrilling 3-2 victory over compatriot Veer Chotrani in the semi-finals last night. Farkas, the local favourite and world number 55, booked his place in the final with a straight game 3-0 victory. And that is the end of this news bulletin.
2: नमस्कार आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं आशुतोष मिश्र। मुख्य समाचार भारत ने बाढ़ प्रभावित नेपाल के लिए तीसरी उड़ान से 10 टन मानवीय सहायता भेजी विदेश मंत्रालय ने कहा 320 भारतीय नागरिकों से अब भी कोई संपर्क नहीं नेपाल तिब्बत में विनाशकारी बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 547 हुई। सीमा के दोनों तरफ 1500 से अधिक लोग अब भी लापता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की 4 दिवसीय यात्रा पर रवाना होंगे। ईरान ने अमरीका के साथ बातचीत की मांग की। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तत्काल बातचीत से इनकार किया। और बुडापेस्ट स्क्वैश ओपन के फाइनल में आज रात भारत के वेल्वन सेंथिल कुमार का सामना हंगरी के बालाज फारकस से। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि नेपाल में बुधवार को अचानक बाढ़ के बाद 320 भारतीय नागरिकों से संपर्क नहीं हो सका है। उन्होंने कहा कि अन्य देशों के भारतीय मूल के लगभग 100 लोगों से भी संपर्क नहीं हो पा रहा है। श्री जायसवाल ने नई दिल्ली में बताया कि तमिलनाडु के 21 भारतीय नागरिक बाढ़ प्रभावित इलाके से नई दिल्ली पहुंच गए हैं।
3: 21 भारतीय नागरिक जो फंसे हुए थे कैलाश मानसरोवर की यात्रा पे गए थे, कल काठमांडू पहुंचे उस क्षेत्र से जहां पर ये हादसा हुआ, और कल हमारे राजदूत उनसे मिले, उनका हालचाल पूछा और हमारी एम्बेसी ने उनके लिए ये ट्रैवल अरेंजमेंट बनाया। आज वो दिल्ली पहुंच चुके हैं। उसके अलावा 63 भारतीय नागरिक जो त्रिशूली हाइड्रो पावर में काम करते हैं, त्रिशूली 1, उनको भी वहां से बचाया गया है। 96 भारतीय नागरिक चीन से नेपाल की तरफ आ चुके हैं और ये सभी लोग सुरक्षित हैं।
2: श्री जायसवाल ने कहा कि चीन की तरफ लगभग 400 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और अपने परिवारों के संपर्क में हैं। इस बीच भारत ने नेपाल को मानवीय सहायता बढ़ा दी है। उन्होंने कहा कि भारत ने नेपाल में बचाव और राहत कार्यों में मदद के लिए 47 टन से ज्यादा आपातकालीन राहत सामग्री भेजी है। श्री जायसवाल ने कहा कि नेपाल के अनुरोध पर भारत टनल रेस्क्यू टीम भेजने की तैयारी कर रहा है। उन्होंने बताया कि एक मेडिकल टीम भी भेजी जा रही है। श्री जायसवाल ने कहा कि सरकार ने विदेश मंत्रालय में नियंत्रण कक्ष बनाया है जो 24 घंटे काम कर रहा है। इस बीच 10 टन मानवीय सहायता लेकर तीसरी उड़ान काठमांडू के लिए रवाना हो गई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए यह जानकारी दी। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि इस उड़ान में डॉक्टरों, पैरामेडिक्स और टनल रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए रेकी टीम के 11 सदस्य भी शामिल हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नेपाल से सुरक्षित वापस आए तमिलनाडु के 21 तीर्थयात्रियों से मुलाकात की। ये तीर्थयात्री कल बाढ़ प्रभावित क्षेत्र से काठमांडू पहुंचे थे और आज दोपहर नई दिल्ली पहुंचे। डॉक्टर जयशंकर ने नेपाली सेना और सरकार को इसके लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने भारत में सुगम वापसी सुनिश्चित करने के लिए काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास की भी सराहना की। डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि भारत सरकार बाढ़ के बाद राहत और बचाव कार्यों में नेपाल की सहायता कर रही है। उन्होंने नेपाल के विदेश मंत्री से बात की और उन्हें हर संभव सहायता देने की पेशकश की।
1: They told me about exactly what happened to them, how the floods came.
4: उन्होंने मुझे बताया कि उनके साथ असल में क्या हुआ था और बाढ़ कैसे आई थी। वे बहुत आभारी हैं, खासकर नेपाल सेना के, जिन्होंने उस बेहद मुश्किल जगह से निकालने के लिए इतना बड़ा प्रयास किया। इसलिए अभी हमारा प्रयास लोगों की राहत और बचाव कार्यों में नेपाल की मदद करने का है। आज सुबह ही मैंने नेपाल के विदेश मंत्री से बात की है। हमने उन्हें कई तरह की सहायता की पेशकश भी की है।
1: We have given them range of support offers.
2: विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने तमिलनाडु के वरिष्ठ मंत्रियों के प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की। उन्होंने भारतीय नागरिकों के लिए चलाए जा रहे राहत और सहायता कार्यों के बारे में आधव अर्जुन के नेतृत्व वाले प्रतिनिधि मंडल को जानकारी दी। नेपाल और तिब्बत में विनाशकारी बाढ़ से मृतकों की संख्या बढ़कर 547 हो गई है। 1500 से अधिक लोग अब भी लापता हैं। राहत और बचाव दल लापता लोगों की तलाश कर रहे हैं। दक्षिण पश्चिमी चीन में 5.1 तीव्रता के भूकंप के बाद फिर से बाढ़ की आशंका बढ़ गई है। अधिकारियों ने प्रभावित जिलों से 800 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। भोटे कोशी नदी के उद्गम स्थल के पास बाढ़ के मलबे से बनी झील और तिब्बत के एक बांध टूटने की खबर ने एक बार फिर से बाढ़ की आशंका को बढ़ा दिया है। नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण त्रिशूली क्षेत्र के निवासियों को सुरक्षित स्थानों पर जाने का आदेश दिया गया है। त्रिशूली और रसुआ के बीच सड़क निर्माण कार्य रोक दिया गया है। स्थानीय निवासियों ने बताया है कि बाढ़ का पानी भर जाने से त्रिशूली और धोबी नदी क्षेत्रों में उनके घर, दुकानें और सामान बह गए हैं। दुर्गम क्षेत्रों और प्रतिकूल मौसम के कारण राहत और बचाव कार्यों में बाधा आ रही है। श्रीलंका ने कहा है कि वह नेपाल को 10 लाख अमरीकी डॉलर की आर्थिक मदद देगा। नेपाल में अचानक आई बाढ़ से सैकड़ों लोगों की मौत हो गई है और 1000 से ज्यादा लोग लापता हैं। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके ने कहा कि जरूरत की इस घड़ी में श्रीलंका नेपाल के लोगों के साथ मजबूती से खड़ा है। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा

0: रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान के 4 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के निमंत्रण पर उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद पहुंचेंगे। यह प्रधानमंत्री का उज्बेकिस्तान की 4थी यात्रा होगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री कार्यालय ने बयान में कहा कि 2 दिवसीय यात्रा के दौरान श्री मोदी भारत और उज्बेकिस्तान के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति मिर्जियोयेव के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। दोनों नेता व्यापार और निवेश, रक्षा, डिजिटल कनेक्टिविटी, ऊर्जा, शिक्षा से जुड़े क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा करेंगे और भावी राह के लिए एजेंडा तय करेंगे। वे विकसित भारत 2047 और उज्बेकिस्तान 2030 के साझा विकास लक्ष्यों को आगे बढ़ाने पर भी अपने विचार साझा करेंगे। यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री किर्गिस्तान के राष्ट्रपति सादोर जापारोव के निमंत्रण पर 26वें शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए 2 दिवसीय यात्रा पर बिश्केक जाएंगे। यह शिखर सम्मेलन संगठन की 25वीं वर्षगांठ का प्रतीक है, जिसका भारत 2017 से पूर्ण सदस्य रहा है। प्रधानमंत्री शिखर सम्मेलन को संबोधित भी करेंगे, जहां वे इस मंच पर सुरक्षा, कनेक्टिविटी और अवसर के मामलों में भारत की प्राथमिकताओं पर बल देंगे। विश्व दर्पण समाचार के लिए शक्ति सिंह।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन आज से 6 दिन की अमरीका यात्रा पर हैं। यात्रा के दौरान वित्त मंत्री शिकागो, एशविल और न्यूयॉर्क जाएंगी। वे शिकागो के प्रमुख निवेशकों के साथ एक गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगी और निजी क्षेत्र की प्रमुख कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों, अध्यक्षों और वरिष्ठ प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगी। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास आराग़ची ने कहा है कि अगर अमरीका अपना रुख बदलता है और दबाव बनाना छोड़ देता है तो अमरीका के साथ कूटनीतिक संबंध फिर से शुरू हो सकते हैं। एक रिपोर्ट।
2: सोशल मीडिया पोस्ट में श्री आराग़ची ने कहा कि अमरीका को विश्वास कायम करना चाहिए, सम्मानपूर्वक बात करनी चाहिए, हमारे अधिकारों को स्वीकार करना चाहिए और अपनी प्रतिबद्धताओं का पालन करना चाहिए। उन्होंने कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अस्सानी के साथ हाल ही में हुई बातचीत को फलदायी और रचनात्मक बताया। हालांकि अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ तत्काल बातचीत से इनकार कर दिया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरान के खिलाफ अमरीकी सैन्य अभियान अभी खत्म नहीं हुए हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरान गंभीर सैन्य और आर्थिक दबाव में है और उसकी क्षमताएं सीमित हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि होर्मुज जलडमरू मध्य के फिर से खुलने का मतलब ये नहीं है कि अमरीका ने ईरान के साथ अपना सैन्य संघर्ष समाप्त कर दिया है। उन्होंने कहा कि अमरीका मुलाकात या किसी भी तरह की बातचीत की तलाश में नहीं है। राष्ट्रपति ट्रंप ने ये भी कहा कि होर्मुज जलडमरू मध्य के संबंध में रूस का व्यवहार अब तक काफी अच्छा रहा है, लेकिन उन्होंने ईरान के प्रति किसी प्रकार की रूस की प्रतिबद्धता या कार्रवाई का उल्लेख नहीं किया। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
0: भारत के वेलवन सेंथिल कुमार का मुकाबला अब से थोड़ी देर में पीएसए बुडापेस्ट स्क्वाश ओपन फाइनल में हंगरी के खिलाड़ी बालाज फारकस से होगा। कल रात सेमीफाइनल में सेंथिल कुमार ने भारत के ही वीर चोटरानी को हराया। शतरंज खिलाड़ी रमेश बाबू प्रज्ञानंदा ने ग्रैंड चेस टूर का खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है। वे यह खिताब जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। 21 वर्षीय प्रज्ञानंदा ने अमेरिका के सेंट लुइस में हुए फाइनल में फैबियानो कारुआना को 15-13 से हराकर यह खिताब जीता। भारत ने और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने बाढ़ प्रभावित नेपाल के लिए तीसरी उड़ान से 10 टन मानवीय सहायता भेजी। विदेश मंत्रालय ने कहा कि 320 भारतीय नागरिकों से अब भी कोई संपर्क नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की 4 दिवसीय यात्रा पर रवाना होंगे। ईरान ने अमेरिका के साथ बातचीत की मांग की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तत्काल बातचीत से इनकार किया और बुडापेस्ट स्क्वैश ओपन के फाइनल में आज रात भारत के वेलवन सेंथिल कुमार का सामना हंगरी के बालाज फारकस से। इसके साथ ही विश्व दर्पण का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: Good evening. This is Akashvani. I am Renu Kataria with the World News. The headlines. India sends third flight carrying 10 tons of humanitarian assistance to flood-hit Nepal. External Affairs Ministry says 320 Indian nationals remain uncontactable. Death toll in devastating Nepal-Tibet flash floods rises to 5.

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। कार्यक्रम हर सिंगार में आपका स्वागत है, इस्तकबाल है। अभी आपके साथ है आपका ये दोस्त शमीम खान। दोस्तों, आज बात करते हैं मोहब्बत की। मोहब्बत शायद वो एहसास है जिसे शब्दों में पूरी तरीके से समझाया नहीं जा सकता। कभी एक मुस्कान में मिल जाता है तो कभी किसी की खामोशी में मोहब्बत चुपके से सुनाई देती है। कभी किसी के साथ होने की खुशी में मोहब्बत होती है तो कभी किसी की याद में भी दिल हल्के से मुस्कुरा देता है। तो आइए आज की शाम मोहब्बत के कुछ ऐसे ही रंग महसूस करते हैं। शुरुआत करते हैं एक खूबसूरत से गीत के साथ।

0: एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
1: प्लेटफॉर्म वेव्स पर माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। कार्यक्रम चल रहा है हर सिंगार और अभी आपके साथ है आपका दोस्त शमीम। दोस्तों बात हो रही थी मोहब्बत के रंगों की, तो एक रंग तो के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया है। तो मोहब्बत में दूरी हमेशा रिश्तों को कमज़ोर नहीं करती। लोगों को लगता है कि दूरी होती है तो शायद मोहब्बत कम हो जाती है, लेकिन कभी कभी ये दूरी उन्हें और गहरा कर देती है, उन दोनों की मोहब्बत को गहरा कर देती है। और दूर रहकर ही तो पता चलता है हमें कि कोई हमारे लिए कितना खास है। कुछ लोग पास होकर भी हर पल, पास ना होकर भी हर पल हमारे साथ रहते हैं। ऐसे ही खूबसूरत याद के नाम सुनते हैं ये खूबसूरत सा गीत।

हर मोहब्बत का मुकम्मल होना जरूरी नहीं। कुछ कहानियां अधूरी रहकर भी बहुत खूबसूरत होती हैं। कुछ लोग हमारे साथ नहीं होते, लेकिन उनकी जगह दिल में हमेशा बनी रहती है। वक्त आगे बढ़ जाता है, मगर कुछ एहसास वहीं के वहीं ठहर जाते हैं। इसी अधूरे लेकिन खूबसूरत एहसास के नाम कार्यक्रम का अगला गीत।

दोस्तों, हर रिश्ते में कभी ना कभी नाराजगी जरूर आती है, लेकिन एक छोटी सी माफी बहुत कुछ बदल सकती है, क्योंकि जहां प्यार है, मोहब्बत है, वहां रिश्ते को बचाने की पूरी कोशिश होती है। कभी अपनी गलती मान लेना हार नहीं, बल्कि उस रिश्ते को बचाने की जीत होती है। और इसी एहसास के साथ सुनते हैं एक और खूबसूरत सा नगमा।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष मिश्र। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि नेपाल में बुधवार को अचानक आई बाढ़ के बाद 320 भारतीय नागरिकों से संपर्क नहीं हो सका है। उन्होंने कहा कि अन्य देशों के भारतीय मूल के लगभग 100 लोगों से भी संपर्क नहीं हो पा रहा है। श्री जायसवाल ने नई दिल्ली में बताया कि तमिलनाडु के 21 भारतीय नागरिक बाढ़ प्रभावित इलाके से नई दिल्ली पहुंच गए हैं।
1: 21 भारतीय नागरिक जो फंसे हुए थे कैलाश मानसरोवर की यात्रा पे गए थे, कल काठमांडू पहुंचे उस क्षेत्र से जहां पर ये हादसा हुआ, और कल हमारे राजदूत उनसे मिले, उनका हालचाल पूछा और हमारी एम्बेसी ने उनके लिए ये ट्रैवल अरेंजमेंट बनाया। आज वो दिल्ली पहुंच चुके हैं। उसके अलावा 63 भारतीय नागरिक जो त्रिशूली हाइड्रो पावर में काम करते हैं, त्रिशूली 1, उनको भी वहां से बचाया गया है। 96 भारतीय नागरिक चीन से नेपाल की तरफ आ चुके हैं और ये सभी लोग सुरक्षित हैं।
0: इस बीच भारत ने नेपाल को मानवीय सहायता बढ़ा दी है। 10 टन मानवीय सहायता लेकर तीसरी उड़ान काठमांडू के लिए रवाना हो गई है। नेपाल और तिब्बत में विनाशकारी बाढ़ से मृतकों की संख्या बढ़कर 547 हो गई है। 1545 लोग अब भी लापता हैं। दक्षिण पश्चिमी चीन में 5.1 तीव्रता के भूकंप के बाद फिर से बाढ़ की आशंका बढ़ गई है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के आज 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। यह देश में वित्तीय समावेशन की दिशा में प्रमुख पड़ाव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में जनधन योजना के अभूतपूर्व परिवर्तनकारी परिणामों का प्रभाव बेमिसाल है। श्री मोदी ने कहा कि जनधन योजना वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और देश के लोगों को सक्षम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की 4 दिवसीय यात्रा पर रवाना होंगे। प्रधानमंत्री मोदी उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के निमंत्रण पर ताशकंद का दौरा करेंगे। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी और मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति मिर्जियोयेव के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत करेंगे। भारत और उज्बेकिस्तान ने 2011 में अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। तब से द्विपक्षीय संबंध कई क्षेत्रों में व्यापक रूप से बढ़े हैं। सरकार ने कहा है कि देश में चीनी की कोई कमी नहीं है और उचित कीमतों पर पर्याप्त मात्रा में चीनी उपलब्ध कराने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जाएंगे। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने बताया कि हाल के दिनों में चीनी की कीमतों में लगभग 20% की गिरावट आई है, जबकि खुदरा चीनी की कीमतें भी कम होने लगी हैं। परीक्षा सुधारों के लिए गठित उच्च स्तरीय कार्यबल ने विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों सहित सभी हितधारकों से सुझाव

0: आमंत्रित किए हैं। सुझाव 13 सितंबर तक वेबसाइट, व्हाट्सएप या फोन नंबर द्वारा भेजे जा सकते हैं। इस बीच राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने यूजीसी नेट 2026 की 84 विषयों की अंतिम उत्तर कुंजी जारी कर दी है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पंजाब के किसानों को आश्वासन दिया है कि केंद्र सरकार उनके हितों से कोई समझौता नहीं करेगी और किसी भी देश के साथ किए गए हर समझौते में किसानों के हितों को सर्वोपरि रखा जाएगा। अमृतसर जिले के बाबा बकाला में आज एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी समेत विपक्षी दल यह झूठा प्रचार कर रहे हैं। देश में इस वर्ष जुलाई में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP द्वारा मापी गई औद्योगिक उत्पादन वृद्धि दर वार्षिक आधार पर 6.7% रही। इन आंकड़ों से संकेत मिलता है कि इस दौरान औद्योगिक गतिविधि में अच्छी गति से वृद्धि जारी रही। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज भारत में यूरोपीय संघ के निवर्तमान राजदूत हर्वे डेल्फिन को विदाई दी। डॉ जयशंकर ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने और दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी मजबूत बनाने में निवर्तमान राजदूत के योगदान की सराहना की। मौसम विभाग ने ओडिशा के कुछ इलाकों में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कल बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, मैदानी पश्चिम बंगाल, झारखंड, उत्तराखंड और उत्तर पूर्वी राज्यों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इस बीच दिल्ली के कुछ हिस्सों में आज हल्की बारिश हुई। कल राजधानी में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। भारत के वेलवन सेल्थिन कुमार आज रात PSA बुडापेस्ट स्क्वाश ओपन के फाइनल में हंगरी के खिलाड़ी बालाज फारकस से खेलेंगे। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेणु कटारिया। India has stepped up humanitarian assistance to Nepal affected by flash floods as the third flight carrying 10 tons of humanitarian assistance has departed for Kathmandu. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar informed this in a social media post. The minister said that the assistance includes portable generator sets, dignity kits, food packets and water purification tablets. Dr. Jayashankar said that an 11-member team of doctors, paramedics and Reiki team for tunnel rescue operations is also on board. He also reiterated India's support to Nepal's ongoing relief and rescue efforts. Earlier, India had sent more than 47 tons of emergency relief supplies in two flights. Meanwhile, the death toll from devastating flash floods in Nepal and Tibet has risen to 547, with 1,545 people still missing as rescue teams search riverbanks and isolated settlements for survivors and bodies swept downstream. Authorities have evacuated more than 800 people from affected districts and issued fresh warnings after a 5.1 magnitude earthquake struck southwestern China, raising fears of further flooding. India has launched a major rescue and relief operation. The Ministry of External Affairs has said that 320 Indian nationals remain uncontactable or are reportedly missing following the flash flood tragedy on Wednesday. External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal said around 100 people of Indian origin holding other nationalities also remain uncontactable. Addressing the media in New Delhi today, Mr. Jaiswal said that 63 Indian nationals working at Trishuli 1 hydropower project were rescued from the affected area. Mr. Jaiswal informed the media that 21 Indian nationals from Tamil Nadu who had reached Kathmandu from the flood-affected area yesterday have arrived in New Delhi this afternoon. External Affairs Minister Dr. Jaishankar met the group of 21 pilgrims belonging to Tamil Nadu in New Delhi who were rescued from Nepal. Later, talking to the media, he thanked the government of Nepal and its army for the rescue efforts. On the Chinese side, External Affairs Ministry spokesperson Jaiswal said that around 400 Indian nationals are safe and in contact with their families. Mr. Jaiswal said that the government has set up a control room in the Ministry of External Affairs, which is working round the clock. He said both Indian embassies in Kathmandu and Beijing have also set up 24/7 helplines. Prime Minister Narendra Modi will embark on a four-day visit to Uzbekistan and Kyrgyzstan tomorrow. In the first leg of the trip, Mr. Modi will reach Uzbekistan.

0: This is Akashvani. Good evening and welcome to Market Mantra. I'm Arjun Chaudhary and with me is my co-anchor in Hindi, Manoj Pathak.
1: नमस्कार. मार्केट मंत्र की ताज़ा अंक में आपका स्वागत है. आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह हम देश और दुनिया की चुनी हुई कारोबारी, आर्थिक और शेयर बाजार से संबंधित ताज़ा खबरों को लेकर हाजिर हैं. हमारे साथ खबरों पर चर्चा के लिए आज स्टूडियो में आमंत्रित हैं देश के आर्थिक मामलों के जाने माने विशेषज्ञ एके भट्टाचार्य. श्री भट्टाचार्य जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है.
2: नमस्कार, धन्यवाद.
1: आइए शुरुआत करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइन से.
0: बेंचमार्क डोमेस्टिक स्टॉक मार्केट इंडिसेस राइज, सेंसेक्स एड्स ओवर 300 पॉइंट्स, निफ्टी सेटल्स नियर 24,200 लेवल. India's industrial output grows by 6.7% in July this year, and India's foreign exchange reserves surge to a record high of $729.3 billion as of the previous week.
1: घरेलू शेयर बाजार में प्रमुख सूचकांक लाभ के साथ हुए बंद. सेंसेक्स 300 अंक से अधिक उछला. निफ्टी 24,200 के स्तर के नजदीक बंद हुआ. देश के औद्योगिक उत्पादन में इस वर्ष जुलाई में 6.7% की वृद्धि हुई और देश का विदेशी मुद्रा भंडार 21 अगस्त को समाप्त सप्ताह में बढ़कर अब तक के सर्वोच्च स्तर 729 अरब 30 करोड़ डॉलर पर पहुंचा.

0: And before we take our main stories in detail, here is an important disclaimer. The views and opinions expressed by the experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: आइए अब शुरू करें शेयर बाजार से खबरों का सिलसिला. घरेलू शेयर बाजार में आज खरीदारी तेज रही. प्रमुख सूचकांक लाभ में रहे. कारोबार के अंत में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 331 अंक यानी 0.43% की बढ़त के साथ 77,265 पर बंद हुआ. उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 85 अंक यानी 0.35% की तेजी दर्ज करता हुआ 24,176 पर पहुंच गया. विस्तारित बाजार की ओर चलें तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के विस्तृत बाजार में मिड कैप 100 इंडेक्स में मामूली बढ़त देखने को मिली, जबकि स्मॉल कैप 100 इंडेक्स 0.2% लाभ के साथ बंद हुआ.
0: बेंचमार्क डोमेस्टिक इक्विटी इंडिसेस एंडेड इन पॉजिटिव जोन टुडे. सेंसेक्स एडवांस बाय 331 पॉइंट्स 0.43% टू क्लोज एट 77,265. निफ्टी गेन बाय 85 पॉइंट्स 0.35% टू सेटल एट 24,176. इन द ब्रॉडर मार्केट एट द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज द मिड कैप 100 इंडेक्स ईक्ड आउट अ मार्जिनल गेन व्हाइल द स्मॉल कैप 100 इंडेक्स एडेड 0.2%. Earlier, the markets opened with a gap up after falling for two consecutive sessions and traded in a narrow range throughout the day.
1: नजर डालें सेंसेक्स पैक पर तो 30 में से 21 कंपनियों के शेयर आज लाभ के साथ बंद हुए. लाभ उठाने वाली प्रमुख कंपनियों में सबसे अव्वल रही टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, जिसके शेयर 4.1% बढ़त के साथ बंद हुए. इन्फोसिस को 3.3% का और टेक महिंद्रा के शेयर 3.2% मुनाफे के साथ बंद हुए. उधर घाटा उठाने वाली प्रमुख कंपनियों में आईसीआईसीआई बैंक के शेयर 1.3% लुढ़क गए. अल्ट्राटेक सीमेंट को 1.2% का नुकसान हुआ, जबकि एशियन पेंट्स के शेयर 1.1% नीचे आकर बंद हुए.
0: In the sectoral indices on the Bombay Stock Exchange, 17 out of the 28 sectors edged upward. Among the top gainers, focused IT jumped 3.4%, information technology climbed 3.3%, and PSU banks rose by 1.3%. In contrast, insurance decreased by 0.6%, realty, consumer durables, and oil and gas each dipped by 0.3%, and FMCG as well as energy fell by 0.2%. The overall market breadth at the BSE was positive as shares of 2,308 companies advanced, 2,029 companies declined, and 212 companies remain unchanged.
1: नजर डालें रुपए की स्थिति पर तो अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में एक डॉलर की तुलना में रुपया आज 16 पैसे मजबूत हुआ. 95.39 रुपए के स्तर पर बंद हुआ. एकेबी, आज हम बाजार की गतिविधि पर आपकी प्रतिक्रिया समझना चाहेंगे. बाजार में तेजी रही, क्या प्रमुख कारण रहे आज की तेजी के पीछे?
2: प्रधान जो कारण जो आज हमें दिखने को मिला वो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर की जो परफॉर्मेंस जो है उसके ऊपर स्टॉक मार्केट ने काफी इसमें प्रकाश डाला है. अगर आपको आपको मालूम होगा कि वैश्विक बाजार में एनवीडिया का जो परफॉर्मेंस रहा है एक दो दिन पहले उसका जो परफॉर्मेंस जो है वो काफी आशाजनक रही है, और उस आशाजनक परफॉर्मेंस से अनुप्राणित होकर आज की आईटी सेक्टर में काफी उछाल दिखने को आई है. हालांकि बैंकिंग सेक्टर में भी काफी उछाल आई है, पर उतना नहीं आया जितना कि आईटी सेक्टर में आई है. मैं कहूंगा कि जो पिछले दो दिन की जो गिरावट के बाद जो बैंकिंग और मेटल स्टॉक्स में ज्यादा सेंटर्ड थी, आज की जो रिवाइवल जो है स्टॉक मार्केट की वो आईटी सेक्टर से ज्यादा जुड़ा हुआ है. करीबन 3% आईटी सेक्टर का एक दिन में बढ़ना, ये आईटी सेक्टर का एक नया असेसमेंट मुझे लग रहा है कि हो रहा है कि पहले में जो एआई लेड जो एक एक हताशा एक छा रही थी, मुझे लग रहा है कि वो हताशा को दूसरी तरह से उसका एक आकलन किया जा रहा है. उसी का परिणाम आज स्टॉक मार्केट हुआ है, पहली बात. दूसरी बात ये है कि जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो हैं वो अभी भी पैसा ले जा रहे हैं, पर अगर आप नेट बाई, नेट खरीदी और नेट बेचने में अगर उसको देखें कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स और फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स की जो बेचना जो है उसकी गति थोड़ी कम हुई है और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स की जो खरीदना नेट बाई जो हुआ है उसमें भी बढ़ोतरी हुई है, तो उससे जो मार्केट में थोड़ी बहुत एक स्टेबिलिटी आई है वही आज के मार्केट में वो दर्शा रहा है। और तीसरी बात यह है कि मार्केट में शायद कुछ आशा की किरणें को दिखने को आई, वो आशा की किरणें लगा कि मुझे दो तरफ से आई।

0: EII, the domestic institutional investors, mutual funds, insurance companies, what are they looking for in terms of valuation in our markets right now?
1: Right now, I think the domestic institutional investors are not really looking at the valuation. On the contrary, they're trying to keep their powder dry in light of many IPOs that are going to hit the market, number one. Number two, the government is going to sell stakes in some of their companies, particularly the IDBI Bank. So the domestic institutional investors are actually waiting in the wings, keeping their powder dry, maybe booking some gains and keeping the money so that they can make the right investments in these IPOs as well as the disinvestment offers.
0: Well, let's move on to now some macroeconomic data. India's industrial output growth, as measured by the index of industrial production, expanded by 6.7% in July this year on an annual basis. The July data indicates that industrial activity continued to expand at a healthy pace, although the pace of growth moderated from the revised June level. The sharp upward revision in June IIP growth to 8.8% from 7.3% also indicates that the industrial momentum entering the July quarter was stronger than initially estimated. According to government data released today, manufacturing, which carries the heaviest weight in the index, grew by 7.3%, while electricity and gas supply posted a 8.7% expansion in July. Water supply, sewerage and waste management rose by 7.4%. However, the mining sector proved to be a laggard, posting a negative growth of 0.9% last month. AKB spoke about strong July numbers and how the market has also managed to predict that there would be strong July numbers as well, again based on what the PMI manufacturing is for July and August. For August is 52.9. My question is, why is mining seeing a negative growth of 0.9%, even though if you look at the index of core industries data for the month of July, which went up by 5.4%, out of the nine sectors, you have iron ore, which actually saw a rise of 29.5% in terms of its output, and coal also saw a rise of 7.6%. These are both commodities and they are both dependent on mining.
1: Well, what is happening is that in July, there was a sudden, especially in the latter half of July, there was a sudden surge of rains and the monsoons had picked space. And as you would know, that in the month of July, the mining sector and the quarrying sector, they normally, traditionally, do not come up with good numbers. They actually very often shows in a negative contraction. Now, you will naturally point out that it is July last year, also something similar. But this year, the July, the second half, has suddenly surged the monsoon. There was the rains had surged, and almost virtually all activities, but mining and even some sectors like cement, saw a downtrend, and which is why the mining and the quarrying, the numbers are very unimpressive. But I think it's very important to note that the manufacturing, if you look at the April-July combined number, is still at a very healthy above 6.5%. So it's still not what it ought to be. It should be manufacturing in a country of India's nature and complexity should be in double digit. But still, I would say that reaching a level of 6.5 is a good sign.
2: यहाँ पर एक भी समझना चाहेंगे कि जून के तुलना में थोड़ा सा हम वृद्धि दर में थोड़ा सा हम कमी देख रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर ये आंकड़े क्या विश्वास दिला रहे हैं हमें इस पूरे वर्ष के यदि अवधि को हम देखें तो जुलाई में जो अनुमान था उससे बेहतर प्रदर्शन रहा.
1: जरूर आपने एक अच्छा प्रश्न किया है. मुझे जो ये लग रहा है कि जो जो आईआईपी नंबर जो है ये वैल्यू बेस्ड नहीं है, ये वॉल्यूम बेस्ड है. इसका मतलब ये है कि ये कितने हजार यूनिट या कितने लाख करोड़ यूनिट प्रोडक्शन हुआ है उसको ये आकलन करती हैं, ना कि इनके दाम आकलन करती हैं. तो उस तरफ से अगर आप देखेंगे, ये वॉल्यूम बेस्ड आईआईपी जो है ये दर्शाती है कि जो एसेंशियल मार्केट में जो डिमांड जो है आपकी, स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की जो डिमांड जो है वो अभी भी काफ़ी स्वस्थ हैं, काफ़ी अच्छे हैं. और आने वाले महीनों में मुझे लगता है कि अगर ये ट्रेंड को मेंटेन करें तो हमें चिंता की बात शायद थोड़ी कम होगी, जो हम पहले जब वेस्ट एशिया के कॉन्फ्लिक्ट के बाद बारिश न आने के बाद में जो हमारा जो आउटलुक तो था वो इतना था। और सबसे बड़ी बात ये है कि इसका जो पॉजिटिव इम्पैक्ट हमारे जीडीपी ग्रोथ जब आकलन आएगी देन फर्स्ट क्वार्टर का और सेकेंड क्वार्टर का हम काफ़ी उसका एक एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा।
2: आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आर्थिक मोर्चे पर अच्छी खबर है। देश का विदेशी मुद्रा भंडार 21 अगस्त को समाप्त सप्ताह के दौरान 12 अरब 40 करोड़ डॉलर बढ़कर अब तक के सर्वोच्च स्तर 729 अरब 30 करोड़ डॉलर पर पहुंच गया। भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार इस दौरान विदेशी मुद्रा भंडार का के सबसे बड़े घटक विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां 9 अरब 40 करोड़ डॉलर बढ़ी और ये स्तर 591 अरब 30 करोड़ डॉलर तक पहुंच गया। वहीं स्वर्ण भंडार में 2 अरब 80 करोड़ डॉलर की बढ़ोतरी हुई है और ये बढ़कर 114 अरब 20 करोड़ डॉलर पर पहुंच गया। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत के सुरक्षित भंडार में 26 मिलियन डॉलर की बढ़ोतरी हुई और ये 4 अरब 90 करोड़ डॉलर के आसपास पहुंच गया है। उधर विशेष आहरण अधिकार यानी एसटीआर में 112 मिलियन डॉलर की बढ़ोतरी हुई और ये 18 अरब 80 करोड़ डॉलर के स्तर तक पहुंच गया है। एकेबी रिकॉर्ड स्तर पर मुद्रा भंडार अपना पहुंचा है, क्या दर्शा रहा ये और किन कारणों से इसमें यह बढ़ोतरी हम देख रहे हैं?
1: अगर जब जब जब पश्चिम एशियाई में जब युद्ध छिड़ा जब उसके बाद तेलों के दाम बढ़े तब हमारे पास उस समय करीबन 722 बिलियन डॉलर की विदेशी मुद्रा कोष था। उसके बाद ये काफ़ी नीचे आ गया था, करीबन 680 तक 685 तक आ गया था। और आपको ये शायद नोटिस करेंगे ये नंबर जो है ये 21 अगस्त के नंबर हैं और 21 अगस्त तक हमारी जो नई जो स्कीम्स जो थी FCNRB के नीम्स जो NRI के जो पैसे जो आ रहे थे वो पैसे काफ़ी अंदर आए हैं, करीबन 50 बिलियन डॉलर या 56 बिलियन डॉलर की पैसे जो आए अगस्त 31 तक उसका अवधि है वो आएंगे। मुझे लगता है कि ये अभी नहीं है और भी थोड़ा बढ़ेगा और ये बढ़ने का मतलब ये है कि हमारी जो मंथली इम्पोर्ट की जो बिल जो हैं वो 10 महीने नहीं शायद 11 से 12 महीने तक की हमारी जो कैपेसिटी है उसमें वृद्धि होगी। ये एक मैक्रो इकोनॉमिक दृष्टिभंगी से एक्सटर्नल सेक्टर की ये जो छवि जो है ये मार्केट के लिए इकोनॉमी के लिए ये एक पॉजिटिव एक सिग्नल है।
2: यहाँ पर श्रोताओं के हित में FCNRB ने किस तरह से भूमिका निभाई बहुत संक्षेप में? ये
1: NRI को एक फैसिलिटी दी थी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कि वो अपनी जो विदेश के मुद्रा यहाँ पे वो जमा कर सकते हैं और उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा उसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक सब्सिडी भी देगी जिससे कि और जो काफ़ी कमर्शियल बैंकों ने का उनका लेवरेज देकर वो पैसा यहाँ पे ला सकते हैं। तो जो समस्या नॉर्मल जो FCNR NRI डिपॉजिट में होता है कि एक्सचेंज रेट के जो तारतम्य जो होता है उससे ज़्यादा इंसेंटिव वाइज नहीं होते हैं, इस इंटरेस्ट रेट की जो स्ट्रक्चर जो थी वो उससे NRI ने काफ़ी
2: लाभ
1: उनका लाभ उठाया और इसीलिए करीबन 56 बिलियन डॉलर का पैसा अभी तक आ चुका है
2: जी।
0: In more news, Prime Minister Narendra Modi has said that the Jan Dhan Yojana has delivered unprecedented scale and transformative outcomes with an unparalleled impact in the last 12 years. In a social media post, Mr. Modi said that the Jan Dhan Yojana is playing a significant role in advancing financial inclusion and empowering people across the country. Under the Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana, more than 59 crore accounts have been opened so far, with total deposits amounting to 3,17,000 crore rupees. The scheme was launched by Prime Minister Modi on this day in 2014. As the world's largest financial inclusion initiative, the scheme continues to redefine access to banking for all Indians. We have a report.
3: Under the Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana, more than 59 crore accounts have been opened so far, with total deposits amounting to 3,17,000 crore rupees. As the world's largest financial inclusion initiative, the scheme continues to redefine access to banking for all Indians. The average deposit per account is 5,356 rupees. Under the Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana, 78% of the accounts have been opened.

0: in rural or semi-urban areas, and approximately 56% of the accounts are owned by women. Over 41 crore rupee cards have been issued to Jan Dhan account holders. The scheme has also empowered millions, particularly the marginalized sections, to access banking and financial services to improve their socio-economic conditions. Due to initiatives like Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana, India's financial inclusion index has risen from 53.9 in 2018 to 67 this year, showcasing deeper access to credit, insurance, saving and digital payments. Anupam Mishra, Akashwani News, Delhi.
1: आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन तथा कनाडा के वित्त और राष्ट्रीय राजस्व मंत्री फ्रांस्वा फिलिप शैंपेन के बीच कनाडा के टोरंटो में आर्थिक और वित्तीय वार्ता संपन्न हुई। दोनों पक्षों ने संयुक्त बयान में कहा कि ये बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के बीच इस वर्ष मार्च में नई दिल्ली में हुई बैठक में द्विपक्षीय आर्थिक और वित्तीय सहयोग को मजबूत करने के लिए किए गए वादे को आगे बढ़ाती है। दोनों देशों ने 2026 के अंत तक भारत कनाडा व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर बातचीत पूरी करने की अपनी साझा प्रतिबद्धता को दोहराया। मंत्रियों ने वैश्विक आर्थिक घटनाक्रमों और घरेलू नीतिगत प्राथमिकताओं पर विचार विमर्श किया। उन्होंने द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों को और मजबूत करने तथा दोनों देशों के बीच वित्तीय और वाणिज्यिक संबंधों का विस्तार करने के तरीकों पर चर्चा की। मंत्रियों ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को $70 बिलियन कनाडाई डॉलर तक बढ़ाने की इच्छा को भी दोहराया। भारत ने जल्द से जल्द द्विपक्षीय निवेश संधि पर बातचीत शुरू करने की अपनी तत्परता व्यक्त की। और आगे बढ़ते हैं
2: टू द एशियन मार्केट्स
1: और नजर डालें एशिया के प्रमुख बाजार दक्षिण कोरिया पर। वहां कोस्पी सूचकांक 1.8% बिकवाली के दबाव में नीचे आ गया। उधर जापान के निक्की 225 सूचकांक में 0.4% की वृद्धि हुई।
2: इन मोर न्यूज़, इरानियन फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराग्ची सेड रिन्यूड डिप्लोमेसी विद वॉशिंगटन रिमेन्स पॉसिबल इफ द यूएस चेंजेस इट्स अप्रोच एंड अबैंडन्स कोएर्शन। Ms. Araghchi said in a social media post that the US should build trust, speak respectfully, acknowledge our rights and uphold commitments. He also described recent talks with Qatar's Prime Minister and Foreign Minister Sheikh Mohammed bin Al Thani as productive and creative. Moving on to the crude oil market, global crude oil prices eased today. Brent crude was trading 0.5% down at $89.30 per barrel in intraday trade. West Texas Intermediate crude was trading 0.8% lower at $82.84 per barrel when reports last came in.
1: आइए श्रोताओं आपको लिए चले अंतिम चरण में सराफा बाजार। भारतीय सराफा बाजार में 24 कैरेट सोने का मूल्य समाचार तैयार किए जाने तक 0.7% बढ़कर 1,59,578 रुपए प्रति 10 ग्राम पर चल रहा था। वहीं चांदी 1.8% बढ़कर 2,43,892 रुपए प्रति किलो पर कारोबार कर रही थी। और बस यहीं पर श्रोताओं की ओर से केबी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
3: नमस्कार, धन्यवाद।
2: And before we close, a reminder of the headlines. Benchmark domestic stock market indices rise. Sensex adds over 300 points. Nifty settles nearly 24,200 level.

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। कार्यक्रम गीत मेरे मनमीत में आपका स्वागत है और अभी आपके साथ है आपका दोस्त शमीम। तो चलिए दोस्तों, इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं खूबसूरत से गीत के साथ।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष मिश्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की 4 दिवसीय यात्रा पर रवाना होंगे। प्रधानमंत्री मोदी उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के निमंत्रण पर ताशकंद का दौरा करेंगे। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी और मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति मिर्जियोयेव के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत करेंगे। भारत और उज्बेकिस्तान ने 2011 में अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर पर बढ़ाया। तब से द्विपक्षीय संबंध कई क्षेत्रों में व्यापक रूप से बढ़े हैं।
1: भारत और उज्बेकिस्तान ने 2011 में अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। तब से द्विपक्षीय संबंध कई क्षेत्रों में व्यापक रूप से बढ़े हैं। प्रधानमंत्री की यात्रा भारत और उज्बेकिस्तान के बीच करीबी, बहुआयामी और बढ़ते राजनीतिक साझेदारी को बढ़ावा देगी। चर्चा के दौरान आपसी सहयोग के कई इलाकों को शामिल किए जाने और द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के नए रास्ते तलाशने की उम्मीद है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद, उज्बेकिस्तान।
0: विदेश मंत्रालय ने कहा है कि नेपाल में विनाशकारी बाढ़ त्रासदी के बाद अब तक 84 भारतीय नागरिकों को बचाया गया है। इनमें त्रिशूली एक परियोजना के 63 कर्मचारी और तमिलनाडु के 21 व्यक्ति शामिल हैं। मंत्रालय ने कहा कि 320 भारतीयों से संपर्क नहीं हो पा रहा है और वे लापता हैं। मंत्रालय ने बताया कि कल 149 लोग चीन से सुरक्षित नेपाल पहुंच गए हैं। उधर चीन की तरफ लगभग 400 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और भारतीय दूतावास उनके संपर्क में है और उन्हें वहां से निकालने के लिए काम कर रहा है।

0: है। नेपाल और तिब्बत में विनाशकारी बाढ़ से मृतकों की संख्या बढ़कर 547 हो गई है। 1545 लोग अब भी लापता हैं। दक्षिण पश्चिमी चीन में 5.1 तीव्रता के भूकंप के बाद फिर से बाढ़ की आशंका बढ़ गई है। उधर नेपाल में आई अचानक बाढ़ के बाद वहां फंसे महाराष्ट्र के 290 लोगों के सुरक्षित होने की पुष्टि हुई है, जबकि 60 लोगों का अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है। आपदा के समय नेपाल में महाराष्ट्र के जिन 395 लोगों के मौजूद होने की जानकारी मिली थी, उनमें से 105 भारत लौट रहे हैं, जबकि राज्य नियंत्रण कक्ष का बाकी 290 लोगों से संपर्क हुआ है। वे सुरक्षित हैं, लेकिन वहीं फंसे हुए हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना के कल 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। यह देश में वित्तीय समावेशन की दिशा में प्रमुख पड़ाव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में जनधन योजना के अभूतपूर्व परिवर्तनकारी परिणामों का प्रभाव बेमिसाल है। श्री मोदी ने कहा कि जनधन योजना वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और देश के लोगों को सक्षम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। सरकार ने कहा है कि देश में चीनी की कोई कमी नहीं है और उचित कीमतों पर पर्याप्त मात्रा में चीनी उपलब्ध कराने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जाएंगे। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने बताया कि हाल के दिनों में चीनी की कीमतों में लगभग 20% की गिरावट आई है, जबकि खुदरा चीनी की कीमतें भी कम होने लगी हैं। देश में इस वर्ष जुलाई में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP द्वारा मापी गई औद्योगिक उत्पादन वृद्धि दर वार्षिक आधार पर 6.7% रही। इन आंकड़ों से संकेत मिलता है कि इस दौरान औद्योगिक गतिविधि में अच्छी गति से वृद्धि जारी रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश में लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 137वीं कड़ी होगी। यह कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। इसे आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, PMO और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी लाइव स्ट्रीम किया जाएगा। आकाशवाणी से हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में भी इस कार्यक्रम का प्रसारण होगा। परीक्षा सुधारों के लिए गठित उच्च स्तरीय कार्य बल ने विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों सहित सभी हितधारकों से सुझाव आमंत्रित किए हैं। सुझाव 13 सितंबर तक वेबसाइट, व्हाट्सएप या फोन नंबर द्वारा भेजे जा सकते हैं। मौसम विभाग ने ओडिशा के कुछ इलाकों में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने आज बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, मैदानी पश्चिम बंगाल, झारखंड, उत्तराखंड और उत्तर पूर्वी राज्यों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इस बीच दिल्ली के कुछ हिस्सों में कल हल्की बारिश हुई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेणु कटारिया। India has stepped up humanitarian assistance to Nepal affected by flash floods as the third flight carrying 10 tons of humanitarian assistance has departed for Kathmandu. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar informed this in a social media post. The minister said that the assistance includes portable generator sets, dignity kits, food packets and water purification tablets. Dr. Jaishankar said that an 11-member team of doctors, paramedics and Reiki team for tunnel rescue operations is also on board. He also reiterated India's support to Nepal's ongoing relief and rescue efforts. Earlier, India has sent more than 47 tons of emergency relief supplies in two flights. Meanwhile, the death toll from devastating flash floods in Nepal and Tibet has risen to 547, with 1,545 people still missing as rescue teams search riverbanks and isolated settlements for survivors and bodies swept downstream. Authorities have evacuated more than 800 people from affected districts and issued fresh warnings after a 5.1 magnitude earthquake struck southwestern China, raising fears of further flooding. India has launched a major rescue and relief operation. The Ministry of External Affairs has said that 320 Indian nationals remain uncontactable or are reportedly missing following the flash flood tragedy on Wednesday. External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal said around 100 people of Indian origin holding other nationalities also remain uncontactable. Addressing the media in New Delhi yesterday, Mr. Jaiswal said that 63 Indian nationals working at Trishuli 1 hydropower project were rescued from the affected area. Mr. Jaiswal informed the media that 21 Indian nationals from Tamil Nadu who had reached Kathmandu from the flood-affected area on Thursday have arrived in New Delhi yesterday. External Affairs Minister Dr. Jaishankar yesterday met the group of 21 pilgrims belonging to Tamil Nadu in New Delhi who were rescued from Nepal. Later, talking to the media, he thanked the government of Nepal and its army for the rescue efforts. On the Chinese side, External Affairs Ministry spokesperson Jaiswal said that around 400 Indian nationals are safe and in contact with their families. Mr. Jaiswal said that the government has set up a control room in the Ministry of External Affairs, which is working round the clock. He said Indian embassies both in Kathmandu and Beijing have also set up 24/7 helplines. Prime Minister Narendra Modi will embark on a four-day visit to Uzbekistan and Kyrgyzstan today. In the first leg of the trip, Mr. Modi will reach Uzbekistan's capital, Tashkent, today. During the visit, Prime Minister Modi and President of Uzbekistan, Shavkat Mirziyoyev, will review cooperation in different sectors. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar yesterday bid farewell to outgoing Ambassador of the European Union in India, Hervé Delphin. In a social media post, the minister appreciated the outgoing ambassador's contributions towards concluding the India-EU FTA and further strengthening the strategic partnership. He wished him the best for his future endeavours. The government has said that there is no shortage of sugar in the country and all necessary measures will be taken for adequate availability of sugar at reasonable prices. The Consumer Affairs Ministry said that ex-mill sugar prices have declined by around 20% in recent days, while retail sugar prices have also started coming down. The ministry said it has taken a series of proactive measures to ensure adequate availability of sugar and prevent artificial tightening of supplies in the domestic market. India's industrial output growth as measured by the Index of Industrial Production, IIP, expanded by 6.7% in July this year on an annual basis. The July data indicates that industrial activity continued to expand at a healthy pace, although the pace of growth moderated from the revised June level. The high-powered task force, which has been constituted by the government on public examination reforms, has invited suggestions from all stakeholders, including students, parents and teachers. It has requested the stakeholders to submit their suggestions by 13th of next month through its website, WhatsApp or its phone number 1800 180 4747. They can also submit their suggestions through its email on exam reform task force at dopt.gov.in.

बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़, 12:11 और ये वक्त कार्यक्रम निशिगंधा का। निशिगंधा में सबसे पहले जो गीत आप सुनने वाले हैं उसे हमने लिया है फिल्म कुदरत से, और 1981 की फिल्म है ये कुदरत। कहानी का लेखन और निर्देशन चेतन आनंद साहब का रहा। मुख्य भूमिकाओं में फिल्म में आपको दिखेंगे राजेश खन्ना और हेमा मालिनी, जबकि फिल्म में सहायक भूमिकाओं में प्रिया राजवंश, राजकुमार और विनोद खन्ना भी दिखे। गीत जो आप सुनने जा रहे हैं, संगीतकार हैं आरती बर्मन और इस गीत को लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने। लता जी की आवाज़ में बेहद ही मधुर सा

रात के सफर पर जब चल निकलेंगे तो कितनी ही बातों का, यादों का, जज्बातों का, खुशी का, गम का अफसाना छिड़ेगा और बस दिल में महसूस होगी कहीं गुदगुदाहट तो कहीं कसक और टीस। बस इन पलों को जीते हुए पूरा करेंगे निशिगंधा का ये हसीन सा सफर। सफर हंसी इसलिए क्योंकि जब आप सब साथ होंगे और साथ अच्छा हो तो सब कुछ भला ही लगता है, चाहे वो कड़वे पल हो या हंसी खुशी से लबरेज वक्त। जी हाँ, और अगला गीत जो आप तक पहुंच रहा है निर्माता निर्देशक यश चोपड़ा की 1981 में बनी त्रिकोणीय प्रेम पर आधारित मूवी सिलसिला से। फिल्म सिलसिला में अमिताभ, रेखा, संजीव कुमार, जया भादड़ी और शशि कपूर मुख्य किरदारों में दिखे और फिल्म का जो संगीत पक्ष था ना वो भी बहुत ही रोचक रहा। कुल 7 गाने इस फिल्म में रहे। फिल्म में संगीत किसी फिल्मी संगीतकार के बजाय प्रसिद्ध बांसुरी वादक हरि प्रसाद चौरसिया और प्रसिद्ध संतूर वादक पंडित शिव कुमार शर्मा ने दिया। जो गीत आप सुनेंगे उसके बोल लिखे हैं जावेद अख्तर साहब ने। तो चलिए, ये एक और खूबसूरत सा नगमा आप तक पहुंच रहा है। फिल्म कौन सी है? जी हाँ, फिल्म है सिलसिला और मुझे लगता है कि आप भी इस गीत को बेहद रात के इस हसीन और खूबसूरत से माहौल में काफ़ी पसंद करेंगे। लता जी की आवाज़ में है ये गीत और इस गीत का जो संगीत तैयार किया है शिव हरि ने और गीत के बोल तो आपको बताया है जावेद अख्तर साहब के हैं।

कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।
1: आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ और इस वक्त निशिगंधा का ये हसीन सा सफर हम लोग यहाँ पर तय कर रहे हैं। अंजलि है आपके साथ और गीत जो आपने सुना था फिल्म महान से था, आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज़ में, और इस गीत का म्यूजिक कंपोज किया था आर डी बर्मन साहब ने, गीत लिखा था अनजान ने। और फिल्म किसके डायरेक्शन में बनी थी ये महान मूवी, 1983 में रिलीज हुई थी S. रामानाथन के डायरेक्शन में। अब जो गीत आप सुनने जा रहे हैं 1981 में एक प्रेम कहानी पर आधारित फिल्म एक दूजे के लिए फिल्म से है और फिल्म के डायरेक्टर के बालाचंदर रहे। कमल हासन और रति अग्निहोत्री इस फिल्म में मुख्य भूमिकाओं में दिखे और जो इस फिल्म के गायक थे ना SP बालासुब्रमण्यम, उनकी भी ये पहली हिंदी फिल्म थी और इसके बाद तो उन्होंने बहुत सारी हिंदी फिल्म्स में प्लेबैक किया और बहुत ही लोगों के दिल में दिमाग में उनकी जो आवाज़ थी, उनकी जो एक स्मूथ सी आवाज़ है, बहुत ही जैसे बोलते हैं मधुर सी, दिल को छूने वाली, दिल की गहराइयों में उतर जाने वाली आवाज़ लोगों ने, सुनने वालों ने बेहद पसंद की। और उनकी गायकी के लिए इस फिल्म में एक दूजे के लिए फिल्म में जो उन्होंने गायन किया, उनकी गायकी के लिए उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। तो आइए सुनते हैं ये बहुत ही शानदार सा नगमा लता मंगेशकर और SP बालासुब्रमण्यम की आवाज़ में।

बहुत ही, जैसे बोलते हैं ना, दिल में उतर जाने वाला गीत था एक दूजे के लिए फिल्म से, और दर्शकों को ये फिल्म भी बहुत पसंद आई थी और गाने भी इसके, जैसे फिल्म ब्लॉकबस्टर हिट थी ऐसे गाने भी बहुत ज़्यादा, इस फिल्म का म्यूज़िक भी हिट हुआ था। और अब आप तक पहुंच रहा है एतबार फिल्म से एक बहुत ही, ये गीत भी

जैसे मुझे लगता है आपको भी बहुत पसंद होगा, 1985 में रिलीज हुई थी ये फिल्म, किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है। एक सस्पेंस थ्रिलर फिल्म रही। राज बब्बर, डिंपल कपाड़िया और सुरेश ओबराय मुख्य भूमिकाओं में दिखे। बप्पी लहरी जी ने म्यूजिक कंपोज किया था इसके गीतों का, और इस गीत को जो आप तक पहुंच रहा है भूपिंदर सिंह और आशा भोसले की आवाज़ में आप सुनेंगे, और

सागर सरहदी के निर्देशन में बनी 1982 की फिल्म बाजार से ही आपने गीत अभी सुना, लता मंगेशकर और तलत अजीज साहब की आवाज में। फिल्म अगर आपने देखी हो तो सभी कलाकारों का अभिनय कौशल देखते ही बनता है। संगीत की धुनों से इन गीतों को सजाया था। इस फिल्म के जो गीत थे मोहम्मद जहूर खयाम ने और गीतकार रहे मीर तकी मीर, मिर्जा शौक, बशर नवाज। और फिल्म में समता पाटिल, नसीरुद्दीन शाह, फारूक शेख ने मुख्य किरदारों को निभाया था। तो बहुत ही, जैसे बोलते हैं ना, रात के इस आलम में इस तरह के गीत दिल को किस तरह का सुकून देते हैं ये तो सुनने वाले खुद बता सकते हैं, बयां कर सकते हैं। और अगला जो गीत है वो भी बहुत ही दिल की गहराइयों में उतर जाने वाला गीत है। फिल्म साथ साथ से 1982 की हिट ड्रामा मूवी रही, जिसमें फारूक शेख और दीप्ति नवल मुख्य भूमिकाओं में दिखे। पटकथा और निर्देशन रहा फिल्म में रमन कुमार का, गीत संगीत जबरदस्त रहा और फिल्म भी काफ़ी मनोरंजक रही। चित्रा सिंह और जगजीत सिंह के गाए गीत दिल को छू गए। तो जावेद अख्तर साहब के लिखे हुए गीत और संगीत तैयार किया कुलदीप सिंह ने। तो सुन लेते हैं फिल्म साथ साथ से गीत जगजीत सिंह की आवाज़ में।

और इस सफर का आखिरी गीत सुन लेते हैं फिल्म शराबी से, आवाज किशोर कुमार साहब की। फिल्म का इस गीत का संगीत तैयार किया है बप्पी लहरी ने और गीत के बोल हैं अनजान के। प्रकाश मेहरा साहब की ये फिल्म है, निर्देशित फिल्म है, एक प्रसिद्ध जैसे बोलते ना हिंदी ड्रामा फिल्म जिसमें अमिताभ बच्चन, जयप्रदा, प्राण और ओम प्रकाश मुख्य भूमिकाओं में दिखे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष मिश्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की 4 दिवसीय यात्रा पर रवाना होंगे। प्रधानमंत्री मोदी उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के निमंत्रण पर ताशकंद का दौरा करेंगे। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी और मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति मिर्जियोयेव के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत करेंगे। भारत और उज्बेकिस्तान ने 2011 में अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। तब से द्विपक्षीय संबंध कई क्षेत्रों में व्यापक रूप से बढ़े हैं।
1: भारत और उज्बेकिस्तान ने 2011 में अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। तब से द्विपक्षीय संबंध कई क्षेत्रों में व्यापक रूप से बढ़े हैं। प्रधानमंत्री की यात्रा भारत और उज्बेकिस्तान के बीच करीबी, बहुआयामी और बढ़ते राजनीतिक साझेदारी को बढ़ावा देगी। चर्चा के दौरान आपसी सहयोग के कई इलाकों को शामिल किए जाने और द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के नए रास्ते तलाशने की उम्मीद है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद, उज्बेकिस्तान।
0: विदेश मंत्रालय ने कहा है कि नेपाल में विनाशकारी बाढ़ त्रासदी के बाद अब तक 84 भारतीय नागरिकों को बचाया गया है। इनमें त्रिशूली एक परियोजना के 63 कर्मचारी और तमिलनाडु के 21 व्यक्ति शामिल हैं। मंत्रालय ने कहा कि 320 भारतीयों से संपर्क नहीं हो पा रहा है और वे लापता हैं। मंत्रालय ने बताया कि कल 149 लोग चीन से सुरक्षित नेपाल पहुंच गए हैं। उधर चीन की तरफ लगभग 400 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और भारतीय दूतावास उनके संपर्क में है और उन्हें वहां से निकालने के लिए काम कर रहा है। नेपाल और तिब्बत में विनाशकारी बाढ़ से मृतकों की संख्या बढ़कर 547 हो गई है। 1545 लोग लापता हैं। दक्षिण पश्चिमी चीन में 5.1 तीव्रता के भूकंप के बाद फिर से बाढ़ की आशंका बढ़ गई है। उधर नेपाल में आई भयानक बाढ़ के बाद वहां फंसे महाराष्ट्र के 290 लोगों के सुरक्षित होने की पुष्टि हुई है, जबकि 60 लोगों का अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है। आपदा के समय नेपाल में महाराष्ट्र के जिन 395 लोगों के मौजूद होने की जानकारी मिली थी, उनमें से 105 भारत लौट रहे हैं, जबकि राज्य नियंत्रण कक्ष का

0: बाकी 290 लोगों से संपर्क हुआ है। वे सुरक्षित हैं लेकिन वहीं फंसे हुए हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना के कल 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। यह देश में वित्तीय समावेशन की दिशा में प्रमुख पड़ाव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में जनधन परियोजना के अभूतपूर्व परिवर्तनकारी परिणामों का प्रभाव बेमिसाल है। श्री मोदी ने कहा कि जनधन योजना वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और देश के लोगों को सक्षम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। सरकार ने कहा है कि देश में चीनी की कोई कमी नहीं है और उचित कीमतों पर पर्याप्त मात्रा में चीनी उपलब्ध कराने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जाएंगे। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने बताया कि हाल के दिनों में चीनी की कीमतों में लगभग 20% की गिरावट आई है, जबकि खुदरा चीनी की कीमतें भी कम होने लगी हैं। परीक्षा सुधारों के लिए गठित उच्च स्तरीय कार्य बल ने विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों सहित सभी हितधारकों से सुझाव आमंत्रित किए हैं। सुझाव 13 सितंबर तक वेबसाइट, व्हाट्सएप या फोन नंबर द्वारा भेजे जा सकते हैं। इस बीच राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने यूजीसी नेट 2026 की 84 विषयों की अंतिम उत्तर कुंजी जारी कर दी है। देश में इस वर्ष जुलाई में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP द्वारा मापी गई औद्योगिक उत्पादन वृद्धि दर वार्षिक आधार पर 6.7% रही। इन आंकड़ों से संकेत मिलता है कि इस दौरान औद्योगिक गतिविधि में अच्छी गति से वृद्धि जारी रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश में लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 137वीं कड़ी होगी। यह कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार कच्चे माल और तैयार उत्पादों का परीक्षण, मापांकन और गुणवत्ता मूल्यांकन करने वाली केंद्रीय सरकारी परीक्षण प्रयोगशाला नेशनल टेस्ट हाउस आज बेंगलुरु में अपना 115वां स्थापना दिवस मनाएगा। कार्यक्रम में केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी शामिल होंगे। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Akhila. India has stepped up humanitarian assistance to Nepal affected by the flash floods as the third flight carrying 10 tons of humanitarian assistance has departed for Kathmandu. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar informed this in a social media post. The minister said that the assistance includes portable generator sets, dignity kits, food packets and water purification tablets. Dr. Jayashankar said that an 11-member team of doctors, paramedics and recce team for tunnel rescue operations is also on board. He also reiterated India's support to Nepal's ongoing relief and rescue efforts. Earlier, India had sent more than 47 tons of emergency relief supplies in two flights. Meanwhile, the death toll from devastating flash floods in Nepal and Tibet has risen to 547, with 1,545 people are still missing as rescue teams searched riverbanks and isolated settlements to survivors and bodies swept downstream. Authorities have evacuated more than 800 people from affected districts and issued fresh warnings after a 5.1 magnitude earthquake struck southwestern China, raising fears of further flooding. India has launched a major rescue and relief operation. The Ministry of External Affairs has said that 320 Indian nationals remain uncontactable or are reportedly missing following the flash flood tragedy on Wednesday. External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal said around 100 people of Indian origin holding other nationalities also remain uncontactable. The External Affairs Ministry has said that 84 Indian nationals have been rescued so far in Nepal following flash flood tragedy. These include 63 workers of the Trishuli 1 project and 21 people from Tamil Nadu. Mr. Jaiswal informed that the media that 21 Indian nationals from Tamil Nadu had reached Kathmandu from the flood-affected area on Thursday have arrived in New Delhi yesterday. External Affairs Minister Dr. Jaishankar yesterday met the group of 21 pilgrims belonging to Tamil Nadu in New Delhi who were rescued from Nepal. Later talking to the media, he thanked the government of Nepal and its army for the rescue efforts. On the Chinese side, External Affairs Ministry spokesman

एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज। रात के अंधेरे, रात के गलियारे, यादें मानो तेजी से दौड़ी आ रही हैं, एक के बाद एक, थमने का नाम ही नहीं लेती। ऐसे में आप अकेले हैं तो ये यादें बहुत सताती हैं, जिनसे कभी आप आबाद थे। यथार्थ में आबाद तो अभी भी हैं, ख्यालों में, ख्वाबों में, यादों में, बातों में, जहन में, दिलो दिमाग में। खैर, जब जब रातें होंगी ये मन का अंधियारा फैलेगा तो दुखती रगों को जरूर छुएगा। दुखन, ये घुटन, ये चुभन, कसक तो बहुत उठेगी। दुखती रगों को छूती ये यादें टीस तो बहुत देंगी। यहां ये बात जरूर कहनी होगी कि भाई, दुख निकल जाए, बह जाए, बट जाए, यही इसका सबसे बढ़िया मरहम है। तो चलिए यादों की इन गांठों को खोलते हैं, कुछ सुनते हैं, कुछ बांटते हैं और एक खुशनुमा माहौल से सहला लेते हैं इन दिल के जख्मों को सुहाने गीतों के जरिए, गीत सुहाने में। आकाशवाणी गोल्ड 100.1, अंजलि है आपके साथ।

0: लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी साहब को आपने सुना दिल तेरा दीवाना फिल्म से। कोई कहता है प्यार नशा बन जाता है, कोई कहता है प्यार नशा बन जाता है, कोई कहता है प्यार सजा बन जाता है, पर प्यार करो अगर सच्चे दिल से तो वो प्यार जीने की वजह बन जाता है। माया फिल्म में लता जी और रफ़ी साहब।
1: जिस दिन

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।

और जो अब गीत आप सुनने जा रहे हैं बहुत ही जैसे आपके दिल को पसंद आएगा, मिस मैरी फिल्म से है, लता जी की आवाज़ में और मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में। दौलत नहीं, शोहरत नहीं, ना वाह चाहिए, कैसे हो बस दो लफ्ज़ों की परवाह चाहिए। बस यही करने से चूक जाते हैं हम, बड़ी बड़ी हसरतें, इच्छाएं, तमन्नाएं लगा बैठते हैं ज़िंदगी से, पर क्या है ज़िंदगी कोई समझ ही नहीं पाया। हाँ, बयां बहुत कुछ किया गया है इसके बारे में। कभी कभी ज़िंदगी एक पल में गुजर जाती है और कभी कभी ज़िंदगी का एक पल नहीं गुजरता। सोच भले अलग अलग हो पर इसी उतार चढ़ाव के साथ गुजर जाती है ज़िंदगी, क्योंकि वक्त जनाब बड़ा बलवान है, किसी के रोके रुका है कभी, वक्त रहता नहीं कहीं टिककर, आदत इसकी भी आदमी सी है।

तेरा इंतजार मुझे हर पल रहता है, हर लम्हा तेरा एहसास रहता है। तुझ बिन धड़कने रुक सी जाती हैं, तू मेरे दिल में मेरी धड़कन बनकर रहता है।

तमन्नाओं के ये दिए जलते रहेंगे, मेरी आंखों से आंसू निकलते रहेंगे। आप शमा बनके दिल में रोशनी तो करो, हम तो मोम बनकर यूं ही पिघलते रहेंगे।

उम्मीद वक्त का सबसे बड़ा सहारा है, अगर हौसला है तो हर मौज में किनारा है। रात तो वक्त की पाबंद है ढल जाएगी, रात तो वक्त की पाबंद है ढल जाएगी, देखना ये है चरागों का सफर कितना है।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष मिश्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उज़्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की 4 दिवसीय यात्रा पर रवाना होंगे। प्रधानमंत्री मोदी उज़्बेक

0: पाकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के निमंत्रण पर नताशकंद का दौरा करेंगे। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी और मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति मिर्जियोयेव के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तर की बातचीत करेंगे। भारत और उज्बेकिस्तान ने 2011 में अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। तब से द्विपक्षीय संबंध कई क्षेत्रों में व्यापक रूप से बढ़े हैं।
1: भारत और उज्बेकिस्तान ने 2011 में अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। तब से द्विपक्षीय संबंध कई क्षेत्रों में व्यापक रूप से बढ़े हैं। प्रधानमंत्री की यात्रा भारत और उज्बेकिस्तान के बीच करीबी, बहुआयामी और बढ़ते राजनीतिक साझेदारी को बढ़ावा देगी। चर्चा के दौरान आपसी सहयोग के कई इलाकों को शामिल किए जाने और द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के नए रास्ते तलाशने की उम्मीद है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद, उज्बेकिस्तान।
0: विदेश मंत्रालय ने कहा है कि नेपाल में विनाशकारी बाढ़ त्रासदी के बाद अब तक 84 भारतीय नागरिकों को बचाया गया है। इनमें त्रिशूली एक परियोजना के 63 कर्मचारी और तमिलनाडु के 21 व्यक्ति शामिल हैं। मंत्रालय ने कहा कि 320 भारतीयों से संपर्क नहीं हो पा रहा है और वे लापता हैं। मंत्रालय ने बताया कि कल 149 लोग चीन से सुरक्षित नेपाल पहुंच गए हैं। उधर चीन की तरफ लगभग 400 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और भारतीय दूतावास उनके संपर्क में है और उन्हें वहां से निकालने के लिए काम कर रहा है। नेपाल और तिब्बत में विनाशकारी बाढ़ से मृतकों की संख्या बढ़कर 547 हो गई है। 1545 लोग लापता हैं। दक्षिण पश्चिमी चीन में 5.1 तीव्रता के भूकंप के बाद फिर से बाढ़ की आशंका बढ़ गई है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के कल 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। यह देश में वित्तीय समावेशन की दिशा में प्रमुख पड़ाव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में जनधन योजना के अभूतपूर्व परिवर्तनकारी परिणामों का प्रभाव बेमिसाल है। श्री मोदी ने कहा कि जनधन योजना वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और देश के लोगों को सक्षम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। सरकार ने कहा है कि देश में चीनी की कोई कमी नहीं है और उचित कीमतों पर पर्याप्त मात्रा में चीनी उपलब्ध कराने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जाएंगे। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने बताया कि हाल के दिनों में चीनी की कीमतों में लगभग 20% की गिरावट आई है, जबकि खुदरा चीनी की कीमतें भी कम होने लगी हैं। परीक्षा सुधारों के लिए गठित उच्च स्तरीय कार्य बल ने विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों सहित सभी हितधारकों से सुझाव आमंत्रित किए हैं। सुझाव 13 सितंबर तक वेबसाइट, व्हाट्सएप या फोन नंबर द्वारा भेजे जा सकते हैं। इस बीच राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने UGC नेट 2026 की 84 विषयों की अंतिम उत्तर कुंजी जारी कर दी है। देश में इस वर्ष जुलाई में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP द्वारा मापी गई औद्योगिक उत्पादन वृद्धि दर वार्षिक आधार पर 6.7% रही। इन आंकड़ों से संकेत मिलता है कि इस दौरान औद्योगिक गतिविधि में अच्छी गति से वृद्धि जारी रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश में लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 137वीं कड़ी होगी। यह कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। 10वां महिला एशिया कप कल संयुक्त अरब अमीरात के दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में आरंभ हो गया है। एशिया कप के 2026 के इस संस्करण में कुल 8 टीमें भाग ले रही हैं, जिन्हें 4-4 के दो समूहों में बांटा गया है। ग्रुप ए में भारत और पाकिस्तान के साथ हांगकांग और थाईलैंड है, जबकि ग्रुप बी में श्रीलंका, बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात और इंडोनेशिया शामिल हैं। महिला एशिया कप का आरंभिक मैच कल थाईलैंड और हांगकांग के बीच खेला गया। ग्रुप ए के मैच में थाईलैंड ने हांगकांग को 6 रन से हरा दिया। आज दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में ग्रुप बी के मैच में श्रीलंका का मुकाबला संयुक्त अरब अमीरात से होगा। इस बीच भारतीय महिला क्रिकेट टीम अपने अभियान की शुरुआत 30 अगस्त को थाईलैंड के खिलाफ करेगी। इसके बाद 3 सितंबर को उसका सामना हांगकांग से होगा। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अखिला। India has stepped up humanitarian assistance to Nepal affected by the flash floods as the third flight carrying 10 tons of humanitarian assistance has departed for Kathmandu.

स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आकाशवाणी गोल्ड 100.1 और 2:11 हुए हैं। ये वक्त रहता है रात सुरमई का, रात भर का है मेहमा अंधेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। बस गीतों की कुछ ऐसी ही बयार इस वक्त बहेगी जो सुकून और शीतलता दोनों महसूस कराएगी। गीतों की मिठास, गीतों की खुशबू जब चारों तरफ फैली हो तो क्यों ना मन मदमस्त हो उठे। नदी का किनारा, प्रकृति का सहारा, चांद तारों की छांव, सभी कुछ महसूस कर पाएंगे। यहाँ तन स्वस्थ हो, मन खुश हो तो चारों तरफ खुशनुमा माहौल नजर आता है और ऐसे ही नजारों के बीच मधुर मीठा दिल में उतरता संगीत खामोशियों में खामोशियों से कुछ कहता। यही कहना सुनना मीठी और प्यारी यादें हमारे जहन में बसा देता है। तो चलिए बहुत सारी न्यारी प्यारी अजीज यादों को यहाँ बटोरते हैं, इकट्ठा करते हैं ताकि रात की तन्हाइयों में इनका साथ भी साथ दे। आकाशवाणी गोल्ड 100.1 रात सुरमई, अंजलि है आपके साथ।

अपनी सांसों में महकता पाया है तुझे, अपनी सांसों में महकता पाया है तुझे, हर ख्वाब में बुलाया है तुझे। क्यों ना करें याद तुझको, क्यों ना करें याद तुझको, जब खुदा ने हमारे लिए बनाया है तुझे।

दिल की किताब में गुलाब उनका था, दिल की किताब में गुलाब उनका था, रात की नींद में ख्वाब उनका था। कितना प्यार करते हो जब हमने पूछा, मर जाएंगे तुम्हारे बिना, ये जवाब उनका था।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।
1: आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल और इस वक्त रात सुरमई का यह सफ़र मैं और आप तय कर रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि गाने आपके दिल को छू रहे होंगे, बातें भी कहीं ना कहीं दिल में पहुंच रही होंगी। शान से हम तेरे दिल में रहेंगे, शान से हम तेरे दिल में रहेंगे, तेरी मोहब्बत पे जान निसार करेंगे, देख के जलेगी हमें दुनिया सारी, इस कदर बेपनाह तुझे प्यार करेंगे।

जब से देखा है तेरी आंखों में झांक कर, जब से देखा है तेरी आंखों में झांक कर, कोई आईना अच्छा नहीं लगता। तेरी मोहब्बत में ऐसे हुए दीवाने, तुम्हें कोई और देखे तो अच्छा नहीं लगता।

इसी के साथ अंजलि आपसे ले रही है इजाजत, लेकिन आप सुनते रहे आकाशवाणी गोल्ड 100.1। आगे का सफर भी जारी रहेगा और आपके साथ रहेंगी माधुरी। कुछ ही देर में सुनिएगा समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष मिश्र। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज से तमिलनाडु, कर्नाटक, केरलम, लक्षद्वीप की 3 दिन की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान उपराष्ट्रपति शिक्षा, जनसेवा, सांस्कृतिक विरासत, उद्योग जगत और शैक्षिक जगत के बीच सहयोग, मत्स्य पालन से जुड़े कार्यक्रमों तथा प्रमुख सार्वजनिक समारोहों में शामिल होंगे। श्री राधाकृष्णन आज तमिलनाडु के इरोड में कोंगु वेल्लालोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ट्रस्ट के स्थापना दिवस में समारोह में शामिल होंगे। इसके बाद उपराष्ट्रपति बेंगलुरु जाएंगे, जहां वे विधानसौधा में कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री रामकृष्ण हेगड़े के जन्मशती समारोह में शामिल होंगे। रविवार को उपराष्ट्रपति केरलम के अलापुझा जाएंगे, वे केरल कौमुदी की 115वीं वर्षगांठ के समारोह में शामिल होंगे। इसके बाद वे पतनमतिट्टा जाएंगे और वहां अरनमुला जल महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। श्री राधाकृष्णन तिरुवनंतपुरम में केरलम के प्रमुख सांस्कृतिक त्यौहार ओणम पेजेंट्री का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की 4 दिवसीय यात्रा पर रवाना होंगे। प्रधानमंत्री मोदी उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के निमंत्रण पर ताशकंद का दौरा करेंगे। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी और मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति मिर्जियोयेव के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तर की बातचीत करेंगे। भारत और उज्बेकिस्तान ने 2011 में अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। तब से द्विपक्षीय संबंध कई क्षेत्रों में व्यापक रूप से बढ़े हैं।
1: भारत और उज्बेकिस्तान ने 2011 में अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। तब से द्विपक्षीय संबंध कई क्षेत्रों में व्यापक रूप से बढ़े हैं। प्रधानमंत्री की यात्रा भारत और उज्बेकिस्तान के बीच करीबी, बहुआयामी और बढ़ते राजनीतिक साझेदारी को बढ़ावा देगी। चर्चा के दौरान आपसी सहयोग के कई इलाकों को शामिल किए जाने और द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के नए रास्ते तलाशने की उम्मीद है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद, उज्बेकिस्तान।
0: विदेश मंत्रालय ने कहा है कि नेपाल में विनाशकारी बाढ़ त्रासदी के बाद अब तक 84 भारतीय नागरिकों को बचाया गया है। इनमें त्रिशूली एक परियोजना के 63 कर्मचारी और तमिलनाडु के 21 व्यक्ति शामिल हैं। मंत्रालय ने कहा कि 320 भारतीयों से संपर्क नहीं हो पा रहा है और वे लापता हैं। मंत्रालय ने बताया कि कल 149 लोग चीन से सुरक्षित नेपाल पहुंच गए हैं। उधर चीन की तरफ लगभग 400 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और भारतीय दूतावास उनके संपर्क में है और उन्हें वहां से निकालने के लिए काम कर रहा है। नेपाल और तिब्बत में विनाशकारी बाढ़ से मृतकों की संख्या बढ़कर 547 हो गई है। 1545 लोग लापता हैं। दक्षिण पश्चिमी चीन में 5.1 तीव्रता के भूकंप के बाद फिर से बाढ़ की आशंका बढ़ गई है। सरकार ने कहा है कि देश में चीनी की कोई कमी नहीं है और उचित कीमतों पर पर्याप्त मात्रा में चीनी उपलब्ध कराने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जाएंगे। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने बताया कि हाल के दिनों में चीनी की कीमतों में लगभग 20% की गिरावट आई है, जबकि खुदरा चीनी की कीमतें भी कम होने लगी हैं। परीक्षा सुधारों के लिए गठित उच्च स्तरीय कार्यबल ने विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों सहित

आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर सुन रहे हैं और आज की रात हमराही लेकर माधुरी है आप सभी के साथ।

अजनबी फिल्म का ये गीत सुना आप सभी ने, किशोर कुमार और लता चेक की आवाज़ में, आर डी बर्मन के संगीत से सजा हुआ। और प्यार की जो महक होती है वो ऐसी ही होती है, किसी को भी दीवाना कर देती है। बारिश बारिश नहीं लगती, धूप धूप नहीं लगती और हवा हवा नहीं लगती। लगता है कि ऊपर आसमां में चांद हो और नीचे बस किसी तरह छुप छुपा के हम बैठे हों और बातें कर रहे हों।

गीत सुन रहे थे आप लता जी और किशोर कुमार के आवाज में, और ये है खास कार्यक्रम जिसका नाम है हमराही। और खास इसलिए है क्योंकि युगल गीतों की खास प्रस्तुति होती है इस कार्यक्रम में, जिन्हें आप बहुत पसंद करते हैं।

किशोर और लता जी की आवाज में ये खूबसूरत सा गीत सुन रहे थे आप। फिल्म फिर वही रात से आरडी बर्मन का संगीत और मजरू सुल्तानपुरी के लिखे बोल। और सच ही है कि प्यार में एक अजब सी खुमारी होती है, क्या से क्या हो जाता है। अच्छा भला जो इंसान है वो तबाह तो नहीं करूँगी, लेकिन हाँ ये कहूँगी कि उसमें मोहब्बत भर जाती है। हम मोहब्बत सिर्फ उसी से नहीं करते जिसे मोहब्बत करना चाहते हैं। मोहब्बत इंसान को सच में बदल देती है, वो सबसे मोहब्बत करना सिखाती है। ऐसा नहीं है कि हम एक से मोहब्बत कर रहे हैं और दूसरे से जो है हम नफरत पाल रहे हैं, बिल्कुल नहीं। मोहब्बत अलग ही लेवल की जो है वो शय है। और देखिए ना, शायर भी क्या कहते हैं कि नींद भी, बेदारी भी, ख्वाब भी, आंसू भी, क्या क्या है इन आँखों की अलमारी में। एक ही रंग का फूल था लेकिन ले आया एक सतरंगी तितली को फुलवारी में। तुझसे पहले पहुंचूं राह तकूं तेरी, कुछ बुद्धूपन भी है इस होशियारी में। सच में मोहब्बत में थोड़ा बुद्धूपन तो होता ही है।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।
1: जी हाँ, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। ये सफर है हमराहे का, जी हाँ, ड्यूट गीतों की खास पेशकश, जिसे लेकर आज की रात माधुरी आप सभी के साथ। तो चलिए सुनते रहते हैं इन गीतों को।

मोहब्बत का कोई सदमा उठाना चाहिए था, भुलाया था जिसे वो याद आना चाहिए था। मेरी अपनी और उसकी आरजू में फ़र्क ये था, मुझे बस वो उसे सारा जमाना चाहिए था।

रात्रि के 3:48 और हो गए हैं पूरे 20 सेकेंड। आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ और कार्यक्रम है हमराही।

मुकेश साहब, किशोर कुमार और आशा भोसले साथियों की आवाज़ में आर डी बर्मन का संगीत मच्छू सुल्तानपुरी के लिखे बोल। और प्यार की बात चले तो ख़त्म कहाँ होती है, कहीं नहीं होती, उसकी मंजिल बदलती जाती है और आगे बढ़ती जाती है। बातें यूं ही चलती रहती हैं, हर गीत में मोहब्बत भरी हुई है और हम यही तो चाहते हैं कि सबके दिल मोहब्बत से भर जाएं। रात यूं दिल में तेरी खोई हुई याद आई, जैसे वीराने में चुपके से बहार आ जाए, जैसे सहरे में हौले से चले बादे नसीम, जैसे बीमार को चुपके से दवा मिल जाए। और आराम से ये गीत भी बच जाए। फिल्म दिलजला से ये गीत है आप सभी के लिए, आशा जी और किशोर कुमार की आवाज़ में।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष मिश्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की चार दिवसीय यात्रा पर रवाना होंगे। प्रधानमंत्री मोदी उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के निमंत्रण पर ताशकंद का दौरा करेंगे। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी और मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति मिर्जियोयेव के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत करेंगे। भारत और उज्बेकिस्तान ने 2011 में अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। तब से द्विपक्षीय संबंध कई क्षेत्रों में व्यापक रूप से बढ़े हैं।
1: भारत और उज्बेकिस्तान ने 2011 में अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। तब से द्विपक्षीय संबंध कई क्षेत्रों में व्यापक रूप से बढ़े हैं। प्रधानमंत्री की यात्रा भारत और उज्बेकिस्तान के बीच करीबी, बहुआयामी और बढ़ते राजनीतिक साझेदारी को बढ़ावा देगी। चर्चा के दौरान आपसी सहयोग के कई इलाकों को शामिल किए जाने और द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के नए रास्ते तलाशने की उम्मीद है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद, उज्बेकिस्तान।
0: विदेश मंत्रालय ने कहा है कि नेपाल में विनाशकारी बाढ़ त्रासदी के बाद अब तक 84 भारतीय नागरिकों को बचाया गया है। इनमें त्रिशूली एक परियोजना के 63 कर्मचारी और तमिलनाडु के 21 व्यक्ति शामिल हैं। मंत्रालय ने कहा कि 320 भारतीयों से संपर्क नहीं हो पा रहा है और वे लापता हैं। मंत्रालय ने बताया कि कल 149 लोग चीन से सुरक्षित नेपाल पहुंच गए हैं। उधर चीन की तरफ लगभग 400 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और भारतीय दूतावास उनके संपर्क में है और उन्हें वहां से निकालने के लिए काम कर रहा है। नेपाल और तिब्बत में विनाशकारी बाढ़ से मृतकों की संख्या बढ़कर 547 हो गई है। 1545 लोग लापता हैं। दक्षिण पश्चिमी चीन में 5.1 तीव्रता के भूकंप के बाद फिर से बाढ़ की आशंका बढ़ गई है। सरकार ने कहा है कि देश में चीनी की कोई कमी नहीं है और उचित कीमतों पर पर्याप्त मात्रा में चीनी उपलब्ध कराने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जाएंगे। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने बताया कि हाल के दिनों में चीनी की कीमतों में लगभग 20% की गिरावट आई है, जबकि खुदरा चीनी की कीमतें भी कम होने लगी हैं। परीक्षा सुधारों के लिए गठित उच्च स्तरीय कार्य बल ने विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों सहित सभी हितधारकों से सुझाव आमंत्रित किए हैं। सुझाव 13 सितंबर तक वेबसाइट, व्हाट्सएप या फोन नंबर द्वारा भेजे जा सकते हैं। इस बीच राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने यूजीसी नेट 2026 के 84 विषयों के परिणाम घोषित कर दिए हैं। देश में इस वर्ष जुलाई में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक आईआईपी द्वारा मापी गई औद्योगिक उत्पादन वृद्धि दर वार्षिक आधार पर 6.7% रही। इन आंकड़ों से संकेत मिलता है कि इस दौरान औद्योगिक गतिविधि में अच्छी गति से वृद्धि जारी रही। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज से तमिलनाडु, कर्नाटक, केरलम और लक्षद्वीप की 3 दिन की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान उपराष्ट्रपति शिक्षा, जनसेवा, सांस्कृतिक विरासत, उद्योग जगत और शैक्षिक जगत के बीच सहयोग, मत्स्य पालन से जुड़े कार्यक्रमों तथा प्रमुख सार्वजनिक समारोहों में शामिल होंगे। मौसम विभाग ने ओडिशा के कुछ इलाकों में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने आज बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, मैदानी पश्चिमी बंगाल, झारखंड, उत्तराखंड और उत्तर पूर्वी राज्यों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। आज राजधानी में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। भारत के वेलवन सेंथिल कुमार ने पीएसए बुडापेस्ट स्क्वैश ओपन 2026 का खिताब जीत लिया है। फाइनल मुकाबले में उन्होंने स्थानीय खिलाड़ी हंगरी के बालास फारकस को सीधे गेम में 3-0 से हराकर यह ऐतिहासिक जीत

आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर सुन रहे हैं आप, और ये सफर है अरुणिमा का, जिसे लेकर आज की रात माधुरी है आप सभी के साथ। स्वागत है अरुणिमा के इस सफर में आप सभी सुनने वालों का। यूं ही हमें सुनते रहिए, यूं ही जुड़े रहिए आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल के साथ।

फिल्म रेशमा और शेरा से ये गीत आप सभी के लिए था लता जी के आवाज़ में। और कुछ गीत लंबे ज़रूर होते हैं लेकिन इतने मधुर होते हैं कि धीरे धीरे हमारे दिल को छूते जाते हैं, भिगोते चले जाते हैं। उन्हीं गीतों में से एक गीत ये था जो अभी आपने सुना। दरवाज़ा बंद रखने से भी क्या मिला मुझे, आवाज़ दे रहा था तेरा रास्ता मुझे।

फिल्म द ग्रेट गैम्बलर से ये गीत सुना आप सभी ने लता जी की आवाज़ में, और साथ ही साथ कहीं कहीं और आवाज़ें भी थी, शायद आपने पहचाना हो। चलिए बताइएगा कि आपने पहचाना उन आवाज़ों को। और रात के इस पहर में अब क्या कहूँ कि हम मुसाफिर हैं एक कश्ती के, दोस्त बन जाएं तो बुरा क्या है। अब ये सोचा है खुश रहें, देखें तकदीर में लिखा क्या है।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।
1: आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। अरुणिमा का ये सफ़र है और समय हो गया है सुबह के 4:34:10। माधुरी है आप सभी के साथ और हम इस सफ़र में सुन रहे हैं बेहद खूबसूरत गीत। गम तो खैर सबके पास होता है और सबके दिल में रहता है, पर अपना गम सभी को ज़्यादा लगता है। मुझे अपना लगता है, आपको अपना लगता होगा, लेकिन इस सबसे अगर परे होके देखें तो ज़िंदगी की खूबसूरती इन्हीं गम और खुशी के उतार चढ़ाव में छिपी हुई है। अब इस पर एक शेर भी आपके पेशे नज़र कर देती हूँ कि तुझे इस गम का अंदाज़ा नहीं है, तुझे इस गम का अंदाज़ा नहीं है, ये दिल का गम है, दुनिया का नहीं है।
2: अब अगर हमसे

जी आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ। न कोई रंज का लम्हा किसी के पास आए, खुदा करे कि ये जो हर पल है सबको रास आए। और बहुत सारी बातें हम और आप मिलकर करते हैं और इस सफ़र को आगे बढ़ाते जाते हैं। अभी बहुत ही खूबसूरत गीत सुना आपने फिल्म लैला मजनू से, और अब अगला गीत हम आपके लिए लेकर आए हैं फिल्म प्रेम रोग से।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।
1: अरुणिमा का ये सफर है आकाशवाणी के FM गोल्ड दिल्ली पर और 100 बज अरुणिमा में आगे बढ़ते हुए और कुछ बातें हम और आप कर लेते हैं। बहुत खुश है कि वो तन्हा नहीं है, मगर जो साथ है उसका नहीं है। वो चाहे तो अलग हो जाए मुझसे, वो मेरा दोस्त है, साया नहीं है। उसे अपना शरीके गम करूं क्या, वो मेरा है, मेरे जैसा नहीं है। मैं आखिर किस तरह समझाऊं उसको, मेरे कब्जे में ये दुनिया नहीं है। हजारों बार मैं हारा हूं, लेकिन कभी मुझसे कोई जीता नहीं है। और न जाने कहां रूपोश है, कई दिन से उसे देखा नहीं है। हम चलते चलते खुद में खुद को ढूंढते हुए कितनी आगे निकल जाते हैं और फिर पाते हैं कि क्या हम में हम हैं।

ही पड़ा ये माना मेरी जान मोहब्बत सजा है ये माना मेरी जान मोहब्बत।

देखिए ना, रात का ये पहर भी बीतते बीतते बस बीतने को है, और अरुणिमा का ये सफर अब हम यहीं समाप्त करते हैं। फिलहाल चलते हैं समाचार कक्ष की ओर, लेते हैं देश दुनिया का हाल, यानी सुनते हैं समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की 4 दिन की यात्रा पर आज रवाना होंगे। प्रधानमंत्री मोदी उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के निमंत्रण पर ताशकंद जा रहे हैं। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी और मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति मिर्जियोयेव के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। भारत और उज्बेकिस्तान ने वर्ष 2011 में अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया था। इस दौरान द्विपक्षीय संबंध कई क्षेत्रों में व्यापक रूप से बढ़े हैं।
1: भारत और उज्बेकिस्तान ने 2011 में अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। तब से द्विपक्षीय संबंध कई क्षेत्रों में व्यापक रूप से बढ़े हैं। प्रधानमंत्री की यात्रा भारत और उज्बेकिस्तान के बीच करीबी, बहुआयामी और बढ़ते राजनीतिक साझेदारी को बढ़ावा देगी। चर्चा के दौरान आपसी सहयोग के कई इलाकों को शामिल किए जाने और द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के नए रास्ते तलाशने की उम्मीद है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद, उज्बेकिस्तान।
0: उज्बेकिस्तान में भारत की राजदूत स्मिता पंत ने आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध तेजी से मजबूत हो रखे हैं और प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान सभी क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी। नेपाल और तिब्बत में विनाशकारी बाढ़ से मृतकों की संख्या बढ़कर 547 हो गई है। 1545 लोग अभी लापता हैं। दक्षिणी पश्चिमी चीन में 5.1 तीव्रता के भूकंप के बाद फिर से बाढ़ की आशंका बढ़ गई है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि नेपाल में विनाशकारी बाढ़ के बाद अब तक 84 भारतीय नागरिकों को बचा लिया गया है। इनमें त्रिशूली वन परियोजना के 63 कर्मचारी और तमिलनाडु के 21 व्यक्ति शामिल हैं। मंत्रालय ने कहा है कि 320 भारतीयों से संपर्क नहीं हो सका। मंत्रालय ने बताया कि कल 149 लोग चीन से सुरक्षित नेपाल पहुंचे हैं। उधर चीन की तरफ लगभग 400 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं। भारतीय दूतावास उनके संपर्क में है और उन्हें निकालने का काम जारी है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन तमिलनाडु, कर्नाटक, केरलम और लक्षद्वीप की 3 दिन की यात्रा पर आज जा रहे हैं। इस दौरान उपराष्ट्रपति शिक्षा, लोक सेवा, सांस्कृतिक विरासत, उद्योग जगत और शिक्षा जगत के बीच सहयोग, मत्स्य पालन से जुड़े कार्यक्रमों तथा प्रमुख सार्वजनिक समारोहों में शामिल होंगे। सरकार ने कहा है कि देश में चीनी की कोई कमी नहीं है और उचित मूल्य पर पर्याप्त मात्रा में चीनी उपलब्ध कराने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जा रहे हैं। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने बताया कि हाल के दिनों में चीनी के मूल्यों में लगभग 20% की गिरावट आई है और खुदरा चीनी की कीमतें भी कम होने लगी हैं। परीक्षा सुधारों के लिए गठित उच्च स्तरीय कार्यबल ने विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों सहित सभी हितधारकों से सुझाव आमंत्रित किए हैं। सुझाव 13 सितम्बर तक वेबसाइट, व्हाट्सएप या फोन के माध्यम से भेजे जा सकते हैं। इस बीच राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने यूजीसी नेट 2026 के 84 विषयों के परिणाम घोषित कर दिए हैं। देश में इस वर्ष जुलाई में औद्योगिक उत्पादन की दर 6.7% रही। इस दौरान औद्योगिक गतिविधि में अच्छी गति से वृद्धि जारी रही, हालांकि इस अवधि में विकास की गति जून से कम रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम का ये 137वां संस्करण होगा। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों, आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध होगा। मौसम विभाग ने ओडिशा के कुछ इलाकों में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने आज बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल के मैदानी इलाकों, झारखंड, उत्तराखंड और पूर्वोत्तर राज्यों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। राजधानी में आज आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। भारत के वेलवन सेंथिल कुमार ने PSA बुडापेस्ट स्क्वैश ओपन का खिताब जीत लिया है। फाइनल में कल सेंथिल ने हंगरी के बालास फरकाश को लगातार गेम में

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर सुन रहे हैं आप, और अब शुरू हो रहा है भोर सुहानी का ये सफर। हमारे बहुत सारे रात के जो श्रोता हैं वो तो हमें सुन ही रहे हैं, लेकिन सुबह जल्दी उठने वाले हमारे श्रोता भी अब उठकर हमसे जुड़ रहे होंगे। तो सभी को सुप्रभात। सुबह के 5:11 और हो गए हैं पूरे 18 सेकेंड। एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती है माधुरी इस कार्यक्रम भोर सुहानी में।

दो कलियां फिल्म से ये गीत आप सुन रहे थे लता और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में, संगीत रवि का और बोल साहिर लुधियानवी के। और जब वक्त बदलता है ना तो हालात भी बदलते हैं और इंसान अच्छे बुरे हालात

हाथ से गुजरता है, धीरे धीरे परिपक्व होता जाता है। और सच्ची कहा है कि वक्त बहुत कुछ सिखा देता है। वक्त के साथ हम सीखते चले जाते हैं और फिर समझते हैं कि जो ज़िंदगी गुजरी है उसमें बहुत कुछ अच्छा बुरा जो हुआ उसमें हमारा जो करदार है वो कुछ और भी हो सकता था। और इसी पे दो लाइनें और नज़र करती हूँ मैं आपके, गौर फरमाइएगा कि परेशानी अगर है तो परेशानी का हल भी है, परेशानी अगर है तो परेशानी का हल भी है, परेशान हाल रहने से परेशानी नहीं जाती।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।
1: के 5:29 और हो चुके हैं पूरे 25 सेकेंड। आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ 100.1 MHz पर। ये सफर है अरुणिमा का और माधुरी एक बार फिर आप सभी सुनने वालों को कहती है सुप्रभात।